ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़, एफएम 100.3 मेगाहर्ट्ज़ और न्यूज़ ऑन एआईआर ऐप पर। आज शनिवार है, शक संवत 1948 के भाद्रपद मास की 7वीं तिथि, तदनुसार 29 अगस्त सन 2026। हमारे स्टूडियो की घड़ी में सुबह के 5:56 हो रहे हैं। अब हमारी आज की प्रातःकालीन सभा आरंभ होती है।

0: हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़ और एफएम 100.3 मेगाहर्ट्ज़ पर सुबह के 6 बजने को हैं। थोड़ी देर में आप हमारे दिल्ली केंद्र से प्रसारित हिंदी में समाचार सुनेंगे।
1: आप सुन रहे थे स्वर रंजनी, सुबह के 6 बजे।
2: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं नवीन सक्सेना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उज्बेकिस्तान की 2 दिन की यात्रा पर आज रवाना होंगे। प्रधानमंत्री मोदी उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति शफकत मिर्जियायोयेव के निमंत्रण पर ताशकंद जा रहे हैं। ये प्रधानमंत्री की उज्बेकिस्तान की 4थी यात्रा है। श्री मोदी यात्रा के दौरान भारत और उज्बेकिस्तान के बीच रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करने के लिए राष्ट्रपति मिर्जियायोयेव के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता करेंगे।
3: इस यात्रा के दौरान दोनों नेता ताशकंद में द्विपक्षीय महत्व के सभी मुद्दों पर चर्चा करेंगे। भारत उज्बेकिस्तान के शीर्ष 10 व्यापारिक साझेदारों में से एक है, जिनके बीच द्विपक्षीय व्यापार लगभग $1 अरब का है। पिछले कुछ वर्षों में दोनों देशों के बीच कारोबार तेजी से बढ़ा है। चिकित्सा, खनन और रक्षा कुछ ऐसे महत्वपूर्ण क्षेत्र हैं जिनमें सहयोग की अपार संभावनाएं हैं। रक्षा क्षेत्र में भारत और उज्बेकिस्तान के बीच व्यापक सहयोग की शुरुआत हो चुकी है। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, ताशकंद, उज्बेकिस्तान।
2: उज्बेकिस्तान में भारत की राजदूत स्मिता पंत ने आकाशवाणी समाचार से विशेष बातचीत में कहा कि दोनों देशों के बीच संबंध तेजी से मजबूत हो रहे हैं और प्रधानमंत्री की यात्रा के दौरान सभी क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर चर्चा होगी। नेपाल और तिब्बत में विनाशकारी बाढ़ से मृतकों की संख्या बढ़कर 547 हो गई है। 1545 लोग अभी भी लापता हैं। दक्षिणी पश्चिमी चीन में 5.1 तीव्रता के भूकंप के बाद फिर से बाढ़ की आशंका बढ़ गई है। विदेश मंत्रालय ने बताया है कि नेपाल की बाढ़ के बाद अब तक 84 भारतीय नागरिकों को बचा लिया गया है। इनमें त्रिशूली वन परियोजना के 63 कर्मचारी और तमिलनाडु के 21 लोग शामिल हैं। मंत्रालय ने बताया कि 320 भारतीयों से अभी भी कोई संपर्क नहीं हो सका है। मंत्रालय ने बताया कि 149 लोग चीन से नेपाल पहुंचे हैं। चीन में लगभग 400 भारतीय नागरिक सुरक्षित हैं। भारतीय दूतावास इन लोगों के संपर्क में है और उन्हें वहां से निकालने के लिए काम कर रहा है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन आज तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल और लक्षद्वीप के 3 दिन के दौरे पर जाएंगे। इस दौरान वो शिक्षा, सार्वजनिक सेवा, सांस्कृतिक विरासत, उद्योग, अकादमिक सहयोग, मछली

0: पालन को बढ़ावा देने से संबंधित कार्यक्रमों के अलावा कुछ प्रमुख सार्वजनिक समारोह में भी भाग लेंगे। श्री राधाकृष्णन आज तमिलनाडु के ईरोड में कोंगु विल्लालर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी ट्रस्ट के स्थापना दिवस समारोह में शामिल होंगे। इसके बाद वो बेंगलुरु जाएंगे, जहां वो राज्य विधानसभा में कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री रामकृष्ण हेगड़े के शताब्दी समारोह में भाग लेंगे। सरकार ने कहा है कि देश में चीनी की कोई कमी नहीं है और उचित मूल्य पर पर्याप्त मात्रा में चीनी उपलब्ध कराने के लिए सभी आवश्यक उपाय किए जा रहे हैं। उपभोक्ता कार्य मंत्रालय ने बताया कि हाल के दिनों में चीनी के मूल्यों में लगभग 20% की गिरावट आई है और खुदरा चीनी की कीमतें भी कम होने लगी हैं। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा के 84 विषयों के परिणाम घोषित कर दिए गए हैं। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने इस वर्ष जून में हुई अंग्रेजी, वाणिज्य और समाजशास्त्र विषयों की परीक्षा नए सिरे से आयोजित करने की घोषणा की है। पुनर्परीक्षाएं 9 और 10 सितंबर को होंगी। इसके लिए परीक्षार्थियों को अतिरिक्त शुल्क नहीं देना होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सुबह 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों से अपने विचार साझा करेंगे। यह मासिक रेडियो कार्यक्रम का 137वां संस्करण होगा। कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों, आकाशवाणी समाचार की वेबसाइट और न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर भी किया जाएगा। मौसम विभाग ने उड़ीसा के कुछ इलाकों में मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। विभाग ने आज बिहार, छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल के मैदानी इलाकों, झारखंड, उत्तराखंड और पूर्वोत्तर राज्यों में तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। राजधानी में आज आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे। भारत के वेलवन सेंथिल कुमार ने PSA बुडापेस्ट स्क्वाश ओपन का खिताब जीत लिया है। फाइनल में कल सेंथिल ने हंगरी के बालास फारकाश को लगातार गेम में 3-0 से हराकर ऐतिहासिक जीत दर्ज की। सेंथिल कुमार ने बालास फराज को 11-4, 11-2, 11-3 से हराकर ट्रॉफी जीती। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलो हर्ट्ज और FM 100.3 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। आप हमारे कार्यक्रम सुन सकते हैं न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी। प्रस्तुत है भक्ति संगीत का कार्यक्रम आराधना। कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं का प्रातः वंदन। ईश्वर वो आत्मशक्ति जो कठिनता से हमें बाहर निकालती है, हमें संबल प्रदान करती है। वो अदृश्य होकर भी सर्वत्र विद्यमान है, जिसे देखने के लिए आवश्यकता है हमें अपने अंदर ज्ञान चक्षुओं को जागृत करने की, साथ ही सच्ची निष्ठा, सच्ची भावना और सच्ची श्रद्धा की।

ईश्वर जिन्होंने संपूर्ण सृष्टि की रचना चराचर जीवों के कल्याण के अनुसार की है, प्रकृति में वो सब कुछ है जो मनुष्य को एक व्यवस्थित जीवन जीने के लिए आवश्यक है। साथ ही प्रकृति को भी ईश्वर स्वरूप माना गया है, क्योंकि वो सभी जीवों का भरण पोषण करती है। इस संसार में हमें जो भी पाना है इसी प्रकृति से ही पाना है, और अंत में सब कुछ इसी प्रकृति को ही समर्पित कर देना है। और ईश्वर चाहते हैं, जैसे कि हमने आपसे पहले भी कहा, सच्ची निष्ठा, श्रद्धा, मन और आत्मा के भाव, क्योंकि ईश्वर ने अपने उन भक्तों को अपने से भी ऊंचा स्थान प्रदान कर दिया है जिन्होंने निष्काम भाव से ईश्वर की आराधना की है, अपने मन की शुद्धता को बनाए रखा है, अपनी इंद्रियों को नियंत्रित रखा है, और इन मनोभावों से जब इस चराचर जीव जगत में हमें किसी समस्या का सामना करना पड़ता है, कभी दुर्दिन हमारे सामने आते हैं और हम इन्हीं मनोभावों से अपना जीवन संचालित करते हुए ईश्वर से उन कष्टों के निवारण की प्रार्थना करते हैं, तो वो हमारी प्रार्थना शीघ्रता से प्रभु तक पहुंच जाती है।

0: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।
1: बेटा, ट्रेन रुकने तक यही इंतजार करना। चलती ट्रेन में चढ़ना उतरना बहुत खतरनाक होता है।
2: हाँ माँ, मुझे सब पता है। ट्रेन रुकने के बाद ही प्लेटफॉर्म साइड से उतरूंगा और रेलवे ट्रैक पर कभी नहीं जाऊंगा।
1: अरे वाह, मेरा बेटा तो बड़ा समझदार है। और ये कूड़ा कहाँ डालोगे?
2: डस्टबिन में। स्टेशन साफ रहेगा तभी तो सफर अच्छा लगेगा।
3: एक छोटी सी सावधानी जिंदगी भर की सुरक्षा। सुरक्षित रहें, स्वच्छता अपनाएं और दूसरों को भी जागरूक करें। स्वच्छ रेल परिसर, सुरक्षित रेल यात्रा। उत्तर मध्य रेलवे द्वारा जनहित में जारी।
4: सुनो ना।
5: हाँ?
4: सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों ना बढ़ा लूँ।
5: तो रोका किसने है? हाँ?
4: रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगूं।
5: मुझसे।
4: तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर।
5: आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है।
4: पर उससे मेरा क्या फायदा?
5: देखो, फायदा है जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुँच जाओ।
4: पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं?
5: बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो, 8700014242।
4: ओ, 8700014242। लो अभी फोन लगाता हूँ 8700014242 पर।
6: आपका पुनः स्वागत है भक्ति संगीत के कार्यक्रम आराधना में। कहते हैं डूबते को तिनके का सहारा बहुत होता है, और ये जीवन ये तो संघर्षों के अच्छे मेल मिलाप से ही चलता है। ऐसा कोई जीवन नहीं जिसमें संघर्ष ना हो। कोई किसी समस्या से जूझ रहा है तो कोई किसी समस्या से जूझ रहा है, और इन समस्याओं के दौर में कभी कभी ऐसा भी लगता है जब कहीं कोई आसरा नजर नहीं आता।

तब हमारे हाथ उठते हैं उस परम सत्ता की ओर। हमारी याचना होती है उनसे कि हे प्रभु, अब आप ही हमारी मान मर्यादा, हमारे प्राणों की रक्षा करें, आप ही हमारी विनती सुने, आप ही इस भवसागर से हमें पार करें।

0: ईश्वर हम सबको सद्बुद्धि दें, हमें सन्मार्ग पर लेकर चलें। इसी कामना के साथ आज की आराधना बस यहीं तक। दीजिए अनुमति, नमस्कार। हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज और FM 100.3 मेगाहर्ट्ज पर। विचार बिंदु के अंतर्गत लीजिए सुनिए राजा राममोहन राय के विचार।
1: राजा राममोहन राय का जन्म 12 मई 1772 को बंगाल के राधानगर स्थान में हुआ था। उन्होंने सभी धर्मों का अध्ययन किया। सभी धर्मों का तुलनात्मक अध्ययन करने के बाद उनके विचार बहुत उदार हो गए थे। उन्होंने सभी धर्मों की अच्छी बातों को लेकर एक नए धर्म की स्थापना की। ये धर्म ब्रह्म समाज नाम से प्रचलित हुआ। इसमें उन्होंने एक ईश्वर की मान्यता पर जोर दिया। किसी भी तरह के अंधविश्वास, जादू टोना या कुप्रथा को इसमें स्थान नहीं था। उपनिषदों को उन्होंने अपने धर्म का आधार बनाया। साथ ही उन्होंने हिंदू समाज में फैली तमाम कुरीतियों को जड़ से मिटा डालने का संकल्प किया था। 5-6 साल की छोटी उम्र में ही उन दिनों बच्चों के विवाह कर दिए जाते थे। बाल विवाह की इस कुप्रथा को मिटाने के लिए उन्होंने जनता का आह्वान किया। जनता से ये अपील की कि वे खुद इस कुप्रथा के खिलाफ आवाज उठाएं, लेकिन जनता तो मानो गहरी नींद में सोई हुई थी। उसे उठाने के लिए भारी धमाकों की जरूरत थी। पति के मरने के बाद सती विधवा नारी को उन दिनों जिंदा आग में झोंक दिया जाता था। राममोहन राय ने इस समस्या के हर पहलू का गहरा अध्ययन किया। उन्होंने महसूस किया कि इस कुप्रथा को जारी रखने में घर के मुखियाओं का भी पूरा हाथ होता है। पति के मरने के बाद विधवा औरत के भरण पोषण का पूरा भार उन पर आ पड़ता है। इस भार से बच जाने के लिए वे उस कुप्रथा को जारी रखना ही ज्यादा पसंद करते थे। पति की मृत्यु के बाद समाज में विधवा स्त्रियों का घोर अनादर किया जाता है। उनके सिर के बाल कटवा दिए जाते हैं। उन्हें कोई भी गहना पहनने नहीं दिया जाता। सफेद किनारी वाली धोती के अलावा कोई रंगीन कपड़ा वे नहीं पहन सकती। लोग उनकी छाया से छू जाने में भी पाप समझते हैं। राममोहन राय ने इन सब पहलुओं पर ध्यान दिया। इस कुप्रथा को मिटाने के लिए उन्होंने दो तरह के अभियान चलाए। एक अभियान अंग्रेज सरकार द्वारा कानून बनवाने का और दूसरा जनता में इसके खिलाफ वातावरण तैयार करने का। वे ये जानते थे कि आज का सभ्य और पढ़ा लिखा आदमी ऐसी बर्बर कुप्रथा का कभी समर्थन नहीं कर सकता था। उनका विश्वास था कि यदि स्त्रियों को शिक्षा दी जाए और उन्हें अपने विचार प्रकट करने की आज़ादी दी जाए तो वे भी पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर समाज के कल्याण में अपना योगदान दे सकती हैं। अपनी इस बात को पुष्ट करने के लिए वे प्राचीन भारत की लीलावती, मैत्रेयी आदि विदुषी नारियों का उदाहरण दिया करते। इन नारियों

0: अपनी विद्वत्ता से सारे भारतवर्ष का मस्तक गर्व से ऊंचा कर दिया था। स्त्रियों को अपने पिता की संपत्ति पर भी कोई अधिकार नहीं था। राममोहन राय ने स्त्रियों के सम्मान पूर्वक जीवन जीने के लिए उन्हें संपत्ति पाने का अधिकार दिलाने के लिए भी संघर्ष किया। विधवा विवाह में भी वे कोई दोष न मानते थे। यदि एक पत्नी के मरने पर पुरुष दूसरा विवाह कर सकता है, तो स्त्री ऐसा क्यों नहीं कर सकती? इस प्रकार उन्होंने स्त्रियों की दशा सुधारने के लिए आवश्यक सभी पहलुओं पर ध्यान दिया।
1: अभी आप राजा राम मोहन राय के विचार सुन रहे थे। अब आज का विचार बिंदु कार्यक्रम समाप्त होता है। हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज और FM 100.3 MHz पर आप हमारे ये कार्यक्रम सुन सकते हैं न्यूज़ ऑन AIR ऐप पर भी। अब किसान भाई सुने अपना कार्यक्रम कृषि जगत।

0: किसान भाइयों नमस्कार। आज हम आपको सुनवा रहे हैं डॉक्टर त्रिभुवन यादव से जय कृष्ण नारायण शर्मा की बातचीत। बातचीत का विषय है पशु आहार में खनिज तत्वों का महत्व। लीजिए सुनिए।
1: किसान भाई, आप में से बहुत लोग पशुपालन करत हैं और पशुन के हो चाहे भाई मनुष्य के, अगर संतुलित आहार और शरीर में खनिज तत्वन के और अन्य तत्वन के अगर भरपूर मात्रा ना हो तो शरीर का विकास नहीं होता है, बुद्धि का विकास नहीं होता है, हड्डी का विकास नहीं होता। ठीक ही तरह पशुन के भी अगर संतुलित आहार और खनिज तत्वन के कमी हो तो उसे तरह तरह के बीमारी हो सकत है, रोग हो सकत है और पशुपालन में एक तरह से नुकसान हो सकत है। खासतौर अगर दुधारू पशु हैं तो उनके दुग्ध उत्पादन में असर पड़ सकत है, या पशु अगर खेती के जुताई में काम आते हैं तो उनके अगर कमजोर हो जाए तो उसे भी नुकसान होता है। आज जो बातचीत का विषय हो पशु आहार में खनिज तत्वों का महत्व, ये पे जानकारी दे विशेषज्ञ के तौर पे हमारे बीच में डॉक्टर त्रिभुवन यादव जी आल बटे। भैया यादव जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम आपसे ही जानल चाहब कि कौन कौन से तत्व हैं पशु आहार में जौन पशुन के दिहल जा सकत है, उस सब पहले थोड़ा सा सारे आहार के जौन तत्व हैं वो कहाँ है उके बता दें, फिर आगे खनिज तत्वों पे बात हुई।
2: पशुपालक भाइयों, जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि हमारा शरीर जो पोषक तत्व हैं उनसे जो है निर्मित होता है और उनमें मुख्य रूप से कार्बोहाइड्रेट है जो हमें एनर्जी देता है, ऊर्जा देता
1: जी,
2: है
1: जी।
2: वसा है उससे भी हमें ऊर्जा की मात्रा प्राप्त होती है, प्रोटीन है जो शरीर का निर्माण में सहयोग करता है, विटामिन्स हैं जो रोगों से लड़ने की क्षमता देता है, मिनरल्स भी इसी कड़ी में शरीर की मजबूती देता है
1: जी,
2: और शरीर को रोगों से लड़ने की क्षमता, प्रतिरोधक क्षमता तैयार करता है। साथ साथ में पानी की तो अति आवश्यकता होती है शरीर में, ज्यादातर पोर्शन जो है इसका पानी का ही रहता है।
1: बिल्कुल भैया, एक दुआ है ना कि रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सुन, तो पानी तो यहाँ हालांकि दो अर्थ में हो लेकिन पानी की आवश्यकता तो शरीर के लिए सबसे ज्यादा है, और वो भी पेयजल जो उन्हें पिए लायक रहे, स्वास्थ्यवर्धक रहे, अन्यथा पानी से बीमारी भी हो सकत है। अब खनिज तत्व कौन कौन से हैं जो उनकी आवश्यक है पशुन के लिए?
2: पशुपालक भाई, खनिज तत्वों में मुख्य रूप से देखें तो सबसे ज्यादा जरूरत पड़ती है कैल्शियम, फास्फोरस, मैग्नीशियम, सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम, सल्फर, जिंक, कोबाल्ट, आयरन, निकेल और मैग्नीज, सिलिनियम, इन जो तत्वों की जरूरत है, खनिज तत्व जो हैं
1: जी,
2: इनकी शरीर में आवश्यकता होती है।
1: बिल्कुल, और इनके शरीर के निर्माण में जो भूमिका हो वो का हो, मतलब ये तत्वन से शरीर के कौन चीज का निर्माण होता है, थोड़ा सा ये हो के बताओ।

0: पालक भाइयों, शरीर का जो लगभग 3% भाग है वो खनिज पदार्थों से बना हुआ है,
1: जी
0: जिसमें से लगभग 30 से 40 तरह के खनिज तत्व शामिल हैं। और इसमें सबसे ज़्यादा मात्रा कैल्शियम और फास्फोरस का है, जिसका सबसे ज़्यादा योगदान कंकाल तंत्र बनाने में है हमारे
1: बिल्कुल, ये तो
0: शरीर।
1: आदमी में भी देखा जाए तो हड्डी का बीमारी मैक्सिमम
0: जी
1: कैल्शियम से ही होता है।
0: जी
1: जी
0: कंकाल तंत्र में हड्डियां और दांत के भाग मुख्य हैं,
1: जी
0: जिसमें अगर देखा जाए तो जो कैल्शियम है, फास्फोरस है, इनका प्रतिशत बहुत ही ज़्यादा है, और लगभग लगभग आधे से ज़्यादा प्रतिशत इन्हीं का
1: भाई,
0: है।
1: पूरा पशु हो चाहे मनुष्य, के शरीर का ढांचा वहीं पे खड़ा हो
0: जी
1: कैल्शियम के ही।
0: जी
1: जी
0: और इसमें कुछ जो छोटे जिनकी कम आवश्यकता पड़ती है उनको ट्रेस एलिमेंट कहा जाता है,
1: जी
0: और उनका कार्य ये होता है कि वो शरीर में जैसे जो क्रियाविधियां चल रही हैं शरीर के अंतर्गत, उनका वो संचालन करते हैं या नियंत्रण करते हैं। और जैसे हम एक उदाहरण के तौर देखते हैं कि वो ऑस्मोटिक प्रेशर होता है, मतलब जहाँ लिक्विड का मटेरियल है एक सेल से दूसरे सेल में किस तरह से चल जाएगा, इसका वो नियंत्रण करते हैं।
1: बिल्कुल
0: और जैसे आप देखें कि ब्लड है एक लिक्विड ही है, लिम्फ है वो भी एक लिक्विड है, इसका जो पीएच मान होता है वो हमेशा न्यूट्रल बनाना बहुत जरूरी होता है शरीर का, तो ये उसको न्यूट्रल बनाने का काम यही मिनरल्स ही करते हैं।
1: जी जी
0: और देखें शरीर के डाइजेशन में, कहीं पे हमें क्षारी मीडियम चाहिए, कहीं पर हमें अम्लीय मीडियम माध्यम चाहिए,
1: जी जी
0: तो उन जगहों पर भी इनका रोल होता है और इन्हीं एलिमेंट्स का रोल होता है। और कुछ ऐसी क्रियाएं जो शरीर में चलती हैं जिसके लिए ये कोएंजाइम का काम करते हैं, जो शरीर की क्रिया को तेज कर देते हैं,
1: जी
0: जहाँ ज़रूरत होती है वहाँ पे धीमी कर देते हैं। अब सबसे ज़्यादा देखें तो दुग्ध उत्पादन और प्रजनन के पर इन मिनरल्स का बहुत प्रभाव होता है।
1: दुधारू पशु में
0: दुग्ध
1: या जो उन गाभिन
0: जी
1: पशु हैं।
0: जी
1: जी
0: विकास के लिए और दुग्ध
1: हाँ
0: उत्पादन के लिए इनका
1: जी
0: बहुत
1: जी
0: बड़ा रोल है।
1: जी जी
0: इसमें देखें तो जैसे कैल्शियम और फास्फोरस की मात्रा बढ़ती है तो दुग्ध उत्पादन का
1: प्रतिशत
0: प्रतिशत
1: बढ़ जाता है।
0: बढ़ जाता
1: जी
0: है,
1: जी
0: और जैसे इनकी मात्रा घटती है दूध भी घट जाता है। साथ साथ में आप देखेंगे कि जो है पशु जो है उसके शरीर में भी विकार पैदा होने लगता है,
1: जी जी
0: क्योंकि जब पशु को उसका कैल्शियम और फास्फोरस मिनरल चीज़ें नहीं मिल पाती हैं तो जो हड्डियों में पहले से जमा है उनका
1: जी
0: क्षरण होने लगता है, तो उससे
1: जी जी
0: हड्डियां
1: हाँ हाँ
0: कमज़ोर हो जाती हैं शरीर में। अब उसको हम दूसरे भाषा में बोलते हैं कि उपापचयी या मेटाबॉलिक डिजीज होने वाली हो गई है। जैसे आपने कभी सुना होगा कि मैग्नीशियम टिटेनी हो गई है, इसका मतलब होता है कि उस पशु के श्रवण के दौरान, दूध श्रवण के दौरान ज़्यादा
1: जी
0: मैग्नीशियम का क्षरण हो गया है, अब वो उसको शरीर से प्राप्त नहीं हो पा रहा है और जो हम उसको बाहर से उपलब्ध नहीं करा रहे हैं,
1: जी
0: तो उसमें उस तरह के लक्षण आएंगे। मिल्क फीवर भी उसी तरह का एक बड़ा मेटाबॉलिक डिजीज है,
1: और
0: जिसमें
1: कौन कौन बीमारी होता है जो ये तत्वन के अभाव में।
0: और तत्वों के सभी जितने तत्व हैं ये जब इनकी शरीर में कमी पड़ती है तो
1: जी
0: वो एक लक्षण जरूर प्रदर्शित करते हैं, जिससे ये अनुमान लग जाता है कि हाँ इस तत्व की कमी है
1: जी
0: शरीर में। जैसे हम एक उदाहरण देते हैं, जैसे शरीर में आयोडीन की कमी हो गई। आयोडीन ऐसा खनिज तत्व है जिसकी वजह से शरीर में बीएमआर, जिसको कहते हैं कि शरीर की उपापचयी क्रियाएं संचालित होती हैं, ये रेगुलेशन का काम करता है, तो अब इसके उपापचयी क्रियाओं को नियंत्रण करता है, और थायरेक्सिन एक हार्मोन के बनाने में भी ये सहयोग करता है।
1: जी
0: तो अगर आयोडीन की कमी पड़ जाती है तो उन ग्रंथियों से जिससे इसका श्रवण होता है वो गले में होती हैं, और उनके श्रवण शरीर की आवश्यकता है इसलिए उनको बढ़ना पड़ता है, और वो अब होते होते क्या होती हैं, वो ग्रंथियाँ फूल आती हैं, उनको इतनी ज़रूरत को पूर्ति करने के लिए वो अपने आप स्वतः फूल आती हैं। तो कहते हैं
1: डॉक्टर
0: कि गला में
1: साहब, थोड़ा सा एक सवाल हम ही जानल चाहब
0: जी
1: कि गांव के किसान जो हो हरा चारा भूसा या कुछ सीमित मात्रा का चारा जानत है, तो संतुलित आहार के तौर पे वो कौन कौन चीज के इस्तेमाल करें जोने में सभी का सभी तत्व जो आप बतावत हुए कि ओके, थोड़ा क्योंकि वैज्ञानिक चीज तो उनके समझ से परे हो, तो आप वो बतावें जो चारा देवल जाए उसमें क्या क्या मात्रा हो चाहिए, कौन कौन चीज दें जोने से उनके पूरा संतुलित आहार या खनिज तत्वन को उनमें भरमार हो, जो चारा खियावत है उसमें क्या क्या चीज दें।
0: पशुपालक भाइयों, संतुलित आहार के लिए प्रोटीन से संबंधित जो है जितने भी फलीदार फसलें हैं
1: जी
0: सब ये उपयोगी हैं, इनमें प्रोटीन की मात्रा होती है, और ज़्यादातर पशु हमारे जो है फाइबर की

0: के लिए ये बाजरा, जई, ये सब का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन ज़्यादा इस्तेमाल करने वाली चीज़ें जो हैं कॉन्सेंट्रेट राशन से दी जाती हैं, जिसको हम कहते हैं कि पशुपालक भाइयों आप कॉन्सेंट्रेट का राशन रखिए, जिसमें प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट, फैट और मिनरल और विटामिन्स के जो है कॉम्बिनेशन बना हुआ हो, तो इसकी ज़रूरत पड़ती है।
1: भैया डॉक्टर त्रिभुवन यादव जी, आप पशु आहार में खनिज तत्वों के महत्व पे अपने पशुपालक भाई के बहुत अच्छी जानकारी देना। आशा किसान भाई से लाभ उठाई हैं, पशुपालक भाई लाभ उठाई हैं। आपके जानकारी देव दे बहुत बहुत धन्यवाद।
2: किसान भाइयों, अभी आप सुन रहे थे डॉक्टर त्रिभुवन यादव से जय कृष्ण नारायण शर्मा की बातचीत, और बातचीत का विषय था पशु आहार में खनिज तत्वों का महत्व। अब अनुमति दीजिए, नमस्कार।

0: अभी किसान भाई सुन रहे थे अपना कार्यक्रम कृषि जगत। ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलो हर्ट्ज और FM 100.3 मेगा हर्ट्ज पर प्रस्तुत है कार्यक्रम स्वास्थ्य चर्चा। इसमें आज हम आपको सुनवा रहे हैं डॉक्टर मुकेश मालवीय की वार्ता, आज की जीवन शैली में मॉर्निंग वॉक का महत्व।
1: आज की जीवन शैली में व्यक्ति को रोगग्रस्त बना दिया है, इसे दृष्टिगत रख करके ऐसे सरल विधि विधान खोज निकालना अनिवार्य है जिन्हें में हर वर्ग का व्यक्ति कम से कम समय में बिना किसी कठिनाई व प्रशिक्षण के नियमित रूप से करके स्वयं को सक्रिय बना सके। प्रतिकूलताओं से जूझने हेतु सामर्थ्य इकट्ठी कर सके, इसके लिए सुबह का टहलना स्वास्थ्य के लिए अति लाभदायक है। टहलना सूर्योदय से पहले ही प्रारंभ कर देना चाहिए, जिसे सूर्य निकलने तक पूरा कर लिया जाए। प्रातःकाल की वायु शुद्ध, शीतल, सौम्य और ऊर्जा से भरपूर होती है, इसके लिए जल्दी सोकर जल्दी उठना चाहिए। नित्य कर्म से निवृत्त होकर किसी हरे भरे रमणीय स्थान पर टहलना अति लाभकर है। ऐसा स्थान न मिलने पर अपने आंगन में भी टहला जा सकता है। टहलते समय एक नियमित प्रवाह, सरलता, क्रमबद्धता, तेजी, उत्साह और सतर्कता रखनी चाहिए। साथ ही यह अनुभूति करनी चाहिए कि विश्वव्यापी महाप्राण के महासागर में से उपयोगी तत्वों को हम ले रहे हैं। टहलते समय मुख बंद करके नाक से धीरे धीरे गहरी सांस ली जाए और पूरी सांस बाहर निकाली जाए। टहलते समय बदन सीधा रहे, कंधे पीछे दबे हुए हों, सीना उभरा हुआ, सिर थोड़ा पीछे हो, निगाह सामने हो, शरीर चुस्त हो, कड़ा और तनावयुक्त न हो, कपड़े हल्के और ढीले हों तथा मौसम के अनुरूप हों। बीमारी की अवस्था में चिकित्सक के राय के अनुसार ही टहलना चाहिए, अति तीव्र या अति धीमे नहीं टहलना चाहिए। वृद्धावस्था में अकेले नहीं टहलना चाहिए। शरीर और मानसिक व्यायाम का जैसा समन्वय प्रातःकाल के टहलने में होता है, उतनी अन्य किसी में नहीं। गठिया, दमा, रक्तचाप, हृदय रोग, कोलेस्ट्रॉल का अधिक होने पर इससे बहुत अधिक लाभ मिलता है। टहलने से भोजन अच्छा पचेगा, भूख अच्छी लगेगी, नींद अच्छी आएगी। खाना खाने के बाद थोड़ा और आराम से टहलना चाहिए। आदि शंकराचार्य, स्वामी दयानंद सरस्वती, चैतन्य महाप्रभु आदि लोगों ने पूरे भारत में भ्रमण किया। अमेरिका के दीर्घजीवियों में रैनबोर्न, लुइस क्रमर आदि सभी ने पैदल टहलने पर बहुत जोर डाला है। लुइस क्रमर तो 30 से 40 मील प्रतिदिन पैदल चलते थे। श्रीमती जोसफ 160 वर्ष तक जीवित रहीं। आज भी बहुत लोगों ने टहलने की आदत डालकर दीर्घ तथा स्वस्थ जीवन प्राप्त किया है। गांधी जी ने व्यस्त

0: से व्यस्त परिस्थितियों में भी टहलना जारी रखने का प्रयत्न किया। जॉर्ज बॉर्न ओपेन जर्मनी के स्वयं कार निर्माता हैं। उन्होंने 1963 में नियम बनाया कि हर अस्वस्थ दुर्बल व्यक्ति को मॉर्निंग वॉक की सलाह देते तथा एक डायरी देते थे और मॉर्निंग वॉक से मिलने वाले लाभों को उसमें लिखने को कहते थे। टहलने के लिए अलग सड़कों का भी निर्माण किया गया है। यह निर्विवाद सत्य है कि सुबह टहलने जैसा सर्वयोपी सर्वसुलभ व्यायाम और कोई नहीं है। जब तक इस आदत को हम अपने जीवन शैली में नहीं डालेंगे, तब तक सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया का सपना साकार नहीं होगा। अतः यह आवश्यक है कि स्वस्थ और मस्त रहने के लिए इस आदत को अपने जीवन में डाल लें।
1: आज की जीवन शैली में मॉर्निंग वॉक का महत्व। अभी आप डॉक्टर मुकेश मालवी की वार्ता सुन रहे थे। अब आज का स्वास्थ्य चर्चा कार्यक्रम समाप्त होता है। हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़ और FM 100.3 मेगाहर्ट्ज़ पर। आप हमारे कार्यक्रम न्यूज़ ऑन AIR ऐप पर भी सुन सकते हैं।

हमारे स्टूडियो की घड़ी में सुबह के 6:50 और 18 सेकंड हो रहे हैं। अब सुनिए हमारे चैनल पर आज प्रसारित होने वाले प्रमुख कार्यक्रमों की संक्षिप्त रूपरेखा। संगीत का अखिल भारतीय कार्यक्रम होगा रात 10 बजे। ये कार्यक्रम हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। उर्दू कार्यक्रम सुनिएगा रूस की तरह सुबह 9:30 बजे और प्रायोजित कार्यक्रम किसानवाणी सुनिएगा शाम 6:50 पर। ये दोनों कार्यक्रम हम अपने लखनऊ केंद्र से

श्री रामचरितमानस से संगीत में पाठ का आनंद लीजिएगा। सुबह 7 बजे 7:10 पर फिल्मों से भजन सुनवाए जाएंगे। शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में सिद्धार्थ मिश्र का ख्याल गायन सुनिएगा सुबह 7:30 और दिन में 12:15।

अपना दैनिक कार्यक्रम नमस्कार प्रयागराज लेकर के आएंगे रोज की तरह सुबह 8:45 पर। सुगम संगीत के कार्यक्रम में सोनू निषाद के स्वर में भजन और गीत का आनंद लीजिएगा सुबह 9:50 पर। शाम 7:45 पर शिवानी केसरवानी के स्वर में भजन सुनवाए जाएंगे। लोक माधुरी कार्यक्रम होगा दिन में 10:05 पर। कलाकार होंगे सपना पाल, राजकुमार और साथी। कुछ और लोक गीतों का आनंद लीजिएगा दिन में 2:30। स्वर होंगे हरिनाथ सुमन मौर्या के। हमारे संग्रहालय से ये कार्यक्रम सुनिएगा दिन में 10:30। इसके अंतर्गत हम आपको सुनवाएंगे प्रसिद्ध साहित्यकार हीरानंद वात्स्यायन आज्ञे से रामस्वरूप चतुर्वेदी की भेंटवार्ता।

एक ही कलाकार पर केंद्रित फिल्म संगीत का कार्यक्रम होगा दिन में 11:15। महिलाएं अपना कार्यक्रम पनघट सुनेंगी दिन में 1:15 पर। इसके अंतर्गत गायत्री सिंह की वार्ता होगी, परंपरा और आधुनिकता में अंतर, साथ ही संगीता राय के स्वर में लोकगीत सुनवाए जाएंगे। धरती के गीत सुनिएगा 5:00। कलाकार होंगे बबलू दीवाना और साथी। युवा साथियों का कार्यक्रम युवावाणी लेकर के आएंगे 5:15।

पंचायत घर कार्यक्रम में शाम 6:30 बजे ग्रामीण भाई सुनेंगे परिवार कल्याण की बात। इसके अंतर्गत वैद्य आर्यन सिंह से अरविंद कुमार की बातचीत होगी। विषय होगा वर्षा ऋतु में खान पान संबंधी सावधानियां। साथ ही रघुराज सिंह यादव और साथियों के स्वर में लोकगीत सुनवाए जाएंगे। हिंदी कार्यक्रम होगा शाम 7:31 पर। इसके अंतर्गत सुनवाएंगे डॉक्टर मुश्ताक अली की वार्ता, हिंदी आलोचना के क्षेत्र में रामचंद्र शुक्ल का योगदान। और मिले जुले गीतों का कार्यक्रम सबरस होगा रात 8:30 बजे। ये थी रूपरेखा हमारे चैनल पर आज प्रसारित होने वाले प्रमुख कार्यक्रमों की। ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। थोड़ी देर में आप हमारे दिल्ली केंद्र से प्रसारित संस्कृत में समाचार सुनेंगे।

देवाधिदेव महादेव तथा पार्वती का धाम, पर्वत श्रेष्ठ कैलाश, जिस पर एक विशाल बरगद का पेड़ है जो सभी ऋतुओं में समान रूप से हरा भरा रहता है, शीतल स्निग्ध छाया देता है, जहां मंद सुगंधित वायु बहती रहती है। ये स्थान शिवजी का विश्राम स्थल है। इसी वृक्ष की शीतल छाया में शिव इस मुद्रा में बैठे हैं, जैसे स्वयं शांत रस मूर्तिमान हो उठा हो। सुअवसर पाकर पार्वती वहां आती हैं। आदर सत्कार की भंगिमा के साथ शिवजी ने उन्हें अपनी बाईं ओर आसीन किया। पार्वती को अनायास अपने पिछले जन्म की कथा स्मरण हो आई। स्वामी की प्रशस्ति करते हुए उन्होंने श्री रघुनाथ की कथा सुनाने का अनुरोध किया।

अभी आप श्री रामचरितमानस से संगीतमय पाठ सुन रहे थे। स्वर वाणी जयराम का था और संगीत सतीश भाटिया का। हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलो हर्ट्ज और FM 100.3 मेगा हर्ट्ज पर। आइए अब सुनते हैं फिल्मों से भजन।

जान हथेली पे। इस फिल्म से है ये भक्ति रचना, आवाज अनूप जलोटा की है। सहयोगी स्वर अनुराधा पौडवाल और साथियों का है, रचना अनजान की है और संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का।

फिल्म सुर संगम से है ये भजन, रचना वसंत देव की है, संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का, आवाज एस जानकी की है।

इस रचना के साथ ही अब आज का फिल्मों से भजन का हमारा ये कार्यक्रम समाप्त होता है। ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। थोड़ी देर में आप प्रादेशिक समाचार सुनेंगे जिन्हें हम अपने लखनऊ केंद्र से रिले कर रहे हैं।

0: Tron Gorposu Pradeshik Samachar. नमस्कार, समाचार बुलेटिन के साथ विकास राय। पहले मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ महायोगी गोरखनाथ विश्वविद्यालय के स्थापना दिवस समारोह में हुए शामिल। कहा, राज्य में तैयार हो रहा है शिक्षा और कौशल विकास का इकोसिस्टम। प्रदेश में कल हर्षोल्लास के साथ मनाया गया रक्षाबंधन का पर्व। मुख्यमंत्री ने स्कूली बच्चियों से राखी बंधवाकर कहा, बहनों की सुरक्षा, सम्मान और स्वावलंबन सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही सरकार। प्रधानमंत्री जनधन योजना के पूरे हुए 12 वर्ष। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने और लोगों को सक्षम बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही यह योजना। और नेपाल के वाल्मीकि गंडक बैराज से पानी छोड़े जाने से महाराजगंज और कुशीनगर में प्रशासन अलर्ट। बाढ़ के खतरे को देखते हुए एसडीआरएफ की टीमें की गई तैनात। और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल गोरखपुर में महायोगी गोरखनाथ विश्वविद्यालय के 5वें स्थापना दिवस समारोह में हिस्सा लिया। इस अवसर पर आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि शिक्षा का उद्देश्य ऐसे युवा तैयार करना है जो अपने ज्ञान और कौशल से अवसर पैदा कर सकें। उन्होंने कहा कि सरकार प्रदेश में एक ऐसा इकोसिस्टम तैयार कर रही है जो युवाओं को शिक्षा, कौशल विकास और रोजगार के अवसर देकर उन्हें आर्थिक रूप से समृद्ध बनाने में मददगार साबित हो रहा है।
1: प्रदेश में डबल इंजन की सरकार प्रदेश के अंदर एक मजबूत इकोसिस्टम तैयार कर रही है, जहां हर युवा को अपनी योग्यता, रुचि और क्षमता के अनुरूप सीखने, अवसर पाने, उद्यम करने और आगे बढ़ने का पूरा अवसर। हमने पिछले 9 वर्षों में शिक्षा और स्किल से लेकर इंफ्रास्ट्रक्चर, इन्वेस्टमेंट, स्टार्टअप, एमएसएमई और इंडस्ट्री तक एक ऐसा व्यापक इकोसिस्टम विकसित किया है जो युवाओं की क्षमता को अवसर, अवसर को रोजगार और आर्थिक समृद्धि में बदलने में सहायक हो सकता है।
0: प्रदेश भर में कल भाई बहन के अटूट स्नेह का प्रतीक रक्षाबंधन का त्योहार हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की कलाई पर स्कूली बच्चियों ने राखी बांधकर स्नेह जताया। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार बहनों की सुरक्षा, सम्मान और स्वावलंबन सुनिश्चित कर आधी आबादी के हित में पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है।
2: इतनी बड़ी आबादी में केवल 12% महिलाएं ही नौकरी या रोजगार के साथ जुड़ पाई। आजादी के बाद से लेकर 75 वर्ष तक मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि संख्या 12% से बढ़कर के 36% से अधिक हो चुकी है। और हमने हर बड़े शहर में कामकाजी महिलाओं के लिए निःशुल्क छात्रावास के निर्माण के कार्यक्रम को आगे बढ़ाया है।
0: प्रदेश के सभी कारागारों में भी रक्षाबंधन के पर्व पर उत्सव का माहौल रहा। इस अवसर पर बड़ी संख्या में बहनें अपने भाइयों से मिलने के लिए कारागार पहुंची और उनकी कलाई पर राखी बांधी। वाराणसी में रक्षाबंधन के पावन पर्व पर भक्तों ने परंपरागत रूप से बाबा विश्वनाथ को राखी अर्पित कर उनका आशीर्वाद मांगा। प्रदेश सरकार ने रक्षाबंधन पर राज्य में महिलाओं को परिवहन निगम की बसों में निःशुल्क बस यात्रा की सुविधा दी है। महिलाओं के लिए निःशुल्क यात्रा की सुविधा आज

0: मध्य रात्रि तक जारी रहेगी। एक दिन पूर्व से शुरू हुई इस सुविधा का लाभ बड़ी संख्या में महिलाओं और उनके साथ सफर करने वाले सहयात्रियों को मिला है। प्रदेश की 60 वर्ष और उससे अधिक उम्र की महिलाओं के लिए कल से उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम की साधारण बसों में निःशुल्क यात्रा की सुविधा की शुरुआत हो गई। इस सुविधा का लाभ लेने के लिए पात्र महिला यात्री को अपनी उम्र प्रमाणित करने के लिए आधार कार्ड या वोटर आईडी कार्ड दिखानी होगी। ये व्यवस्था लोकमाता अहिल्याबाई मातृ शक्ति यात्रा योजना के तहत लागू की गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सुबह 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में लोगों से अपने विचार साझा करेंगे। ये मासिक रेडियो कार्यक्रम की 137वीं कड़ी होगी। कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क पर किया जाएगा। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने बलिया जिले के सरकारी स्कूल में पिछले 2 वर्षों से 6ठी से 8वीं कक्षा के विद्यार्थियों को दोपहर का भोजन नहीं परोसे जाने के मामले में मुख्य सचिव को नोटिस जारी किया है। आयोग ने स्वतः संज्ञान लेते हुए 2 सप्ताह के भीतर इस मामले पर विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल AIR न्यूज गोरखपुर और एक्स हैंडल AIR न्यूज _GKP पर भी उपलब्ध है। प्रधानमंत्री जनधन योजना के कल 12 वर्ष पूरे हो गए। ये देश में वित्तीय समावेशन के परिदृश्य को बदलने की दिशा में मुख्य पड़ाव है। एक रिपोर्ट।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पिछले 12 वर्षों में जनधन योजना के अभूतपूर्व परिवर्तनकारी परिणामों का प्रभाव बेमिसाल है। श्री मोदी ने कहा कि जनधन योजना वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने और देश के लोगों को सक्षम बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। इस योजना का शुभारंभ प्रधानमंत्री मोदी ने 2014 में किया था। योजना के तहत अब तक 63 करोड़ से अधिक खाते खोले जा चुके हैं। ये योजना सभी भारतीयों के लिए बैंकिंग पहुँच को सुलभ बना रही है। दीपेंद्र की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मनोज।
0: नेपाल में बाढ़ के बाद बने हालात को देखते हुए महाराजगंज और कुशीनगर में प्रशासन ने हाई अलर्ट जारी किया है और गंडक नदी पर निगरानी बढ़ा दी है। नेपाल के वाल्मीकि गंडक बैराज से लाखों क्यूसेक पानी छोड़े जाने से कुशीनगर में गंडक नदी का जलस्तर बढ़ रहा है। बाढ़ की आशंका को देखते हुए जिला प्रशासन ने संभावित आपात स्थिति से निपटने के लिए SDRF की टीम को मौके पर तैनात कर दिया है। प्रशासन ने लोगों से सतर्क रहने की अपील की है। वहीं भारत की ओर से बचाव और राहत कार्यों में मदद के लिए 47 टन से ज्यादा आपातकालीन राहत सामग्री भेजी गई है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणदीप जायसवाल ने बताया कि सरकार ने विदेश मंत्रालय में नियंत्रण कक्ष बनाया है जो 24 घंटे काम कर रहा है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह कल 3 दिवसीय दौरे पर अपने संसदीय क्षेत्र लखनऊ पहुंचे। अपने लखनऊ प्रवास के दौरान वह विभिन्न कार्यक्रमों में शामिल होने के साथ ही कई विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। भाजपा लखनऊ महानगर अध्यक्ष आनंद द्विवेदी ने बताया कि रक्षा मंत्री आज बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय के 11वें दीक्षांत समारोह में शामिल होंगे और कल सुबह 11 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम का सीधा प्रसारण सुनेंगे। केंद्र सरकार ने कहा है कि देश में चीनी की कोई कमी नहीं है और उचित कीमतों पर पर्याप्त मात्रा में चीनी उपलब्ध कराने के लिए सभी आवश्यक उपाय किए जाएंगे। उपभोक्ता कार्य मंत्रालय ने बताया कि हाल के दिनों में चीनी की कीमतों में लगभग 20% की गिरावट आई है, जबकि खुदरा चीनी की कीमतें भी कम होने लगी हैं।
2: बातचीत कोटा के अंतर्गत चीनी मिलों को आवंटित मात्रा से कम 40% चीनी पहले सप्ताह में और शेष मात्रा अगले सप्ताह में बेचनी होगी। मंत्रालय के अनुसार नए सीजन के लिए गन्ने की पेराई 15 अक्टूबर से शुरू होगी। अक्टूबर महीने के दौरान 10 लाख टन से अधिक चीनी उत्पादन होने की उम्मीद है। सरकार ने चीनी मिलों को अक्टूबर में उत्पादित चीनी को बिना किसी प्रतिबंध के बेचने की भी अनुमति दी है, जिससे नए सीजन का उत्पादन जल्द से जल्द घरेलू बाजार में उपलब्ध हो सके। नवंबर में चीनी का उत्पादन लगभग 45 लाख टन रहने की उम्मीद है, जिससे घरेलू खपत के लिए चीनी की अतिरिक्त आपूर्ति में पर्याप्त वृद्धि होगी। आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: परीक्षा सुधारों के लिए गठित उच्च स्तरीय कार्यबल ने विद्यार्थियों, अभिभावकों और शिक्षकों सहित सभी हितधारकों से सुझाव आमंत्रित किए हैं। सुझाव 13 सितंबर तक वेबसाइट, व्हाट्सएप या

0: फोन नंबर 1800-1800-4747 के माध्यम से भेजे जा सकते हैं। ये सुझाव ईमेल exam-e-forms-task-force@dopt.gov.in के माध्यम से भी भेजे जा सकते हैं। उधर राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने यूजीसी नेट 2026 की 84 विषयों की अंतिम उत्तर कुंजी जारी कर दी है। उत्तर कुंजी ugcnet.nta.nic.in पर उपलब्ध है। उत्तर प्रदेश के मध्यम तेज गेंदबाज अयान अकरम को ऑस्ट्रेलिया अंडर 19 के खिलाफ खेले जाने वाले मल्टी डे मैचों के लिए भारतीय अंडर 19 क्रिकेट टीम में शामिल किया गया है। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच अंडर 19 के दो मल्टी डे मुकाबले खेले जाएंगे। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ महायोगी गोरखनाथ विश्वविद्यालय के स्थापना दिवस समारोह में हुए शामिल, कहा राज्य में तैयार हो रहा है शिक्षा और कौशल विकास का इकोसिस्टम। प्रदेश में कल हर्षोल्लास के साथ मनाया गया रक्षाबंधन का पर्व। मुख्यमंत्री ने स्कूली बच्चियों से राखी बंधवाकर कहा बहनों की सुरक्षा सम्मान और स्वावलंबन सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही सरकार। प्रधानमंत्री जनधन योजना के पूरे हुए 12 वर्ष, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने और लोगों को सक्षम बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही यह योजना। और नेपाल के वाल्मीकि गंडक बैराज से पानी छोड़े जाने से महाराजगंज और कुशीनगर में प्रशासन अलर्ट, बाढ़ के खतरे को देखते हुए एसडीआरएफ की टीमें की गई तैनात। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला समाचार अब से थोड़ी देर बाद सुबह 8 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।
1: ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलो हर्ट्ज और FM 100.3 मेगा हर्ट्ज पर प्रस्तुत है शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम। इसमें आज हम आपको सुनवा रहे हैं सिद्धार्थ मिश्र का राग नट भैरव में ख्याल गायन। विलंबित रचना एक ताल में है और द्रुत रचना तीन ताल में।

विलंबित रचना के बोल हैं चढ़िए मूलक सुल्तान, और द्रुत रचना के बोल हैं देहूं विचारी सगुन। आपके साथ तबले पर संगत कर रहे हैं श्री श्रवण कुमार भट्ट, और हारमोनियम पर हैं श्री शमशाद अहमद खान।

अभी आप सिद्धार्थ मिश्र का राग नटभैरव में ख्याल गायन सुन रहे थे। आपके साथ तबले पर संगत कर रहे थे श्री श्रवण कुमार भट्ट और हारमोनियम पर थे श्री शमशाद अहमद खान। अब शास्त्रीय संगीत का ये कार्यक्रम समाप्त होता है। हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज और FM 100.3 मेगाहर्ट्ज पर। थोड़ी देर में आप समाचार सुनेंगे जिन्हें हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले कर रहे हैं।

0: आज देश में हर एक सेकंड में होते हैं 1 करोड़ रुपए के यूपीआई पेमेंट्स और हैं 81 करोड़ से ज्यादा यूपीआई पेमेंट पॉइंट्स।
1: स्ट्रीट वेंडर से लेकर आपकी गाड़ी के शोरूम तक आपकी सारी पेमेंट सिर्फ एक क्यूआर कोड स्कैन करके हो जाती है।
0: यूपीआई के 10 साल डिजिटल आत्मनिर्भर बेफिक्र।
2: मेरी बैंक हमेशा मेरे साथ चलती है। सुबह उठती हूँ तो पैसे जमा कर आती है, कस्टमर ज्यादा हो जाते हैं तो पूरा गल्ला संभाल लेती है, आधी रात को भी उठा के बताती है कि मैडम लक्ष्मी फल भंडार का पेमेंट आ गया है। जनधन बैंक खाता क्या मिला मुझे, तो उंगलियों के छोर पर बीमा, पेंशन, डीबीटी, सारी बैंकिंग सुविधाएं मिल गई हैं।
3: 12 साल में 59 करोड़ जनधन खाते खुले, जिसमें 56% खाते तो सिर्फ महिलाओं के हैं। पीएम जनधन योजना के 12 साल, ज्यादा बचत, ज्यादा काम।
4: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं फरहत नाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आर्थिक सहयोग बढ़ाने के लिए आज से 4 दिन की उज्बेकिस्तान और किर्गिस्तान की यात्रा पर। भारत ने अमेरिका से जैवलिन टैंक रोधी मिसाइल प्रणाली खरीदने के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए। नेपाल बाढ़ में मरने वालों की संख्या बढ़कर 589, 1924 लोग अब भी लापता। भारत पड़ोसी देश को मानवीय सहायता बढ़ा रहा है। सरकार चीनी की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए सितंबर से पखवाड़े के आधार पर चीनी आवंटन प्रणाली शुरू करेगी। और भारत के वेलवन सेंथिल कुमार ने हंगरी के बालाज फारकश को हराकर पीएसए बुडापेस्ट स्क्वैश ओपन का खिताब जीता। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आर्थिक सहयोग बढ़ाने के लिए आज से 4 दिन की उज्बेकिस्तान और किर्गिस्तान की यात्रा पर रहेंगे। प्रधानमंत्री मोदी उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति शफकत मिर्जियोयेव के निमंत्रण पर ताशकंद जा रहे हैं। ये प्रधानमंत्री की उज्बेकिस्तान की 4थी यात्रा है। श्री मोदी यात्रा के दौरान भारत और उज्बेकिस्तान के बीच रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करने के लिए राष्ट्रपति मिर्जियोयेव के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता करेंगे।
5: इस यात्रा के दौरान दोनों नेता ताशकंद में द्विपक्षीय महत्व के सभी मुद्दों पर चर्चा करेंगे। भारत उज्बेकिस्तान के शीर्ष 10 व्यापारिक साझेदारों में से एक है, जिनके बीच द्विपक्षीय व्यापार लगभग $1 अरब का है। पिछले कुछ वर्षों में दोनों देशों के बीच कारोबार तेजी से बढ़ा है। चिकित्सा, खनन और रक्षा कुछ ऐसे महत्वपूर्ण क्षेत्र हैं जिनमें सहयोग की अपार संभावनाएं हैं। रक्षा क्षेत्र में भारत और उज्बेकिस्तान के बीच व्यापक सहयोग की शुरुआत हो चुकी है। 2019 में रक्षा मामलों पर एक संयुक्त कार्य समूह की स्थापना की गई थी। भारत और उज्बेकिस्तान नियमित रूप से संयुक्त सैन्य अभ्यास दोस्तलिक में हिस्सा लेते हैं और इसका 7वां संस्करण अप्रैल 2026 में उज्बेकिस्तान में आयोजित किया गया था। इन सभी क्षेत्रों के लिहाज से प्रधानमंत्री मोदी की ये यात्रा अत्यंत महत्वपूर्ण है और इससे दोनों देशों के बीच रणनीतिक और व्यापारिक साझेदारी को और मजबूत करने की नींव रखी जाएगी। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, ताशकंद, उज्बेकिस्तान।

0: उज्बेकिस्तान में भारत की राजदूत स्मिता पंत ने आकाशवाणी समाचार से विशेष बातचीत में कहा कि दोनों देशों के बीच संबंध तेजी से मजबूत हो रहे हैं और प्रधानमंत्री की यात्रा के दौरान सभी क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर चर्चा होगी।
1: रिलेशनशिप ऑलरेडी बहुत अपवर्ड ट्रैजेक्टरी में है। 2011 में स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप फोर्ज हुई थी, उसके बाद 2015 में प्रधानमंत्री जी का पहला दौरा हुआ था। 2026 तक बहुत सारे एरियाज में हम लोग फॉरवर्ड मूवमेंट कर चुके हैं, चाहे आप ट्रेड की बात करें, इन्वेस्टमेंट की बात करें, डेवलपमेंट कोऑपरेशन की बात करें, डिफेंस कोऑपरेशन की बात करें। ट्रेड में ही करीबन 300% इंक्रीज हुई है 2015 से।
0: भारत ने अमेरिका के साथ जेवलिन टैंक रोधी मिसाइल प्रणाली की खरीद के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। दोनों देश भारत में इसके संयुक्त उत्पादन की दिशा में काम कर रहे हैं। भारत में अमेरिकी दूतावास और वाणिज्य दूतावास ने कहा है कि भारतीय सेना ने जेवलिन की खरीद के लिए प्रस्ताव और स्वीकृति पत्र पर हस्ताक्षर किए हैं। भारत में अमेरिका के राजदूत सर्जियो गोर ने कहा कि यह समझौता भारतीय सेना के लिए अमेरिकी समर्थन दर्शाता है। नेपाल और तिब्बत में विनाशकारी बाढ़ से मृतकों की संख्या बढ़कर 579 हो गई है। 1924 लोग अब भी लापता हैं, जबकि 101 घायल लोगों का अस्पतालों में उपचार चल रहा है। लापता लोगों में पनबिजली परियोजनाओं से जुड़े लोग, विदेशी नागरिक, आम नागरिक और सुरक्षा तथा सरकारी कर्मी शामिल हैं। भारत ने बाढ़ प्रभावित नेपाल को मानवीय सहायता तेज कर दी है। मानवीय सहायता सामग्री के साथ तीसरा विमान कल शाम काठमांडू पहुंचा।
2: विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने बताया कि सहायता सामग्री में पोर्टेबल जनरेटर, खाद्य सामग्री और जल शोधन की गोलियां शामिल हैं। डॉक्टर जयशंकर ने बताया कि बचाव अभियान के लिए चिकित्सकों, पैरामेडिक्स और रेकी टीम सहित 11 सदस्यीय दल भी मौके पर मौजूद है। उन्होंने नेपाल में राहत और बचाव कार्यों के लिए भारत का समर्थन दोहराया। विदेश मंत्रालय ने कहा कि नेपाल बाढ़ के बाद से 320 भारतीय नागरिकों से संपर्क नहीं हो सका है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बताया कि लगभग 100 भारतीय मूल के लोग भी लापता हैं। नई दिल्ली में कल श्री जायसवाल ने कहा कि त्रिशूली वन जल विद्युत परियोजना में लगे 63 भारतीय नागरिकों को सुरक्षित बचा लिया गया है। तमिलनाडु के 21 भारतीय नागरिक काठमांडू से कल नई दिल्ली पहुंचे। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने नई दिल्ली में कल इन 21 तीर्थयात्रियों से मुलाकात की। उन्होंने बचाव प्रयासों के लिए नेपाल सरकार और सेना को धन्यवाद दिया। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता जायसवाल ने बताया कि चीन की ओर लगभग 400 भारतीय नागरिक सुरक्षित हैं और अपने परिवारों के संपर्क में हैं। श्री जायसवाल ने कहा कि सरकार ने विदेश मंत्रालय में 2400 घंटे कार्यरत एक नियंत्रण कक्ष स्थापित किया है। उन्होंने कहा कि काठमांडू और पेचिंग में भारतीय दूतावासों ने भी 24 घंटे कार्यरत हेल्पलाइन शुरू की है। समाचार कक्ष से मैं चंद्रशेखर शर्मा।
0: विदेश मंत्रालय के नियंत्रण कक्ष के टेलीफोन नंबर हैं 0112308-8718, 0112308-8719। आप व्हाट्सएप नंबर 99682-919888 और ईमेल situationroom@mea.gov.in के जरिए भी संपर्क कर सकते हैं। विदेश मंत्रालय काठमांडू स्थित भारतीय दूतावास के आपातकालीन संपर्क नंबर 977-98513-16807 पर संपर्क कर सकते हैं। पश्चिम बंगाल सरकार ने विदेश मंत्रालय से नेपाल में आई बाढ़ में लापता राज्य के लोगों की तलाश के लिए एक प्रतिनिधिमंडल भेजने की अनुमति मांगी है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि अनुमति मिलते ही एक प्रतिनिधिमंडल काठमांडू भेजा जाएगा। इसमें राज्य के एक मंत्री, एक विधायक, महानिरीक्षक स्तर के पुलिस अधिकारी और भारतीय प्रशासनिक सेवा के वरिष्ठ अधिकारी शामिल होंगे। नेपाल बाढ़ से सुरक्षित बचे 21 पर्यटक कल रात चेन्नई पहुंच गए। पर्यटकों ने सुरक्षित चेन्नई वापसी के लिए केंद्र और राज्य सरकारों का आभार व्यक्त किया। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।
3: आपको हर खबर से रखे अपडेट एक्सपर्ट @AIRNewsHindi और पब्लिक पर @AIRNewsAlerts को फॉलो करें।
0: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। सरकार ने चीनी की समयबद्ध उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए मौजूदा मासिक कोटा प्रणाली के स्थान पर अगले महीने से पखवाड़े के आधार पर चीनी आवंटन प्रणाली शुरू करने का निर्णय लिया है। इसके अंतर्गत चीनी मिलों को पहले सप्ताह में कम से कम 40% आवंटन और शेष मात्रा अगले सप्ताह में बेचनी होगी।
4: सरकार ने कहा है कि देश में चीनी की कोई कमी नहीं है और उचित मूल्य पर पर्याप्त मात्रा में चीनी उपलब्ध कराने के लिए सभी आवश्यक उपाय किए जा रहे हैं। उपभोक्ता कार्य मंत्रालय ने बताया कि हाल के दिनों में चीनी मिलों से

0: बाहर चीनी की कीमतों में लगभग 20% की गिरावट आई है, जबकि खुदरा चीनी की कीमतें भी कम होने लगी हैं। नए सीजन के लिए गन्ने की पेराई 15 अक्टूबर से शुरू होगी और इस दौरान 10 लाख टन से अधिक चीनी के उत्पादन का अनुमान है। सरकार ने चीनी मिलों को अक्टूबर में उत्पादित चीनी को बिना किसी प्रतिबंध के बेचने की अनुमति दे दी है। इससे ये सुनिश्चित हो सकेगा कि नए सीजन का उत्पादन शीघ्र घरेलू बाजार में उपलब्ध हो सके। नवंबर में चीनी उत्पादन लगभग 45 लाख टन रहने की संभावना है। समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार।
1: राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में सीएनजी के मूल्य में 3.89 रुपए प्रति किलोग्राम की वृद्धि की गई है। इसके साथ ही राष्ट्रीय राजधानी में सीएनजी की कीमत 86.98 रुपए प्रति किलोग्राम हो गई है। संशोधित सीएनजी कीमतें आज सुबह 6 बजे से लागू हो गई हैं। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन आज तमिलनाडु, कर्नाटक, केरलम और लक्षद्वीप के 3 दिन के दौरे पर जाएंगे। इस दौरान वे शिक्षा, सार्वजनिक सेवा, सांस्कृतिक विरासत, उद्योग, अकादमिक सहयोग, मत्स्य पालन को बढ़ावा देने से संबंधित कार्यक्रमों के अलावा कुछ प्रमुख सार्वजनिक समारोह में भी भाग लेंगे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन 6 दिन की अमरीका यात्रा पर हैं, जहां वे G20 वित्त मंत्रियों की बैठक में भाग लेंगी और निवेश के अवसरों पर मुख्य कार्यकारी अधिकारियों और व्यापारिक नेताओं से बातचीत करेंगी। श्रीमती सीतारामन बृहस्पतिवार को कनाडा के 3 दिन के दौरे के बाद शिकागो पहुंची, जहां उन्होंने भारत कनाडा आर्थिक और वित्तीय संवाद किया था।
2: वित्त मंत्री शिकागो में प्रमुख निवेशकों के साथ गोलमेज सम्मेलन में भाग लेंगी और निजी क्षेत्र की प्रमुख कंपनियों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों, अध्यक्षों और वरिष्ठ प्रतिनिधियों से मुलाकात करेंगी। इन बैठकों में भारत में निवेश के अवसर, आर्थिक दृष्टिकोण और भारत अमेरिका व्यापार तथा निवेश साझेदारी को मजबूत करने पर चर्चा होगी। श्रीमती सीतारामन शिकागो विश्वविद्यालय के पोल्सकी सेंटर फॉर एंटरप्रेन्योरशिप एंड इनोवेशन का दौरा करेंगी। वित्त मंत्री अपनी यात्रा के दौरान शिकागो में भारतीय समुदाय के सदस्यों से भी बातचीत करेंगी। एशविले में सुश्री सीतारामन की अध्यक्षता में आयोजित G20 सदस्य देशों के वित्त मंत्री, केंद्रीय बैंक गवर्नर तथा वरिष्ठ आर्थिक अधिकारी वैश्विक आर्थिक और वित्तीय मुद्दों पर विचार विमर्श करेंगे। ये बैठक 31 अगस्त और 1 सितंबर को होगी। समाचार कक्ष से मैं वीरेंद्र कौशिक।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सुबह 11 बजे आकाशवाणी के मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों से अपने विचार साझा करेंगे। यह मासिक रेडियो कार्यक्रम की 137वीं कड़ी होगी। कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों, आकाशवाणी समाचार की वेबसाइट और न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर किया जाएगा। मौसम विभाग ने बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल में गंगा किनारे वाले क्षेत्र, उत्तराखंड और पूर्वोत्तर के कुछ हिस्सों में भी कल तक तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। मौसम विभाग ने उड़ीसा के कई जिलों के लिए तेज वर्षा का ऑरेंज अलर्ट भी जारी किया है। मछुआरों को समुद्र में न जाने की सलाह दी गई है। भारत के वेलवन सेंथिल कुमार ने PSA बुडापेस्ट स्क्वैश ओपन का खिताब जीत लिया है। फाइनल में कल सेंथिल ने हंगरी के बालाज फारकश को लगातार गेम में 3-0 से हराकर यह ऐतिहासिक जीत दर्ज की। सेंथिल कुमार ने बालाज फारकश को 11-4, 11-2, 11-3 से हराकर ट्रॉफी जीती। क्वार्टर फाइनल में उन्होंने विश्व में 18वीं वरीयता प्राप्त और एशियाई खेलों के स्वर्ण पदक विजेता एन योव एनजी को 3-0 से हराया। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं।
3: हर खबर से जुड़े रहिए, जहां भी हो, expert@AIRnews हिंदी को फॉलो करें।
1: और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं नवीन सक्सेना।
4: धन्यवाद फरहत। विनाशकारी जल प्रलय से जूझ रहे नेपाल की त्रासदी की तस्वीरें सभी समाचार पत्रों ने सचित्र दी हैं। राजस्थान पत्रिका लिखता है, पल पर प्रलय का खौफ, झील टूटी तो घर छोड़कर पहाड़ों पर भागे लोग। जनसत्ता ने त्रिशूली में नेपाली सेना द्वारा लोगों को बचाए जाने की तस्वीरें दी हैं। पत्र लिखता है, अब भी 320 भारतीय लापता। चीन में फंसे 400 लोग सुरक्षित। नवभारत टाइम्स ने नेपाल में सैलाब शीर्षक से बचाव अभियान पर लिखा है, चुनौतियों के बीच अब जिंदगी बचाने की जंग। अमेरिका से 100 जेवलिन मिसाइलें खरीदेगा भारत, अमेरिकी राजदूत सर्जियो गौर ने दी जानकारी। दैनिक जागरण की सुर्खी है, हिंदुस्तान ने रक्षाबंधन के अवसर पर बच्चों द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को राखी बांधने की तस्वीर साझा की है। पत्र लिखता है, पीएम मोदी की कलाई पर सजा बच्चों के प्यार का धागा। नशे के खिलाफ एकजुट हो रही देहरादून के थानी गांव की महिलाएं, नशे के कारोबार से गांव को बचाना है लक्ष्य, जनसत्ता की सुर्खी है। सोना 26 साल बाद सबसे बड़े मासिक उछाल की तरफ, अगस्त में दाम 14% बढ़ चुके, दैनिक भास्कर की खबर है। अमर उजाला ने अपने कारोबारी पन्ने पर शेयर बाजार से जुड़ी खबर प्रकाशित की है, IT शेयरों ने दिया

0: बाजार को सहारा, सेंसेक्स निफ्टी में दो दिन की गिरावट थमी। शिक्षा की दीवार से आसान हो रही पढ़ाई, सरकारी स्कूल में नवाचार, निजी स्कूलों से हटा सरकारी में कराया प्रवेश। मध्य प्रदेश के सीहोर में इस योजना के माध्यम से अंग्रेजी सीखने के सरल तरीके को अपनाया जा रहा है, राजस्थान पत्रिका की खबर है।
1: धन्यवाद नवीन। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आर्थिक सहयोग बढ़ाने के लिए आज से चार दिन की उज्बेकिस्तान और किर्गिस्तान की यात्रा पर। भारत ने अमेरिका से जेवलिन एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल सिस्टम खरीदने के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए। नेपाल बाढ़ में मरने वालों की संख्या बढ़कर 579 हुई, 1924 लोग अब भी लापता। भारत पड़ोसी देश को मानवीय सहायता बढ़ा रहा है। सरकार चीनी की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए 1 सितंबर से के आधार पर चीनी आवंटन प्रणाली शुरू करेगी। और भारत के वेलवन सेंथिल कुमार ने हंगरी के बालाज फारकश को हराकर पीएसए बुडापेस्ट स्क्वैश ओपन का खिताब जीता। इसके साथ ही समाचार प्रभात का यह समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: enhance economic and defense cooperation. India signs deal with United States to procure Javelin anti-tank guided missile systems. Death toll in Nepal flash floods rises to 579, while 1,924 people still missing. India steps up humanitarian assistance to neighboring country. Government to introduce fortnightly sugar allocation system from next month to ensure availability of sugar in market on time. And India's Willavan Senthil Kumar wins PSA Budapest Squash Open title, beating Bulaj Farkas of Hungary. And with that, we end the morning news. Have a nice day.
1: आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब, खबरनामे के साथ मैं कौनैन हैदर। पहले इस वक्त की खास खास खबरें। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आज उज़्बेकिस्तान और किर्गिज़ जम्हूरिया के चार दिन के दौरे पर जा रहे हैं ताकि इक्तिसादी और दिफाई इश्तराक बढ़ाया जा सके। भारत ने जैवलिन टैंक शिकन गाइडेड मिसाइल निजाम खरीदने के लिए अमेरिका के साथ एक समझौते पर दस्तखत किए हैं। नेपाल में अचानक सैलाब आने से मरने वालों की तादाद 579 तक पहुंच गई है, जबकि 1924 अफराद अब भी लापता हैं। भारत ने नेपाल के लिए इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर इमदाद तेज कर दी है। सरकार अगले महीने से हर 15 दिन में शकर अलॉट करने का निजाम शुरू करेगी ताकि मार्केट में शकर की बरवक्त दस्तियाबी को यकीनी बनाया जा सके। और भारत के विलावन सेंथिल कुमार ने हंगरी के बालाज फरकास को हराकर पीएसए बुडापेस्ट स्क्वैश ओपन का टाइटल जीत लिया है। अब खबरें तफसील से। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आज से दो दिन के दौरे पर उज़्बेकिस्तान जाएंगे। वज़ीर-ए-आज़म उज़्बेकिस्तान के सदर शौकत मिर्ज़ियोयेव की दावत पर ताशकंद का दौरा करेंगे। ये वज़ीर-ए-आज़म का उज़्बेकिस्तान का चौथा दौरा होगा। वज़ीर-ए-आज़म के दफ्तर ने एक बयान में बताया कि अपने दौरे के दौरान जनाब मोदी भारत और उज़्बेकिस्तान के दरमियान स्ट्रेटेजिक साझेदारी को मजीद मुस्तहकम बनाने की खातिर सदर मिर्ज़ियोयेव के साथ वफ्त की सतह की बातचीत करेंगे। मजीद तफसील हमारी नामा निगार से।
2: इस दौरे के दौरान दोनों रहनुमा ताशकंद में दो तरफा अहमियत के हामिल मामलात के पूरे मंजरनामे पर बातचीत करेंगे। भारत उज़्बेकिस्तान के 10 सरकर्दा तजारती शराकत दारों में शामिल हैं, जिसकी दो तरफा तजारत तकरीबन $1 अरब है और ये गुज़श्ता चंद बरसों में तजारत में कई गुना इजाफे का नतीजा है। मेडिकल, कानकनी और दिफा अहम शोबे हैं, जिनमें बाहमी ताउन के बहुत से इम्कान मौजूद हैं। दिफा के शोबे में भारत का उज़्बेकिस्तान के साथ देरीना और कसीर जेती इश्तराक है। साल 2019 में दिफा से मुतालिक एक मुश्तरका वर्किंग ग्रुप कायम किया गया था। भारत और उज़्बेकिस्तान मुश्तरका फौजी मशकों दोस्तलिक में हिस्सा लेते रहे हैं और इस सिलसिले की सातवीं मशक इस साल अप्रैल में उज़्बेकिस्तान में हुई थी। इस तनाजुर में वज़ीर-ए-आज़म मोदी का दौरा बहुत अहम है और तवक्को है कि इससे दोनों मुल्कों के दरमियान स्ट्रेटजिक और कारोबारी साझेदारी को मजीद मजबूत बनाने की बुनियाद उस्तवार होगी। ताशकंद से सुशील चंद तिवारी की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं फहीम अहमद।
1: उज़्बेकिस्तान में भारतीय सफीर स्मिता पंत ने आकाशवाणी न्यूज के साथ खसूसी गुफ्तगू में कहा कि दोनों मुल्कों के दरमियान ताल्लुकात तेजी के साथ मुस्तहकम हो रहे हैं और वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के दौरे के मौके पर सभी शोबों में इश्तराक बढ़ाने पर तबादले ख्याल किया जाएगा।
3: डिस्पाइट कनेक्टिविटी बॉटलनेक्स, इंडिया और उज़्बेकिस्तान नेचुरल मार्केट्स हैं। हम ज्यादा निर्यात कर सकते हैं। हम इक्विपमेंट, मशीनरी, टेक्सटाइल मशीनरी, केमिकल, डाई, सर्जिकल इक्विपमेंट्स, इसको हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हम उनसे ज्यादा इंपोर्ट भी कर सकते हैं। ये रिसोर्स रिच नेशन है। स्टम्बलिंग ब्लॉक जो है वो है कनेक्टिविटी, तो इसको लेके दोनों लीडर्स बात करेंगे, देखेंगे कि क्या किया जा सकता है।
1: मोहतरमा स्मिता पंत ने यह भी कहा कि गुज़श्ता कुछ बरसों में भारत और उज़्बेकिस्तान के दरमियान कारोबार में कई गुना इजाफा हुआ है और वज़ीर-ए-आज़म के इस दौरे में दोनों मुल्क कनेक्टिविटी को बेहतर बनाने और रुकावटों को दूर करने पर बातचीत करेंगे। भारत ने जैवलिन टैंक शिकन गाइडेड मिसाइल निजाम खरीदने के लिए अमरीका के साथ एक समझौते पर दस्तखत किए हैं। इस तरह भारत इस मिसाइल निजाम का बाज़ाब्ता खरीदार बन गया है और दोनों मुल्क भारत में इसे मुश्तरका तौर पर तैयार करने की समत काम करेंगे। भारत में अमरीकी सिफारत खाने और कौंसिल खाने ने एक बयान में कहा है कि भारतीय फौज ने जैवलिन टैंक शिकन

0: एडिट मिसाइल निजाम खरीदने के लिए पेशकश और मंजूर करने से मुतालिक दस्तावेज पर दस्तखत किए हैं। सिफारत खाने ने कहा है कि अमरीका भारतीय फौज के इस कदम का खैर मकदम करता है। भारत में अमरीका के सफीर सर्गियो गौर ने कहा है कि इस समझौते से भारतीय फौज के लिए अमरीका की मदद की मजबूती का इजहार होता है और इससे दोनों मुल्कों की दिफाई सनतों के लिए मिलकर काम करने के नए मौके पैदा होंगे। नेपाल और तिब्बत में अचानक तबाहकुन सैलाब आने से मरने वालों की तादाद 579 तक पहुंच गई है, जबकि 1924 अफराद अब भी लापता हैं। नेपाल सरकार की तरफ से जारी किए गए आदादोशुमार के मुताबिक मुख्तलिफ अस्पतालों में 101 अफराद जेरे इलाज हैं। इसके अलावा जो 1924 अफराद लापता हैं, उनमें पन बिजली प्रोजेक्टों पर काम करने वाले अहलकार, गैर मुल्की शहरी, सिविलियन अफराद और सिक्योरिटी और सरकारी अहलकार शामिल हैं। पन बिजली प्रोजेक्टों पर काम करने वाले 933 अफराद के लापता होने की खबर है, जबकि 517 गैर मुल्की शहरियों से अब तक राबता कायम नहीं हो सका है। भारत ने नेपाल के लिए इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर इमदाद तेज कर दी है। 10 टन इमदादी सामान लेकर तीसरी परवाज कल शाम काठमांडू के लिए रवाना हुई। वजीर खारजा डॉक्टर एस जय शंकर ने एक सोशल मीडिया पोस्ट पर यह जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि डॉक्टरों, तिब्बी अमले के अहलकारों और टनल में फंसे हुए अफराद का पता लगाकर उन्हें बाहर निकालने के लिए 11 अरकान पर मुश्तमिल एक टीम भी भेजी गई है। उन्होंने नेपाल में जारी राहत और बचाव कोशिशों में भारत की मदद का इरादा भी किया। वजारत खारजा ने कहा है कि नेपाल में बुध के रोज अचानक सैलाब आने के सानहे के बाद से 320 भारतीय शहरियों से राबता कायम नहीं हो सका है या उनके लापता होने की खबर है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी कल दिन में 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात प्रोग्राम में मुल्क और बैरून मुल्क के लोगों से अपने ख्यालात का इजहार करेंगे। ये महाना रेडियो प्रोग्राम का 137वां नशरिया होगा। ये प्रोग्राम आकाशवाणी और दूरदर्शन के पूरे नेटवर्क, AIR न्यूज वेबसाइट और न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर भी दस्तियाब होगा। इसके अलावा इसे आकाशवाणी न्यूज, DD न्यूज, PMO और इत्तलात नशरियात की वजारत के यूट्यूब चैनलों पर भी बराह रास्त नशर किया जाएगा। आकाशवाणी से हिंदी नशरिये के फौरन बाद ये प्रोग्राम इलाकाई जबानों में नशर होगा। ये खबरनामा आकाशवाणी से नशर किया जा रहा है। हुकूमत ने कहा है कि मुल्क में शकर की कोई कमी नहीं है और मुनासिब कीमत पर शकर की खातिरखा दस्तियाबी के लिए तमाम जरूरी इकदाम किए जाएंगे। सारिफिन के उमूर की वजारत ने कहा कि हालिया दिनों में शकर मिलों से बराह रास्त हासिल होने वाली शकर की कीमतों में तकरीबन 20% की कमी आई है, जबकि शकर की खुर्दा कीमत में भी कमी आनी शुरू हो गई है। वजारत ने बताया कि उसने शकर की खातिरख्वाह दस्तियाबी और घरेलू मंडी में उसकी सप्लाई की मसनूई कमी की रोकथाम को यकीनी बनाने के लिए कई सरगर्म इकदाम किए हैं। हुकूमत मुल्क भर में शकर की कीमत, जखीरे और नकलो हरकत पर करीबी नजर रख रही है। हुकूमत ने अगले महीने से हर 15 दिन पर शकर अलॉट किए जाने के निजाम को मुतारिफ कराने का फैसला किया है और इस तरह मौजूदा माहाना कोटा निजाम खत्म हो जाएगा, ताकि इस बात को यकीनी बनाया जा सके कि शकर बर वक्त मार्केट में पहुंच सके। ज़राअत, किसानों की बहबूद और देही तरक्की के मरकजी वजीर शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि भारत विकसित पंजाब के बगैर विकसित भारत नहीं बन सकता। उन्होंने पंजाब के किसानों को यकीन दहानी कराई है कि मरकजी हुकूमत उनके मफादात के साथ कोई समझौता नहीं करेगी। अमृतसर जिले में रखड़ पूनिया प्रोग्राम के दौरान बाबा बकाला के मकाम पर किसानों और दीगर से खिताब करते हुए जनाब चौहान ने कहा कि किसी भी मुल्क के साथ तय पाने वाले हर मुआहदे में उनकी फलाह बहबूद को अव्वलियत दी जाएगी। जनाब चौहान ने कहा कि वजीर आजम की क्यादत में पंजाब को मुख्तलिफ स्कीमों के तहत 8,20,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की मरकजी इमदाद मिल चुकी है। उन्होंने बताया कि विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन जी राम जी योजना के तहत इस साल 1,341 करोड़ रुपए फराहम किए गए हैं।
1: वो ये कह रहे हैं कि अगर दूसरे देशों से हमारे कोई समझौते हो रहे हैं तो इसमें किसानों को अहित होगा। मैं आज पंजाब की इस पवित्र धरा से किसान भाइयों आपको ये संदेश देने आया हूँ, नरेंद्र मोदी जी के होते हुए दुनिया के किसी देश से ऐसा समझौता नहीं हो सकता जो किसान के हितों के खिलाफ जाए।
0: दिल्ली कौमी राजधानी खित्ते में CNG की कीमत में 3.89 रुपए फी किलोग्राम का इजाफा किया गया है। इस तरह कौमी राजधानी में अब CNG की कीमत 86.98 रुपए फी किलोग्राम हो गई है। नई कीमत का इतलाक आज सुबह से हो गया है। NTA ने 84 मजामीन के लिए UGC قومی اہلیت امتحان

0: के नतीजों का ऐलान कर दिया है। 4,000 से ज्यादा उम्मीदवारों ने जूनियर रिसर्च फेलोशिप के लिए क्वालिफाई किया है। इधर इम्तिहान के इनेकाद से मुतालिक एजेंसी एनटीए ने इस साल जून में अंग्रेजी, कॉमर्स और सोशियोलॉजी का इम्तिहान देने वाले उम्मीदवारों के लिए फिर से इम्तिहान का हुक्म दिया है, क्योंकि माहिरीन की एक कमेटी ने सवाल नामों में हकायक, टाइपिंग, तर्जुमे और जबान से मुतालिक गलतियों का पता लगाया था। ये दोबारा इम्तिहान 9 और 10 सितंबर को होगा, जिसके लिए उम्मीदवारों को कोई इजाफी फीस नहीं देना होगी। तेलंगाना के नायब वज़ीर-ए-आला भट्टी विक्रमार्का ने सिंगरैनी के अहदेदारों को हिदायत दी है कि वो मुस्तकबिल में सोने की कानकनी से मुतालिक प्रोजेक्टों के लिए कर्नाटक की हट्टी गोल्ड माइंस के साथ इश्तराक पर गौर करें। उन्होंने कर्नाटक के रायचूर जिले में हट्टी और यूटीआई सोने की कानों के दौरे के दौरान ये हिदायत दी। शिमाल मगरबी खलीज बंगाल के ऊपर हवा के कम दबाव का हल्का बनने का इम्कान है और इसके जेरे असर उड़ीसा में तेज बारिश का सिलसिला फिर शुरू होने की पेशगोई की गई है। भारतीय मौसमियात महकमे ने कई जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। उड़ीसा में अगले 5 दिन तक बारिश का सिलसिला जारी रहने और समंदर में ऊंची ऊंची लहरें उठने का इम्कान है, इसलिए माहीगीरों से कहा गया है कि वो समंदर में न जाएं। मजीद तफसील हमारे नामा निगार से।
1: उड़ीसा में भारतीय मौसमियात महकमे ने शिमाल मगरबी खलीज बंगाल के ऊपर मौसम की तब्दीली के जेर असर बालासोर, केवंझर और मयूरभंज जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। इन जिलों में कहीं कहीं शदीद से लेकर बहुत शदीद बारिश होने का इम्कान है। इतवार के लिए भी 6 जिलों में ऑरेंज वार्निंग जारी की गई है। इनमें भद्रक, जगत सिंहपुर, केंद्रपाड़ा और मयूरभंज भी शामिल हैं। ओडिशा से प्रकाश दास की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं शमीम इरफान।
0: भारत के वेलवन सेंथिल कुमार ने फाइनल में हंगरी के बालाज फरकास को 3-0 से हराकर पीएसए बुडापेस्ट स्क्वैश ओपन का टाइटल जीत लिया है। सेंथिल कुमार ने इस पूरे टूर्नामेंट में शानदार कारकर्दगी का मुजाहिरा किया। उन्होंने क्वार्टर फाइनल में आलमी नंबर 18 और एशियाई खेलों में सोने का तमगा जीतने वाले खिलाड़ी INUNG को 3-0 से हराया था, जबकि सेमीफाइनल के सनसनीखेज मुकाबले में अपने हमवतन वीर चोटरानी को 3-2 से शिकस्त दी थी। हॉकी इंडिया ने FIH खवातीन वर्ल्ड कप में तारीखी 5वां मकाम हासिल करने पर भारतीय खवातीन की हॉकी टीम के लिए 50 लाख रुपए के नकद अवार्ड का ऐलान किया है। नीदरलैंड्स के शहर एम्स्टलवीन में जुमेरात को 5वें और 6ठे मकाम के लिए खेले गए दर्जाबंदी के मैच में सलीमा टेटे की जेर कमान भारतीय टीम ने आलमी नंबर 5 जर्मनी की टीम को 1-3 3 गोल से हराकर संगे मील हासिल किया। क्रिकेट में आज दुबई में खवातीन के T20 एशिया कप में ग्रुप बी के एक मैच में श्रीलंका का मुकाबला मुत्तहिदा अरब इमारात से होगा। ये मैच भारतीय वक्त के मुताबिक रात 8 बजे शुरू होगा। इधर कल रात खेले गए ग्रुप ए के मैच में थाईलैंड ने हांगकांग को 6 रन से हरा दिया। 2026 के खवातीन एशिया कप के लिए 8 टीमों को 2 ग्रुपों में रखा गया है। भारत और पाकिस्तान ग्रुप ए में हैं। इस ग्रुप की दीगर टीमों में हांगकांग और थाईलैंड शामिल हैं। इधर ग्रुप बी श्रीलंका, बांग्लादेश, मुत्तहिदा अरब इमारात और इंडोनेशिया पर मुश्तमिल है। भारतीय खवातीन की क्रिकेट टीम कल थाईलैंड के खिलाफ मैच के साथ अपनी मुहिम का आगाज करेगी, जबकि पाकिस्तान के खिलाफ उसका मैच 5 सितंबर को होगा। ये थी खबरें और अब अखबारात के आईने के साथ हैं फहीम अहमद।
2: शुक्रिया कौनन। कौमी राजधानी दिल्ली से शाया होने वाले आज के बेशतर उर्दू अखबारात ने नेपाल सैलाब से मुतालिक वजारत खारजा की मीडिया ब्रीफिंग को अपनी शहसुर्खी बनाया है। अखबार प्रताप की शहसुर्खी है, नेपाल में 320 भारतीय लापता, 21 को वतन वापस लाया गया। भारतीय इमदाद की तीसरी खेप नेपाल पहुंची। अखबार इनकलाब की सुर्खी है, नेपाल में फिर सैलाब का खतरा, मजीद बांध टूटने का अंदेशा। अखबारात ने भारतीय फौज के जरिए अमरीकी जेवलिन टैंक शिकन मिसाइल खरीदे जाने की खबर को सफ़े अव्वल पर जगह दी है। जनधन योजना में यकसर तब्दीली लाने वाले रोल की वजीर आजम की सताइश, इस खबर को भी अखबारात ने अहमियत दी है। इसके अलावा अखबारात ने मुल्क भर में रक्षाबंधन का त्यौहार धूमधाम से मनाए जाने की खबर को तस्वीरों के साथ शाया किया है। अखबारात की अहम बैन अलाक़वामी खबरें इस तरह हैं, ईरान के खिलाफ फौजी कार्रवाई अभी खत्म नहीं हुई, ट्रंप का बयान, बरतानिया के फौजी अड्डे हमारे निशाने पर हैं, यूक्रेन को मिसाइलों की फराहमी पर रूस का सख्त इंतबाह।
0: आखिर में खास खास खबरें एक बार फिर। वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज उज़्बेकिस्तान और किर्गिज़ जमहूरिया के 4 दिन के दौरे पर जा रहे हैं, ताकि इक्तिसादी और दिफाई

0: तराक को बढ़ाया जा सके। भारत ने जेवलिन टैंक शिकन गाइडेड मिसाइल निजाम खरीदने के लिए अमेरिका के साथ एक समझौते पर दस्तखत किए हैं। नेपाल में अचानक सैलाब आने से मरने वालों की तादाद 579 तक पहुंच गई है, जबकि 1924 अफराद अब भी लापता हैं। भारत ने नेपाल के लिए इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर इमदाद तेज कर दी है। सरकार अगले महीने से हर 15 दिन में शकर अलॉट करने का निजाम शुरू करेगी, ताकि मार्केट में शकर की बरवक्त दस्तियाबी को यकीनी बनाया जा सके। और भारत के वेलवन सेंथिल कुमार ने हंगरी के बालाज फरकास को हराकर PSA बुडापेस्ट स्क्वैश ओपन का टाइटल जीत लिया है। इसके साथ ही ये खबरनामा खत्म हुआ।
1: ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़ और FM 100.3 मेगाहर्ट्ज़ पर आप हमारे कार्यक्रम न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी सुन सकते हैं। थोड़ी देर में आप सुनेंगे कार्यक्रम नमस्कार प्रयागराज।
2: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
3: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
2: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
3: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
2: डायल कीजिए 870-001-4242।
3: नंबर एक बार फिर नोट करें 870-001-4242।
4: मेहमान आएंगे, हो सकता है इंडिया मैच जीतेगा, ये भी पॉसिबल है, क्योंकि अनुमान सही या गलत हो सकते हैं, लेकिन HIV का अनुमान नहीं लगाया जा सकता है।
5: HIV को लेकर अनुमान ना लगाएं, सेल्फ रिस्क असेसमेंट करें। सेल्फ रिस्क असेसमेंट के बाद अगर जरूरत हो तो पास के ICTC केंद्र पर HIV टेस्ट कराएं। आई स्कैन, अनुमान छोड़िए स्कैन कीजिए। अधिक जानकारी के लिए breakfreeindia.org पर लॉगिन करें या 1097 पर कॉल करें।
1: नमस्कार प्रयागराज, नमस्कार श्रोताओं, मैं आपका रेडियो हमसफर प्रेमेंद्र हाजिर हूं कार्यक्रम नमस्कार प्रयागराज का एक और ताजा तरीन अंक लेकर। श्रोताओं, आज 29 अगस्त है और गर्व की अनुभूति करता है पूरा प्रयागराज, अपना प्रदेश और पूरा भारत देश, क्योंकि आज ही के दिन प्रयागराज की उर्वरा माटी में खिला था एक ऐसा पुष्प जिसकी खुशबू से प्रयागराज ही नहीं अपितु पूरा देश महक उठा था। आज ही के दिन सन 1905 में प्रयागराज में एक बच्चा जन्मा, ध्यान सिंह, जिसे दुनिया ने कहा जादूगर। आज का दिन उस जादूगर के नाम और हर उस बच्चे के नाम जो कहीं किसी गली में प्लास्टिक की गेंद से खेल रहा है। ध्यानचंद जी सेना में शामिल हो गए थे, प्रैक्टिस करने का टाइम नहीं मिलता था तो क्या करते, चांद की रोशनी में प्रैक्टिस। रात को जब सब सो जाते तो मैदान में हॉकी लेकर निकल जाते, चांद की रोशनी में गेंद को घुमाते, इसी से नाम पड़ा ध्यान चंद। पहले नाम था ध्यान सिंह, लेकिन चांद की रोशनी में अभ्यास करने की वजह से उनका नाम पड़ गया ध्यान चंद। बात 1936 की है, बर्लिन ओलंपिक की। फाइनल मैच खेला जा रहा था भारत और जर्मनी के बीच। हिटलर सामने बैठा था, जर्मनी हार रही थी। जर्मनी के लोगों ने कहा इस आदमी की हॉकी में चुंबक लगा हुआ है, इसे चेक किया जाए। तो ध्यानचंद जी की हॉकी को तोड़ दिया गया, चुंबक नहीं मिला, दूसरी हॉकी दी गई और उससे भी ले दनादन गोल। भारत 8-1 से जीता। हिटलर ने खुद नीचे आकर के कहा मेरी सेना में आ जाओ, जनरल बना दूंगा। ध्यानचंद ने कहा मैं भारत का हूं और भारत के लिए ही खेलूंगा। उनकी इसी जादूगरी की वजह से, उनकी इसी खेल भावना की वजह से और आम जीवन में हर इंसान अपने जीवन में खेल को महत्व दे

इसीलिए आज उनके जन्म दिवस के अवसर पर पूरा देश मना रहा है राष्ट्रीय खेल दिवस। आप सबको भी राष्ट्रीय खेल दिवस के अवसर पर हार्दिक शुभकामनाएं। आमतौर पर जब हम किसी दिवस की बात करते हैं तो लोग सोचते हैं कि ये दिवस मनाने का मतलब किसी खास व्यक्ति से है। जी नहीं, आज के खेल दिवस का मतलब है या खेल दिवस को मनाने का मतलब है कि एक घंटा हमें अपने लिए निकालना है। सरकार भी इस साल कह रही कि एक घंटा खेल के मैदान में, क्योंकि जब हम सब फोन पर 5-5 घंटे बिता देते हैं तो खेलने के लिए एक घंटा क्यों नहीं। डॉक्टर कहते हैं रोज 60 मिनट खेलोगे तो शुगर, बीपी, टेंशन सब 50% कम हो जाएगा। और बात करें अपने प्रयागराजवासियों के लिए तो तमाम ऐसी जगहें हैं, पार्क हैं कि आप वहां जाकर के अभ्यास कर सकते हैं, खेल सकते हैं। और आपके पास में ही लखनऊ में स्टेडियम बने हुए हैं, केडे सिंह बाबू स्टेडियम है। तो पूरा उत्तर प्रदेश के लिए, पूरे देश के लिए कहा गया है कि हम सब खेलों के लिए अपना कुछ वक्त निकालें, तभी इन दिनों को मनाने की सच्ची सार्थकता हो सकती है। तो आप लोग भी वादा करिए कि आज के दिन से आप शुरू करेंगे और रोज कम से कम एक घंटा खेलेंगे। अगर नहीं खेल पा रहे हैं तो वॉक ही करेंगे, और नहीं पार जा पा रहे हैं तो अपने आसपास की गली में, सड़क में ही खेलेंगे, क्योंकि अगर खेलेगा इंडिया तो स्वस्थ रहेगा इंडिया। अभी अभी आपने देखा होगा कि तमाम ऐसे खिलाड़ी हैं जिन्होंने भारत को गोल्ड मेडल दिलाया, और हर साल खेलों में भारत की प्रतिभागिता बढ़ती जा रही है। और साथ ही साथ जो एक कहावत पहले थी कि पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे महान, खेलोगे कूदोगे तो होगे खराब या जीवन में कुछ नहीं कर पाओगे, अब तो खेल में भी अच्छा प्रदर्शन करके युवाओं को अच्छी अच्छी नौकरियाँ मिल रही हैं। तो आज अगर आप किसी बच्चे को खेलते देखें तो उसे रोकिएगा मत, उससे ये मत कहिएगा कि नहीं अभी तुरंत चल करके पढ़ो, उससे कहिएगा शाबाश और अच्छा खेलो, क्योंकि किताब से नौकरी मिलती है और खेल से जिंदगी। तो आज खेल दिवस के अवसर पर आपको, हमें ये तीन काम करने हैं कि हमें एक घंटा ज़रूर खेलना है। हमारे घर में जो बच्चे हैं जो कंप्यूटर, लैपटॉप या इंडोर गेम्स में व्यस्त हैं, उनके पास समय नहीं है या फिर आसपास माहौल नहीं है, तो माँ बाप को थोड़ी मशक्कत करनी है और बच्चों को खेल के मैदान तक ले जाना है। और किसी एक खिलाड़ी को जो आपके आसपास, उसको शुक्रिया बोलना है जिसने आपको कभी भी प्रभावित किया हो अपने खेल से, उसे धन्यवाद बोलिएगा और अपने पुराने खेलों को याद कीजिएगा। बचपने में, गांव गिराव में या शहरों में भी आजकल कुछ बच्चे स्कूल के मैदानों पर या फिर पार्कों में खेलते दिख जाते हैं, गिल्ली डंडा, कंचे, छुपन छुपाई या फिर क्रिकेट खेलते हुए बच्चे। तो चलते चलते मेजर ध्यानचंद जी को सैल्यूट, और यही कहना है कि खेलोगे तो खिलोगे और खिलोगे तो जीतोगे।

लगातार 3 से 4 ओलंपिक खेलों में भारत को स्वर्ण पदक दिलाया था मेजर ध्यानचंद जी ने। लोगों को हमेशा ये शक बना रहता था कि इनकी हॉकी में कुछ ना कुछ खेल है। ऐसे उनकी हॉकी से गेंद चिपक जाती थी कि बस कहने ही क्या, और वो गेंद फिर सीधे पहुंचती थी गोल तक। इसीलिए उनको कहा जाता है हॉकी का जादूगर। फिलहाल वही संदेश कि आज हमें गर्व करना है कि मेजर ध्यानचंद हमारे प्रयागराज में, हमारे देश में पैदा हुए, और साथ ही साथ हम भी अपने आप को स्वस्थ रखेंगे तभी खेल दिवस की सच्ची भावना सार्थक हो सकेगी, क्योंकि महापुरुषों का जीवन अपने से ज़्यादा दूसरों के हितों के लिए समर्पित होता है। फिलहाल नमस्कार प्रयागराज के आज के अंक से दीजिए अनुमति अपने रेडियो हम सफर प्रेमेंद्र को। इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता थे अभयकांत तिवारी। नमस्कार प्रयागराज। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम नमस्कार प्रयागराज, ये आकाशवाणी का

प्रयागराज केंद्र है। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज और FM 100.3 मेगाहर्ट्ज पर। कृपया हमारी अगली उद्घोषणा की प्रतीक्षा करें।

0: थोड़ी देर में फिल्म संगीत का कार्यक्रम होगा।
1: सुनो ना।
2: हाँ?
1: सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों ना बढ़ा लूँ।
2: तो रोका किसने है? हाँ?
1: रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगूं।
2: मुझसे?
1: तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर।
2: आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है।
1: पर उससे मेरा क्या फायदा?
2: देखो फायदा है, जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुँच जाओ।
1: पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं?
2: बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो, 8700014242।
1: ओ 8700014242। लो अभी फोन लगाता हूँ 8700014242 पर।
3: किधर है?
4: बेटी का नया अकाउंट और मेरा केवाईसी अपडेट,
3: ये तो झटपट काम है।
4: कैसे?
3: अगर केवाईसी डिटेल्स में चेंज नहीं या सिर्फ एड्रेस बदला है तो रजिस्टर्ड ईमेल, मोबाइल, ऑनलाइन या लेटर से सेल्फ डिक्लेरेशन दे दो।
4: और बाकी चेंजेस?
3: घर बैठे वीडियो केवाईसी या आधार ओटीपी बेस्ड ई केवाईसी से, सिर्फ बैंक ऑथराइज्ड चैनल से। ये नूडल्स बनाने जितना आसान है।
4: RBI कहता है
5: KYC सुरक्षित बैंकिंग की ओर पहला कदम।
6: बेटा ट्रेन रुकने तक यही इंतजार करना, चलती ट्रेन में चढ़ना उतरना बहुत खतरनाक होता है।
7: हाँ माँ मुझे सब पता है, ट्रेन रुकने के बाद ही प्लेटफॉर्म साइड से उतरूंगा और रेलवे ट्रैक पर कभी नहीं जाऊंगा।
6: अरे वाह मेरा बेटा तो बड़ा समझदार है। और ये कूड़ा कहाँ डालोगे?
7: डस्टबिन में। स्टेशन साफ रहेगा तभी तो सफर अच्छा लगेगा।
8: एक छोटी सी सावधानी जिंदगी भर की सुरक्षा, सुरक्षित रहें, स्वच्छता अपनाएं और दूसरों को भी जागरूक करें। स्वच्छ रेल परिसर, सुरक्षित रेल यात्रा, उत्तर मध्य रेलवे द्वारा जनहित में जारी।
9: राखी का बंधन हो तो बहन को सिर्फ प्यार नहीं सुरक्षा का भरोसा भी चाहिए। इस रक्षा बंधन UP 112 है हर परिवार के साथ।
10: पुलिस सहायता, एम्बुलेंस, फायर इमरजेंसी, महिलाओं और बच्चों से जुड़े अपराध, साइबर क्राइम, रेल, हाईवे या किसी भी इमरजेंसी में 112 की फर्स्ट रिस्पॉन्डर टीम हमेशा आपकी सेवा में तत्पर।
9: शहर हो या देहात, दिन हो या रात, रखिए अपनों की सुरक्षा का भरोसा।
10: किसी भी आपात स्थिति में फोन उठाइए और 112 मिलाइए। UP 112 नंबर 1 सेवाएं अनेक।
9: UP 112 द्वारा जनहित में जारी।
0: प्रस्तुत है फिल्म संगीत का कार्यक्रम। आगाज कर रहे हैं फिल्म कश्मीर की कली के इस गाने से, जिसे आवाज दी है मोहम्मद रफी और आशा भोसले ने। गीत और संगीत OP नैयर साहब का है।

अभी आपने सुने SH बिहारी के बोल ओपी नैयर के संगीत निर्देशन में। फिल्म थी कश्मीर की कली और आवाज़ें थीं मोहम्मद रफ़ी और आशा भोसले की। अब हम आपको सुनवा रहे हैं कुमार के बोल मीत ब्रदर्स के संगीत निर्देशन में। आवाज़ें हैं मीत ब्रदर्स, मोनाली ठाकुर और अमाल मलिक की। फिल्म का नाम बागी।

इस गाने के साथ ही फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम अब समाप्त होता है। हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज पर। हमारा अगला प्रसारण लखनऊ केंद्र से बस कुछ ही पलों में।

किलोहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं। हमारा अगला कार्यक्रम अब से थोड़ी देर में होगा। ये आकाशवाणी का लखनऊ केंद्र है।

0: किलोहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं। हमारा अगला कार्यक्रम अब से थोड़ी देर में होगा। ये आकाशवाणी का लखनऊ केंद्र है।
1: जिले की हलचल, आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है जिले की हलचल। आज सुनिए शामली और कौशाम्बी जिलों की हलचल। पहले सुनते हैं शामली जिले की हलचल। आलेख और स्वर है अनुज कुमार का।
2: शामली जिले में ई केवाईसी ने कराने वाले उपभोक्ताओं को आगामी 31 अगस्त के बाद सब्सिडी युक्त सिलेंडर की सुविधा से वंचित होना पड़ सकता है। जिले में कुल 2,81,119 सामान्य घरेलू एलपीजी कनेक्शन है। इनमें से 85% यानी 2,38,951 उपभोक्ताओं का ई केवाईसी सत्यापन पूरा हो चुका है, जबकि 15% यानी 42,168 उपभोक्ताओं का सत्यापन होना बाकी है। दरअसल रसोई गैस के पारदर्शी वितरण को सुनिश्चित करने के लिए सरकार और तेल कंपनियों ने केवाईसी अनिवार्य की है। साल 2025 से यह प्रक्रिया चल रही है। कमर्शियल दरें लागू होने से हर महीने रसोई का बजट 1,000 से अधिक तक बढ़ जाएगा। इसके अलावा गैस सिलेंडर की नियमित आपूर्ति भी ठप हो सकती है। DSO अंकुर यादव ने बताया कि जिले में LPG कनेक्शनों की पारदर्शिता के लिए KYC अनिवार्य की गई है। शामली जनपद के कैराना BRC खंड शिक्षक संसाधन केंद्र पर शिक्षकों के प्रशिक्षण कार्यक्रमों के दौरान पर्यावरण संरक्षक की एक अनूठी और सराहनीय पहल की शुरुआत की गई है। इसके तहत अब BRC पर आयोजित होने वाले प्रत्येक शिक्षण प्रशिक्षण विभागीय समीक्षा बैठक या शासकीय आयोजन में पौधारोपण को अनिवार्य कर दिया गया है। खंड शिक्षा अधिकारी सुशील कुमार ने इस नए निर्देशों के अनुसार प्रशिक्षण में शामिल होने वाले हर शिक्षक के लिए परिसर में एक पौधा लगाना और उसकी देख रेख का संकल्प लेना जरूरी है। इसके बिना प्रशिक्षण को पूर्ण नहीं माना जाएगा। इस अभियान के प्रथम चरण में 100 शिक्षकों ने 100 पौधे रोपे हैं। BEO का मानना है कि शिक्षा के साथ भावी पीढ़ी को हरा भरा और स्वच्छ वातावरण सौंपना शिक्षकों का नैतिक दायित्व है। शामली जिले के छात्र छात्राओं और अभिभावकों के लिए राहत भरी खबर है। अब आधार का स्थायी कार्यालय सुचारू तरीके से कार्य करने लगा है, जिसमें आधार कार्ड से जुड़ी मुश्किलें और लंबित त्रुटियों का समाधान अब जिला स्तर पर ही संभव हो सकेगा। जिलाधिकारी ने नागरिकों से आह्वान किया कि 5 और 15 वर्ष की आयु पूरी कर चुके बच्चों के आधार कार्ड शीघ्र अपडेट कराए, ताकि भविष्य में बोर्ड परीक्षा और अन्य महत्वपूर्ण फार्म भरते समय विद्यार्थियों को किसी भी तरह की परेशानी का सामना न करना पड़े। UIDAI लखनऊ के सहायक प्रबंधक एवं सहारनपुर मंडल के नोडल अधिकारी राजीव कुमार ने स्पष्ट किया कि प्रत्येक बच्चे के लिए 5 वर्ष की आयु के बाद और किशोरों के लिए 15 वर्ष की आयु पूरी होने पर आधार कार्ड को बायोमेट्रिक रूप से अपडेट करना अनिवार्य होता है। यदि किसी छात्र का 15 वर्ष की आयु के बाद आधार कार्ड अपडेट नहीं होता है तो उसे आगामी बोर्ड परीक्षाओं के फार्म, प्रवेश परीक्षाओं और अन्य सरकारी दस्तावेज भरते समय गंभीर कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। बताया कि नया आधार कार्ड बनवाने पर किसी भी प्रकार का शुल्क नहीं लिया जाता है। वही 15 वर्ष से अधिक आयु के नागरिकों के लिए बायोमेट्रिक अपडेट का शुल्क 125 रुपए निर्धारित किया गया है, जबकि 15 वर्ष तक के किशोरों के लिए यह सेवा पूरी तरह निःशुल्क है। इसके अलावा आधार कार्ड में जन्मतिथि या वर्तमान पता बदलवाने के लिए 75 रुपए का शुल्क तय किया गया है। कार्ड में जन्मतिथि या वर्तमान पता बदलवाने के लिए भी 75 रुपए का शुल्क तय किया गया है। नियमों के मुताबिक आधार कार्ड में जन्मतिथि में संशोधन जीवन में केवल एक बार और जेंडर संशोधन एक बार और नाम में बदलाव अधिकतम 2 बार ही किया जा सकता है। शामली के सीमावर्ती जिलों में दस्तक दे रहे लंपी स्किन डिजीज LSD के बढ़ते खतरे को देखते हुए शासन ने कड़े कदम उठाए हैं। खासतौर से सहारनपुर मंडल के जिलों में केस लगातार मिलने से हाई अलर्ट किया गया है। जिला प्रशासन ने पशु मेलों के आयोजन और गोवंशी पशुओं के अंतरराज्यीय परिवहन पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी है, ताकि खतरनाक विषाणु जनित संक्रमण आगे न बढ़ सके और इस पर पूरी तरह से वक्त रहते ही लगाम लगाई जाए। जिले के शामली, कैराना, कांदला, थाना भवन और उन ब्लॉक के गाँव में लगातार लंपी वायरस के केस मिल रहे हैं। जिला प्रशासन की ओर से 72,000 वैक्सीन मंगवाई गई है और टीकाकरण का कार्य तेजी से चल रहा है। बदलती जीवन शैली और संवादहीनता के दौर में बिखरते परिवारों को बचाने के लिए एक नई पहल की शुरुआत हुई है। राज्यों समेत उत्तर प्रदेश के विभिन्न जिलों में इस पहल को लागू किया गया है। जिला प्रोबेशन अधिकारी

0: मोहम्मद मुस्फिकीन के मुताबिक यह केंद्र युवा से पहले युवाओं को रिश्तों के चार मूल स्तंभों देखभाल, साझा करना, सम्मान और जिम्मेदारी का महत्व बताएगा।
1: राष्ट्रीय महिला आयोग नई दिल्ली के निर्देशन में जनपद शामली के वन स्टॉप सेंटर में विवाह पूर्व संवाद केंद्र, जिसका नाम तेरे मेरे सपने रखा गया है, शुरू किया गया है। इस केंद्र के माध्यम से विवाह के बंधन में बंधने जा रहे युवक युवतियों को विवाह के उपरांत आने वाली नई भूमिकाओं के लिए उनको तैयार करना है।
2: शामली जिले की हलचल के बाद आइए सुनते हैं कौशाम्बी जिले की हलचल। आलेख और स्वर है सोने लाल का।
3: कौशाम्बी जिले में खेलो इंडिया संवाद कार्यक्रम का लाइव प्रसारण राजकीय महिला महाविद्यालय में छात्रों ने टेलीकास्ट के माध्यम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सजीव प्रसारण देखा गया। युवाओं में खेल भावना का नई उड़ान देने और राष्ट्र निर्माण से जोड़ने के लिए राजकीय महिला महाविद्यालय में खेलो इंडिया संवाद का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वेब टेलीकास्ट के माध्यम से युवाओं को खेलों के प्रति उत्साहित किया। कार्यक्रम का प्रमुख आकर्षण खेल जगत की प्रतिभाओं का सम्मान समारोह था। खेलों के प्रति उत्साह बढ़ाने तक सीमित नहीं बल्कि युवा को भारत अभियान के तहत आयोजन को सुना गया। छात्राओं ने इस कार्यक्रम में हिस्सा लेकर देश के प्रधानमंत्री को धन्यवाद ज्ञापित किया। महाविद्यालय के प्रधानाचार्य ने कहा कि खेलो इंडिया संवाद के माध्यम से प्रधानमंत्री द्वारा छात्रों से किए गए संवाद में जिले की दर्जनों छात्राएं खेल के प्रति अपनी अपनी इच्छा जाहिर की। कौशाम्बी जिले में 60 वर्ष से अधिक उम्र की महिलाओं को निःशुल्क बस सेवा का लाभ मिलेगा। जिला अधिकारी डॉक्टर अमित पाल शर्मा ने बताया कि प्रदेश की योगी आदित्यनाथ की सरकार द्वारा 60 वर्ष से अधिक आयु की महिलाओं को बस में निःशुल्क यात्रा करने का आदेश जारी किया गया, जिसके क्रम में महिलाओं को बस में यात्रा करते समय अपने पास उम्र के संबंध में आधार कार्ड अथवा वोटर आईडी कार्ड लेकर चलना होगा। किसी भी बुजुर्ग महिला यात्री को बस में किसी प्रकार का किसी को किराया दे नहीं होगा। उन्होंने कहा कि प्रदेश के किसी भी जिले में परिवहन निगम की बसों पर यात्रा कर पहुंच सकते हैं। कौशाम्बी जिले में पीआरडी जवानों का दैनिक भत्ता 100 रुपए की वृद्धि की गई। प्रदेश सरकार के श्रम एवं सेवा योजन राज्य मंत्री अनिल राजभर ने बताया कि पीआरडी जवानों के दैनिक भत्ते में 100 रुपए की वृद्धि की गई है, जो प्रत्येक जवान का प्रतिदिन 600 रुपए मिलेगा। पीआरडी जवानों को 5 लाख तक का कैशलेस इलाज सुविधा दी गई है। प्रांतीय रक्षक दल के जवानों की निष्ठा, ईमानदारी, सेवा भाव को देखते हुए उनके कल्याण के लिए महत्वपूर्ण घोषणा की गई है। पीआरडी जवानों द्वारा पुलिस के साथ कंधा से कंधा मिलाकर सेवा एवं सुरक्षा के क्षेत्र में किए जा रहे योगदान के दृष्टिगत ड्यूटी भत्ते में वृद्धि की गई है। कौशाम्बी जिले में चायल तहसील ककरौली में 115 खातेदारों को राजस्व विभाग ने दर्जनों को निरस्त किया है। अपर जिला अधिकारी ने बताया कि चायल तहसील की ककरौली गांव में 45 वर्षों से 75 बीघा भूमि पर 115 लोग काबिज थे, जो सरकारी अभिलेखों में हेराफेरी कर राजस्व कर्मचारियों द्वारा नाम दर्ज किया गया था। जमींदारी उन्मिलन 1952 के अधिनियम में खातेदारों का नाम निरस्त किया गया। उक्त भूमि को ग्राम सभा के खाते में दर्ज किया गया। कौशाम्बी जिले में जिला कारागार पर निरुद्ध बंदियों को बहनों ने रक्षा सूत्र बांध कर नेक रास्ते पर लौटने का संकल्प लिया। जेल अधीक्षक अजितेश कुमार ने बताया कि रक्षाबंधन के त्योहार में निरुद्ध बंदियों की बहनों ने भाइयों की कलाई में रक्षा सूत्र बांध कर नेक रास्ते में चलने का संकल्प लिया। कौशाम्बी जिले में श्रमिकों और उनके आश्रितों वह शैक्षिक सुरक्षा के तहत सरकार कल्याणकारी योजनाएं चला रही है। मुख्य विकास अधिकारी विनोद राम त्रिपाठी ने बताया कि श्रमिक और उनके आश्रितों के हित में विभिन्न कल्याणकारी योजनाएं संचालित है। योजनाओं का उद्देश्य निर्माण श्रमिकों एवं उनके परिवार को सामाजिक, आर्थिक, शैक्षिक एवं स्वास्थ्य संबंधी सहायता उपलब्ध कराना है। निर्माण श्रमिक की आयु 18 से 60 वर्ष के मध्य होनी चाहिए। पंजीकरण के समय श्रमिक को 12 माह में कम से कम 90 दिन निर्माण श्रमिक के रूप में कार्य करना आवश्यक है। पंजीयन 20 रुपए प्रतिवर्ष दे होगी। उन्होंने कहा कि मातृत्व शिशु हित लाभ के रूप में दी जाएगी। न्यूनतम वेतन की दर से 3 माह के वेतन के समतुल्य धनराशि दे होगी। कौशाम्बी जिले में रसोइयों का मानदेय 1000 प्रतिमाह बढ़ने से उनके चेहरे पर मुस्कान खिल उठी। बेसिक शिक्षा अधिकारी ने बताया कि पीएम पोषण योजना के अंतर्गत कार्यरत रसोइयों के मानदेय में 1000 रुपए प्रतिमाह की वृद्धि की गई है, जो अब उन्हें 3000 रुपए प्रतिमाह मिलेगा। किसी भी असामयिक दुर्घटना और बीमारी के उपचार के लिए 5 लाख रुपए तक का कैशलेस चिकित्सा कार्ड जारी किया गया है। भारतीय स्टेट बैंक द्वारा 2 लाख का दुर्घटना बीमा भी मिलेगा। ड्रेस के लिए 500 से बढ़ाकर 1000 रुपए कर दिया गया। मुख्यमंत्री की इस पहल का रसोइयों ने उत्साह और प्रसन्नता जाहिर किया। कौशाम्बी जिले में कानून व्यवस्था को सुदृढ़ करने और टूटते परिवारों को सुलह समझौता के तहत नया जीवन व्यतीत करने का दर्जनों परिवारों को अवसर दिया गया। पुलिस अधीक्षक सत्यनारायण प्रजापत ने बताया कि त्योहारों के दृष्टिगत 20 कमेटियों की

0: बैठक कर जनमानस का उत्साह और भाईचारे के साथ त्योहार मनाने के लिए आश्वस्त किया गया।
1: ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज और FM 100.3 मेगाहर्ट्ज पर। लीजिए अब सुनिए संवेद स्वरों में ये देशगान।

अभी आप संवेद स्वरों में ये देश गान सुन रहे थे। हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलो हर्ट्ज पर। हमारा अगला प्रसारण लखनऊ केंद्र से बस कुछ ही पलों में।

0: अभी आप सुन रहे थे संवेद स्वरों में देशगान। मीडियम वेव 401.61 मीटर्स यानी 747 किलो हर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं। हमारा अगला कार्यक्रम अब से थोड़ी देर में होगा। हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं। पेश खिदमत है उर्दू कार्यक्रम।
1: सामईन, उर्दू प्रोग्राम के साथ एक बार फिर हाजिर हैं आपका मेज़बान मोहम्मद उमैर। आदाब कबूल फरमाएं। सामईन, हम आज फिर आपके लिए लेकर आए हैं बैतबाजी का खूबसूरत प्रोग्राम। सामईन, बैतबाजी सिर्फ एक खेल नहीं है बल्कि उर्दू शायरी से जुड़ने का एक खूबसूरत ज़रिया है। इसमें याददाश्त आजमाई जाती है, ज़ुबान की मिठास सामने आती है और अदब के खूबसूरत रंग भी देखने को मिलते हैं। आज की इस महफिल में हमारे दरमियान दो टीमें हैं, टीम मीर और टीम गालिब, और दोनों टीमों में शिरकत कर रही हैं स्कूली तलबा। टीम मीर में हैं सादिया सिद्दीका, यशफा नूर और रुशदा मोहम्मद फारूकी, जबकि टीम गालिब में शामिल हैं जिक्रा अनीस, रुशदा फातमा और उम्मे हानी। तो सामईन, बगैर वक्त ज़ाया किए शुरू करते हैं बैतबाजी का ये खूबसूरत और तजस्सुस से भरपूर ये मुकाबला। मैं अल्लामा इकबाल के इस शेर से मुकाबले का आगाज करवाना चाहूँगा। खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से ये पूछे, बता तेरी रजा क्या है। टीम गालिब।
2: यही कुरान था जिसने मुकद्दर को बदल डाला, यही कुरान था जिसने मुकद्दर को बदल डाला, उमर ईमान ले आए हुआ बातिल का मुँह काला।
1: अलिफ। टीम मीर।
3: इंसान को इंसान से कीना नहीं अच्छा, जिस सीने में कीना हो वो सीना नहीं अच्छा।
1: बहुत उम्दा, अच्छा। अलिफ।
4: एबाद सबा जो तूने सुना मेहमान जो आने वाले हैं, एबाद सबा जो तूने सुना मेहमान जो आने वाले हैं, तुम कल्याना बिछाना राहों में, हम पल के बिछाने वाले हैं।
1: ये से आया जिक्रानी, इसने बहुत अच्छा जवाब दिया। टीम मीर।
5: यूँ तो हर शख्स बड़े एहतराम से मिला, यूँ तो हर शख्स बड़े एहतराम से मिला, मगर जो भी मिला अपने काम से मिला।
1: फिर अलिफ आया है।
6: अल्लाह के रसूल को जो मानता नहीं, वो शख्स बेवकूफ है वो जानता नहीं, हश्र क्या होगा उसका रोजे महशर में, जब अल्लाह के रसूल कहेंगे मैं इसे पहचानता नहीं।
1: नून। जल्दी।
3: न मैं तहरीर छोड़ूंगी, न मैं पैगाम छोड़ूंगी, न मैं कुरान छोड़ूंगी, न मैं इस्लाम छोड़ूंगी, जितनी कोशिशें कर ले मुझे मिटाने की, न मैं ये मिट्टी छोड़ूंगी, न ये हिंदुस्तान छोड़ूंगी।
1: नून से फिर।
6: नदामत के चरागों से बदल जाती हैं तकदीरें, नदामत के चरागों से बदल जाती हैं ये तकदीरें, अंधेरी रात के आंसू खुदा से बात करते हैं।
1: बहुत उम्दा। नून फिर।
7: न मैं अमीर हूँ न रईस हूँ, न मैं अमीर हूँ न रईस हूँ, न बादशाह हूँ न वजीर हूँ, दुर्र मुस्तहक है मेरी सल्तनत, उसी सल्तनत का फकीर हूँ।
1: नून।
5: न जाने कितने चिरागों को मिल गई है शौहरत,
1: बहुत अच्छे हैं,
5: एक आफ्ताब के बेवक्त डूब जाने से।
1: ये टीम मीर सोचने पे मजबूर हैं, लगता है कि पहला नुक्ता दे दिया गया है। टीम मीर।
3: ये जलजले की आफत कयामत की निशानी है, ये हवा ये खाक ये आग ये पानी कयामत की कहानी है।
1: है फिर ये से।
5: या रब दिले मुस्लिमा को वो जिंदा तमन्ना दे, या रब दिले मुस्लिमा को वो जिंदा तमन्ना दे, जो कल्ब को गर्मा दे जो रूह को तड़पा दे।
1: बहुत उम्दा। फिर ये से आ गया। टीम मीर।
3: ये एक सजदा जिसे तू गिरा समझता है, हजारों सजदे से देता है लोगों को नजात।
1: फिर ये से। बार बार ये पे ही गाड़ी रुक रही है, चलिए।
4: ये कफन ये कबर ये जनाजे रस्म शरीयत है इकबाल, ये कफन ये कबर ये जनाजे रस्म शरीयत है इकबाल, मर तो इंसान तभी जाता है जब कोई याद करने वाला न हो।
1: वाओ से। ये के बाद वाओ पे।
3: नाकामी मता कारवा जाता रहा, कारवा के दिल से एहसास से जिया जाता रहा।
1: अलिफ। टीम गालिब। अलिफ।
5: अलिफ सिर्फ हर्फ नहीं जर्फ है कमाल का।
1: बहुत उम्दा।
5: अलिफ सिर्फ हर्फ नहीं जर्फ है कमाल का।
1: अच्छा जवाब। हाँ।
5: इब्तिता जहान की जवाब हर सवाल का।
1: फिर अलिफ से आ गया भाई। अलिफ। टीम मीर।
4: आता है याद मुझको गुजरा हुआ जमाना, आता है याद मुझको गुजरा हुआ जमाना, वो बाग की बहारें वो सबका चहचहाना।
1: फिर अलिफ से आ गया। टीम गालिब।
4: ए ताइरे ला होती इस रिस्क से मौत अच्छी, जिस रिस्क से आती है परवाज में कोताही।
1: ये।
4: यही दर्श देता है हमें हर शाम का सूरज, यही दर्श देता है हमें हर शाम का सूरज, मगरिब की तरफ जाओगे तो डूब जाओगे।
1: ये बड़ी।
4: ये बात अलग है कि तुम न बदलो मगर जमाना बदल रहा है, ये बात अलग है कि तुम न बदलो मगर जमाना बदल रहा है, ये बात अलग है कि तुम न बदलो मगर जमाना बदल रहा है, गुलाब पत्थर पर खिल रहे हैं चराग आंधी में जल रहा है, बस यही जुनून और यही ये ख्वाब मेरा है, बस यही जुनून और यही ये ख्वाब मेरा है, वही

0: चिराग जला दूं जहां अंधेरा है।
1: बढ़िए।
2: ये सूरज, ये चांद, ये सितारे किसी के नहीं, चिराग सबके बुझेंगे, हवा किसी की नहीं।
1: ये से फिर,
3: या रब्बे मुसलमा कैसे हैं जो दीन की अजमत भूल गए, या रब्बे मुसलमा कैसे हैं जो दीन की अजमत भूल गए, कलमा तो जुबानी याद रहा कलमे की शहादत भूल गए।
1: फिर ये से, ये का पीछा नहीं छूट रहा है मुकाबले में।
4: यूं जमीन पे बैठकर क्यों आसमां देखता है, यूं जमीन पे बैठकर क्यों आसमां देखता है, खोल जरा अपने पंखों को जमाना उड़ान देखता है।
1: ये,
5: यहाँ की बातें वहाँ बताने वाले, खुश होते हैं आजकल आग लगाने वाले, सच पर यकीन कोई करता नहीं, झूठ पर ताली बजाते हैं जमाने वाले।
1: ये से फिर,
6: हंसी आती है मुझे हसरत है।
1: या फाउल हो गया एक आपका, इधर आप चलिए।
5: यूँ तो हर एक को शैतान से डर लगता है, पर मुझे इस दौर के इंसान से डर लगता है, कि जिसकी हर बात में पोशीदा हो निस्तर की चुभन, ऐसे हर साहिब एहसान से डर लगता है।
1: ये से,
4: ये दौर तरक्की भी आफत की निशानी है, ये दौर तरक्की भी आफत की निशानी है, बच्चों पे बुढ़ापा है, बूढ़ों पे जवानी है।
1: बहुत उम्दा, ये टीम गालिब।
5: ये तुमने कहा क्या ए नादा, फयाजी कुदरत आम नहीं, तो फिक्र और नजर तो पैदा कर, क्या चीज है जो इनाम नहीं।
1: नून,
2: नून। न तू जमीन के लिए है ना आसमां के लिए, जहां है तेरे लिए तू नहीं जहां के लिए।
1: फिर ये,
3: ये मंजिले ये रास्ते, मेरे हर दुआ तेरे वास्ते, ये सुकून और करार भी मेरे मात तेरे वास्ते।
1: फिर ये से, टीम मीर का ये से पाला नहीं छूट रहा है लगातार ये पे, जल्दी वक्त कम है।
2: यूँ तो सैयद भी हो, मिर्जा भी हो, अफका भी हो, तुम सभी कुछ हो, बताओ क्या मुसलमान भी हो।
1: वाओ,
6: वो मुअज्जज थे जमाने में मुसलमान होकर, वो मुअज्जज थे जमाने में मुसलमान होकर, हम ख्वार हुए तारिके कुरआन होकर।
2: रिश्तों से बड़ी दौलत क्या होगी, दोस्ती से बड़ी दौलत क्या होगी, जिसको मिल जाए तो जैसा दोस्त, उसे फिर जिंदगी से शिकायत क्या होगी।
1: ये,
5: यहाँ न दुनिया न फिक्र दुनिया, यहाँ न अकबा न फिक्र अकबा, जिन्हें सरे माँ सिवा भी होगा, वही गमे माँ सिवा करेंगे।
1: ये टीम मीर, जल्दी चलिए, लगता नहीं है इनके पास जवाब। टीम गालिब,
5: ये इश्क नहीं आसा, इतना ही समझ लीजिए, एक आग का दरिया है और डूब कर जाना है।
1: फिर ये से,
2: ये दस्तूर जुबा बंदी है, कैसे तेरे महफिल में, यहाँ तो बात करने को तरक्की है जुबा मेरी।
1: मेरी, ये से,
6: यूँ तो दस गज की जुबा हम भी बुता रखते हैं, बात तो तौल नहीं देते खुदा के डर से।
1: ये,
2: यकीन मोहकम अमल पे हम मोहब्बत फात हैं आलम, यकीन मोहकम अमल पे हम मोहब्बत फात हैं आलम, जिहाद जिंदगानी में ये मर्दों की है शमशीरें।
1: नून, लगता है इस बार मीर, टीम मीर ने मीर गालिब को दे दिया है नुक्ता।
6: नहीं हूँ बेअदब इतना कि गुल से मुंह लगाऊं मैं, जगड़ हो टुकड़े टुकड़े कर चमन और जाऊं मैं।
1: फिर नून से,
4: ना छोड़ आजम का दामन नजर उठा वो देख, ना छोड़ आजम का दामन नजर उठा वो देख, करीब आ गई मंजिल सफर तमाम हुआ।
1: अलिफ,
5: उस दिल पे खुदा की रहमत हो, जिस दिल की ये हालत होती है, एक बार खता हो जाती है सौ बार निदामत होती है।
1: ये टीम गालिब के पास ये एक बार फिर मुश्किल बन रहा है, देखिए।
2: ये महशर है तो ऐसे
1: नहीं मिल गया
2: को कौन मानेगा, कि झुटलाते हैं खुद मेरी जुबा मेरा बयां मुझको।
1: वाओ,
5: वफा लोग आपस में करते थे आगे, इरस में कहीं आह तुमने उठा दी।
1: बहुत अच्छा। ये,
2: यूँ तो हर शख्स बड़े एहतराम से मिला।
1: ये हो चुका है और एक पॉइंट और आपने गवा दिया, फिर मौका टीम गालिब के पास।
5: ये हैं ऐसे, वो हैं वैसे, हैं दूसरों पर नजर, हाँ मगर इतना गरेबा झांकता कोई नहीं।
1: नून,
2: निगाहें ढूंढती हैं दोस्तों को और नहीं पाते, नजर उठती है अब जिस दोस्त पर पड़ती है दुश्मन पर।
5: राह के पत्थर को चकना चूर होना चाहिए, वार चाहे एक हो भरपूर होना चाहिए, सिर्फ इतना नहीं कि वो हार मान ले अपनी, उनको हमारे सामने मजबूर होना चाहिए।
1: बहुत अच्छा जवाब। या जल्दी,
2: ये दस्तूर जुबा बंदी है, कैसा तेरी महफिल में, यहाँ तो बात करने को तरसती है जुबा मेरी।
1: टीम गालिब, या
5: यहाँ उलझे उलझे रूप बहुत, असली कम बहरूप बहुत, उस पेड़ के नीचे क्या रुकना, जहाँ साया कम और धूप बहुत।
1: ता,
2: तेरा एजा पसंदी की अदा भी क्या कयामत है, तेरी एजा पसंदी की अदा भी क्या कयामत है, मुझे मरने न देगी ये आरज़ू मुर्गे तो बरसों।
1: नू, बरसों नहीं है जवाब, और इस बार फिर मौका, एक टीम एक पॉइंट मिला टीम मीर को, हो गया टाइम, हो गया टीम मीर।
4: नहीं तेरा नशे मन कसर सुल्तानी के गुम्बद पर, नहीं तेरा नशे मन कसर सुल्तानी के गुम्बद पर, तुशाही है बसेरा कर पहाड़ों की चट्टानों।

0: पर।
1: रा,
2: रोना यही है मुझको तेरी जफा से हरदम, ये दिल और दिमाग दोनों कब तक वफा करेंगे।
1: टीम मीर, ये चलिए लग रहा जवाब नहीं है, फिर टीम गालिब को एक बार मौका, एक पॉइंट और मिला।
3: यहाँ इंसान इंसान को डस रहा है और वहाँ सांप बैठा हंस रहा है।
1: बहुत उम्दा, ये से फिर आप लोगों के पास जल्दी जवाब।
4: यही मकसूद फितरत है, यही रमजे मुसलमानी, उख़वते की जहांगीरे मोहब्बत की फरोदानी।
1: ये
3: फरेबी जलवा है सर बसर, मुझे डर ये है दिले बेखबर, कहीं जम न जाए तेरी नजर, उन्हें चंद नकश वो निगार पर।
1: ड्रा, फिर एक पॉइंट और मिला टीम गालिब को। टीम गालिब, रा,
2: रफ्तार में ये शौकी ए नौजवान जमीन पर, रफ्तार में ये शौकी ए नौजवान जमीन पर, लाता है ताज़ा आफत तो हर जमात जमीन पर।
1: रा,
4: रंज पाया दिल दिया सच्चे मगर ये तो कहूँ, रंज पाया दिल दिया सच्चे मगर ये तो कहो, क्या किसी ने देख पाया किसी ने किया पाकर दिया।
1: अलिफ,
3: आदमी कोई हो चेहरे से परखा नहीं जाए, आदमी कोई हो चेहरे से परखा नहीं जाए, क्या ज़रूरी है अंदर भी हो बाहर जैसा।
1: अलिफ,
0: अब अपने लहजे में नरमी बहुत ज़्यादा है, अब अपने लहजे में नरमी बहुत ज़्यादा है, नए बरस में नई जंग का इरादा है, और मैं अपनी लाश लिए फिर रहा हूँ कंधे पर, और मैं अपनी लाश लिए फिर रहा हूँ कंधे पर, यहाँ ज़मीन की कीमत बहुत ज़्यादा है।
1: या,
2: ये दिल जो शिकस्ता है सो बेलुत्फ़ नहीं है, ठहरो कोई दम आन के उस टूटे मकाम में।
1: नून, चलिए एक पॉइंट आपको और मिला टीम गालिब।
2: न खौफ बर्क न खौफ शरर लगे हैं मुझे, न खौफ बर्क न खौफ शरर लगे हैं मुझे, खुद अपने बाग के फूलों से डर लगे हैं मुझे।
1: ये
3: नाला क्यों है ये नगमा क्यों है, ये नाला क्यों है ये नगमा क्यों है, ये आह कैसी ये वाह कैसी, ये पूछ ले आईने के दिल से न पूछ अपने जिगर से पहले।
1: ये
4: याद है उस बुते काफिर का खफा हो जाना, याद है उस बुते काफिर का खता हो जाना, और मेरा भूल के माइल बद्दुआ हो जाना।
1: अलिफ, ये आखिरी मौका है, इसके बाद।
3: अभी अपने दुश्मन को शक की निगाह से ना देख, अभी अपने दुश्मन को शक की निगाह से ना देख, तेरा कातिल तो तेरा यार भी हो सकता है।
1: ये
3: रोज और शब ये सुबह और शाम, ये बस्ती ये वीराने, सभी बेदार है इंसान अगर बेदार हो जाए।
1: या,
4: यही राबितो जब्त गमो आलिम तरी राय में कभी खूब थे, वो यही तो मेरे अय्यूब थे जिन्हें दी गई थी रियायतें।
1: नून, बस आखिरी शेर नून।
2: नेक ने नेक समझा बद ने बद जाना मुझे, जिसका जैसा जर्फ था उतना ही पहचाना मुझे।
1: तो सामाईन, ये था आज का बैतबाजी का मुकाबला। स्कूली तलबा ने बहुत अच्छा मुकाबला पेश किया, बहुत उम्दा अशार पेश करके एक खूबसूरत माहौल बनाया। माहौल इतना खूबसूरत है कि इससे बाहर निकलने का दिल नहीं कर रहा है, लेकिन वक्त की पाबंदी है, इसलिए इस प्रोग्राम को अब यहीं पर रोकना होगा। लेकिन अभी इस प्रोग्राम के नतीजों का ऐलान बाकी है। हम इन नतीजों के ऐलान से पहले जो हमारे जज हैं, जो हमारे पूरा पैनल इस बैतबाजी को जज कर रहा था, वो हमारे साथ मौजूद है। पहले हम उनसे राय जानेंगे और उनसे इस मुकाबले के जो विनर टीम है उसका ऐलान भी कराएंगे। इस पूरे मुकाबले को जो जज कर रहे थे वो हमारे सईद अख्तर साहब हैं। हम चाहेंगे कि सईद अख्तर साहब इस मुकाबले के जो फातह टीम है उसका ऐलान करें। सईद अख्तर साहब, बताएं कौन विनर है इस मुकाबले का।
5: सामाईन आदाब, वैसे तो दोनों टीमों ने बहुत ही जबरदस्त मुकाबला किया और बहुत ही अच्छे अच्छे अशआर हम सामाईन तक पहुंचाए, लेकिन दोनों टीमों में एक ही टीम जीत सकती है, तो टीम गालिब ने ये मुकाबला जीता है।
1: तो टीम गालिब के लिए एक बार जोरदार तालियां, बहुत अच्छा मुजाहरा यहाँ पे पेश किया उन्होंने।
5: टीम गालिब में जो बच्चियां थीं उनके नाम इस तरह हैं, जिक्रा अनीस, रुशदा फातिमा, उम्मे हानी, इन तीनों बच्चियों के लिए तालियां। उसके अलावा और जो दूसरे नंबर पर हमारी टीम है, टीम मीर, उनके लिए भी जोरदार तालियां। इन बच्चियों ने भी शानदार मुकाबला किया और अच्छे अच्छे अशआर पेश किए, मैं उनको भी मुबारकबाद पेश करता हूँ। और उनके इसमें ग्रामी हैं सादिया सिद्दीका साहिबा, यशफा नूर, रुशदा मोहम्मद फारूकी, इन तीनों बच्चों के लिए भी तालियां।
1: तो ये सईद अख्तर साहब थे, उन्होंने बैतबाजी के मुकाबले के नतीजों का ऐलान किया, फातह टीम का नाम बताया और उन बच्चियों का भी नाम बताया जिन्होंने बहुत अच्छा मुजाहरा इस बैतबाजी के मुकाबले में किया है। तो ये सईद अख्तर साहब थे। और हमारे पैनल में एक और शख्स जो इस पूरे बैतबाजी के मुकाबले पर बहुत पैनी निगाह बना के रखे हुए था, वो अदबी ज़ौक भी रखते हैं, शेर व शायरी में काफ़ी उनकी इंटरेस्ट भी है, उनसे इस मुकाबले के बारे में जानेंगे कि कैसा ये मुकाबला रहा, बच्चियों के जो हुनर पेश किया वो कैसा था। बताएं शमसुल आरफीन साहब।
6: बहुत शुक्रिया उमेर भाई, और बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर सईद अख्तर साहब। प्रोग्राम बेहद दिलचस्प था और बैतबाजी का

0: प्रोग्राम उमेर भाई अक्सर मुश्किल होता है।
1: अच्छा।
0: हमने बड़े बड़े लोगों को इसमें देखा है जिनके पसीने छूट जाते हैं। मैं इन बच्चियों को देख रहा था, अभी स्कूल की बच्चियां हैं, छोटी मासूम बच्चियां हैं, और 15 मिनट भी अगर बैतबाजी इस तरह से की जाए ना तो आसान नहीं होता कितने शेर लाना, इतने अशार पढ़ना। एक बच्ची ने अभी एक शेर पढ़ा था, अल्लामा इकबाल का गालिबन शेर था कि यकीन मोहकम अमल पैहम मोहब्बत फातेह आलम जिहादे जिंदगानी में है ये मर्दों की शमशीरें। ठीक है, आप एक चीज आपने गौर किया था उमेर भाई, जब ये आप बच्चों को लेकर आए थे स्टूडियो में, ये बच्चे आए थे तो उससे पहले आपने जब इन सब बच्चों को बुलाया और सब सुना तो कितने उम्दा अशार पढ़ रहे थे और कितना कॉन्फिडेंट से पढ़ रहे थे। हाँ, एक चीज ये थी कि बच्चे चूंकि पहली बार आए हैं, छोटी उम्र के बच्चे हैं, और स्टूडियो के माहौल में थोड़ा वो घबरा रहे थे, नर्वस हो रहे थे, तो तलफ्फुज खराब हो रहा था। अशार उम्दा सिलेक्शन पहले देखिए, अल्लामा इकबाल का, जिगर मुरादाबादी का, इस तरह गालिब के शेर पढ़ रही बच्चियां, ये छोटी बच्चियां, लेकिन और इतना याद इनको था,
1: याद रखना सबसे बड़ी चीज यही है कि
0: याद था, फौरन बोल रही थी, लेकिन ये चूंकि स्टूडियो के माहौल में घबरा रही थी, वो जो शेर अभी हमने पहले इनसे सुना था वो बहुत शानदार पढ़ रही थी, इतना जबरदस्त पढ़ रही थी, स्टूडियो के सामने थोड़ा फंबल हो रहा था, जबान के तलफ्फुज जो था वो थोड़ा कम हो रहा था,
1: बच्चियां भी हैं थोड़ा सा,
0: लेकिन हम इन चीजों को नजरअंदाज करते हैं, ये इंसानी फितरत है हम सब में। इन तीनों बच्चियां थी जो फातेह टीम की थी, टीम गालिब की, इन लोगों ने बनिस्बत मीर के थोड़ा बेहतर परफॉर्म किया, जैसा कि हमारे डॉक्टर साहब ने अभी अपना फैसला दिया कि फातेह टीम को 25 नंबर मिले और जो दूसरी टीम हमारी है टीम मीर उसको 20। तो आप समझ सकते हैं कि जरा सा फर्क है, लेकिन मैं इन बच्चियों को बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूं और इस उम्मीद के साथ कि ये एक बार फिर आएंगी और इससे जबरदस्त मुकाबला करेंगे, और मैं ये दुआ करता हूं कि ये बच्चियां आलमी सतह पर जाकर अपना परचम नसब करें वहां पर कि देखिए हम ये हैं और उर्दू जुबान की मुहाफिज है। तो उमेर भाई मेरे ख्याल से इससे ज्यादा मैं और क्या तासुरा दूं, बच्चियों के अशार बहुत अच्छे लगे, वो आगे अलग बात कि उन्होंने थोड़ा सा फंबल किया तो वो सबसे हो सकता है अगली बार और बेहतर प्रोग्राम होगा।
1: शम्सुल भाई, जो टाइमिंग थी बच्चों के जवाब देने की उसके बारे में क्या कहेंगे, क्योंकि हम देख रहे थे कि बहुत ज्यादा वक्फा बच्चे नहीं ले रहे थे और फौरन जवाब दे रहे थे, इसके बारे में आप क्या कहेंगे, कैसे लगी ये चीज?
0: उमेर भाई मैं यही बात कह रहा था कि बच्चों की बच्चियां थी, इनकी बर्जस्तगी, मतलब इधर मेरे मुंह से शेर निकला नहीं कि उन्होंने नून गुन्ना से जो हमारा नून का शेर है वो तुरंत फेंक के मार दिया, पेश कर दिया, ऐसा पेश किया, यही मुझे ज्यादा अच्छा लग रहा था।
1: शम्सुल भाई, आप अदबी ज़ौक रखते हैं और थोड़ा लिखते पढ़ते भी रहते हैं, इन बच्चों को इस्लाह के लिए क्या मशवरा देना चाहेंगे आप?
0: बिल्कुल, मैंने किसी बड़े का कॉल कहीं पर पढ़ा था और उन्होंने ये लिखा था कि जब भी कभी आपको कुछ लिखना हो, अपनी खुद की चीज तख्लीक आपको करना हो, या आपको कुछ कोई भी चीज, शायरी ही नहीं, आप नसर निगारी करते हैं तो उसमें भी, तो अगर आपको एक लाइन लिखना है तो कम से कम 500 लाइन का मुताला करें, तब आपको नए ख्यालात, दूसरे आपको पता कैसे चलेगा कि भाई ये शेर अगर मीर ने कहा है इश्क पे, उनका ये नजरिया है कि इश्क ऐसा है, तो अकबर इलाहाबादी ने कौन सा शेर इश्क के बारे में कहा है, भाई उमेर भाई ने कहा नजरिया इश्क के बारे में, डॉक्टर साहब का नजरिया क्या है, फिर जब इन चार लोगों के नजरिया हमने देखे और उस वक्त मेरे जहन में जो चीजें जाहिर हो रही है कि देखिये इश्क तो ये है, इसको ये कहा गया, अब जब हम लिखेंगे तो चार लोगों के नजरिए मेरे सामने होंगे और उसके बाद जब मैं लिखूंगा तो मेरा अपना नजरिया होगा, तब जाके हम बेहतर लिखेंगे। तो मैं एक मशवरा दूंगा इन बच्चों को कि कम से कम जब भी आप कोई भी लिखना चाहें या कुछ भी करना चाहें तो स्टडी फर्स्ट, सबसे पहले बड़े बड़े लोगों को अच्छे से पढ़ें, मुताला करें और फिर कहें और फिर प्रोग्राम में जाए, मजा यकीनन बहुत आएगा।
1: तो अब आखिर में दोनों टीमों को बहुत बहुत मुबारकबाद, जीती हुई टीम को भी और हारी हुई टीम की हम अभी, और जो दूसरे नंबर पर टीम रही है उसकी भी हम हौसला अफजाई करेंगे, जो हमारे एक्सपर्ट थे उन्होंने भी कमियां बताई उनकी और उनको मशवरा भी दिया कि वो आगे दुनिया में आगे जब वो कहीं बढ़े तो उनको कामयाबी हासिल हो। तो सामाइन, ये प्रोग्राम आपको कैसा लगा हमें अपनी राय से मुतला जरूर करें, आप हमें ईमेल के जरिए अपनी राय भेज सकते हैं, हमारी ईमेल आईडी है kklsurdu@gmail.com, आप हमें व्हाट्सएप के जरिए भी अपने तासुरात भेज सकते हैं, हमारा व्हाट्सएप नंबर है 7991778157। तो सामईन, आज का ये उर्दू प्रोग्राम यहीं पर इख्तिताम पजीर होता है, अपने मेज़बान मोहम्मद उमेर को दें इजाज़त, आदाब।
2: ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है, मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़ पर। थोड़ी देर में सुगम संगीत का कार्यक्रम होगा।

0: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
1: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
0: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
1: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
0: डायल कीजिए 8700014242।
1: नंबर एक बार फिर नोट करें 8700014242।
2: बेटा, ट्रेन रुकने तक यही इंतजार करना, चलती ट्रेन में चढ़ना उतरना बहुत खतरनाक होता है।
3: हाँ माँ, मुझे सब पता है, ट्रेन रुकने के बाद ही प्लेटफॉर्म साइड से उतरूंगा और रेलवे ट्रैक पर कभी नहीं जाऊंगा।
2: अरे वाह, मेरा बेटा तो बड़ा समझदार है। और ये कूड़ा कहाँ डालोगे?
3: डस्टबिन में। स्टेशन साफ रहेगा तभी तो सफर अच्छा लगेगा।
4: एक छोटी सी सावधानी जिंदगी भर की सुरक्षा। सुरक्षित रहें, स्वच्छता अपनाएं और दूसरों को भी जागरूक करें। स्वच्छ रेल परिसर, सुरक्षित रेल यात्रा, उत्तर मध्य रेलवे द्वारा जनहित में जारी।
5: प्रस्तुत है सुगम संगीत का कार्यक्रम। हमारे आज के कलाकार हैं सोनू निषाद। इनके स्वर में लीजिए सुनिए ये भक्ति रचना। रचना प्रताप बाला की है।

अभी आपने कैलाश गौतम की रचना सुनी सोनू निषाद के स्वर में। इसी के साथ आज का सुगम संगीत का ये कार्यक्रम अब समाप्त होता है। हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। थोड़ी देर में आप हमारे दिल्ली केंद्र से प्रसारित हिंदी में समाचार सुनेंगे।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं नवीन सक्सेना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह उज्बेकिस्तान और किर्गिज गणराज्य की 4 दिन की यात्रा पर रवाना हुए। श्री मोदी ने रवाना होने से पहले कहा कि उनकी उज्बेकिस्तान और किर्गिज गणराज्य की यात्रा के मध्य एशिया में भारत की रणनीतिक साझेदारियां मजबूत होंगी और इस क्षेत्र के साथ सभ्यतागत जुड़ाव और गहरा होगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि हाल के वर्षों में भारत उज्बेकिस्तान रणनीतिक साझेदारी में महत्वपूर्ण प्रगति हुई है। उन्होंने कहा कि वो उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति शफकत मिर्जियोयेव के साथ व्यापार और निवेश, डिजिटल संपर्क, रक्षा तथा ऊर्जा के क्षेत्र में सहयोग को और मजबूत करने के साथ साथ विकसित भारत और यांगुनविस्तान के साझा दृष्टिकोण को आगे बढ़ाने पर चर्चा करेंगे। श्री मोदी ने कहा कि वो ताशकंद स्टेट यूनिवर्सिटी ऑफ ओरिएंटल स्टडीज में शास्त्री स्मारक और महात्मा गांधी केंद्र का भी दौरा करेंगे। उन्होंने कहा कि ये केंद्र दोनों देशों के बीच मजबूत सांस्कृतिक संबंधों का प्रतीक है। और ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: इस यात्रा के दौरान दोनों नेता ताशकंद में द्विपक्षीय महत्व के सभी मुद्दों पर चर्चा करेंगे। भारत उज्बेकिस्तान के शीर्ष 10 व्यापारिक साझेदारों में से एक है, जिनके बीच द्विपक्षीय व्यापार लगभग $1 अरब का है। पिछले कुछ वर्षों में दोनों देशों के बीच कारोबार तेजी से बढ़ा है। चिकित्सा, खनन और रक्षा कुछ ऐसे महत्वपूर्ण क्षेत्र हैं जिनमें सहयोग की अपार संभावनाएं हैं। रक्षा क्षेत्र में भारत और उज्बेकिस्तान के बीच व्यापक सहयोग की शुरुआत हो चुकी है। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, ताशकंद, उज्बेकिस्तान।
0: उज्बेकिस्तान में भारत की राजदूत स्मिता पंत ने आकाशवाणी समाचार से विशेष बातचीत में कहा कि दोनों देशों के बीच संबंध तेजी से मजबूत हो रहे हैं और प्रधानमंत्री के दौरे के समय सभी क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर चर्चा होगी। नेपाल और तिब्बत में विनाशकारी बाढ़ से मृतकों की संख्या बढ़कर 579 हो गई है, जबकि 101 घायल लोगों का अस्पताल में उपचार चल रहा है। 1924 लोग लापता हैं। लापता लोगों में पनबिजली परियोजना से जुड़े लोग, विदेशी नागरिक, आम नागरिक और सुरक्षा तथा सरकारी कर्मी शामिल हैं। इस बीच भारत ने बाढ़ प्रभावित नेपाल को मानवीय सहायता तेज कर दी है। मानवीय सहायता सामग्री के साथ 3रा विमान कल शाम काठमांडू पहुंचा। सहायता सामग्री में पोर्टेबल जनरेटर, खाद्य सामग्री और जल शोधन की गोलियां शामिल हैं। भारत ने अमेरिका के साथ जेवलिन टैंकरोधी मिसाइल प्रणाली की खरीद के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। दोनों देश भारत में इसके संयुक्त उत्पादन की दिशा में काम कर रहे हैं। भारत में अमरीकी दूतावास और वाणिज्य दूतावास ने कहा है कि भारतीय सेना ने जेवलिन मिसाइल की खरीद के लिए प्रस्ताव और स्वीकृति पत्र पर हस्ताक्षर किए। भारत में अमेरिका के राजदूत सर्जियो गोर ने कहा कि यह समझौता भारतीय सेना के लिए अमेरिकी समर्थन दर्शाता है। सरकार ने चीनी की समयबद्ध उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए मौजूदा मासिक कोटा प्रणाली के स्थान पर अगले महीने से पखवाड़े के आधार पर चीनी आवंटन प्रणाली शुरू करने का निर्णय लिया है। इसके अंतर्गत चीनी मिलों को पहले सप्ताह में कम से कम 40% आवंटन और शेष मात्रा अगले सप्ताह में बेचनी होगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन 6 दिन की अमरीका यात्रा पर हैं, जहां वो G20 वित्त मंत्रियों की बैठक में भाग लेंगी और निवेश के अवसरों पर मुख्य कार्यकारी अधिकारियों और व्यापारिक नेताओं के साथ बातचीत करेंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सुबह 11 बजे आकाशवाणी के मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों से अपने विचार साझा करेंगे। ये मासिक रेडियो कार्यक्रम की 137वीं कड़ी होगी। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन आज तमिलनाडु, कर्नाटक, केरलम और लक्षद्वीप के 3 दिन के दौरे पर जाएंगे। इस दौरान वो शिक्षा, सार्वजनिक सेवा, सांस्कृतिक विरासत, उद्योग, अकादमिक सहयोग, मछली पालन को बढ़ावा देने से संबंधित कार्यक्रमों के अलावा कुछ प्रमुख सार्वजनिक समारोहों में भी हिस्सा लेंगे। उपराष्ट्रपति ने राष्ट्रीय खेल दिवस पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। श्री राधाकृष्णन ने भारतीय हॉकी के दिग्गज खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा कि दृढ़ संकल्प, अनुशासन और उत्कृष्टता की भावना भारत की खेल संस्कृति की पहचान है। उन्होंने कहा कि देश की बढ़ती खेल व्यवस्था हर स्तर पर प्रतिभागियों के पोषण की प्रतिबद्धता को दर्शाती है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलो हर्ट्ज और FM 100.3 मेगा हर्ट्ज पर आप आकाशवाणी प्रयागराज के कार्यक्रम न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी सुन सकते हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम लोक माधुरी। इस कार्यक्रम में हमारी आज की कलाकार हैं सपना पाल और साथी। शुरुआत में इनके स्वर में लीजिए सुनिए ये देवी गीत।

आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम लोक माधुरी और हमारे आज के कलाकार हैं सपना पाल और साथी। इनके स्वर में लीजिए, आप सुनिए ये गंगा गीत।

अभी आपने सपना पाल और साथियों के स्वर में ये विकास गीत सुना। हमारे अगले कलाकार हैं राजकुमार, इनके स्वर में लीजिए सुनिए ये पचरा।

अभी आपने डॉक्टर राजकुमार के स्वर में ये लचारी सुनी। इसी के साथ आज का लोक माधुरी कार्यक्रम अब समाप्त होता है। ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है, मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलो हर्ट्ज और FM 100.3 मेगा हर्ट्ज पर। प्रस्तुत है कार्यक्रम हमारे संग्रहालय से। इसमें आज हम आपको सुनवा रहे हैं क्या भूलें क्या याद करें श्रृंखला के अंतर्गत प्रसिद्ध साहित्यकार सचिदानंद हीरानंद।

0: वत्स्यायन आज्ञे से भेंटवार्ता भेंट करता है राम स्वरूप चतुर्वेदी।
1: मैं राम स्वरूप चतुर्वेदी आपको प्रणाम कर रहा हूँ और ये मान रहा हूँ कि एक बड़ा सुखद संयोग है कि आपके प्रिय नगर में कुछ आपसे चर्चा का अवसर मिल रहा है। हालांकि ये भी मैं कहना चाहूँगा कि कुछ थोड़ा संकोच है मुझे इस सारी चर्चा को इस रूप में प्रस्तावित करते हुए। उसका मुख्य कारण यह है कि एक तो प्रगल्भता आड़े आती है, कुछ बातें पूछना है आपके पाठक के नाते। मुझे माना जाता है कि मैंने आपकी समीक्षा लिखी है, इस नाते तो लगता है कि शायद वैसी प्रगल्भता बहुत अपेक्षित या उचित न हो। एक दूसरी कठिनाई ये भी मन में है, बराबर रही है, कि किसी रचनाकार से उसकी रचना प्रक्रिया के संबंध में इस तरह के प्रश्न करना कहीं उसे परेशान करना है, कुछ उसे संकोच में संभ्रम में डालना है, तो ये मेरी अपनी निजी कठिनाइयाँ हैं। लेकिन इन कठिनाइयों के बावजूद मैं कुछ आपसे प्रश्न रखूंगा, कुछ उसके निमित्त से कुछ आपकी बात जानना चाहूँगा। इस शहर से आपका काफ़ी लगाव रहा है, कर्मभूमि भी आपकी रही है, यहाँ आप निवासी या प्रवासी के रूप में रहे हैं, इस नगर का एक साहित्यिक चरित्र भी अपना रहा है छायावाद काल से या कुछ उसके पहले से लेकर और अब तक, तो उसके बारे में कुछ आपके भाव, कुछ प्रतिक्रियाएँ, कुछ संस्मरण अगर हम सुने तो मैं समझता हूँ शायद सबके लिए बड़ा प्रीतिकर होगा।
2: पहले तो आपको और इस नगर को नमस्कार करता हूँ। ये नगर मेरा प्रिय रहा है, ये बात तो सही है। कभी कभी ये भी सोचता हूँ कि ये नगर मेरा ज़्यादा प्रिय था और मैं इस नगर का कम प्रिय रहा। नहीं तो जब यहाँ आया था तब इसी आशा से आया था कि रहना इस यायावर का भी इलाहाबाद में रहना संभव हो जाएगा, वो नहीं हुआ। खैर ये नहीं है कि उसका कारण सिर्फ इलाहाबाद के मेरे प्रति प्रेम की कमी थी, और भी कारण रहे होंगे, लेकिन अब आप पुरानी बातें याद दिला रहे हैं तो उनमें एक बात ये भी है कि उसका कुछ एक क्लेश भी मन में रहा। फिर भी आता जाता रहता हूँ यहाँ, आना यहाँ अपने परिचितों से मिलना अच्छा लगता है और उनकी याद करना भी अच्छा लगता है जो अब यह नहीं है। और इलाहाबाद से अपने संबंध के बारे में मैं क्या कहूँ, मैं नहीं सोच पाता हूँ उसके बारे में, तो शायद दूसरे ही लोग ज़्यादा कहते हैं और शायद वही ठीक भी है।
1: इस सिलसिले में हम ये भी जानना चाहेंगे कि जहाँ तक हिंदी का संबंध है, अपने से पहले के किस कवि को आपने अपना करके माना? यूँ तो पूरी कवियों की परंपरा आपके सामने थी, लेकिन ज़रूर कहीं ना कहीं आपको कुछ अधिक आत्मीयता महसूस हुई होगी, तो उस कवि या उसके रचना कर्म के बारे में भी थोड़ा आपसे जानना चाहेंगे।
2: रामस्वरूप जी, आपका ये प्रश्न जो है ये अनुचित तो नहीं है, अस्वाभाविक भी नहीं है, लेकिन खतरनाक जरूर है।
1: हो सकता है,
2: क्योंकि एक बात यह है और मैं समझता हूँ कि ये बात जरूरी तौर पर कहनी चाहिए, वो ये कि अपने प्रिय कवि और अपनी दृष्टि में महत्वपूर्ण कवि अलग अलग भी हो सकते हैं। और जब आप ये पूछते हैं कि कौन अधिक अपना रहा, तो अगर इस बात को ध्यान में न रखा जाए तो फिर उस कवि के प्रति भी और दूसरों के प्रति भी अन्याय हो सकता है। अब उदाहरण के लिए जिन मुझसे तुरंत पहले के जिन बड़े कवियों के नाम लिए जाते हैं, उनमें से कुछ मेरे प्रिय रहे, कुछ दूसरे मेरे कम प्रिय रहे, लेकिन उनको विश्वविद्यालयों में बहुत अधिक महत्व दिया जाता है। और अगर महत्व दिया जाता है तो कोई ना कोई कारण भी उसके होंगे ही, तो ये जो एक अंतर बना रहता है इसकी ओर ध्यान जरूर रहना चाहिए। इसके बाद कहूँ कि मेरे प्रिय कवियों में पंत और निराला और महादेवी तीनों रहे। अब आप कहेंगे कि प्रसाद का नाम क्यों छूट गया, मैंने कहा कि वो उस समय के महत्वपूर्ण कवियों में हैं, लेकिन मेरा उनके साथ अपनापे का संबंध नहीं बना, सो नहीं बना। मैथिली शरण गुप्त भी मेरे प्रिय कवि रहे और सीखा मैंने सबसे अधिक उनसे, क्योंकि जब सीखना शुरू किया तब वही बड़े कवि थे, तो मैंने बराबर अपने को उनका ऋणी माना है, अब भी मानता हूँ, इसके बावजूद कि बहुत से लोगों को इस बात से आश्चर्य होता है।

0: कि कैसे दो इतने अलग अलग स्वभाव के कवि लगातार वर्षों तक इस तरह का स्नेह संबंध बनाए रख सकते थे। स्नेह संबंध भी और ये एक तरह का गुरु शिष्य संबंध भी, जिसको शिष्य ज्यादा महत्व देता था, गुरु कम महत्व देता था।
1: ये जो गुप्त जी के संबंध में आपने उल्लेख किया, तो ये एक प्रकार से परंपरा और आधुनिकता का एक रूप में संबंध नहीं बनता क्या? ये जिसकी चर्चा बार बार होती है कि एक परंपरा चली आ रही है और जो आधुनिक चिंतन है या जो आधुनिक रचनाकर्मी है वो अपने को उससे जोड़ता है, तो क्या ये मैथिली शरण गुप्त और अज्ञेय का संबंध एक प्रतीकात्मक रूप में परंपरा और आधुनिकता, या कहिए परंपरा और एक विशिष्ट व्यक्तित्व का जोड़ जिसकी ओर आधुनिक काल में बहुत संकेत किया गया, उसका ये अकारण या अनायास ही उदाहरण नहीं बन जाता?
0: ये बात एक एक एक तरह से या एक हद तक सही हो सकती है अगर आप आधुनिक का रूढ़ अर्थ न लें। इस समय तो आधुनिकता का एक रूढ़ अर्थ हो गया है, बल्कि परंपरा का भी हो गया है। अगर जो परंपरा रही और जो नया है या कि नए का उपक्रम है, उनके संबंध की बात आप कहें तो ये ठीक भी है, और वास्तव में यही हुआ भी। यूँ अगर गुप्त जी और मेरे विषय में ऐसी बात कही जाती है तो फिर एक प्रश्न बना रहता है कि हम दोनों के बीच में तो छायावाद का पूरा युग भी था, तो क्या उसकी उपेक्षा इसमें हो जाती है? उपेक्षा अगर हम प्रश्न को उतने ही तक रखें जितना आपने पूछा है, तब तो हो जाती है और नहीं होनी चाहिए। उस बीच की कड़ी को ध्यान में रखते हुए अगर कहें कि यह परंपरा के प्रति या परंपरा के साथ नए का जुड़ने का भी और उससे अलग होने का भी उपक्रम था, तब तो ये बात सही है। लेकिन उस बीच की कड़ी का महत्व है जिसको भी अनदेखा नहीं करना चाहिए।
1: आपके कृतित्व के संबंध में कई बार ये चर्चा उठती है कि वो पाश्चात्य संपर्क से बहुत घिरा है, बार बार इतनी बार कि ऊब जाएं लोग, इतनी चर्चा होती है। मैंने एक पाठक के नाते, खासतौर से मैं यहाँ संदर्भ ले रहा हूँ उपन्यासों का आपका, ये अनुभव किया है कि ये दोनों तरह की धाराएं कहीं आपके मन में टकराती रही हैं। उदाहरण के लिए मुझे याद आता है कि शेखर के जो बड़े कोमल, बड़े सुकुमार प्रसंग हैं, प्रणय प्रसंगों के कुछ चित्र, उनका वातावरण आपने वैदिक मंत्रों या उससे उसके निकट की रचनाओं के बीच में निर्मित किया है, और वो एक अपने में एक अद्वितीय अनुभव है उस प्रसंग को पढ़ना। फिर शेखर के बाद जब हम नदी के द्वीप में आते हैं तो एक उसी तरह का समानांतर प्रसंग मिलता है, भुवन और रेखा का। वहाँ आपने कुछ वातावरण के निर्माण के लिए बाइबल के सॉन्ग ऑफ सॉन्ग्स का सहारा लिया है। तो क्या ये ऐसा नहीं लगता कि कोई अकारण है या संयोग है, या कि कुछ पाश्चात्य प्रभाव कुछ बढ़ा है और उसकी तुलना में भारतीयता की जो मनोभूमि है वो भी कुछ अधिक उत्कट होती गई है? क्या ये एक संघर्ष आपके रचनाकार मन में बराबर चलता रहा है इस रूप में?
0: देखिए, रचनाकार के मन में इस तरह का संघर्ष चलता रहा है और वो आज के हर रचनाकार के मन में चल रहा है। इसकी भी चर्चा शायद होनी चाहिए, लेकिन जिस संदर्भ में आप ये प्रश्न उठा रहे हैं उससे मेरा ख्याल है कि प्रश्न विकृत हो जाता है। उपन्यासों के बारे में आप ये सवाल पूछते हैं तो पहले ये क्यों नहीं पूछते कि उपन्यासों में जो या कि जैसे चरित्र प्रस्तुत किए गए हैं वो किस परिवेश के हैं और उनके साथ क्या चीज़ स्वाभाविक होती? शेखर एक पंडित का बेटा है, उसके सामने अगर एक तरह की बातें आती हैं तो स्वाभाविक है कि वैसी बातें आएं, और लेखक अगर पश्चिम का भी लेखक होता तो भी उसको ये बात ध्यान में रखनी पड़ती कि अगर संस्कृत के पंडित का बेटा है तो उसके सोचने का एक तरह का ढंग होगा, लेखक के आग्रहों या कि संस्कारों के बावजूद। दूसरी तरफ नदी के द्वीप के जो पात्र हैं वो उस संस्कृति में डूबे हुए हैं जिसमें कि आजकल के अधिकतर पढ़े लिखे लोग डूबे हुए हैं, और उनको हर चीज़ के लिए, अपने सबसे अंतरंग अनुभवों के लिए भी पश्चिमी साहित्य से संदर्भ या तो खोजते हैं वो लोग या उनको सहज ही वहाँ से मिलते हैं, क्योंकि सारे उनके संस्कार उसी साहित्य के रहे। तो इसलिए ये प्रश्न पहले तो अगर

0: संन्यासों के बारे में है, तो पहले तो ये प्रश्न पूछना चाहिए कि क्या जैसे चरित्र प्रस्तुत किए गए हैं उनके साथ वही होना संगत और उचित और स्वाभाविक था कि नहीं था, और फिर उससे उसके बाद या कि अलग से भी ये प्रश्न उठाया जाता है जा सकता है कि लेखक में क्या परिवर्तन हुए थे या कि उसके भीतर कैसा संघर्ष है।
1: इसको हम थोड़ा आगे भी इस प्रश्न पर विचार करेंगे, क्योंकि ये एक प्रकार से तात्विक प्रश्न है आज के रचनाकार के संदर्भ में और पाठक के संदर्भ में भी। यहाँ एक और बुनियादी सवाल हमारे सामने आता है, वो ये कि आपने भी कई जगह अपनी रचनाओं में अपने विचारों में इस बात को प्रकट किया है कि स्वचेतनता, सेल्फ कॉन्शियसनेस आधुनिकता का एक मुख्य लक्षण है। आधुनिक मनुष्य का ये चरित्र बन गया है कि उसके अंदर की स्वचेतनता उत्तरोत्तर बढ़ती गई है, विज्ञान के कारण, मनोविश्लेषण की जानकारी के कारण आदि आदि। लेकिन ये जो स्वचेतना है, ये क्या कहीं रचनाकार के लिए आड़े नहीं आती? क्योंकि हम लोग सामान्यतः ये मानते रहे हैं, अब भी मानते हैं किसी रूप में, कि रचनाकार की कला स्वतः स्फूर्त होती है। तो ये जो स्वतः स्फूर्त कला की भावना है और ये स्वचेतनता की भावना है, क्या एक दूसरे से कहीं टकराती नहीं? क्या कलाकार की रचना प्रक्रिया में कहीं बाधा नहीं देती? आपने इस स्वचेतना के तत्व को कैसे किस रूप में लिया, कैसे एक प्रकार से इसे प्रशमित करने का उपक्रम किया?
0: देखिए, मैंने इस स्वचेतनता की बात जहाँ की है तो ऐसा नहीं, और उसको आधुनिकता का लक्षण माना है तो ऐसा नहीं है कि उसके प्रति कोई प्रशंसा का भाव मेरे मन में रहा है। ये एक लक्षण है, वो अच्छा लगे या बुरा लगे लक्षण है, वो तथ्य की बात हो जाती है। और दूसरे, आप जो ये प्रश्न पूछ रहे हैं कि हम ऐसा मानते आए हैं कि कला स्वतः स्फूर्त होनी चाहिए, मानते आए हैं, मैं आप भी ये कहने से बच गए हैं कि आज भी मानते हैं। अगर आप ये कहते कि आज भी मानते हैं, तब तो एक सीधे सीधे विरोध की स्थिति बनती, नहीं तो आप इतना ही कह रहे हैं कि एक पारंपरिक दृष्टि थी जिसको कि ये आधुनिक परिस्थिति चुनौती देती है। अगर ये प्रश्न है तो निश्चय ही वो चुनौती वहाँ पर है, और जो सभी साहित्यकारों के भीतर जो तनाव लक्षित होता है उसका एक कारण ये भी है कि वो आज लिखते हैं तो उनका आधुनिक होना चाहना स्वाभाविक है, दूसरी तरफ उनका संस्कार यह है कि कुछ चीज़ें स्वतः स्फूर्त होती हैं और आज की परिस्थिति उन्हें बाध्य करती है कि उस प्रक्रिया के बारे में भी वो चेतन होकर विचार करें। तो ये, इसको अगर आप संकट कहें तो ये संकट तो है।
1: तो भाव तुम्हारा ये था कि कोई आप उदाहरण देकर, अगर कोई संभव हो तो कोई व्यावहारिक उदाहरण देकर ये सोच सकते हैं, बता सकते हैं कि कैसे आपने किसी अपनी कविता में या किसी अन्य रचना में इस समस्या का समाधान किया?
0: ये तो कुछ कठिन प्रश्न है, मैं नहीं जानता कि इसका क्या उत्तर मुझे मैं दे सकता हूँ या कि देना भी चाहिए। यूँ, जैसा मैंने कहा, सिद्धांततः तो ये बात है कि मैं ऐसा समझता हूँ कि आज के लेखक, आज का साहित्यकार और सारे संसार में ही आज का साहित्यकार, आज का पूरा साहित्य पहले की अपेक्षा अधिक स्वचेतन है। एक कारण ये भी है कि, और ये कारण शायद हमारे देश में कुछ अधिक है, कि जहाँ एक तरफ हम कला को स्वतः स्फूर्त मानते हैं, वहाँ ये भी मानते हैं कि जो उस पूरे समाज का संस्कार होता है वो भी उसमें प्रकट होता है। आज हम इसके लिए भी बाध्य हैं कि वो जो संस्कार है उसकी भी जांच करें, यानी जो कि सहज संस्कार होता उसको भी चेतन रूप से या तो स्वीकार करें या उसका खंडन करें। तो ये सचेतना वहाँ भी बढ़ गई है, और हमारे लिए उससे एक अतिरिक्त संकट ये पैदा होता है कि हम लगातार एक दूसरी संस्कृति से आक्रांत हैं। वह संस्कृतियों में आपस के संबंधों में किसी को ऊंचा या किसी को नीचा तो नहीं मानना चाहिए, लेकिन जो स्थिति है उसमें एक संस्कृति इसलिए अधिक शक्तिशाली है कि उसके पीछे आर्थिक शक्ति भी है और राजसत्ता भी उसके पीछे है। वो प्रबल है तो जरूरी नहीं है कि किसी आत्यंतिक महत्व के या कि किसी अधिक विशद दृष्टि के कारण इतनी प्रभावशाली हो, इसलिए प्रभावशाली है कि वो समृद्ध संस्कृति है। और

0: हम अभी तक ये मानते हैं कि भारत की प्राचीन संस्कृति में बहुत कुछ था जो कि महत्वपूर्ण था और जिसे मानना चाहते हैं कि आज भी महत्वपूर्ण रहे, और पश्चिम की तुलना में भी उसको हम छोटा नहीं मानते या नहीं मानना चाहते। इसके बावजूद, क्योंकि बाहर से आने वाली संस्कृति दूसरे कारणों से समृद्धतर और बलशाली है, इसलिए उसके सामने हम हमेशा एक आत्मरक्षात्मक भंगिमा अपनाते हैं। ये किसी को अच्छी न लगे, ये स्वाभाविक है। लगातार साहित्यकार ऐसा सोचता रहे कि मैं, एक तरफ तो ये मानना चाहे कि मैं कुछ सर्जन कर रहा हूँ, और दूसरी तरफ लगातार उसके मन में ये भाव रहे कि वास्तव में मैं सर्जन नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि सर्जन में तो आक्रमण या कि प्रतिरक्षा के भाव से मुक्त हो जाना चाहिए। इसलिए अगर वो वैसे मुक्त नहीं है और ये सोचने को बाध्य है कि मैं किसी चीज़ की रक्षा करने को भी बाध्य हूँ, तो वो सर्जन के लिए एक बहुत बड़ी बाधा ये बनी रहती है, और वो है।
1: भाषा की रचना प्रक्रिया में जो स्थिति है उसके प्रति आप आरंभ से ही बहुत अधिक सतर्क और सजग रहे हैं, और उससे हम लोगों ने सबने बहुत कुछ सीखा है और जाना है। आज जो स्थिति है रचना में भाषा की, उसको जब हम देखते हैं तो लगता है कि भाषा के दो सीमांत बन गए हैं इस समकालीन संसार में। प्रतीकात्मक रूप में हम कह सकते हैं कि एक क्षेत्र है संगीत का क्षेत्र, लय का क्षेत्र, विश्रांति का क्षेत्र, और एक दूसरा सीमांत है जहाँ हम कह सकते हैं शोर है, भीड़ है, शोर शराबा, ये दो स्थितियाँ दिखाई देती हैं। जाहिर है कि कविता इन दोनों क्षेत्रों को जोड़ने वाली है। संगीत का क्षेत्र जहाँ केवल स्वरों का आरोह अवरोह है, लय है, विश्रांति है उसे, और दूसरी ओर जिसे हम बाहर का संसार कह सकते हैं एक स्थूल रूप में, यहाँ शोर शराबा भीड़ आक्रमण प्रत्याक्रमण सुरक्षा जिसका आपने कुछ संकेत किया वो लोग है। तो ये संगीत और शोर, इन दोनों को जोड़ने में, इन दोनों के लोगों को मिलाने में जो कविता की भूमिका है, इसको आपने अपने ढंग से कैसे लिया? जानते हैं हम, पढ़ा है हमने उसे, लेकिन आपने उसे सजग भाव से किस रूप में लिया है इसके बारे में कुछ बताएं तो अच्छा होगा।
0: रामस्वरूप जी, ये जो दो सीमांत आपने बताए, ये असल में भाषा के सीमांत नहीं हैं, ये कविता के सीमांत हैं। भाषा के सीमांत तो शायद एक तरफ बोली या कि जनभाषा है, और दूसरी तरफ एक ऐसी काल्पनिक या कि संकर भाषा है, जिसको कि हम खड़ी बोली भी नहीं कह सकते, हिंदी भी नहीं कह सकते, जो कि अंग्रेजी में सोचने और अंग्रेजी में संस्कार पाए हुए लोगों की एक भारतीय जामा पहनने का प्रयत्न करने वाली भाषा है। असल में तो ये दो सीमांत हैं, या कह लीजिए कि एक तरफ एक अंग्रेजी और एक जनभाषा, एक जो सहज संवेगों से और दैनंदिन जीवन से जुड़ी हुई बोली है, और दूसरी तरफ वो भाषा जिसमें कि सारी हमारी सोचने समझने की या कि न समझने की भी दीक्षा आज होती है। भाषा के तो सीमांत ये हैं, और इनका भी अपना बहुत महत्व है। कविता में ज़रूर ये प्रश्न एक जीवित प्रश्न है कि एक छोर पर संगीत है, जिसका कि काव्य की दृष्टि से रूपांतर करते हुए मैं कहूँ कि लय है, या कि उससे और एक कदम, एक खतरनाक कदम आगे बढ़कर कहूँ कि मौन है, और दूसरी ओर जैसा आपने सही कहा, दूसरा सीमांत शोर है, जिसका रूपांतर करके या कि आधुनिक संदर्भ, आज के हिंदी के संदर्भ से उसको जोड़ते हुए कह सकता हूँ कि दूसरा छोर, दूसरा सीमांत ये वक्तव्यवाद है। ये दो छोर हैं, एक तरफ लय और लय का सबसे महत्वपूर्ण अंग विश्राम या कि मौन, और दूसरी ओर वक्तव्य या कि बड़बोलापन या कि शोर। अगर ये समीकरण ठीक है तो मैं समझता हूँ कि बहुत दूर तक इस बात का संकेत भी मिल जाता है कि कहाँ पर हम इससे पैदा होने वाले विरोध का हल कर सकते हैं। मैं अब भी मौन को, विश्रांति को, शब्द की विश्रांति को, और स्वर को, और स्वर मैं जो कह रहा हूँ तो ये संगीत के सुर से अलग जो बोले हुए शब्द का स्वर है या कि बलाघात है, उस पर जोर दे रहा हूँ।

0: मैं समझता हूँ कि जो परिवर्तन हुआ है कविता में, पहले के बंधे हुए छंद से, मातृ की आगे बढ़ने के आधार पर बांधे गए छंद से आज की कविता तक, उसकी सबसे महत्व की बात यही है कि अब हम मात्राएं या कि वर्ण न गिनकर हमारा सारा ध्यान बलाघात की ओर होता है, स्वर पर होता है, और स्वर बोलचाल का स्वर, संगीत का स्वर नहीं। यद्यपि दोनों का एक संबंध है, तो लय का बोध आज हम उससे पैदा करते हैं और उसी की सीमा में विश्रांति का या मौन का अधिक से अधिक उपयोग करते हैं, सार्थक उपयोग करते हैं। उसी के सहारे शोर से और वक्तव्य से बच भी सकते हैं। मैं समझता हूँ कि अगर लय के बारे में हमारी पहचान जाग जाती है तो फिर दूसरी तरफ से संकट नहीं रहता, अपने आप हम उससे उबर जाते हैं। वक्तव्य की प्रवृत्ति से या बहुत बोलने की प्रवृत्ति से खतरा तभी तक रहता है जब तक कि हम शब्द की वास्तविक शक्ति को नहीं पहचानते, यानी स्वर के महत्व को नहीं पहचानते, जो कि लय का आधार है। और आज लिखी जाती बहुत सी कविता, बल्कि अधिकतर कविता ऐसी है जिसमें कि वक्तव्य प्रधान है और जिसमें लय नहीं है, क्योंकि वास्तव में उन कवियों को शब्द की सबसे बड़ी शक्ति का ज्ञान नहीं है।
1: एक दूसरे संदर्भ में कुछ थोड़ा और कलाकार के रचनात्मक व्यक्तित्व को ध्यान में रखते हुए मैं बात उठाना चाहूँगा कि आपके आरंभिक कृतित्व से और आज तक ऐसा लगता है जैसे एक बड़ी बेचैनी है आपके रचनाकार व्यक्तित्व में, कुछ वैसी बेचैनी जो निराला की याद दिलाती है हमें। निराला जैसे कभी एक तरह के मुहावरे से संतुष्ट नहीं होते, एक तरह की शब्दावली से प्रसन्न नहीं रहते, काम करते हैं एक तरह से फिर आगे बढ़ जाते हैं छोड़ देते हैं। ऐसी बेचैनी जो शायद आपके व्यक्तिगत जीवन में भी है, तरह तरह के व्यवसाय, तरह तरह की वृत्तियां आपने ली छोड़ दी, एक यायावरी जीवन, और उसी तरह की एक बेचैनी आपके रचनात्मक जीवन में। कभी कभी लगता है जैसे बदलाव के लिए एक उत्कट चेष्टा है, आप असंतुष्ट हैं सारी प्रक्रिया से जो आपने स्वयं निर्मित की है, कुछ देर बाद आपको लगता है कि ये इससे अब काम चलने वाला नहीं है। तो ये जो बेचैनी है, जाहिर है जैसा मैंने निराला का संदर्भ दिया कि वो कवि की एक प्रकार से तलाश है अपने ही लिए, अपने को ढूंढने की तलाश। तो आपने कैसे इस रचनात्मक तलाश को जारी रखा, अनेक संदर्भों में किस रूप में से रखा, और क्या ये नहीं आपने कभी कभी अनुभव किया कि अगर ये बेचैनी है और इस बेचैनी का आनंद अपने में है, क्योंकि आप बेचैन रहते हैं, रचनाकार को भी ये अनुभव है कि वो बेचैन है और उसके पाठक को भी ये अनुभव है। आज वो आनंद वाली बात उतनी नहीं है, रस वाली उतनी बात नहीं है जितनी कि उस बेचैनी की बात है। तो आपने अपने ढंग से ये अनुभव किया होगा कि अगर हम एक भाव भूमि पर नहीं है बहुत समय तक, तो क्या इससे भी रचना करने कहीं बाधा नहीं पड़ती? ये भी एक तरह का आंतरिक तनाव है, इसको आपने कैसे प्रशमित किया है?
0: नहीं, मैं तो नहीं समझता कि उससे बाधा पड़ती है या पड़नी चाहिए। मैं एक दूसरे बिंदु से आरंभ करना चाहूँगा। मैं ये समझता हूँ कि सर्जना शक्ति का, सर्जनात्मक प्रतिभा का एक सहज गुण है, जिसको वही चीज़ जिसको आप बेचैनी कह रहे हैं। वेद में सृष्टा के लिए जो बात कही गई है कि अपने ताप से तपता हुआ वो लगातार रूप रच रच कर बाहर निकाल कर फेंकता गया, ये भी एक बेचैनी बेचैनी का ताप है। तो लगातार नए रूपाकार रच कर फेंकते जाना, चाहे वो रचे जाने के कारण ही उसके लिए अपना महत्व खो दें, ये तो रचनात्मक प्रतिभा का एक स्वाभाविक, एक सहज धर्म है। और अगर बेचैनी ये रूप लेती है तो उस पर हमें आश्चर्य नहीं करना चाहिए, मानना चाहिए कि ये रचने की ही बेचैनी है। अब वो बेचैनी स्वयं, वो बेचैनी भी कई तरह के रूप ले सकती है। एक तो ये है ही कि आप अगर कवि हैं तो कविता में ही नए नए छंद रचते चलिए, नई नई तरह के छंद या नए भाव, नई तरह की, लेकिन कविता के चौकटे के भीतर ही सृष्टि करते चलिए। दूसरी अभिव्यक्ति उसकी ये हो सकती है, उस ऊर्जा का उपयोग ये हो सकता है कि आप आज कविता रच रहे हैं, कल उपन्यास रच रहे हैं, परसों कुछ नाटक लिख रहे हैं, चौथे दिन गा रहे हैं।

0: इत्यादि, या फिर आप साहित्य के क्षेत्र से बाहर जाकर एक दिन कविता या उपन्यास या कुछ भी लिख रहे हैं, दूसरे दिन चित्र बना रहे हैं, तीसरे दिन मिट्टी के बर्तन बना रहे हैं। अभी तक ये सारी संभावनाएं एक न एक कला के क्षेत्र की हैं, लेकिन ये भी हो सकता है कि आपको कला भी, वह क्षेत्र भी उसके लिए नाकाफी लगे। आप नया कुछ बनाना चाहें तो किसी दूसरे क्षेत्र में भी बनाना चाहें, आज एक काम कर रहे हैं तो कल उसको छोड़कर किसी दूसरे काम की शिक्षा लेकर कोई दूसरा काम कर रहे हैं, तो ये भी हो सकता है। मैं शायद इसमें सभी तरह की कोशिशों का थोड़ा बहुत दोषी रहा हूँ। मानना चाहता हूँ कि वो बेचैनी सब जगह विफलता की बेचैनी नहीं है, बेचैनी है, और उसकी एक प्रेरणा यही है कि कुछ बनाऊँ, कुछ रचूँ, या कि जो बनाया उसको बदल के फिर रचूँ, और जब लगे कि जो ये चीज़ बन गई है या कि लगभग बन गई है, तब अगर ऐसा होता है कि तब उसमें मेरी और अधिक दिलचस्पी नहीं रहती, क्योंकि ये लगता है कि अब यहाँ बनाने को कुछ नहीं है, अब कुछ और कहीं दूसरी चीज़ बनाए, तो मैं तो उसको उसी ऊर्जा की एक सहज अभिव्यक्ति या कि उसके लिए एक सहज दिशा मानता हूँ। ऐसा अपने जीवन में भी मानना चाहता हूँ, ऐसा अपनी रचना में भी मानता रहा हूँ। अब ये कहाँ तक सिर्फ जो हुआ है उसकी सफाई देने के लिए एक तर्क अपना रहा हूँ, इसका जवाब तो देना मेरा काम नहीं है।
1: आप अभी कई कला माध्यमों की बात कह रहे थे, तो इस सिलसिले में एक बात ये आती है मन में कि उपन्यासकार के रूप में पाठकों के आप बहुत प्रिय हैं और कवि के रूप में भी प्रिय हैं। आपने अपने ढंग से कवि और उपन्यासकार, इन दो पक्षों का रिश्ता अपने व्यक्तित्व में कैसे रखा है? क्या आप अनुभव करते हैं कि एक पक्ष से दूसरे पक्ष को कुछ समृद्धि मिली है, और मिली है तो किस रूप में मिली है? थोड़ा इस पर आप कुछ कहें तो अच्छा।
0: देखिए, एक समय था जब एक संपादक ऐसे थे जिन्होंने अपने सारे विभाग को ये आदेश दे रखा था कि अज्ञेय की कविता आए, अज्ञेय की कहानी आए तो उसको बिना पढ़े छाप दो, और अज्ञेय की कविता आए तो उसको बिना पढ़े रद्दी में डाल दो। तो वर्षों तक ये रहा कि मैं कविता भेजता रहा उनके पास और कभी कोई नहीं छपी। और लेकिन लगभग उन्हीं दिनों से ऐसे भी लोग थे जो कविता पढ़ते थे और कहते थे कि तुम गद्य क्यों नहीं लिखते, यहाँ की गद्य पढ़ते थे और कहते थे कि तुम कविता तक ही सीमित रहो तो अच्छा है। तो ये तय होने में कि दोनों में से कौन सी चीज़ मुझे लिखनी चाहिए या नहीं लिखनी चाहिए, लोगों को भी काफ़ी समय लगा किसी एक मत पर पहुँचने में, और मैं तो अभी तक निश्चय नहीं कर पाया। लेकिन धीरे धीरे ये मैंने स्वीकार कर लिया कि मेरा चीज़ों को जो देखने का ढंग है वो बुनियादी तौर पर कवि का है। एक समय था जबकि उपन्यासकार के रूप में ही जाना चाहता था, फिर परिवर्तन भी हुए। अब जानता हूँ कि चाहे जैसे भी जाना जाऊँ, मेरा चीज़ों को देखने का ढंग कवि का है, यानी मूलतः कवि हूँ। अब सफल या असफल हूँ ये तय करना तो मेरा काम नहीं है। तो कोई विरोध नहीं है, ये भी मैं सोचता हूँ कि उपन्यास भी जो हैं वो भी शायद कहा जा सकता है कि एक कवि के लिखे हुए ही उपन्यास हैं। कहानियाँ तो निश्चित रूप से एक कवि की लिखी हुई कहानियाँ हैं, इसी में उनकी कमजोरी भी है, इसी में उनकी शक्ति या कि उनका वैशिष्ट्य भी है। तो ऐसा है तो ठीक है, वो और मैं क्या कह सकता हूँ।
1: अब कुछ थोड़ा हम जानना चाहेंगे जो आपके साथ के मुख्य कवि रहे हैं, जैसे शमशेर या मुक्तिबोध। सप्तकों के पीछे आपकी परिकल्पना थी, और बड़ी साहसिक और नई परिकल्पना थी, कि अलग अलग तरह की प्रतिभाएं जिनमें कहीं कुछ समानता है, जो अन्वेषी हैं, उनको एक साथ लाया जाए। मुक्तिबोध एक तरह के अन्वेषी थे, शमशेर दूसरी तरह के, और आपके साथ इन कवियों ने, मैं केवल इनको एक उदाहरण के तौर पर इन कवियों को ले रहा हूँ, अलग अलग ढंग का विकास स्वभावतः तार सप्तक के बाद परिलक्षित होता है इन कवियों की कविताओं में, शमशेर के संबंध में दूसरा सप्तक के बाद से। तो क्या आप अनुभव करते हैं कि अज्ञेय या मुक्तिबोध या शमशेर, इन तीनों को कहीं एक साथ जोड़ने वाला तत्व क्या है, या कि इन कवियों की कविताओं के संबंध में आपकी अपनी क्या दृष्टि रही है, एक पाठक, एक संपादक?

0: के नाते इसके बारे में थोड़ा जानना चाहेंगे।
1: ये दो प्रश्न अलग अलग हैं और उनको जोड़ देना, उनके उत्तर को मेरे लिए कठिन बना देना है, क्योंकि अगर मैं ये तीन जो आपने तीन कवि गिनाए इनको तीन में से एक अपने को मानता हुआ बात करूं, तब उस दूसरे प्रश्न का उत्तर नहीं दे सकता। पाठक के नाते उनके बारे में अपनी राय दे सकता हूं, अपने को उस संदर्भ से अलग करके। मेरी ये धारणा है कि मुक्तिबोध भाषा के और तत्व के क्षेत्र के बड़े निष्ठावान खोजी रहे, लेकिन कवि के नाते मैं उनको असफल कवि मानता हूँ। शुरू की कुछ कविताएं हैं जो कि वास्तव में कविताएं बनी हैं, नहीं तो लगातार उन्होंने कविता बनाने का प्रयत्न किया है और कविता बनी नहीं, इसीलिए इतनी लंबी हो गई है और अंत तक वो कविता बन नहीं पाई है। कविता बनाने की खोज है और बड़ी ईमानदार खोज है, ये उसमें दिखता है, लेकिन मैं उनको एक असफल कवि मानता हूँ। और अगर इससे किसी को कोई संतोष हो तो ये भी कहा जा सकता है कि वो मैग्निफिसेंट फेलियर्स हैं, लेकिन हैं असफलताएं ही। शमशेर को कवि तो मैं मानता हूँ उनसे कहीं अधिक, लेकिन शमशेर के साथ यदि भी मेरे प्रिय कवि भी हैं, एक बात मैं समझता हूँ कि देखनी चाहिए, जो यूँ तो इतनी मोटी बात है कि ये सोचना कठिन है कि लोग नहीं देखते होंगे, लेकिन देखने के बाद वो प्रायः कहते नहीं हैं, वो यह है कि शमशेर उर्दू का संस्कार लेकर हिंदी में आए और अंत तक उनका उर्दू का संस्कार इतना प्रबल है कि उर्दू में वह संस्कारिता संस्कारवान भाषा से बाहर जाने को कदापि तैयार नहीं हुए। उन्होंने उर्दू में कभी वैसा कुछ नहीं लिखा जिसको कि उर्दू की परंपरा स्वीकार न करती हो, लेकिन हिंदी में उन्होंने कभी इस बात की परवाह नहीं की। अब ये तो मैं मान सकता हूँ कि कोई आदमी भाषा संबंधी संस्कार को कोई महत्व न दे, लेकिन अगर नहीं देता तो ये संभव नहीं है कि हिंदी उर्दू दोनों जो कि बोलचाल की दृष्टि से एक दूसरे के काफ़ी निकट हैं, बल्कि एक ही भाषा के दो रूप माने जा सकते हैं, उनमें एक में हमेशा वो परंपरा का निर्वाह करता रहे और दूसरे में उसके प्रति उदासीन रहे। ये हो नहीं सकता इस तरह का चेतना का विभाजन। और अगर किसी में है और न सिर्फ है बल्कि लगातार 40-50 बरस तक लिखता हुआ वह उसका निर्वाह करता आया है, तो ये बात एक परीक्षण का विषय होनी चाहिए कि ऐसा वो क्यों करता है। ये नहीं हुआ है, बल्कि आपसे कहूँगा कि इसको एक शोध का विषय बनाना चाहिए कि ऐसा क्यों है और इसके मूल में क्या चीज़ें हैं जो वो मान रहे हैं। शमशेर की कविता, उनका संवेदन वास्तव में कवि का संवेदन है और बहुत सूक्ष्म संवेदन है, लेकिन जैसा मैंने कहा उर्दू में उसकी अभिव्यक्ति बिल्कुल दूसरी तरह होती है, हिंदी में बहुत ही अटपटी भाषा वो लिखते हैं और हिंदी में ये साफ दिखता है कि उनको शब्दों की ध्वनियों का मोह है, शब्द ध्वनियों से आकृष्ट होते हैं। भाषा वो हिंदी अटपटी लिखते हैं, लेकिन एकाएक एक आध शब्द वो उसके बीच में ऐसा रखते हैं जो कि संस्कार की दृष्टि से महादेवी से या पंत से जुड़ा हुआ है। शमशेर को वो शब्द अपने आप में उसकी ध्वनि के कारण अच्छा लगता है, इसलिए उसको चाहे जहाँ बिठा देते हैं बिना इसका विचार किए कि उस शब्द की वहाँ संगति क्या है, उसका वहाँ औचित्य क्या है। इस तरह की बात वो लगातार करते हैं। अब शब्दों के प्रति या उनकी ध्वनियों के प्रति मोह हो या शब्दों के साथ कभी कभी कभी खिलवाड़ करें, ये स्वाभाविक है, इसमें कोई दोष नहीं है, सभी कवि करते हैं, बल्कि जिनकी प्रतिभा ज़्यादा होती है वो ऐसा खिलवाड़ अधिक करते हैं। पंत ने नहीं किया या कि निराला ने नहीं किया, ऐसी बात नहीं है, बहुत किया, लेकिन सिर्फ खिलवाड़ ही खिलवाड़ करते हैं और वो भी एक भाषा में सिर्फ खिलवाड़ करते हैं और दूसरी भाषा में शब्द के भाषा के संस्कार का पूरा निर्वाह करते हैं, तब प्रश्न उठाना चाहिए कि ऐसा क्यों।
0: अब थोड़ी सी बात यात्रा वृत्तों के बारे में हम जरूर करना चाहेंगे। आपके यात्रा वृत्त कई स्तरों पर कई रूपों में बहुत लोकप्रिय रचनाएं हैं। गद्य का वैसा निर्मल रूप आसानी से नहीं मिलता हमें। आपने कई बार कहा है कि अच्छी भाषा लिखना अपने में एक उपलब्धि है, तो क्या हम ये माने कि ये

0: प्रकार से अच्छी भाषा अपने आप में उत्कृष्ट गद्य लिखने के प्रमाण है।
1: वो यात्रा वृतांत अच्छी भाषा के प्रमाण है या नहीं, इसके बारे में तो मुझे कुछ क्यों कहना चाहिए, ये तो फैसला आप करेंगे जो कि भाषा के विधायक हैं या कि विधायकों में से हैं या विधायकों के भी गुरु हैं। तो बाकी अच्छे गद्य को, अच्छी भाषा को अपने आप में एक उपलब्धि मैं मानता हूँ, क्योंकि ये समझता हूँ कि एक समाज का पूरा संस्कार उसमें बोल सकता है और उस संस्कार को आप्त करना एक ज़रूर एक उपलब्धि है। इसीलिए मैं कहता हूँ कि अच्छी भाषा लिखना एक उपलब्धि है, अच्छी भाषा पढ़ने को मिले ये एक सौभाग्य की बात है। यात्रा वृत्तांत वैसे हैं या नहीं, लोकप्रिय भी हैं या नहीं, ये तो मुझे मालूम नहीं। ये जानता हूँ कि समीक्षक प्रिय तो वो नहीं रहे हैं, लोकप्रिय भी कितने होंगे ये कैसे जानूं, जबकि किताबें वो बहुत ज़्यादा छपी या बिकी तो नहीं हैं। कभी कभी उनकी चर्चा ज़रूर सुनता हूँ, लेकिन यात्रा वृत्तांतों के प्रसंग में ही तो इतना तो मैं मान लूँगा कि जहाँ दूसरे यात्रा वृत्तांतों की बात होती है उनके बीच मेरे लिखे हुए यात्रा वृत्तांत भी अच्छे माने गए या कि कुछ लोगों को अच्छे लगे, इससे ज़्यादा उसके बारे में मैं नहीं जानता हूँ। मैं तो वो लिखता हूँ तो न अच्छी भाषा का न अच्छे गद्य का उदाहरण प्रस्तुत करने के लिए, घूमना ही मुझे अच्छा लगता है और उसमें कुछ ऐसे अनुभव मिलते हैं जो दूसरे तक पहुँचाने लायक जान पड़ते हैं। तो जैसे दूसरे तक पहुंचाने लायक अनुभव काव्य के माध्यम से पहुंचाता हूं, वैसे ही यात्रा में भी अगर ऐसा कुछ मिलता है तो वो भी दूसरे तक पहुंचा देना मुझको अच्छा लगता है।
0: मैं शायद आपको बहुत थका रहा हूं, लेकिन एक अंतिम प्रश्न जरूर रह जाता है जिसकी ओर मैंने शुरू में भी संकेत किया था, वो ये है कि एलियट की बातों की चर्चा आपके प्रसंग में कई बार होती है। यहाँ तक मैंने समझा है एलियट ने आपको आलोचक के रूप में अधिक प्रभावित किया, अधिक प्रेरित किया बजाय एक कवि के रूप में। यानी एक प्रकार से कहीं आपने ये मन में रखा भाव कि संस्कार हमारा भारतीय रहे और वैचारिक संक्रमण हमें भले पाश्चात्य या कि अन्य क्षेत्रों से मिले, तो भारतीय संस्कार और पश्चिम का विचार, इनकी टकराहट या इनका तनाव ये एक प्रकार से आपके रचना कर्म का एक बिंदु कहा जा सकता है और जो शायद एक रूप में आगे की भी रचना प्रक्रिया में भी चलता है। तो मैं ये जानना चाहूँगा कि ये भारतीय और पाश्चात्य तत्वों का संपर्क और टकराहट, जो कि हमारी संस्कृति की एक बुनियादी समस्या है इस समय, उसके संबंध में समकालीन स्थिति को देखते हुए आपके क्या विचार या कि क्या निष्कर्ष हैं?
1: रामस्वरूप जी, आपने फिर इतने सारे इतने बड़े बड़े प्रश्न एक साथ जोड़ दिए कि मैं सोच नहीं सकता कि क्या इसका छोटा सा जवाब हो सकता है। जहाँ तक एलियट का सवाल है, ये बात सही है, आपने बिल्कुल सही कहा कि आलोचक एलियट का कुछ प्रभाव मुझ पर रहा या कि उसके आलोचना क्षेत्र के विचारों को मैंने अधिक महत्व दिया। कवि एलियट का जहाँ तक मैं जानता हूँ मुझ पर कोई विशेष प्रभाव नहीं है। कुछ एक कविताएँ अच्छी लगी, विशेष रूप से चार क्वार्टेट्स जो हैं वो मुझको अच्छे लगे, लेकिन बाकी कोई कविता का प्रभाव हो ऐसा मैं नहीं जानता हूँ। लेकिन ये तो हिंदी आलोचना की दुर्दशा रही है कि क्योंकि एक बार मैंने एक पुस्तक में एलियट के दो लेखों के लगभग छायानुवाद प्रस्तुत कर दिए तो ये मान लिया गया कि मैं एलियटवादी हूँ। जैसे कि एक बार मैंने कहा कि हमारे कवियों में कुंठा दिखती है तो ये मान लिया गया कि मैं कुंठावादी हूँ। ये तो आलोचना की का दारिद्र है कि ऐसा होता रहा है। और ये तो मैं मानता हूँ कि विचार कहीं से भी आए, किसी भी संस्कृति से आए, उनके साथ इस तरह का जात पात का विचार नहीं करना चाहिए कि ये पश्चिम से आया हुआ विचार है इसलिए अमान्य है या कि इसलिए ग्राह्य है। विचारों का तो मैं समझता हूँ कि एक स्वायत्त संसार होता है जो कि देश की भी और काल की भी सीमाओं का अतिक्रमण करता है, उसके प्रति खुला रहना चाहिए, इसको तो मैं सही मानता हूँ। इस दृष्टि से अगर पश्चिम से या एलियट से कोई विचार मिले जो कि आज संगत या उपयोगी जान पड़ते हैं तो इसलिए उनका तिरस्कार नहीं कर

0: करूंगा कि वो पश्चिम से आए हैं और मैं भारतीय हूं। ये भी नहीं है कि मैं समझता हूं कि भारतीय संस्कार चाहिए, चाहिए का भाव नहीं है, भारतीय संस्कार तो है। कोई भी अगर संस्कार है तो स्वाभाविक है कि भारत में रहने पलने वाले का, भारत में शिक्षा पाने वाले का, भारतीयों के बीच रहने वाले का, उनके संस्कारों से परिचित होने वाले का एक भारतीय संस्कार हो, उसकी दृष्टि चीज़ों को उस दृष्टि से देखने की अभ्यस्त हो जिसमें इस समूचे देश का, इस सारी जाति का दसियों बल्कि सैकड़ों सदियों का अनुभव रहा है। ये नहीं है कि कहीं भी उस अनुभव के बारे में कोई प्रश्न नहीं पूछा जा सकता, लेकिन जहाँ प्रश्न भी पूछा जाता है वहाँ इस बात को ध्यान में रखते हुए अगर हम प्रश्न पूछें कि हम सैकड़ों वर्षों से न सिर्फ ये मानते आए बल्कि इससे जीवन में अर्थ पाते आए, तो उस तरह का प्रश्न या कि उस तरह की खंडनात्मक बुद्धि भी वास्तव में महत्व नहीं रखती। प्रश्न पूछे जाएं तो इस बात को उसका उचित महत्व देते हुए पूछने चाहिए कि हमारी जो प्रश्न पूछने की भी संस्कारिता है उसमें भी इस बात का एक अंश है कि हम लगातार सैकड़ों वर्षों से ये मानते आए और हमारा जीवन इसी के आधार पर अर्थवान होता रहा। उस अर्थ पर भी अगर हम प्रश्न चिन्ह लगाते हैं तो इस बात को ध्यान में रखकर लगाना चाहिए, उससे प्रश्न की भी गहराई बढ़ती है, ऐसा मैं मानता हूँ। तो ये नहीं है कि मैं ये समझता हूँ कि हमको संस्कार अपने भारतीय बनाए रखने चाहिए और विचारों का आयात करना चाहिए, ये तो बड़ा एक कृत्रिम ढंग का विभाजन हो जाएगा। हम किसी एक संस्कृति में ही दीक्षा पाकर उस संस्कृति के बारे में भी प्रश्न पूछ सकते हैं, ये एक स्थिति है। और विचारों के प्रति हम सारे संसार से कहीं से भी आने वाले और किसी भी युग से आने वाले विचार के प्रति खुले हैं, चाहे वो, और ये भी महत्व की बात है, चाहे वो अपने ही देश के पुराने विचार भी क्यों ना हों।
1: आपसे काफ़ी बातें सुनने को मिली, एक पाठक के नाते, एक समीक्षक के नाते जो चीज़ें कुछ कभी स्पष्ट नहीं हुई थी उन पर भी कुछ प्रकाश पड़ा, लेकिन बातचीत तो बातचीत ही है और कविता के बारे में हम लोग बात करते रहे इतनी देर तक और उसमें कविता ना आए तो ये मुझे थोड़ा अटपटा लगता है। इसलिए मैं आखिर में ज़रूर एक अनुरोध करना चाहूँगा आपसे कि इस बातचीत का समापन कृपया एक किसी भी छोटी कविता के पाठ से करें।
0: ये लीजिए, यो तो मैं इसका अभ्यस्त हूँ कि कविता की बातचीत हो या होने वाली हो और उसमें न सिर्फ कविता ना आए बल्कि कविता की चर्चा भी ना आए, आजकल तो प्रायः यही होता है। लेकिन लीजिए, बात के बारे में ही एक कविता पढ़ देता हूँ। बात है चुकती रहेगी, बात है चुकती रहेगी, एक दिन चुक जाएगी ही बात। जब चुक चले तब उस बिंदु पर जो मैं बचूं, मैं बचूंगा ही, उसको मैं कहूं इस मोह में अब और कब तक रहूं। चुक रहा हूं मैं स्वयं, जब चुक चलूं तब भी बच रहे जो बात, बात ही तो रहेगी, तब भी बच रहे जो बात उसी को कहूं। यह संभावना यह नियति कवि की सहूं, उतना भर कहूं इतना कर सकूं जब तक चुकूं।
2: हमारे संग्रहालय से। इसके अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे क्या भूलें क्या याद करें, प्रसिद्ध साहित्यकार सच्चिदानंद हीरानंद वात्सायन अज्ञेय से भेंटवार्ता। भेंटकर्ता थे रामस्वरूप चतुर्वेदी। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़ पर और FM 100.3 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है।
3: आकाशवाणी एट 90 साल की आवाज, दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल, पुरानी यादें नया जोश है, देश का रेडियो अब भी बॉस है। आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल।
2: खदमत प्रोग्राम फिल्म संगीत एक ही कलाकार। सभी सुनने वालों को अतुल यादव का प्यार भरा नमस्कार।

श्रोताओं, कुछ आवाजें कानों तक पहुंचती हैं और कुछ सीधे दिल में उतर जाती हैं। एक ऐसी आवाज थी जिसमें शास्त्रीय संगीत की गहराई थी, भक्ति की पवित्रता थी, रोमांस की नरमी थी और दर्द को महसूस कराने की अद्भुत ताकत थी। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं उस महान पार्श्व गायक की जिन्हें दुनिया के जे यसुदास के नाम से जानती है।

यशुदास की आवाज की सबसे बड़ी खूबसूरती यही थी कि उसमें दिखावा नहीं था। आवाज सुनाई देती थी और शब्दों के पीछे की छिपी भावना सामने आ जाती थी। दक्षिण भारत की संगीत परंपरा से निकले यशुदास ने हिंदी सिनेमा में भी अपनी ऐसी पहचान बनाई कि उनकी आवाज कई अभिनेताओं के लिए बिल्कुल अलग अंदाज में याद की जाने लगी।

श्रोतो, यशोदास का संगीत सफर सिर्फ लोकप्रियता तक सीमित नहीं रहा। उन्हें भारत सरकार ने 1975 में पद्मश्री, 2002 में पद्म भूषण और 2017 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया। और राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों की बात करें तो पुरुष पार्श्व गायन के लिए उनके नाम 8 राष्ट्रीय पुरस्कार दर्ज हैं।

क्या कमाल की सादगी है इस आवाज में। यशोदास ने इस गीत को सिर्फ सुरों में नहीं सजाया बल्कि गांव की मिट्टी, प्रेम की मासूमियत और एक खूबसूरत इंतजार को आवाज दे दी। यही वजह है कि दशकों बाद भी ये गीत सुनते ही मन जैसे किसी शांत सुंदर गांव की गलियों में पहुंच जाता है। एक महान गायक की पहचान सिर्फ उसके गाए हुए गीतों की संख्या से नहीं होती, पहचान होती है इस बात से कि उसकी आवाज ने कितने दिलों में जगह बनाई। के.जे. यशोदास की आवाज जिसने भाषा की सीमाएं पार की, संगीत की सीमाएं पार की और सीधे श्रोताओं के दिल तक पहुंची। उनकी आवाज में एक ऐसी मिठास थी जो समय के साथ पुरानी नहीं हुई बल्कि हर बार सुनने पर और गहरी होती चली गई।

0: फिल्म संगीत एक ही कलाकार में अभी आप सुन रहे थे यशुदास को। अब आज का यह कार्यक्रम समाप्त होता है। हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं।
1: आकाशवाणी एट 90 90 साल की आवाज दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल पुरानी यादें नया जोश है देश का रेडियो अब भी बॉस है आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल
0: हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। पेशे खिदमत एक प्रोग्राम फिल्म संगीत। फिल्म संगीत प्रोग्राम में एक बार फिर मैं अतुल यादव आपके साथ हूं। प्यार किया तो डरना क्या, जी हां, इस फिल्म का गाना हम आपको सुनवा रहे हैं। रायकवार का गीत है, बीजू शाह का संगीत, आवाज कमाल खान की।

श्रोताओं, इस खूबसूरत से गाने को आपने सुना और साथ ही साथ कहीं ना कहीं इस खुशनुमा मौसम में थोड़ी बातें भी होती रहें, थोड़ी गपशप भी होती रहें, तो प्रोग्राम का मज़ा ही दुगना हो जाता है। जी हाँ, बिल्कुल, सफ़र पे निकल चुके होंगे बहुत सारे लोग, क्योंकि दिन के बज रहे हैं 11:36 हमारे स्टूडियो की घड़ी में, और इस वक्त बहुत से लोग अपने ऑफिसेज़ में हैं, तो कुछ लोग अपने बिजनेस ट्रिप के लिए शायद बाहर भी निकल चुके हों। तो ध्यान रखिए श्रोताओं कि जब हम सड़क पर निकलते हैं तो कहीं ना कहीं हमारी जिम्मेदारी और भी ज़्यादा बढ़ जाती है।

है, अगर हम टू व्हीलर से हैं तो, अगर हम फोर व्हीलर से हैं तो, क्योंकि ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करना ये हमारी नैतिक जिम्मेदारी बन जाती है, क्योंकि कहीं ना कहीं हम अपने अधिकारों की बात ज़रूर करते हैं लेकिन जब बात कर्तव्यों की आती है तो थोड़ा सा पीछे हट जाते हैं। लेकिन अब वक्त इसी का है कि हम पहले अपने कर्तव्यों के बारे में सोचेंगे, अधिकार खुद ब खुद चल कर हमारे पास आएंगे। बिल्कुल, अगर आप रोड पे हैं तो निश्चित रूप से ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करिए, सिग्नल्स को फॉलो करिए। कई बार हम देखते हैं कि रेड सिग्नल होने से पहले जो येलो सिग्नल होता है उस वक्त हमें बहुत ज़्यादा जल्दी होती है सड़क क्रॉस करने की, लेकिन मैं आपको बता दूं कि येलो सिग्नल हमें अलर्ट करने के लिए होता है कि अब हम अपनी स्पीड कंट्रोल करनी है, क्योंकि वही वो वक्त होता है जिस वक्त की अगली साइड से ग्रीन सिग्नल होने वाला होता है और वो इंसान भी तैयार होता है रोड क्रॉस करने के लिए। तो मेरा ख्याल है कि आप इस बात पर बहुत ज़्यादा ध्यान देंगे नेक्स्ट टाइम सड़क पर चलते समय, और साथ ही साथ हेलमेट का प्रयोग ज़रूर करेंगे, क्योंकि दूसरों की सुरक्षा अपनी सुरक्षा बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। प्रोग्राम में बढ़ते हैं, आगे सुनते हैं कॉकटेल फिल्म का वो गाना जिसके लिए गीत लिखा अमिताभ भट्टाचार्य ने, संगीत प्रीतम का है, आवाज़ पूजा, नेहा कक्कड़ और अमिताभ भट्टाचार्य की।

तो कई बार होता है कि जब हम लोग रोड पे चल रहे होते हैं, सिग्नल रेड होता है, तो अभी चूंकि हमारा शहर प्रयागराज हालांकि काफ़ी हद तक ट्रैफिक को लेकर के जागरूक हो चुका है, लेकिन फिर भी अवेयरनेस की थोड़ी बहुत कमी कई बार देखने को मिलती है। उसका कारण कि जब रेड सिग्नल होता है, पूरा ट्रैफिक रुका हुआ होता है, तो हम देखते हैं कि लेफ्ट लेन, जो कि लेफ्ट साइड जाने वालों के लिए खाली रखनी चाहिए, वहाँ भी अक्सर हम लोग अपनी गाड़ी लगा लेते हैं। तो मैं आकाशवाणी की ओर से, आकाशवाणी के माध्यम से गुजारिश करना चाहूँगा कि उस लेफ्ट लेन को हमेशा खाली रखें, क्योंकि लेफ्ट साइड जाने के लिए, बाईं तरफ जाने के लिए सिग्नल की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि बाईं तरफ की लेन हमेशा खाली रखी जाती है उस तरफ जाने वालों के लिए। और साथ ही साथ कहीं ना कहीं जो इमरजेंसी सर्विसेज होती हैं, जैसे एम्बुलेंस वगैरह होती हैं, उसके लिए उस जगह को खाली रखा जाता है। तो उम्मीद है कि अगली बार आप इस बात का ज़रूर ज़रूर ध्यान रखेंगे कि लेफ्ट लेन को हमेशा खाली रखेंगे, और ट्रैफिक रूल्स पर, नियम पर, कायदे पर, कानून पर, शहर की व्यवस्था पर हम बातें और भी करते रहेंगे। लेकिन प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं, साथ ही गुजारिश एक और कि इतने खूबसूरत गानों को सुनने के साथ साथ जो एक्सीलेटर पर आपका पैर मूव करना शुरू कर रहा है, उसे कंट्रोल करिए, क्योंकि स्टीयरिंग आपके हाथ में और आपके साथ में बैठे दोस्त जो हैं वो भी आप पे डिपेंड हैं। इसलिए अपना भी ख्याल रखिए, अपने दोस्तों का भी ख्याल रखिए। बढ़ते हैं आगे, बिल्लू बार्बर फिल्म का गाना हम आपको सुनवाने जा रहे हैं, जिसके लिए गीत लिखा आशीष मयूर ने, संगीत प्रीतम का है, आवाज़ नीरज और तुलसी की।

चल रहे लोग या सड़क पे चल रहे लोग भी अपने किसी ज़रूरी काम से निकले होंगे, तो उनकी सुरक्षा, उनके स्वास्थ्य की जिम्मेदारी भी आपकी बनती है। फिलहाल आगे बढ़ते हैं और सुनते हैं ये जवानी है दीवानी फिल्म का वो गाना जिस गाने के बोल कभी आप अपने लिए सुनना नहीं चाहेंगे, इसलिए एक बार फिर से गुजारिश कि गाड़ी ज़रा संभल के चलाएं। बिल्कुल अमिताभ भट्टाचार्य का गीत है, संगीत प्रीतम का, आवाज़ बेनी दयाल और शेफाली अलवरिस।

बदतमीज दिल मारेना, बिल्कुल कुछ ऐसा ही लगता है। लेकिन जाहिर सी बात है कि आम चल रही पब्लिक जो आपके शीशे से बाहर दिखाई पड़ रही है, आप कभी नहीं चाहेंगे कि कोई आपको रोके और आपका गेट नॉक करे और आपके शीशे उतरवा करके फिर आपसे बोले बदतमीज से। बिल्कुल, और इसके लिए ज़रूरी है कि हम हमेशा कंट्रोल रखें अपने ऊपर। और साथ ही साथ एक बात, क्योंकि गड्ढों से निकल करके गाड़ी जब हाईवे पर पहुंच जाती है ना, तो स्पीड कहीं ना कहीं अल्टीमेट लेवल पर जाने लगती है। तो श्रोताओं, ये भी ध्यान रखिए कि आपके पीछे जो बैठे दोस्त हैं ना, उनकी ज़िंदगी आपके हाथ में है। सीट बेल्ट लगा लीजिए और कंट्रोल में रहिए। स्टीयरिंग आपके हाथ में है, तो जाहिर सी बात है उसका मूवमेंट भी आपको अपने हिसाब से करना होगा। बढ़ते हैं प्रोग्राम में आगे और सुनते हैं और प्यार हो गया फिल्म का वो गाना जो कहीं ना कहीं आपकी इस थिरकन को, आपकी इस धड़कन को और भी ज़्यादा बढ़ाने वाला है। जावेद अख्तर का गीत है, नुसरत फतेह अली खां का संगीत, आवाज़ आशा भोसले की।

0: फिल्म म्यूजिक प्रोग्राम का सफर अपने तय किया अतुल यादव के साथ। उम्मीद है प्रोग्राम आपको पसंद आया होगा। हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं।
1: पॉडकास्ट और वायरल रील्स के शोर में सोचो असली ओजी कौन है। बॉस रेट्रो इज द न्यू कूल और इंडिया का सबसे पहला ट्रेंड सेटर है अपना आकाशवाणी। वही सुकून वाली वाइब, म्यूजिक और सॉलिड इन्फो पूरे 90 सालों से नॉन स्टॉप ट्रेंडिंग। ट्यून इन करो क्योंकि लेजेंड्स कभी आउटडेटेड नहीं होते। आकाशवाणी 90 ईयर्स से इंडिया की ओरिजिनल आवाज।
0: एहसास की धूप छाओं में हवाओं के संग गूंजती है दिशाओं में रेडियो की तरंग। जुड़िए 1026 किलोहर्ट्ज़ और 100.3 एफएम आकाशवाणी प्रयागराज के साथ, धड़कन हर दिल की। हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। 12 बजे हैं, थोड़ी देर में आप सुनेंगे समाचार हमारे दिल्ली केंद्र से।
2: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह उज्बेकिस्तान और किर्गिज गणराज्य की 4 दिन की यात्रा पर रवाना हो गए। श्री मोदी ने रवाना होने से पहले कहा कि उनकी उज्बेकिस्तान और किर्गिज गणराज्य की यात्रा से मध्य एशिया में भारत की रणनीतिक साझेदारियां मजबूत होंगी और इस क्षेत्र के साथ सभ्यतागत जुड़ाव और गहरा होगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि हाल के वर्षों में भारत उज्बेकिस्तान रणनीतिक साझेदारी में महत्वपूर्ण प्रगति हुई है। उन्होंने कहा कि वे उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति शफकत मिर्जियोयेव के साथ व्यापार और निवेश, डिजिटल संपर्क, रक्षा तथा ऊर्जा क्षेत्र में सहयोग और मजबूत करने के साथ साथ विकसित भारत और यांगी उज्बेकिस्तान के साझा दृष्टिकोण को आगे बढ़ाने पर चर्चा करेंगे। श्री मोदी ने कहा कि वे ताशकंद स्टेट यूनिवर्सिटी ऑफ ओरिएंटल स्टडीज में शास्त्री स्मारक और महात्मा गांधी केंद्र का भी दौरा करेंगे। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
3: इस यात्रा के दौरान दोनों नेता ताशकंद में द्विपक्षीय महत्व के सभी मुद्दों पर चर्चा करेंगे। भारत उज्बेकिस्तान के शीर्ष 10 व्यापारिक साझेदारों में से एक है, जिनके बीच द्विपक्षीय व्यापार लगभग $1 अरब का है। पिछले कुछ वर्षों में दोनों देशों के बीच कारोबार तेजी से बढ़ा है। चिकित्सा, खनन और रक्षा कुछ ऐसे महत्वपूर्ण क्षेत्र हैं जिनमें सहयोग की अपार संभावनाएं हैं। रक्षा क्षेत्र में भारत और उज्बेकिस्तान के बीच व्यापक सहयोग की शुरुआत हो चुकी है। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, ताशकंद, उज्बेकिस्तान।
2: उज्बेकिस्तान में भारत की राजदूत स्मिता पंत ने आकाशवाणी समाचार के साथ विशेष साक्षात्कार में कहा कि उज्बेकिस्तान में प्राकृतिक संसाधनों का समृद्ध भंडार उपलब्ध है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी की ताशकंद यात्रा के दौरान निवेश और महत्वपूर्ण खनिजों के क्षेत्र में प्रौद्योगिकी हस्तांतरण पर भी चर्चा होने की संभावना है। नेपाल में विनाशकारी बाढ़ में मृतकों की संख्या 626 हो गई है, जबकि 2000 से अधिक लोग अब भी लापता हैं। प्रभावित क्षेत्रों में राहत और बचाव अभियान जारी है। बचाए गए लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा रहा है। विदेश मंत्रालय ने बताया कि 320 भारतीय नागरिकों से अभी तक संपर्क नहीं हो पाया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने नई दिल्ली में कहा कि भारतीय मूल के करीब 100 अन्य लोगों से भी संपर्क नहीं हो पाया है। श्री जायसवाल ने बताया कि त्रिशूली वन जल विद्युत परियोजना में कार्यरत 63 भारतीय नागरिकों को प्रभावित क्षेत्र से सुरक्षित निकाल लिया गया है। श्री जायसवाल ने कहा कि चीन की ओर करीब 400 भारतीय नागरिक सुरक्षित हैं और अपने परिवारों के संपर्क में हैं। उन्होंने बताया कि एक नियंत्रण कक्ष भी स्थापित किया गया है। सरकार ने चीनी की समयबद्ध उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए मौजूदा मासिक कोटा प्रणाली के स्थान पर अगले महीने से पखवाड़े के आधार पर

0: चीनी आवंटन प्रणाली शुरू करने का निर्णय लिया है। इसके अंतर्गत चीनी मिलों को पहले सप्ताह में कम से कम 40% आवंटन और शेष मात्रा अगले सप्ताह में बेचनी होगी। इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड IGL ने CNG की कीमत में 3.89 रुपये प्रति किलोग्राम की बढ़ोतरी की है। नई दरें आज से लागू हो गई हैं। कीमत बढ़ने के बाद राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में CNG अब 86.98 रुपये प्रति किलोग्राम मिलेगी। गुरुग्राम में CNG की कीमत 92.01 रुपये और गाजियाबाद तथा नोएडा में 95.59 रुपये प्रति किलोग्राम हो गई है। आज राष्ट्रीय खेल दिवस है। हर वर्ष 29 अगस्त को भारत के महान हॉकी खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद की जयंती के उपलक्ष्य में ये दिवस मनाया जाता है। उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तथा युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री ने हॉकी के जादूगर कहे जाने वाले मेजर ध्यानचंद को श्रद्धांजलि अर्पित की है। मौसम विभाग ने ओडिशा में अगले 2 से 3 दिनों के दौरान मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। एक रिपोर्ट।
1: उड़ीसा में भारत मौसम विज्ञान विभाग का कहना है कि बंगाल की खाड़ी के उत्तरी हिस्सों और उससे सटे पश्चिम बंगाल बांग्लादेश तटों के ऊपर हवा के ऊपरी स्तर पर बने चक्रवाती परिसंचरण के कारण आज उत्तर पश्चिम बंगाल की खाड़ी और उससे सटे उत्तरी उड़ीसा तट पर कम दबाव का क्षेत्र बनने की संभावना है। बालेश्वर, केंदुझर और मयूरभंज जिलों के लिए आज सुबह तक ऑरेंज वार्निंग जारी की गई है और कुछ जगहों पर भारी से बहुत भारी बारिश होने की आशंका है। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
0: दुबई में महिला एशिया कप T20 क्रिकेट प्रतियोगिता में श्रीलंका का सामना आज संयुक्त अरब अमीरात से होगा। मैच भारतीय समय अनुसार रात 8 बजे से खेला जाएगा। भारत का पहला मैच कल थाईलैंड से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय शगुन चोपड़ा। Prime Minister Narendra Modi has left for his four-day visit to Uzbekistan and Kyrgyz Republic this morning. In his departure statement, Mr. Modi expressed confidence that his visit to Uzbekistan and the Kyrgyz Republic will strengthen India's strategic partnerships in Central Asia and deepen the civilizational connect with the region. He said that in recent years, India-Uzbekistan strategic partnership has seen significant advancement. The Prime Minister said that he is looking forward to having discussions with the President of Uzbekistan, Shavkat Mirziyoyev, on further deepening cooperation in trade and investment, digital connectivity, defence, energy and on advancing the shared visions of Viksit Bharat and Uzbekistan. The Prime Minister said that at the invitation of President of the Kyrgyz Republic, Sadir Zaparov, he will travel to Bishkek to participate in the 26th SCO summit. Mr. Modi said that he is looking forward to advancing India's vision for the region anchored in security, connectivity and opportunity and to working with fellow members for a region free from the scourge of terrorism, separatism and extremism, which continue to threaten peace and stability in neighbourhood and beyond. There is considerable discussion about important decisions on cooperation in rare earth minerals during the Prime Minister's visit. In an interview with Akashwani News, Smita Pant, Indian ambassador to Uzbekistan, said that Uzbekistan is rich in natural resources and that Prime Minister Narendra Modi's visit to Tashkent will also discuss investment and technology transfer in the mining and rare earth minerals sector.
3: Several MOUs will be signed, concretizing specific areas of cooperation in the area of culture and many other areas. You will get to know in 2 days' time. There is also strong focus by the leadership of both the countries. Uzbekistan is a resource-rich nation, and our requirements of critical minerals are huge. So I think both sides will also discuss the possibility of having some long-term supply arrangements.
2: The death toll from devastating flash floods in Nepal and Tibet has risen to 626 this morning, with over 2,000 people remain missing. Police had recovered 233 bodies in Chitwan, 158 in Nawalparasi East, 48 in Gorkha, 47 in Nawalparasi West, 45 in Dhading, 41 in Nuwakot, 31 in Tanahun and 13 in Rasuwa. Search and rescue operations are underway across the affected districts of the Himalayan nation. Officials said that the police are coordinating with residents and other agencies to locate missing people and assist those stranded by the floods. Rescued people are being taken from high-risk areas to safer locations. Additionally, the search and rescue officials are working to clear roads.

शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में अब से कुछ ही देर में यानी 12:15 पर आप सुनेंगे सिद्धार्थ मिश्र का राग शुद्ध सारंग में ख्याल गायन। 12:30 फिल्म संगीत प्रोग्राम होगा। इसके अलावा 1:15 पर ग्रामीण बहनें अपना कार्यक्रम पनघट सुनेंगी, जिसके अंतर्गत आज गायत्री सिंह की वार्ता सुनवाई जाएगी, परंपरा और आधुनिकता में अंतर। साथ ही संगीता राय के लोकगीत भी बहनें सुन सकेंगी। ढाई बजे लोकगीत कार्यक्रम होगा, जिसमें हरिनाथ सुमन मौर्य के गीत सुनवाए जाएंगे। सांध्यकालीन सभा का आरंभ हम करेंगे धरती के गीत कार्यक्रम से, जिसमें कलाकार होंगे बबलू दीवाना और साथी। युवा साथियों का अपना कार्यक्रम युवाणी रोजाना की तरह 5:15 पर होगा, जिसमें आज का आकर्षण आज की शाम आपके नाम, जो केंद्रित होगा अभिनेता राजीव कपूर पर। 6:30 का समय होगा ग्रामीण भाइयों के अपने कार्यक्रम पंचायत घर का, जिसमें परिवार कल्याण की बात के अंतर्गत वर्षा ऋतु में खान पान संबंधी सावधानियां विषय पर आरएन सिंह वैद्य से अरविंद कुमार की बातचीत सुनवाई जाएगी। साथ ही आनंद रिचे का रघुराज सिंह यादव और साथियों के गाये लोकगीतों का। साथ 7:31 पर हिंदी कार्यक्रम होगा, जिसमें आज डॉक्टर मुश्ताक अली की वार्ता हम आपको सुनवाएंगे, हिंदी आलोचना के क्षेत्र में रामचंद्र शुक्ल का योगदान। 7:45 पर सुगम संगीत कार्यक्रम होगा, जिसमें शिवानी केसरवानी के स्वर में भजन सुनवाए जाएंगे। रात 8:00 चित्रपट संगीत और 8:30 सुनिएगा कार्यक्रम सबरस। ये थी जानकारी हमारे आज प्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रमों की।

आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। गुमशुदा व्यक्ति के संदर्भ में आपको सूचना दे दें, पुनवासी लाल विश्वकर्मा, पुत्र स्वर्गीय रामजतन, उम्र 56 वर्ष, कद 5 फीट 3 इंच, चेहरा गोल और रंगे हुआ है। इनकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है। ये 15 मई 2026 को ग्राम बहरिया से लापता हो गए हैं। इनके बारे में कोई भी जानकारी मिलने पर कृपया इस फोन नंबर पर सूचित करें। फोन नंबर है 9793156550। फोन नंबर एक बार फिर से नोट कर लें, 9793156550। सूचना समाप्त हुई।

आकाशवाणी एट 90 90 साल की आवाज दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल पुरानी यादें नया जोश है देश का रेडियो अब भी बॉस है आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल।

हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। शास्त्रीय संगीत, शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में लीजिए सुनिए सिद्धार्थ मिश्र का राग शुद्ध सारंग में ख्याल गायन।

0: शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे सिद्धार्थ मिश्र का राग शुद्ध सारंग में ख्याल गायन। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़ पर और FM 100.3 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है।
1: पॉडकास्ट और वायरल रील्स के शोर में सोचो असली ओजी कौन है। बॉस रेट्रो इज द न्यू कूल और इंडिया का सबसे पहला ट्रेंड सेटर है अपना आकाशवाणी। वही सुकून वाली वाइब, म्यूजिक और सॉलिड इन्फो पूरे 90 सालों से नॉन स्टॉप ट्रेंडिंग। ट्यून इन करो क्योंकि लेजेंड्स कभी आउटडेटेड नहीं होते। आकाशवाणी 90 ईयर्स से इंडिया की ओरिजिनल आवाज।
0: हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है श्रोताओं की फोन कॉल्स पर आधारित फिल्म गानों का प्रोग्राम हेलो फरमाइश। कार्यक्रम प्रस्तुत कर रही हैं मधु कुमार।
2: हेलो फरमाइश कार्यक्रम में आपका स्वागत है। अपना नाम बताएं।
3: सोनू जी, असल थाने पर प्रतापगढ़ से बोल रहे हैं।
2: जी सोनू जी, कौन सा गीत सुनना चाहते हैं?
3: कीमत का।
2: कीमत फिल्म का कोई गाना आप बताएंगे?
3: कोई सा
2: कोई सही गीत। चलिए तो ठीक है, आपको सुनवाते हैं कीमत फिल्म का ये गाना।

0: हेलो, फरमाइश कार्यक्रम, अपना नाम बताएं।
1: गांव दौदापुर पोस्ट उमरी प्रयागराज निवासी मैं आपका जाना पहचाना ब्रज रेडियो श्रोता मित्र शारदा प्रसाद प्रजापति श्री राधा श्री मथुरा से आदरणीय मधु दीदी को करता हूँ सादर नमस्कार।
0: नमस्कार जी, नमस्कार। बताइए कौन सा गीत सुनना चाहते हैं।
1: दीदी आज बहुत ही उत्साह और उमंग के वाला गीत सुनना चाहता हूँ
0: जी
1: जो कि जोश से भरा हुआ है, प्रेरणादायक गीत है।
0: जी
1: फिल्म
0: जी
1: का नाम है कारपोरेट।
0: अच्छा, जी इस फिल्म का
1: ओ
0: गीत है
1: सिकंदर ओ
0: ओ
1: सिकंदर,
0: सिकंदर। हाँ
1: झांक ले तू अपने दिल के अंदर।
0: तो चलिए आपकी इस फरमाइश को पूरा करते हुए सुनवाते हैं ये गीत।

0: हेलो फरमाइश कार्यक्रम में आपका स्वागत है। अपना नाम बताएं।
1: गुतने कुंडा प्रतापगढ़ गांव मेरा राजेंद्र कुमार कहलाता हूँ। सर की फरमाइश के पसंदीदा फोन इन कार्यक्रम में अपना कर्तव्य निभाता हूँ। मैं ही फरमाइश के द्वारा सभी सुनने वाले श्रोताओं को आकाशवाणी केंद्र से मन पसंदीदा गीत सुनवाता हूँ।
0: जी राजेंद्र जी, कौन सा गीत सुनवाना चाहते हैं मन पसंद अपना?
1: मैंने है उनका नाम भी लेना चाहूँगा।
0: हाँ हाँ, ले लीजिए।
1: देखिए, निर्मला, उर्मिला, गायत्री, सुशीला, रेशमा, पांचों बहन की शादियाँ हो चुकी हैं। सब अपने बहुत खुशी रहते हैं और रक्षाबंधन के लिए, रक्षाबंधन के दिन में तो जरूर आते हैं वो लोग सब।
0: अच्छा अच्छा, चलिए।
1: और ये कार्यक्रम को सुन भी रहे हैं सब।
0: अरे वाह, तो अब आपकी पसंद का ये गाना बंधन फिल्म से हम सुनवाने जा रहे हैं। डीजे सुनिए।

0: हेलो फरमाइश कार्यक्रम, अपना नाम बता दीजिए।
1: नमस्ते दीदी।
0: नमस्कार जी।
1: गांधी पार्क मनपुरा जिला शिवपुरी मध्य प्रदेश से बोला है दीदी, मनोज नामदेव
0: जी। मध्य प्रदेश से मनोज जी हमारे साथ हैं कॉल पर। तो मनोज जी, कौन सा गीत सुनना चाहते हैं?
1: जी दीदी, आज आप सुनवा दो। फिल्म का नाम रहेगा चम्मल की कसम
0: जी,
1: और उसमें गाना है मेरे भैया से कहना बहना याद करे।
0: लता जी की आवाज में ही गाना है, चंदा रे मेरे भैया से कहना बहना याद करे।
1: बिल्कुल दीदी, बिल्कुल बिल्कुल।
0: देखिए, कल ही राखी थी और आज आपने ये इतना भावुक गीत पसंद किया है चम्बल की कसम फिल्म से।
1: बिल्कुल दीदी, आज कहें कि हमारी दीदी भी कल रक्षाबंधन था तो राखी बांधने आई थी।
0: अच्छा,
1: आज भी दीदी हमारी है तो मैंने सोचा कि ये गीत क्यों ना सुन लिया जाए।
0: बिल्कुल भाई, आपकी पसंद को हम सुनवाने जा रहे हैं। मनोज जी लीजिए, सुनिए।
1: धन्यवाद दीदी आपको।

0: हेलो फरमाइश कार्यक्रम, अपना नाम बता दीजिए।
1: महेंद्र यादव मुन्ना वरोत हंडिया प्रयागराज से
0: हैं। जी हंडिया से महेंद्र जी हमारे साथ हैं, तो महेंद्र जी कौन सा गीत सुनना चाहते हैं?
1: हमको दीवाना कर गए फिल्म का गाना है, टाइटल सॉन्ग हमको दीवाना कर गए।
0: ठीक है, तो आपकी पसंद का ये गाना हम सुनवाने जा रहे हैं, लीजिए सुनिए।

0: अभी श्रोता सुन रहे थे अपनी फोन कॉल्स पर आधारित फिल्मी गानों का प्रोग्राम हेलो फरमाइश। कार्यक्रम प्रस्तुत कर रही थी मधु कुमार। हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं।
1: आकाशवाणी एट 90 साल की आवाज, दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल। पुरानी यादें, नया जोश है, देश का रेडियो अब भी बॉस है। आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल।
0: एहसास की धूप छाओं में, हवाओं के संग गूंजती है दिशाओं में रेडियो की तरंग। जुड़िए 1026 किलोहर्ट्ज़ और 100.3 एफएम आकाशवाणी प्रयागराज के साथ, धड़कन हर दिल की। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़ पर और एफएम 100.3 मेगाहर्ट्ज़ पर ही आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। हमारे स्टूडियो की घड़ी में 1 बजने वाले हैं। थोड़ी देर में आप सुनेंगे समाचार हमारे दिल्ली केंद्र से।
2: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह उज्बेकिस्तान और किर्गिज गणराज्य की 4 दिन की यात्रा पर रवाना हो गए। श्री मोदी ने रवाना होने से पहले कहा कि उनकी उज्बेकिस्तान और किर्गिज गणराज्य की यात्रा से मध्य एशिया में भारत की रणनीतिक साझेदारियां मजबूत होंगी तथा इस क्षेत्र के साथ सभ्यतागत जुड़ाव और गहरा होगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि वे उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति शफकत मिर्जियोयेव के साथ व्यापार और निवेश, डिजिटल संपर्क, रक्षा तथा ऊर्जा क्षेत्र में सहयोग और मजबूत करने के साथ साथ विकसित भारत तथा यांगी उज्बेकिस्तान के साझा दृष्टिकोण को आगे बढ़ाने पर चर्चा करेंगे। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
3: इस यात्रा के दौरान दोनों नेता ताशकंद में द्विपक्षीय महत्व के सभी मुद्दों पर चर्चा करेंगे। भारत उज्बेकिस्तान के शीर्ष 10 व्यापारिक साझेदारों में से एक है, जिनके बीच द्विपक्षीय व्यापार लगभग $1 अरब का है। पिछले कुछ वर्षों में दोनों देशों के बीच कारोबार तेजी से बढ़ा है। चिकित्सा, खनन और रक्षा कुछ ऐसे महत्वपूर्ण क्षेत्र हैं जिनमें सहयोग की अपार संभावनाएं हैं। रक्षा क्षेत्र में भारत और उज्बेकिस्तान के बीच व्यापक सहयोग की शुरुआत हो चुकी है। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, ताशकंद, उज्बेकिस्तान।
2: उज्बेकिस्तान में भारत की राजदूत स्मिता पंत ने आकाशवाणी समाचार के साथ विशेष साक्षात्कार में कहा कि उज्बेकिस्तान में प्राकृतिक संसाधनों का समृद्ध भंडार उपलब्ध है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी की ताशकंद

0: यात्रा के दौरान निवेश और महत्वपूर्ण खनिजों के क्षेत्र में प्रौद्योगिकी हस्तांतरण पर भी चर्चा होने की संभावना है।
1: रिलेशनशिप ऑलरेडी बहुत अपवर्ड ट्रैजेक्टरी में है। 2011 में स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप फोर्ज हुई थी, उसके बाद 2015 में प्रधानमंत्री जी का पहला दौरा हुआ था। 2026 तक बहुत सारे एरियाज में हम लोग फॉरवर्ड मूवमेंट कर चुके हैं, चाहे आप ट्रेड की बात करें, इन्वेस्टमेंट की बात करें, डेवलपमेंट कोऑपरेशन की बात करें, डिफेंस कोऑपरेशन की बात करें, ट्रेड में ही करीबन 300% इंक्रीज हुई है 2015 से।
0: भारत अर्जेंटीना संयुक्त व्यापार समिति की चौथी बैठक ब्यूनस आयर्स में हुई। बैठक में वर्ष 2025 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अर्जेंटीना यात्रा के दौरान तय कार्य योजना की समीक्षा की गई। दोनों देशों ने रणनीतिक और आर्थिक संबंधों को और मजबूत करने की प्रतिबद्धता दोहराई। बैठक में खनन, ऊर्जा और बुनियादी ढांचा क्षेत्रों में निवेश के अवसरों पर भी चर्चा हुई। नेपाल में विनाशकारी बाढ़ में मृतकों की संख्या 626 हो गई है, जबकि 2000 से अधिक लोग अब भी लापता हैं। प्रभावित क्षेत्रों में राहत और बचाव अभियान जारी है। बचाए गए लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा रहा है। विदेश मंत्रालय ने बताया है कि 320 भारतीय नागरिकों से अभी तक संपर्क नहीं हो पाया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बताया कि त्रिशूली वन जल विद्युत परियोजना में कार्यरत 63 भारतीय नागरिकों को प्रभावित क्षेत्र से सुरक्षित निकाल लिया गया है। श्री जायसवाल ने कहा कि चीन की ओर करीब 400 भारतीय नागरिक सुरक्षित हैं और अपने परिवारों के संपर्क में हैं। उन्होंने बताया कि एक नियंत्रण कक्ष भी स्थापित किया गया है। केंद्रीय भंडारण निगम ने महाराष्ट्र के नासिक से तमिलनाडु के चेन्नई तक इस सीजन की दूसरी प्याज एक्सप्रेस रवाना की है। सोशल मीडिया पोस्ट में CEWC ने कहा कि इस पहल से आपूर्ति श्रृंखला और मजबूत होगी और सभी बाजारों में प्याज की समय पर उपलब्धता भी सुनिश्चित होगी। इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड IGL ने CNG की कीमत में 3.89 रुपये प्रति किलोग्राम की बढ़ोतरी की है। नई दरें आज से लागू हो गई हैं। कीमत बढ़ने के बाद राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में CNG अब 86.98 रुपये प्रति किलोग्राम मिलेगी। गुरुग्राम में CNG की कीमत 92.01 रुपये और गाजियाबाद तथा नोएडा में 95.59 रुपये प्रति किलोग्राम हो गई है। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजक्शकियान ने कहा है कि तेहरान अमेरिका के साथ बातचीत के लिए तैयार है, लेकिन अमेरिका को लेकर सतर्क भी है। उन्होंने कहा कि अगर अमेरिका समझौते की शर्तों का पालन करता है तो ईरान भी अपनी प्रतिबद्धताएं पूरी करेगा। श्री पेजक्शकियान की ये टिप्पणी ऐसे समय आई है जब ईरान घरेलू स्तर पर आर्थिक दबावों का सामना करना पड़ रहा है। आज राष्ट्रीय खेल दिवस है। हर वर्ष 29 अगस्त को भारत के महान हॉकी खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद की जयंती के उपलक्ष्य में ये दिवस मनाया जाता है। उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तथा युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री ने हॉकी के जादूगर कहे जाने वाले मेजर ध्यानचंद को श्रद्धांजलि अर्पित की है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani, the news read by Shagun Chopra. Prime Minister Narendra Modi has embarked for his four-day visit to Uzbekistan and Kyrgyz Republic this morning. In his departure statement, Mr. Modi expressed confidence that his visit to both the nations will strengthen India's strategic partnerships in Central Asia and deepen the civilizational connect with the region. He said that in recent years, India-Uzbekistan strategic partnership has seen significant advancement. The Prime Minister said he is looking forward to having discussions with the President of Uzbekistan, Shavkat Mirziyoyev, and further deepening cooperation in trade and investment, digital connectivity, defence, energy, and on advancing the shared visions of Viksit Bharat and Yangi Uzbekistan. The Prime Minister said that at the invitation of President of Kyrgyz Republic, Sadir Zaparov, he will travel to Bishkek to participate in the 26th SCO Summit. Mr. Modi said he is looking forward to advancing India's vision for the region, anchored in security, connectivity and opportunity, and to working with fellow members for a region free from the scourge of terrorism, separatism and extremism, which continue to threaten peace and stability in neighbourhood and beyond. There is considerable discussion about important discussions on cooperation in rare earth minerals during the Prime Minister's visit. In an interview with Akashwani News, Smita Pant, Indian ambassador to Uzbekistan, said that Uzbekistan is rich in natural resources, and Prime Minister Modi's visit to Tashkent will also focus on investment.

0: शहर की बुनियादी सहूलियात से मुतालिक 140 म्यूनसिपल कॉरपोरेशन और 30 गोरखपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी GDA के तरक्याती मंसूबों की भी नकाब कुशाई करेंगे। इन मंसूबों पर 130 करोड़ 73 लाख रुपये लागत आई है। वजीर दिफा और लखनऊ के रुकन पार्लियामेंट राजनाथ सिंह आज लखनऊ के दौरे के दौरान मुख्तलिफ प्रोग्रामों में हिस्सा लेंगे। सबसे पहले उन्होंने बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी के 11वें कॉन्वोकेशन में शिरकत की। इसके बाद वजीर दिफा दोपहर में विशालखंड गोमती नगर में सीनियर सिटीजन होम बिल्डिंग का इफ्तिताह करेंगे। शाम को वो चौक में लाजपत नगर चौराहे के करीब फ्रेग्रेंस पार्क का इफ्तिताह करेंगे। इसके अलावा राजनाथ सिंह लाला लाजपत राय और शहीद भगत सिंह के मुजस्मों की नकाब कुशाई भी करेंगे। वजीर आला योगी आदित्यनाथ हुकूमत ने उत्तर प्रदेश में स्वाइन फ्लू की सूरत हाल को लेकर चौकसी बढ़ा दी है। वजीर आला ने महकमा सेहत, जिला मजिस्ट्रेट और मुतल्लिका महकमों के अहदेदारों को हिदायत दी है कि वो स्वाइन फ्लू से मुतल्लिक मुसलसल निगरानी रखें और तिब्बी इंतजामात को यकीनी बनाएं। वजीर आला ने अहदेदारों को हिदायत दी कि वो रियासत में स्वाइन फ्लू के मामलात का बाकायदगी से जायजा लें और इस बात को यकीनी बनाएं कि किसी भी सतह पर कोई लापरवाही ना की जाए। वजीर आला ने अस्पतालों में मरीजों के इलाज मुआवजे की खातिरख्वाह तैयारियों को यकीनी बनाने की हिदायत भी दी। उन्होंने कहा कि तमाम मुतल्लिका अस्पतालों में आइसोलेशन वार्ड, जरूरी अद्वियात, टेस्टिंग किट्स, इलाज और दीगर जरूरी इंतजामात वाफिर मकदार में मौजूद हों ताकि जरूरत पड़ने पर मरीजों का फौरी इलाज हो सके। वजीर आला ने जिला मजिस्ट्रेट और महकमे सेहत के अफसरान से कहा है कि वो अपने अपने अजला में खसूसी चौकसी इख्तियार करें और सेहत के इंतजामात का बाकायदगी से जायजा लें। वजीर आला ने रियासत के लोगों से अपील की है कि वो स्वाइन फ्लू की किसी भी मुमकिन अलामत को नजरअंदाज न करें। दरियासना उत्तर प्रदेश के नायब वजीर आला ब्रजेश पाठक ने आज महकमे सेहत के हेडक्वार्टर में अफसरान के साथ मीटिंग की। रियासत में H1N1 केसों की बढ़ती हुई तादाद की रोशनी में महकमा हाई अलर्ट पर है। उत्तर प्रदेश के नायब वजीर आला ब्रजेश पाठक ने कहा कि उत्तर प्रदेश, खासतौर पर मगरबी उत्तर प्रदेश और लखनऊ में बुखार के मरीजों में अचानक इजाफे की वजह से तमाम मरीजों की शिनाख्त और अद्वियात की दस्तियाबी को यकीनी बनाने पर खसूसी तवज्जो दी जा रही है। नेपाल और तिब्बत में तबाहकुन सैलाब से मरने वालों की तादाद 589 हो गई है। 1924 अफराद लापता हैं जबकि 101 जख्मी अफराद अस्पतालों में जेर इलाज हैं। लापता होने वालों में हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट से वाबस्ता अफराद, गैर मुल्की शहरी, आम शहरी और सिक्योरिटी और सरकारी अहलकार शामिल हैं। भारत ने सैलाब से मुतासरा नेपाल के लिए इंसानी इमदाद का सिलसिला तेज कर दिया है। एक तीसरा तैयारा इंसानी इमदादी सामान लेकर कल शाम काठमांडू पहुंचा। वजीर खारजा एस जयशंकर ने कहा है कि इमदादी सामान में पोर्टेबल जनरेटर, खाने पीने की अशिया और पानी साफ करने वाली गोलियां शामिल हैं। डॉक्टर जयशंकर ने बताया कि 11 रुकनी टीम जिसमें डॉक्टर, पैरामेडिक्स और एक जासूसी टीम भी शामिल है, रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए हर जगह पर मौजूद है। उन्होंने नेपाल में राहत और बचाव कामों के लिए हिंदुस्तान की हिमायत का अहादा किया। चीनी के बरवक्त दस्तियाबी को यकीनी बनाने के लिए हुकूमत ने मौजूदा माहाना कोटा सिस्टम को अगले माह से 15 रोज़ा मख्तस निज़ाम से तब्दील करने का फैसला किया है। इस निज़ाम के तहत शुगर मिलों को पहले हफ्ते में कम से कम 40% और बकिया मकदार अगले हफ्ते फरोख्त करना होगी। एक रिपोर्ट।
1: सरकार ने कहा है कि देश में चीनी की कोई कमी नहीं है और उचित मूल्य पर पर्याप्त मात्रा में चीनी उपलब्ध कराने के लिए सभी आवश्यक उपाय किए जा रहे हैं। उपभोक्ता कार्य मंत्रालय ने बताया कि हाल के दिनों में चीनी मिलों से बाहर चीनी की कीमतों में लगभग 20% की गिरावट आई है, जबकि खुदरा चीनी की कीमतें भी कम होने लगी है। नए सीजन के लिए गन्ने की पेराई 15 अक्टूबर से शुरू होगी और इस दौरान 10 लाख टन से अधिक चीनी के उत्पादन का अनुमान है। सरकार ने चीनी मिलों को अक्टूबर में उत्पादित चीनी को बिना किसी प्रतिबंध के बेचने की अनुमति दे दी है। समाचार कक्ष से मुकेश कुमार।
0: इसी के साथ आकाशवाणी लखनऊ से इलाकाई खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ। अगला बुलेटिन दोपहर 2 बजे FM पर नश्र किया जाएगा।
2: मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़ पर और FM 100.3 मेगाहर्ट्ज़ पर ही आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। प्रस्तुत है ग्रामीण महिलाओं का अपना कार्यक्रम पनघट।

0: सरस्वती के राम राम।
1: और बताओ सरस्वती बहनी, घरे दुआरे का हाल चाल? और देखा काल इतना बड़ा त्योहार रहा रक्षाबंधन, तो तू अपने मायके गयो कि तू अपने भैया को बुलाऊ? तू हमें बताओ।
0: हम तो देखा अपने मायके गई रही।
1: अच्छा।
0: और बढ़िया से खूब अच्छे से राखी बांध के अपने भैया के।
1: हाँ,
0: फिर और बढ़िया से अपन उपहार लेके संजा के घर
1: उपहार लेके आए।
0: बिल्कुल
1: सही बात है, इतना बड़ा त्योहार है। देखो बहन तो भाई रक्षाबंधन मानत है, मुना भाई ओकर रक्षा तो करबे करत है, ओकर वचन तो देबे करत है, मुना साथे कुछ उपहार देता जोन बहन ओका साल भर ओका अगर कोनो ऐसा उपहार है तो रख के ओका कहूं रख दे अच्छे से ओका देखा करें हमारा भाई दिए रहा।
0: हाँ।
1: ओका या साल भर तो याद करिए,
0: वैसे
1: याद करा करिए।
0: हाँ,
1: मुना साल भर तो नहीं याद रही, चला अपने भाई के हम रक्षाबंधन बांधे रहे यहाँ साल, तुम्हारे भाई इस चीज हमें दिए रहा।
0: अधिका चंपा, भाई तो खुद ही अपने आप में एक उपहार है,
1: बिल्कुल
0: है ना ईश्वर का। तो देखा वो तो खुद ही उपहार है, वो हमका भले ही कोनो चीज उपहार में दे देते हैं, उन नहीं दिए तो हमें कोनो फर्क नहीं पड़ता।
1: बिल्कुल सही कहा
0: कि देखा उनकर स्नेह और आदर और जून वो

0: सो याद करा करिए,
1: हाँ, बिल्कुल
0: साल भर तो नहीं याद रही, चला अपने भाई के हम रक्षाबंधन बांधे रहे हर साल, तो मार भाई ये चीज हमें दिए रहा।
1: अधिका चंपा, भाई तो खुद ही अपने आप में एक ठे उपहार है,
0: बिल्कुल
1: है ना, ईश्वर का। तो देखा वो तो खुद ही उपहार है, वो हमका भले ही कोनो चीज उपहार में दे देते हैं, वो नहीं दिए तो हमें कोनो फर्क नहीं पड़ता।
0: बिल्कुल सही कहा,
1: कि देखा उनकर स्नेह और आदर और जून वो हमार बाट जोहत है, हमारे बदे वह सबसे बड़ा उपहार है।
0: कबू तो उनका बाट जोहत हो कब वह
1: बिल्कुल
0: तो कभी कदा कि वह ना जा पाए,
1: हाँ
0: कभी कदा तू ना जाए,
1: हमारे बदे
0: तो
1: उनकर हो भी सबसे बड़ा उपहार बा,
0: बिल्कुल
1: सबसे बड़ा सुख बा।
0: बिल्कुल सही कहा तू सरस्वती बहनी।
1: और तू बतावा तू कैसे कैसे मनाओ त्योहार?
0: हम तो मई के नाई गए, अपने भाई के यहीं बुलाए लिए।
1: अच्छा,
0: हम कहे ये बेर तू आओ।
1: बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया।
0: हाँ तो हम यहीं पे मनाए लिए अपन रक्षाबंधन।
1: चला बढ़िया से त्योहार भी।
0: अच्छा भाई तुम्हारे घर पे बमना, हम कहे हम आज पनघट्टे पे जाएगा, बहनी रंस तो मिले खाए।
1: हाँ हाँ,
0: और बहनी के त्यौहार देखो हम सब मनाए, बहनियाँ भी मनाए हुई हैं त्यौहार, वो सब भी अपने मई के गए हुई हैं, अपने भाई इनके बुलाए हुई हैं।
1: बिल्कुल,
0: वो सब भी बहुत अच्छे से त्यौहार मनाए हुई हैं।
1: बिल्कुल।
0: और देखा सोचती एक चीज़ और है।
1: हाँ
0: देखा एक तो हम बात बताई था, देखा कबीरा देखा दिन गए उजल भये सब केस, अजहूँ चेत रे बांवरे कबहू काड़ी कदेश।
1: देखा चंपा तू कितनी अच्छी बात बोले की प्रयास करत हो,
0: बिल्कुल
1: हम तुहार इशारा एकदम समझ गए ही।
0: का समझी तू?
1: हाँ तू देखा कहा था ना उजल भये सब केस, तू ही पंक्ति कहत रहो है ना, तो देखा हम समझ गए कि देखा ऐसे हमसे समझे के चाहिए कि समय से हम सब के जाग जाए के चाहिए।
0: बिल्कुल सही
1: कि कबीर जी कहते हैं कि कब हमार बार सफेद हो जाते हैं, बुढ़ापा कब दस्तक दे दे पता भी नहीं चलता है।
0: धीरे धीरे समय से बीतत रहता है, इतनी तीव्र गति से कभी कभी बीत जाता ना कि पता नहीं चला कि अपन शरीर कब काम नहीं करी, कब बाल सफेद हो जाई, कब घुटना नहीं काम करी, कब हाथ पैर नहीं काम करी, क्या हुनाई जाने।
1: जब हम सब युवावस्था में रहा थी
0: जब
1: तब लगा था कि हम सब कब ना बुढ़ाई,
0: कब बुढ़ापा नहीं करा, कब हम सबके बाल सफेद नहीं हुए।
1: अब जो घर के बूढ़ बुजुर्ग होते हैं हम सब उनका इसे देखा थी,
0: मजाक भी बनाए, देखो तो हर बाल तो पाक गए सफेद हो गए,
1: उनके बात की भी तवज्जो नहीं दे।
0: बिल्कुल
1: ना, तो वह देखा कितना अच्छा कबीर जी चेताए हैं ना कि देखा समय से तू जाग जा और अपन होश संभार ला।
0: बिल्कुल सही कहा बहनी।
1: तो जब तू समय से जाग जाइबा तो जौन तोर जिम्मेदारी है न केवल ओकर अच्छे से निर्वहन कर लेबा, बल्कि अपन सब कर्तव्यन के संतोषजनक तरीके से निभाए लेबा।
0: बिल्कुल सही
1: कहा। हम सोचत ही चंपा बहनी कस ना आज पनघटे पे यही बात पे चर्चा कर लीन जाए,
0: बुजुर्गों का ध्यान और सम्मान।
1: बिल्कुल सही।
0: तो देखा सरस्वती बहनी देखा बुजुर्ग जो होते हैं उनके बाल सफेद तो भले हो जाते हैं, मुना जो उनके अंदर गुड़ छुपा होते हैं वो तो कभो कम नहीं हुई,
1: बिल्कुल
0: ना
1: वो
0: कभो बुढ़ाई।
1: बिल्कुल सही कहा। तो
0: उनके चाल धीमी जरूर हो जाए, लेकिन उनके अनुभव हमें जिंदगी भर बहुत आगे तक ले जा सकते है। काहे कि वो मतलब बुजुर्ग भले हो जाते हैं उनके अंदर इतना ज्ञान होता है, जैसे हम सब इंटरनेट के जमाना है, मोबाइल के जमाना है, देखो मोबाइल पे हर अच्छी चीज कौन हम सब प्रश्न पूछे चाहे थे वो प्रश्न का उत्तर तुरंत मिली, उन्हें जो बुजुर्ग घर में होते हैं वो सब जो चीज ज्ञान दे हैं वो ज्ञान मोबाइल में भी नहीं मिली,
1: नहीं मिली
0: उनके अंदर जो ज्ञान होता है।
1: देखा हम जो जौनी चीज के हम सब एक नाम दे दिए ही ना बुढ़ापा, वो असल में एक अनुभव है, है ना। तो देखा अगर उनके चेहरे पे जितनी लकीरें झुर्रियां हैं वो सब खाली मात्र लकीर मात्र नहीं है, उनके अंदर बहुत सारा गुड़ रहस्य छिपा होता है।
0: बिल्कुल
1: है ना, जौने की हम सब तवज्जो नहीं दे, यही सब यही खातिर ना हम सब चंपा बहनी पीछे रह जाती।
0: बिल्कुल,
1: काहे कि हम सब बाहरी ज्ञान के तो बहुत महत्व और मान सम्मान दे थी, लेकिन जौन ज्ञान एकदम हमारे निकट बा ओका हम मान सम्मान नहीं देते। जैसे कहा जाता ना कि कस्तूरी खोजे दौड़त है हिरन, कस्तूरी ओकरे नाभि में रहत है।
0: बिल्कुल,
1: है ना। तो ऐसे ही सब कुछ सामने बा, लेकिन हम सब के जानकारी नहीं
0: पावत थी,
1: परख नहीं पावत थी।
0: देखा सही कहा थी बिल्कुल चंपा बेनी। और देखा हम सबके जीवन में कौनो ना कौनो बुजुर्ग ऐसा जरूर होते हैं कि जो हमारे जीवन के बड़े आपन जीवन समर्पित कर देते हैं।
1: बिल्कुल, अगर वो अपन जीवन
0: दादी दादा हो गए, नानी नाना हो गए, माता पिता हो गए, क्यों भी हो गए वो। देखा और सोचे के विषय भी है, जब हम सब छोट रही थे ना तो हम सब चलित है तो चल नहीं पाए ना, तो गिरित है उठित है तो वो सब उठावत है, चले मतलब उंगली पकड़ते हैं, कोशिश करते हैं कि अच्छे से चलें ये। और हम सब बोली थे तो ये सब तोतली बच्चे हो ना, तोतली जुबान में जब कुछ बोला था ना तो तुह तो समझ में ना ही आई उन्हें तो कोशिश करत हूँ कि का बोला था समझे के कोशिश करबू ओका समझ के।

0: ओने के काम करबू जब कुछ कहते हैं कि हमें कहूँ जाए के है मतलब ई सामान चाहिए ई खिलौना चाहिए तो का तू उनके तोते जवान में समझ के उन्हें देबू तो ने कितना खुशी भी होता है।
1: बिल्कुल सही कहा तू। और देखा जब वह घरे में हमारे बुजुर्ग जौन हुआ था दादी दादा बन जाते हैं नाना नानी हो जाते हैं धीरे धीरे समय से, तो हम सब क्या करते थे जैसे वो बैठा है कुछ मांगत है हमारे भाषा के तोतली भाषा के तो वो समझ जाते हैं, लेकिन जब वो कुछ कहत हैं तो हम सब उबी आई जाती है अब भागे लगती उनसे दूर भागे लगती
0: वही लोग तो हम सबके देखो रक्षा करते ना जब हम सब बचपन में छोट रहे थे और हमारे तबियत खराब हो जाते हैं तो रात रात भर जाग के सेवा भी करत है
1: सेवा करत है।
0: देखा अगर बुखार हो जाए तो कपड़ा गीला करके पट्टी करत है
1: और हम सब का दवाई चंपा बहनी दवाई दे के छोड़ देती है। और हम सब के ऐसा लगा था चंपा बहनी कि हम दवाई दिवा दी है सब सुविधा दे दिए है अच्छा बढ़िया खाए के देते है बढ़िया सोए के देते है बस होगी जिम्मेदारी।
0: अगर कुछ कहा था तो इसे लगा था तो फालतू बोलत रहा था।
1: हाँ
0: वो ना ये चीज हम सब भूल जाए था कि हम सब भी जब छोट रहे बचपन में तो सब कितना हम सबके बड़े किए
1: और कितना सहनशीलता और धैर्य रखे हुई हम सब के बड़ा करे में पाले पोसे में और कितना जो है उनके अनुभव के हम सब जो है नजरअंदाज कर थी तो हम सब के समझे के चाहिए कि उनकर जरूरत सिर्फ सुख सुविधा ना ही बाटे उनके अपनापन भी चाहिए उनके लगाव भी चाहिए अच्छा खाना कपड़ा तो उनके चाहबे करी लेकिन एकरे ऊपर भी जोन सबसे बड़ी बात है उनके चाहिए अपनापन।
0: बिल्कुल
1: है ना
0: देखा कुछ समय अपन निकाल के उनसे बात करें उनके हाल चाल पूछें कि का दिक्कत है का ना ये ना कि चला हम डॉक्टर के दिखाए दिए उनसे दवाई ले आए घर आए दवाई दे दी उन्हें खाना दे दिए तो हमारा काम खत्म ऐसे नहीं।
1: देखा जब दवाई तब अच्छे से असर करी जब उनके पजरे हम बैठे उनके प्रेम देव उनके स्नेह देव जौन प्रेम स्नेह और वो आशीर्वाद हमका दे थे ना ओका अब हमका समय है कि वही चीज हम उनका दे
0: है ना।
1: और बिल्कुल बहुत धैर्य से उनका देखे काहे कि कहा जाता ना चंपा बहनी बालक वृद्ध एक समान
0: बिल्कुल
1: है ना बुढ़ापे में उनकर हरकत जो है छोट लैकन जैसे हो जाता है। देखा जैसे वो नहाए जाते हैं तो धीरे धीरे नल खोली आराम से नहाई ही हम सब सोचे थे कि जल्दी जल्दी कह लें तो देखा सब्र हम सबके रखे की पड़ी उनके साथ है।
0: जैसे छोट ननवार गदेल होता ना कि जाते छोट कर आते तो जाते हैं पहुंचत ना है लेकिन मैंने चौकी है कुछ है रख के नल खोल लेते हैं जैसे बुजुर्ग होते धीरे धीरे अपन खोलत है पानी भरा था
1: वही कहे के मतलब वह बात चंपा बहनी कि देखा उनकर स्वास्थ्य के साथे साथे उनकर सम्मान के भी ध्यान रखे के चाहिए। कहे कि देखा खाली पेट भर जाए पर्याप्त नहीं होते है ना सम्मान एक बहुत बड़ी चीज है जहाँ उनके सम्मान मिली तो खाली वो प्रसन्न नहीं रही है पूरा परिवार प्रसन्न रही अपने आप में उनके आशीर्वाद के छा के नीचे जब हम सब फलम ना तो फिर देखा जैसे एक पेड़ की शाखा जेका अच्छे से सब कुछ पोषण मिला था वो कितनी फैल जाता तो जब हमारे भी बुजुर्ग
0: जब जड़ मजबूत हो तो तनाव तो अपने आप बन जाए।
1: बिल्कुल अत चक्र बा एक हम सब के समझे के चाहिए कि यही बुढ़ापा धीरे धीरे हमरे ही ओर आवत बा तो एक
0: हमारे गदेल जो देखी है
1: वह सीखी है तो देखा एक बार फिर से जैसे तू शुरुआत करे रहो कबीर के दोहा से हम फिर से दोहरावती कबीर सोई पीर है जो जाने पर पीर जो पर पीर न जानई सो काफिर बेपीर।
0: बिल्कुल
1: समझो अगर हम सब अपने घरे के बड़े बुजुर्ग की पीड़ा ना समझब तो देखा कहा जाता ना कि वाका जाने पीर पराई जाके पैर न फटे बीवाई।
0: बिल्कुल सही कहा तू बहनी
1: तो देखा उनके पीड़ा के अनुभव करा और उनके साथे खड़ा रहा।
0: बिल्कुल सही देखा इतनी अच्छी चीज बात कही बताओ तो चला हम तुम्हें नीक के लोग की सुनवाई दी खेमटा संगीता राय जी से चला तू सुना और बहनी हरी भी सुना।

0: सरस्वती बनी, देखा तुम्हें इतना नीचे गौनी सुनवाई दी है, अब देखा अपने पनघटे पे एक वार्ता है परंपरा और आधुनिकता में अंतर।
1: अच्छा
0: देखा सरस्वती बहनी, परंपरा हमें हमारी संस्कृति रीत रिवाज और मूल्य से जोड़त है,
1: बिल्कुल,
0: और वहीं आधुनिकता हमें नए विचार विज्ञान तकनीकी और बदलाव के अपना वे सिखावत है। यही बरे हमें ना तो अपनी अच्छी परंपरा के भूले के चाहिए और ना ये आधुनिकता से दूर रहे के चाहिए। परंपरा और आधुनिकता के संतुलन एक प्रगतिशील समाज के पहचान होते है।
1: बिल्कुल सही कहा तू, तो चला गायत्री सिंह से ये वार्ता सुन ली जाए, परंपरा और आधुनिकता में

0: अंतर।
1: चला सुन लिया जाए।
2: परंपरा और आधुनिकता में अंतर। परंपरा और आधुनिकता हमारे जीवन के दो महत्वपूर्ण पहलू हैं। परंपरा हमें हमारे अतीत संस्कृत संस्कारों और सामाजिक मूल्यों से जोड़ती है, जबकि आधुनिकता हमें बदलते समय के साथ आगे बढ़ने और नई सोच को अपनाने की प्रेरणा देती है। दोनों की अपनी अलग अलग पहचान है और अलग उपयोगिता है। आज का समाज तेजी से बदल रहा है। विज्ञान, तकनीक, शिक्षा और संचार के क्षेत्र में हुए विकास ने हमारे जीवन को पूरी तरह प्रभावित किया है। दूसरी ओर हमारी भाषा, संस्कृति, पारिवारिक मूल्य, रीति रिवाज और सामाजिक परंपराएं आज भी हमारे जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा हैं। ऐसे में परंपरा और आधुनिकता के बीच अंतर को समझना आवश्यक हो जाता है। क्या आधुनिकता का अर्थ अपनी परंपराओं को छोड़ देना है? क्या परंपराओं का अर्थ हमेशा पुरानी सोच से जुड़े रहना है? वास्तव में इन दोनों के बीच अंतर होने के बावजूद दोनों का हमारे जीवन में महत्वपूर्ण स्थान है। परंपरा का अर्थ पूर्वजों से प्राप्त विश्वास, मूल्य और रीति रिवाज है, जो समाज में पहचान और स्थिरता देती है। परंपरा का अर्थ उन विचारों, संस्कारों, रीति रिवाजों, मान्यताओं और जीवन मूल्यों से है, जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक आगे बढ़ते रहते हैं। हमारी भाषा, लोक कला, साहित्य, त्योहार, पारिवारिक संस्कार, बड़ों का सम्मान, अतिथि का स्वागत और समाज में मिलजुल कर रहने की भावना हमारी परंपराओं का हिस्सा है। परंपरा हमें अपनी पहचान से जोड़ती है या हमें बताती है कि हमारा समाज किस प्रकार विकसित हुआ और हमारे पूर्वजों ने किन मूल्यों का महत्व दिया। इस दृश्य से परंपरा केवल अतीत की याद नहीं है, बल्कि यह हमारे वर्तमान जीवन में ही कई महत्वपूर्ण मूल्यों को बनाए रखने का माध्यम है। आधुनिकता विज्ञान, तकनीक, नवाचार तथा प्रगतिशील सोच को बढ़ावा देती है। एक स्वस्थ समाज के लिए दोनों का संतुलित होना आवश्यक है। आधुनिकता का अर्थ केवल नई तकनीक, मोबाइल, इंटरनेट, आधुनिक सुविधाओं का उपयोग कराना ही नहीं है। आधुनिकता मुख्य रूप से एक सोच और दृष्टिकोण है। नई जानकारी को स्वीकार करना, वैज्ञानिक दृष्टिकोण को अपनाना, प्रश्न पूछना, समानता को महत्व देना, समय के अनुसार अपने विचारों में बदलाव करना और नई परिस्थितियों के अनुसार स्वयं को विकसित करना आधुनिकता का हिस्सा है। आज विज्ञान और तकनीक ने हमारे जीवन को काफी आसान बना दिया है। ऑनलाइन शिक्षा, डिजिटल भुगतान, इंटरनेट, आधुनिक चिकित्सा और संचार के साधन आधुनिकता के उदाहरण हैं। इसलिए आधुनिकता का वास्तविक अर्थ केवल बाहरी बदलाव नहीं, बल्कि सोच में सकारात्मक परिवर्तन भी है। अगर देखा जाए तो परंपरा और आधुनिकता के बीच सबसे बड़ा अंतर उनके दृष्टिकोण में दिखाई देता है। परंपरा मुख्य रूप से हमें अतीत से जोड़ती है, जबकि आधुनिकता हमें भविष्य की ओर बढ़ने की प्रेरणा देती है। परंपरा हमें अनुभव, निरंतरता और स्थिरता को महत्व दिया जाता है, जबकि आधुनिकता में परिवर्तन, नए विचार और विकास को महत्व दिया जाता है। परंपरा हमें बताती है कि हमारे पूर्वजों ने जीवन को किस प्रकार समझा और किन किन मूल्यों को अपनाया। आधुनिकता हमें यह सोचने के लिए प्रेरित करती है कि वर्तमान परिस्थितियों में हमें किस प्रकार आगे बढ़ना चाहिए। परंपरा में किसी बात को लंबे समय के चले आने के कारण महत्व मिल सकता है, जबकि आधुनिकता किसी विचार को तर्क, आवश्यकता और उपयोगिता के आधार पर स्वीकार करने पर जोर देती है। परंपरा और आधुनिकता के अंतर को परिवार के उदाहरण से आसानी से समझा जा सकता है। पहले परिवार के सदस्य एक साथ बैठकर बातचीत करते थे, एक दूसरे के साथ समय बिताते थे और बड़ों से जीवन का अनुभव प्राप्त करते थे। आज मोबाइल फोन और इंटरनेट के कारण बातचीत के तरीके बदल गए हैं। लोग दूर रहकर भी वीडियो कॉल के माध्यम से एक दूसरे से जुड़े रहते हैं, यह आधुनिकता का लाभ है। लेकिन यह तकनीक के कारण परिवार के सदस्य एक ही घर में रहते हैं, फिर भी एक दूसरे से बातचीत करना बंद कर देते हैं, यह संतुलित आधुनिकता नहीं कही जा सकती है। इसलिए आधुनिक साधनों को अपनाते हुए पारिवारिक संबंधों और मानवीय मूल्यों को बनाए रखना आवश्यक है। यही समझदारी परंपरा और आधुनिकता के बीच सही अंतर एवं संतुलन को स्पष्ट करती है। आधुनिकता ने समाज में कई सकारात्मक परिवर्तन किए हैं, जैसे शिक्षा के विस्तार, महिलाओं को भागीदारी, वैज्ञानिक दृष्टिकोण से तकनीक की विकास और समानता को

0: भावना ने समाज को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। आज महिलाएं शिक्षा, विज्ञान, प्रशासन, व्यवस्था, खेल और अनेक अन्य क्षेत्रों में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं। यह सामाजिक सोच में आए परिवर्तन का उदाहरण है। लेकिन आधुनिकता के नाम पर केवल बाहरी जीवन शैली को अपनाना पर्याप्त नहीं है। यदि हमारी सोच में मानवता, जिम्मेदारी और संवेदनशीलता नहीं है तो केवल आधुनिक सुविधाएं हमें वास्तविक रूप से आधुनिक नहीं बना सकती हैं। परंपरा आधुनिकता के बीच संतुलन बनाने में युवा पीढ़ी की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण है। युवाओं को अपनी संस्कृति, भाषा और परंपराओं को समझना चाहिए, साथ ही उन्हें विज्ञान, तकनीक, नई शिक्षा और नई सोच को भी अपनाना चाहिए। अपनी संस्कृति पर गर्व करना और नई दुनिया के विचारों को स्वीकार करना एक दूसरे के विरोधी नहीं है। परंपरा और आधुनिकता के बीच संतुलन को एक पेड़ के उदाहरण से जाना जा सकता है। पेड़ की जड़ें उसे मजबूती देती हैं और नई शाखाएं जो उसमें निकलती हैं उसे आगे बढ़ने और विस्तार करने का अवसर देती हैं। इसी प्रकार परंपरा हमारे जड़ों के समान है और आधुनिकता हमारे विकास की दिशा दिखाती है। यदि हमें केवल परंपरा से जुड़े रहें और परिवर्तन को स्वीकार न करें तो विकास की गति धीमी हो सकती है। दूसरी ओर यदि हम आधुनिकता की दौड़ में अपनी जड़ों और मूलों को पूरी तरह भूल जाएं तो हमारी संस्कृत पहचान कमजोर हो सकती है। इसलिए सही रास्ता दोनों के बीच संतुलन बनाना है। अंततः कहा जा सकता है कि परंपरा और आधुनिकता में स्पष्ट अंतर है, लेकिन दोनों एक दूसरे के विरोधी होना आवश्यक नहीं है। परंपरा हमें पहचान, संस्कृत और मूल्यों से जोड़ती है, जबकि उसी जगह पर आधुनिकता हमें नई सोच, वैज्ञानिक दृष्टिकोण और विकास की दिशा देती है। हमें अपनी अच्छी परंपराओं को सुरक्षित रखना चाहिए और समय की आवश्यकता के अनुसार उनमें आवश्यक सुधार भी स्वीकार करना चाहिए। साथ ही आधुनिक तकनीकों और नई सोच को अपनाते समय मानवीय मूल्यों और सामाजिक जिम्मेदारियों को नहीं भूलना चाहिए। वास्तविक आधुनिकता वही है जिसमें हम अपनी जड़ों से जुड़े रहते हैं, जुड़े रहते भी हैं और भविष्य की ओर आगे भी बढ़ते हैं। परंपरा हमें बताती है कि हम कहाँ से आए हैं और आधुनिकता हमें यह दिशा देती है कि हमें आगे कहाँ जाना है। इसलिए अपनी परंपराओं का सम्मान करते हुए आधुनिक सोच को अपनाना ही एक संतुलित और प्रगतिशील समाज की पहचान है।
1: सरस्वती मैनी, देखो गायत्री सिंह मैनी कितना फरियाए परंपरा और आधुनिकता में अंतर बताई।
2: बिल्कुल, और कितनी महत्वपूर्ण अच्छी अच्छी बातें बताई हैं गायत्री सिंह बहनी। तो देखा कहे कि ई मतलब बा कि जहाँ परंपरा हम सब के अपनी जड़ से जोड़े रखा थे, उन्हीं आधुनिकता जो है आगे बढ़े के प्रेरणा दे थे। और एक बात बताई चंपा, तोहका देखा थी ना, तो हमें परंपरा और आधुनिकता दोनों एक के साथ दिखात है।
1: उका?
2: देखा तू रक्षाबंधन के पर्व पे जो नी मेहंदी लगाए हो और जो नी आलता लगाए हो,
1: अच्छा,
2: तो परंपरा के द्योतक है। और जो तू केस सज्जा और ये परिधान पहरे हो तो हर एकदम आधुनिक है,
1: अच्छा?
2: ना? देख, तो और देखा अब इतना जानकारी पा ली है हो, अब हम सोचे थी कि चला तो का एक ठे वर्षा गीत सुनाई दी संगीता राय से,
1: चला
2: सुन लिया जाए।

0: नमस्ते बनी।
1: हाँ चंपा, देखा कितनी बढ़िया गवनई रही ना, तू खूब झूमत रहू। बाहर हो था वर्षा,
0: अच्छा अपने पनघटे बाजी तो झूमम नहीं।
1: अब बाहर हो था वर्षा और हम तो का सुनाई दी वर्षा गीत, तो मन तो झूमबई करी है ना।
0: बिल्कुल।
1: तो चला अब रसोई घर में चले के समय हो गया बा।
0: बिल्कुल, हम सब ने पनघटे पे आई। हाँ। और रसोईया में ना जैसा हो सका था कभी।
1: देखा इतना रिमझिम रिमझिम बढ़िया बरसत बा, अब बढ़िया बढ़िया खाई तबई तो वर्षा के आनंद और बढ़ जायी।
0: बिल्कुल सही कहा।
1: आज तू लेके आये हो रसोई घर से?
0: आज हम रसोई घर में ला है दाल बाटी चूरमा।
1: अच्छा, तो देर न करा, चला जल्दी से बतावा हमका और बहनी हरन के कि कैसे एका बनावा जात है।
0: चला देखा, दाल बनावे के लिए सामग्री लिख लें। अरहर के दाल आधा कप।
1: अच्छा।
0: मूंग दाल एक चौथाई कप। चना दाल एक चौथाई कप। हल्दी आधा चम्मच। नमक अपने स्वाद के अनुसार। और घी दो बड़ा चम्मच। जीरा एक चम्मच।

0: चीनी एक चुटकी, लाल मिर्च आधा चम्मच, और अदरक और हरी मिर्च के बारीक काट लें, और हरी धनिया पत्ती ले लें बारीक कटी हुई।
1: अच्छा
0: अब बनावे के लिए सबसे पहले दाल के अच्छी तरह से बीन के साफ कर लें। ओके बाद ओका धुल के आधा घंटा के लिए भिगोई दें। आधा घंटा बाद जो भीगी हुई दाल है ओका पानी से छान लें। अब दाल के कुकर में डाल दें। ओके बाद में पानी, नमक, हल्दी डाल के कुकर के बंद कर दें। ओके बाद गैस पे कुकर के चढ़ाई दें। ओके बाद 3 से 4 सीटी आई जाए तो गैस के बंद कर दें। उतने में दाल तो आराम से पक जाएगी।
1: बिल्कुल।
0: हाँ, अब एक ठू पैन ले लें, उसमें घी गरम कर लें।
1: अच्छा
0: और घी गरम हो जाए जब तो उसमें जीरा डाल दें। जीरा चटक जाए तो हींग डाल दें। अब जो अदरक और हरी मिर्च है बारीक कटी हुई ओका डाल दें। ओके बाद से दाल के डाल दें तड़का में। ओके बाद से ऊपर से धनिया पत्ती डाल दें। देखा,
1: अच्छा
0: दाल तो बन के तैयार हुई है।
1: हाँ
0: अब
1: देखा,
0: तुम्हें
1: तू
0: बताए।
1: तीन तरह के दाल लिए हुए माँ, ये
0: हाँ
1: कितना पौष्टिक हो जाए, है ना।
0: बिल्कुल।
1: तो अब बतावा आगे।
0: अब हम तुम्हें बताए दी बाटी।
1: अच्छा
0: एक है सामग्री। देखा, गेहूं का आटा ले लें 2 कप, सूजी ले लें 1/2 कप, और घी ले लें 4 चम्मच बड़ा चम्मच से।
1: अच्छा
0: हाँ, और अजवाइन ले लें 1/2 चम्मच छोटी चम्मच से, और नमक अपने स्वाद के अनुसार, और पानी भी आवश्यकता के अनुसार, और घी ले लें बाटी सेके के लिए।
1: अच्छा
0: अब देखा बनावे की विधि। आटा में सूजी, नमक, अजवाइन के डाल के अच्छे से मिला लें। ओका थोड़ा थोड़ा पानी डाल के आटा के मुलायम गूंद लें। ओके बाद से आटा तैयार जाकर छोटी छोटी लोई बनाई लें गोल गोल। ओके बाद ओका हल्का सा बीच से दबाई के चिपटा कर दें हल्का सा। ओका कुकर के रख दें गैस पे। कुकर जब गर्म हो जाए मैं थोड़ा सा घी डाल दें, और घी के बढ़िया से कुकर में हिलाए दें कि हर तरफ से लग जाए कुकर में, जैसे बाटी चिपके ना।
1: अच्छा
0: हाँ, ओके बाद बाटियों में डाल दें। ओके बाद से ओका ढक दें। ओका कुकर बंद ना करें
1: अच्छा
0: ताकि सीटी
1: ऐसे।
0: लगाएंगे तो जो सेफ्टी वाल कही जाता है ना वो
1: हाँ
0: उड़ी सकत है।
1: अच्छा, बस
0: हाँ
1: खाली ऊपर से ऐसे
0: हाँ
1: ढक्कन
0: क्योंकि
1: रख देवे का
0: सूखा
1: है।
0: रही ना तो मैं गैस तो बन नहीं पाई,
1: समझ गए।
0: बनी तो जो उड़ी जाए। ओके बाद से ओका हिला हिलाए के बढ़िया से ओका सेक लें,
1: सेक लें।
0: एकदम सुनहरा हो जाए तो ओका निकाल लें।
1: अच्छा
0: अब देखा चूरमा के लिए जो बाटी तैयार है उनमें से 3-4 बाटी ले लें, और घी ले लें 3 चम्मच, और पिसी चीनी ले लें 1/2 कप, इलायची पाउडर ले लें 1/2 चम्मच, और कटा हुआ काजू बादाम ले लें।
1: अच्छा
0: हाँ, अब जो बाटी तैयार है ओका तोड़ लें, बारीक चूरा बना लें। ओका में घी डाल दें, पिसी हुई चीनी डाल दें, इलायची पाउडर डाल दें, सबके अच्छे से मिला लें, और ऊपर से कटा हुआ मेवा डाल के सबके मिला लें। देखा दाल बाटी चूरमा
1: चूरमा
0: तैयार
1: तैयार
0: है।
1: है। और देखा, ये तो पौष्टिकता के साथ साथ स्वादिष्ट भी है
0: बिल्कुल।
1: ना। देखा,
0: अब
1: हमारा
0: देखा,
1: तो मन
0: अब
1: करा था
0: हम
1: बस
0: तुम्हें तो
1: अब ही।
0: बताए, अब तू जाओ आज तू घरे बनाए अपने।
1: बिल्कुल, हम तो सोचे थे जल्दी से पनघटे पे जाएं और पहले दाल बाटी चूरमा खाएं।
0: बिल्कुल।
1: तो चला, अब कहा ना बहिनी हरन के एक ठे फिल्मी गीत सुनाई देवा जाए, फिल्म गाइड से।
0: चला सुन लिया जाए।

0: सरस्वती बहनी
1: चंपा तुझे
0: इतना नीक के हमें गौनी सुनवाई दी हूँ, हमारे तो मन खुश हो गए।
1: हाँ, अब देखा हम चाह थी कि जौन हमार बहनी हरन पनघटे के सुनत ही रोज बैठ के, तो हम जाने चाहते कि उनके मन में का भाव है हम सब के प्रति।
0: बिल्कुल
1: है ना, तो देखा हम चाहा थी कि बहनी आपन संदेश हम तक कैसे पहुंचावे, वो कैसे पहुंचावे के है ओकरे बदे चला अपने बहनी हरन के सुनवाए देती एक ठे संदेश।
2: पनघट
0: चला सुन लिया जाए।
2: जहाँ बातन में होता अपने पन का मिठास, माटी की खुशबू और दिल से दिल का जुड़ाव, जहाँ मिलके हम हंसी थे बोली थे और आपन सुख दुख बांटी थे, ये हम सब का आपस में जोड़े के एक अदृश्य डोर है। बहनी हरन हमें बहुत खुशी हुए अगर आप पनघट का हिस्सा बनी हैं।
3: तो हमका जरूर बतावें कि आप सबके हमारे कार्यक्रम कैसन लागत है, कौन बात आपका ज्यादा पसंद आवत थी और इमा आप नवा का जोड़े चाहत थी। आपन प्यारी प्यारी प्रतिक्रिया और सुझाव हमका ईमेल संदेश और व्हाट्सएप के जरिए भेजें।
4: हमारा ईमेल एड्रेस है
5: panghatprogram@gmail.com। स्पेलिंग है PANGHATPROGRAMME@gmail.com panghatprogram@gmail.com। एमा कौनो प्रकार के कोई स्पेस ना हुई, सारे अक्षर छोटी ABCD या स्मॉल लेटर में हुई हैं।
4: हमारा व्हाट्सएप नंबर है 800-492-6250। तो सखियन देर कौने बात के, तुरंत उठावें अपन मोबाइल और भेज दें अपने मन के बात, या तो लिख के या अपनी आवाज में रिकॉर्ड करके। आपके संदेश के हम सब के
6: बेसब्री से इंतजार रही।
0: सरस्वती बहनी।
1: हाँ चंपा,
0: हम सबके इंतजार तो रहबे करी बहनी।
1: बिल्कुल, तो अपन बढ़िया बढ़िया प्रेम भरा संदेश भेजे और हम सबके उत्साहित करे, ताकि हम सब बढ़िया बढ़िया कार्यक्रम लेके हमेशा आवत रही।
0: बिल्कुल सही कहा थी।
1: हम सब के मन ना ही लगते बहनी हरन के मिले बिना।
0: हाँ,
1: है ना,
0: ऐसा हम सब घर में रही सोचे लग का पनघटे जाई अपने बहनी ऐसे आपन सुख दुख उन के बताई, और उन्हें का मतलब अच्छा लगा था, उन्हें का ना अच्छा लगा था, उन्हें और का जाने के का सुने के, वो सभी मेरे संदेश के बारे में बतावे।
1: बिल्कुल सही कहा तू चंपा। जाते जाते ना हम एक बात कहे चाहती तू और सब बहनी हरन से भी, जानत हो आज की एक तो का हम घटना बतावा थी। जब हम सवेरे पनघटे पे आवत रहे ना, तो हम बारिश के कारण हमें रिक्शा ना आए मिलत रहा।
0: हाँ,
1: ना? तो हमें जैसी तैसी एक ठे रिक्शा दिखाई दिया। हाँ, तो हम उनका इशारा करे रिक्शा रोक दा, ताकि हम ऊपर बैठ जाए अपन घटे पे पहुंच जाए। तो काभा जौन रिक्शावा चलावत रहे वो बहुत बुजुर्ग रहे।
0: अच्छा,
1: वो हमरे हाथ के इशारा

0: देख के रिक्शा रोके चाहत रहे, लेकिन जैसे वो रिक्शा रोके तब पीछे से, उनके पीछे से दुई लड़का युवावस्था के, एकदम युवा लड़का, खूब तेजी से अपन गाड़ी लेके उनका, उनके सामने से चिपक के एकदम गुजरे और उनका उल्टा सीधा बात सुनाई के चला गए।
1: अच्छा।
0: और हम ये दृश्य देख के बहुत व्यथित हो गई, कहे देखा आज हम समय बुजुर्गन के सम्मान और स्वास्थ्य के बात करत रही।
1: बिल्कुल।
0: तो जब हम देखा कि ये कैसा हमार युवा वर्ग हो गया है कि जौने के तनिको फिक्र नहीं बाटे कि ए उम्र में अगर उनका चोट चपेट लग जाए तो उनका इलाज में कितना दिक्कत होए और ठीक होवे में कितना दिक्कत होए।
1: बिल्कुल सही बात।
0: बड़ी बात ई है कि उनका संस्कार में भी कमी रही।
1: सही बात है।
0: जब तू इतनी तेजी से गाड़ी ले गया तो उल्टा सीधा तो ना ही बोले के चाहत रहा, है ना?
1: सही बात है, गलती तो खुद किया।
0: बिल्कुल। और हम देखा थी कि जौन रिक्शा चलावत रहे बुजुर्ग जन रहे वो एको शब्द पलट के जवाब नहीं दिए, तो देखा ये उनकर संस्कार रहा है ना, चाहता तो वो कुछ बोल सकत रहे है ना, लेकिन वो कुछ ना ही बोले। तो देखा ये हम सब बदे बहुत बड़ी सीख है, अपने संस्कार के जागृत रखें।
1: बिल्कुल सही कहा तू बहनी।
0: तो चला चंपा,
1: घड़ी सारा करत है। हाँ। अब घरे चले के तो बेला होत है।
0: बिल्कुल।
1: बहनिया से राम राम किया जाए,
0: अब फिर मिला जाए तो राम राम बहनी हरे,
1: राम राम बहनी हरे।

अभी ग्रामीण महिलाएं सुन रही थी अपना कार्यक्रम पनघट। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़ पर और FM 100.3 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। हमारे स्टूडियो की घड़ी में 2 बजने वाले हैं। थोड़ी देर में आप सुनेंगे समाचार, जिन्हें हम दिल्ली से रिले करेंगे।

0: In the recent years, the country won 2 medals at Rio 2016, 7 at Tokyo 2020, and 6 medals at Paris 2024. India's performance at the Paralympic Games has also improved remarkably. The medal tally rose from 4 at 20 at Rio 2016 to 19 at Tokyo 2020. At Paris 2024, India recorded its best ever Paralympic performance with 29 medals. Saqlain Akhtar for Akashvani News, Delhi.
1: Prime Minister Narendra Modi today paid homage to the Indian hockey legend Major Dhyan Chand on the occasion of National Sports Day. In a social media post, Mr. Modi said, Major Dhyan Chand's brilliance in Indian hockey continues to inspire generations. Union Minister for Finance and Corporate Affairs Nirmala Sitharaman today highlighted India's broad-based growth, reform momentum and expanding opportunities for long-term investment in Chicago. The finance minister today addressed a high-level business roundtable with leading investors and business leaders. A key focus of the meeting was manufacture in India, for India and for the world, with opportunities across manufacturing, AI and digital, financial services, infrastructure, food processing, defense and advanced technologies. The India Meteorological Department IMD has issued an orange colour warning for heavy to very heavy rainfall over Odisha till Monday. Heavy rainfall is also likely to hit Bihar, Gangetic West Bengal, Jharkhand, Madhya Pradesh, Chhattisgarh and parts of northeastern states for the next 2 to 3 days. And now before we end the bulletin, the headlines once again. Prime Minister Narendra Modi embarks on 4-day visit to Uzbekistan and Kyrgyz Republic, says visit will strengthen strategic partnerships and deepen civilizational ties with Central Asia. Death toll in Nepal flash floods rises to 626, over 2,000 people still missing. India steps up humanitarian assistance. US President Donald Trump announces biggest oil deal with Venezuela. Iranian President Masoud Pezeshkian says Tehran is open to negotiations with Washington but remains deeply cautious. National Sports Day being observed today, Prime Minister Modi pays tribute to Major Dhyan Chand and salutes dedication of sportspersons. Orange alert issued for heavy to very heavy rainfall in Odisha for next 2 to 3 days. And with that, we end the midday news.
2: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उज़्बेकिस्तान और किर्गिज गणराज्य की 4 दिवसीय यात्रा पर रवाना। कहा, इस यात्रा से मध्य एशिया के साथ रणनीतिक साझेदारी मजबूत होगी और सभ्यतागत जुड़ाव और गहरा होगा। नेपाल में विनाशकारी बाढ़ में मरने वालों की संख्या 626 हुई। 2000 से अधिक लोग अब भी लापता। भारत ने मानवीय सहायता बढ़ाई। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने वेनेजुएला के साथ अब तक के सबसे बड़े तेल समझौते की घोषणा की। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान ने कहा, ईरान अमरीका के साथ बातचीत के लिए तैयार लेकिन अत्यधिक सतर्क भी है। आज राष्ट्रीय खेल दिवस है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मेजर ध्यानचंद को श्रद्धांजलि अर्पित की और खिलाड़ियों के समर्पण को सराहा। और ओडिशा में अगले 2 से 3 दिनों के लिए मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह उज़्बेकिस्तान और किर्गिज गणराज्य की 4 दिन की यात्रा पर रवाना हो गए। श्री मोदी ने रवाना होने से पहले कहा कि उनकी उज़्बेकिस्तान और किर्गिज गणराज्य की यात्रा से मध्य एशिया में भारत की रणनीतिक साझेदारियां मजबूत होंगी तथा इस क्षेत्र के साथ सभ्यतागत जुड़ाव और गहरा होगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि वे उज़्बेकिस्तान के राष्ट्रपति शफकत मिर्ज़ियोयेव के साथ व्यापार और निवेश, डिजिटल संपर्क, रक्षा तथा ऊर्जा क्षेत्र में सहयोग और मजबूत करने के साथ साथ विकसित भारत और यांगी उज़्बेकिस्तान के साझा दृष्टिकोण को आगे बढ़ाने पर चर्चा करेंगे। और अब बात करते हैं ताशकंद में मौजूद हमारे संवाददाता सुशील चंद तिवारी से। जी सुशील, ताशकंद पहुंचने पर प्रधानमंत्री के स्वागत की क्या तैयारियां हैं वहां पर और लोगों में कितना उत्साह देख रहे हैं आप?
3: विशाल, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वागत की ताशकंद में जबरदस्त तैयारियां हो रही हैं। उज़्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद में जगह जगह पर भारतीय झंडे लहरा रहे हैं। जिस होटल में प्रधानमंत्री रुकेंगे वहां भी चारों तरफ तिरंगा ही नजर आ रहा है। विशाल, देर शाम प्रधानमंत्री का भारतीय और

0: और उज्बेकिस्तान के लोगों की ओर से पारंपरिक अंदाज में स्वागत भी होगा। हम जानते हैं कि भारत और उज्बेकिस्तान के बीच रिश्ते बहुत दोस्ताना हैं और यहाँ के लोग जो हैं वो भारतीय फिल्मों, गानों और फिल्मी सितारों के दीवाने हैं, तो उसकी एक झलक भी यहाँ के स्वागत में जरूर नजर आएगी। विशाल,
1: सुशील, इस यात्रा के दौरान किन प्रमुख विषयों पर चर्चा होने की संभावना है वहां पर?
0: विशाल, प्रधानमंत्री की जो ये मध्य एशियाई देश उज्बेकिस्तान की यात्रा है, ये उनकी चौथी यात्रा है और इस यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और

0: अच्छा होने की संभावना है वहां पर।
1: विशाल, प्रधानमंत्री की जो ये मध्य एशियाई देश उज्बेकिस्तान की यात्रा है, ये उनकी चौथी यात्रा है और इस यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति शौकत मिर्जियोयेव के बीच तमाम मुद्दों पर बातचीत होगी जिससे दोनों देशों के बीच सहयोग बढ़ सके। लेकिन जो प्रमुख मुद्दे हैं उनमें निवेश बढ़ाने, व्यापार को दोगुना करने, रक्षा, डिजिटल कनेक्टिविटी, ऊर्जा, शिक्षा और लोगों के बीच आपसी सहयोग और संवाद बढ़ाने को लेकर खास बातचीत होगी। विशाल, दोनों देशों के बीच कनेक्टिविटी भी एक बहुत बड़ी अड़चन है व्यापार को आगे बढ़ाने में, तो इस विषय पर भी चर्चा होने की उम्मीद है। विशाल,
0: धन्यवाद सुशील इस जानकारी के लिए। उज्बेकिस्तान में भारत की राजदूत स्मिता पंत ने आकाशवाणी समाचार के साथ विशेष साक्षात्कार में कहा कि उज्बेकिस्तान में प्राकृतिक संसाधनों का समृद्ध भंडार उपलब्ध है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी की ताशकंद यात्रा के दौरान निवेश और महत्वपूर्ण खनिजों के क्षेत्र में प्रौद्योगिकी हस्तांतरण पर भी चर्चा होने की संभावना है।
2: रिलेशनशिप ऑलरेडी बहुत अपवर्ड ट्रैजेक्टरी में है। 2011 में स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप फोर्ज हुई थी, उसके बाद 2015 में प्रधानमंत्री जी का पहला दौरा हुआ था। 2026 तक बहुत सारे एरियाज में हम लोग फॉरवर्ड मूवमेंट कर चुके हैं, चाहे आप ट्रेड की बात करें, इन्वेस्टमेंट की बात करें, डेवलपमेंट कोऑपरेशन की बात करें, डिफेंस कोऑपरेशन की बात करें, ट्रेड में ही करीबन 300% इंक्रीज हुई है 2015 से।
0: वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने आज शिकागो में भारत की व्यापक विकास दर, सुधारों की गति और दीर्घकालिक निवेश के बढ़ते अवसरों पर चर्चा की। उन्होंने प्रमुख निवेशकों और व्यापारिक नेताओं के साथ एक उच्च स्तरीय व्यापार गोलमेज सम्मेलन को संबोधित किया। बैठक में भारत में विनिर्माण, भारत और विश्व के लिए विषय पर चर्चा हुई। इसमें विनिर्माण, AI और डिजिटल प्रौद्योगिकी, वित्तीय सेवाएं, अवसंरचना, खाद्य प्रसंस्करण, रक्षा और उन्नत प्रौद्योगिकी जैसे क्षेत्रों में उपलब्ध अवसर शामिल हैं। नेपाल में विनाशकारी बाढ़ में मृतकों की संख्या 626 हो गई है, जबकि 2000 से अधिक लोग अब भी लापता हैं। प्रभावित क्षेत्रों में राहत और बचाव अभियान जारी है। बचाए गए लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा रहा है। इस बीच भारत ने बाढ़ प्रभावित नेपाल को मानवीय सहायता तेज कर दी है। मानवीय सहायता सामग्री के साथ तीसरा विमान कल शाम काठमांडू पहुंचा। विदेश मंत्रालय ने बताया कि 320 भारतीय नागरिकों से अभी तक संपर्क नहीं हो पाया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने नई दिल्ली में मीडिया से बातचीत में कहा कि भारतीय मूल के करीब 100 अन्य लोगों से भी संपर्क नहीं हो पाया है। एक रिपोर्ट।
3: श्री जायसवाल ने बताया कि त्रिशूली वन जल विद्युत परियोजना में कार्यरत 63 भारतीय नागरिकों को प्रभावित क्षेत्र से सुरक्षित निकाल लिया गया है। उन्होंने कहा कि चीन की ओर करीब 400 भारतीय नागरिक सुरक्षित हैं और अपने परिवारों के संपर्क में हैं। उन्होंने बताया कि एक नियंत्रण कक्ष भी स्थापित किया गया है। काठमांडू और बीजिंग स्थित भारतीय दूतावासों ने भी 24 घंटे हेल्पलाइन शुरू की है। नियंत्रण कक्ष के टेलीफोन नंबर है 011-230-88-719 और 011-230-1213। व्हाट्सएप नंबर है 9968291988 और ईमेल है situationroom@mea.gov.in। काठमांडू स्थित भारतीय दूतावास के आपातकालीन नंबर है +977-9851-31-6807 +977-970-910-7500 और +979813261117। बीजिंग स्थित भारतीय दूतावास का नंबर है +86185142-84905। समाचार कक्ष से सौरभ अग्रवाल।
0: ये समाचार हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं।
4: अपडेट रहे, आगे रहे। @AIRNewsHindi और Instagram पर AIR News Alerts को फॉलो करें।
0: दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने वेनेजुएला के साथ अब तक के सबसे बड़े तेल समझौते की घोषणा की है। वेनेजुएला के साथ हुए इस समझौते से अमेरिका को 65 अरब बैरल से अधिक कच्चे तेल के भंडार पर नियंत्रण हासिल हो जाएगा। एक रिपोर्ट।
5: राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा है कि ये समझौता अमेरिका करदाताओं पर बिना किसी बोझ के हासिल किया गया है और इससे अमेरिका के कुल तेल भंडार दोगुने से भी अधिक हो जाएंगे। अमेरिकी प्रशासन का दावा है कि तेल आपूर्ति में इस वृद्धि से घरेलू गैसोलीन की कीमतें कम होंगी और वेनेजुएला की अर्थव्यवस्था को आर्थिक सुधार में मदद मिलेगी। ये घोषणा वेनेजुएला के तेल निर्यात पर महीनों से चल रहे अमेरिकी राजनयिक दबाव

0: प्रतिबंधों के प्रवर्तन के बाद हुई है। ये समझौता ट्रंप के आदेश पर किए गए अमरीकी सैन्य अभियान के 9 महीने बाद हुआ है, जिसमें वेनेजुएला के नेता निकोलस मादुरो को गिरफ्तार किया गया था और उन पर मादक पदार्थों की तस्करी के आरोप लगाकर उन्हें अमरीका को सौंप दिया गया था। समाचार कक्ष से भूपेंद्र सिंह।
1: ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजश्कियान ने कहा है कि तेहरान अमेरिका के साथ बातचीत के लिए तैयार है, लेकिन अमेरिका को लेकर अत्यधिक सतर्क भी है। उन्होंने कहा कि अगर अमेरिका समझौते की शर्तों का पालन करता है तो ईरान भी अपनी प्रतिबद्धताएं पूरी करेगा। एक रिपोर्ट।
2: श्री पेजश्कियान ने एक टीवी साक्षात्कार में कहा कि राजनयिक प्रयासों का केंद्र बिंदु जून में हुए शांति समझौते को फिर से लागू करना हो सकता है। उन्होंने कहा कि समझौता लागू रहने के दौरान ईरान ने करीब 9 करोड़ बैरल तेल का निर्यात किया था। श्री पेजश्कियान की टिप्पणी ऐसे समय में आई है जब ईरान घरेलू स्तर पर आर्थिक दबावों का सामना कर रहा है। अमरीका और ईरान ने 18 जून को क्षेत्र में लेबनान सहित सभी मोर्चों पर युद्ध समाप्ति का समझौता किया था, जिसकी समय सीमा 17 अगस्त को समाप्त हो गई। इन वार्ताओं का उद्देश्य अंतिम समझौते तक पहुंचना था, लेकिन पिछले महीने तनाव बढ़ने के बाद इनका भविष्य अनिश्चित बना हुआ है। समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार बल।
1: संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू 31 अगस्त से सर्बिया के बेलग्रेड में आयोजित होने वाली उच्च स्तरीय स्मृति बैठक में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करेंगे। बैठक का विषय है गुट निरपेक्षता की विरासत, आज की दुनिया के लिए सबक। सरकार ने चीनी की समयबद्ध उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए मौजूदा मासिक कोटा प्रणाली के स्थान पर अगले महीने से पखवाड़े के आधार पर चीनी आवंटन प्रणाली शुरू करने का निर्णय लिया है। इसके अंतर्गत चीनी मिलों को पहले सप्ताह में कम से कम 40% आवंटन और शेष मात्रा अगले सप्ताह में बेचनी होगी। केंद्रीय भंडारण निगम CWC ने महाराष्ट्र के नासिक से तमिलनाडु के चेन्नई तक इस सीजन की दूसरी प्याज एक्सप्रेस रवाना की है। सोशल मीडिया पोस्ट में CWC ने कहा कि इस पहल से आपूर्ति श्रृंखला और मजबूत होगी और सभी बाजारों में प्याज की समय पर उपलब्धता सुनिश्चित हो सकेगी। इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड IGL ने CNG की कीमत में 3.89 रुपए प्रति किलोग्राम की बढ़ोतरी की है। नई दरें आज से लागू हो गई हैं। कीमत बढ़ने के बाद राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में CNG अब 86.98 रुपए प्रति किलोग्राम मिलेगी। गुरुग्राम में CNG की कीमत 92.01 रुपए और गाजियाबाद तथा नोएडा में 95.59 रुपए प्रति किलोग्राम हो गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सुबह 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों से अपने विचार साझा करेंगे। ये मासिक रेडियो कार्यक्रम की 137वीं कड़ी होगी। सरकार ने व्हाट्सएप की निगरानी के लिए केंद्र सरकार द्वारा जारी किए गए दिशा निर्देशों से संबंधित एक फर्जी दावे का खंडन किया है। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने बताया कि सरकार ने ऐसे कोई दिशा निर्देश जारी नहीं किए हैं। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
3: आकाशवाणी समाचार से जुड़े रहिए, expert@AIRnews हिंदी को फॉलो करें और ताजा खबरों के लिए newsonair.gov.in पर जाएं।
1: ये आकाशवाणी है। भारतीय हॉकी के महान खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद की जयंती के उपलक्ष में आज राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जा रहा है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इस अवसर पर देश भर में कई कार्यक्रमों का आयोजन किया गया है।
4: राष्ट्रीय खेल दिवस 2026 को 3 दिवसीय राष्ट्रव्यापी अभियान के रूप में मनाया जा रहा है। इस अभियान के 3 प्रमुख स्तंभ हैं, ट्रिब्यूट, प्ले एंड मूव। इस वर्ष राष्ट्रीय खेल दिवस 1 घंटा खेल के मैदान में के आह्वान के साथ मनाया जा रहा है। इस अवसर पर देश भर में विभिन्न खेल गतिविधियों का आयोजन किया जा रहा है। इस अभियान के तहत दिल्ली में केंद्रीय मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया और अर्जुन राम मेघवाल ने क्रिकेट खेला। मीडिया से बातचीत में डॉक्टर मांडविया ने लोगों से स्वस्थ और फिट रहने के लिए हर सप्ताह कम से कम 1 घंटा खेल के मैदान में बिताने का आह्वान किया।
5: आज नेशनल स्पोर्ट्स डे के अवसर पर सारे देश में फिट इंडिया मूवमेंट को आगे बढ़ाने के लिए 1 घंटे खेल के मैदान में कार्यक्रम दिया है। मुझे खुशी है, मोदी जी के नेतृत्व में देश बदल रहा, देश आगे बढ़ रहा, नया भारत का निर्माण हो रहा।
4: श्री मेघवाल ने कहा कि खेल लोगों को स्वस्थ और फिट रखने के साथ साथ तनाव से दूर रखने में भी मदद करता है। सरकार द्वारा खेल पारिस्थितिकी तंत्र में लगातार निवेश किया जा रहा है, जिसके परिणाम वैश्विक मंच पर भी दिखाई दे रहे हैं। प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय खेल आयोजनों में भारत का प्रदर्शन, ओलंपिक, पैरालंपिक और बहु खेल प्रतियोगिताओं में देश की बढ़ती ताकत को

0: दर्शाता है। खेलो इंडिया टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम और खेलो इंडिया राइजिंग टैलेंट आइडेंटिफिकेशन जैसी पहले देश के खेल पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत कर रही है और खिलाड़ियों को उच्च स्तरीय प्रतियोगिताओं के लिए तैयार करने में मदद कर रही है। सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मेजर ध्यानचंद को श्रद्धांजलि अर्पित की है। प्रधानमंत्री ने सभी खेल प्रेमियों को उनके समर्पण, जुनून और दृढ़ संकल्प देश को गौरवान्वित करता है। मौसम विभाग ने ओडिशा में सोमवार तक मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि राज्य में अगले 5 दिनों तक बारिश और गरज के साथ तूफान जारी रहने की संभावना है। उधर बिहार, पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्र, झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और उत्तर पूर्वी राज्यों के कुछ हिस्सों में भी अगले 2 से 3 दिनों तक तेज बारिश की संभावना है। इस बीच मौसम विभाग ने कहा है कि दिल्ली में आज आसमान में बादल छाए रहेंगे जबकि बारिश नहीं होगी। विभाग ने यह भी बताया कि राष्ट्रीय राजधानी में अगले 7 दिनों तक अधिकतम तापमान में कोई खास बदलाव नहीं होगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उज्बेकिस्तान और किर्गिज गणराज्य की 4 दिवसीय यात्रा पर रवाना। कहा, इस यात्रा से मध्य एशिया के साथ रणनीतिक साझेदारी मजबूत होगी और सभ्यतागत जुड़ाव और गहरा होगा। नेपाल में विनाशकारी बाढ़ में मरने वालों की संख्या 626 हुई। 2000 से अधिक लोग अब भी लापता। भारत ने मानवीय सहायता बढ़ाई। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने वेनेजुएला के साथ अब तक के सबसे बड़े तेल समझौते की घोषणा की। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजश्कियान ने कहा, ईरान अमेरिका के साथ बातचीत के लिए तैयार लेकिन अत्यधिक सतर्क भी है। आज राष्ट्रीय खेल दिवस है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मेजर ध्यानचंद को श्रद्धांजलि अर्पित की और खिलाड़ियों के समर्पण को सराहा। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़ पर और FM 100.3 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। आप हमारे प्रोग्राम न्यूज़ ऑन एयर ऐप पर भी सुन सकते हैं। प्रस्तुत है लोकगीत। लोकगीत कार्यक्रम में आज कलाकार हैं हरिनाथ सुमन मौर्य। इनके स्वर में लीजिए सबसे पहले सुनिए कजरी वंदना।

हरिनाथ सुमन मौर्य के स्वर में अभी आपने कजरी वंदना सुनी। लोकगीत कार्यक्रम में लीजिए सुनिए एक और कजरी कलाकार हरिनाथ सुमन मौर्य।

0: सुबह सवेरे आध्यात्मिक चेतना का कीजिए विकास आराधना के साथ।
1: विचारों की तरंग और भावनाओं की उमंग, नमस्कार प्रयागराज के संग।

0: 남아 जोड़िए दिल से दिल के तार हेलो फरमाइश के साथ।
1: गृह लक्ष्मी के साथ होंगी।

0: लोक रंग लोक उमंग लेकर आता है पनघट।
1: युवाओं की सोच को आवाज देता कार्यक्रम युवावाणी।
2: दिल तो पागल है, दिल दीवाना है, दिल तो पागल है, दिल दीवाना है।
0: और पंचायत घर में होंगी खेत खलिहान और चौपाल की बातें।

संस्कृत हिंदी और उर्दू कार्यक्रमों का संगम सिर्फ आकाशवाणी पर। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज पर और एफएम 100.3 मेगाहर्ट्ज पर ही आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। हमारे स्टूडियो की घड़ी में 3 बजे हैं, ये सभा समाप्त होती है। सांध्यकालीन सभा के कार्यक्रमों के साथ शाम 5 बजे आपकी सेवा में पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए हमें अनुमति दीजिए।

मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज पर और एफएम 100.3 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। शाम के 5 बजे हैं, हमारी आज की सांध्यकालीन सभा आरंभ होती है। हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 292.4 मीटर, एफएम 100.3 मेगाहर्ट्ज पर और न्यूज़ ऑन एआईआर ऐप पर प्रस्तुत है कार्यक्रम धरती के गीत। इस कार्यक्रम में सबसे पहले हम आपको सुनवा रहे हैं देवी गीत, बबलू दीवाना और साथियों की आवाज़ में।

0: बबलू दीवाना और साथियों की आवाज में अभी आपने सुना खेमटा। इसी के साथ धरती के गीत कार्यक्रम यहीं समाप्त होता है। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज पर और एफएम 100.3 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। थोड़ी ही देर में युवा श्रोता सुनेंगे अपना कार्यक्रम युव वाणी।
1: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।
2: मेहमान आएंगे, हो सकता है इंडिया मैच जीतेगा, ये भी पॉसिबल है, क्योंकि अनुमान सही या गलत हो सकते हैं, लेकिन एचआईवी का अनुमान नहीं लगाया जा सकता है।
3: एचआईवी को लेकर अनुमान ना लगाएं, सेल्फ रिस्क असेसमेंट करें। सेल्फ रिस्क असेसमेंट के बाद अगर जरूरत हो तो पास के ICTC केंद्र पर एचआईवी टेस्ट कराएं। आई स्कैन, अनुमान छोड़िए, स्कैन कीजिए। अधिक जानकारी के लिए breakfreeindia.org पर लॉगिन करें या 1097 पर कॉल करें।
0: हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 292.4 मीटर, एफएम 100.3 मेगाहर्ट्ज पर और न्यूज ऑन AIR ऐप पर प्रस्तुत है कार्यक्रम युवा श्रोताओं का युव वाणी।

0: कहते हैं इंसान की जिंदगी एक दिन में नहीं बदलती, लेकिन एक दिन लिया गया एक छोटा सा फैसला पूरी जिंदगी की दिशा बदल सकता है। हम अक्सर बड़ी सफलता के सपने देखते हैं, बेहतर करियर, अच्छी सेहत, मजबूत रिश्ते, आत्मविश्वास और एक छोटी ऐसी जिंदगी जिस पर हम खुद को गर्व महसूस कर सकें। लेकिन इन बड़े सपनों की नींव अक्सर बहुत छोटी छोटी चीजों से रखी जाती है ना, हमारी आदतें जैसे।
1: बिल्कुल दिव्या, और शायद इसीलिए कहा जाता है हम पहले अपनी आदतें बनाते हैं, फिर हमारी आदतें हमें बनाती हैं। हम जो रोज़ करते हैं वही धीरे धीरे हमारी पर्सनालिटी, हमारी सोच और हमारी पूरी लाइफस्टाइल का हिस्सा बन जाता है। एक दिन देर तक सोना कोई बड़ी बात नहीं होती, है ना? लेकिन अगर यही रोज़ की आदत बन जाए तो हमारी प्रोडक्टिविटी प्रभावित होने लगती है। इसी तरह रोज थोड़ा पढ़ना शायद मामूली लगे, लेकिन महीनों और सालों बाद वही आदत आपको दूसरों से बहुत आगे ले जा सकती है।
0: नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ दिव्या द्विवेदी
1: और मैं हूँ आपकी दोस्त ज्योति।
0: और आप सुन रहे हैं प्रोग्राम युववाणी। आज की हमारी चर्चा उन चीजों पे है जो देखने में बहुत छोटी हैं, लेकिन असर बहुत बड़ा डाल देती हैं।
1: बिल्कुल, आज हम बात करेंगे आदतें जो जीवन बदल सकती हैं।
0: और शुरुआत करते हैं एक छोटा सा बहुत सिंपल से सवाल से। क्या हमारी जिंदगी हमारी परिस्थितियां तय करती हैं या हमारी आदत? क्योंकि हम अक्सर कहते हैं समय नहीं मिलता, मूड नहीं है, अभी सिचुएशन सही नहीं है, कल से शुरू करेंगे। लेकिन शायद असली बदलाव तब आता है जब हम परफेक्ट टाइम का इंतजार करना बंद करके छोटे छोटे कदम उठाना शुरू कर देते हैं।
1: और सबसे पहली आदत जिसकी बात करनी चाहिए वो है सुबह की शुरुआत। ज़रूरी नहीं कि सुबह 4 बजे उठना ही सफलता की निशानी हो। असल बात ये है कि

0: आपका दिन किस माइंडसेट के साथ शुरू होता है? उठते ही फोन्स में नोटिफिकेशन, रील्स और मैसेजेस देखने के बजाय कुछ मिनट खुद के लिए निकालना, दिन की प्लानिंग करना, थोड़ा स्ट्रेच करना, पानी पीना या शांत बैठना, ये छोटी छोटी आदतें ना आपके पूरे दिन को एकदम सेट कर सकती हैं और आपके पूरे मूड को भी बना सकती हैं।
1: बिल्कुल ज्योति, और यहाँ एक बात बहुत ज़रूरी है दोस्तों, हर किसी की रूटीन अलग होती है। सोशल मीडिया पर किसी की 5 AM रूटीन देखकर ये ज़रूरी नहीं कि वो आपके लिए भी सही हो। आपकी अच्छी आदतें वही हैं जो आपकी ज़िंदगी में रियलिस्टिकली फिट हो सकें, जिसे आप लंबे समय तक निभा सकें।
0: और इसी से जुड़ी है हमारी दूसरी आदत, अपने समय की कद्र करना। दिन में 24 घंटे सभी को हम बराबर मिलते हैं ना दिव्या, लेकिन हम उसका इस्तेमाल अलग अलग तरीके से कर सकते हैं।
1: बिल्कुल,
0: आज का युवा पढ़ाई, नौकरी, सोशल मीडिया, दोस्तों, परिवार और पर्सनल गोल्स, सब कुछ बैलेंस करने की कोशिश करता है। ऐसे में टाइम मैनेजमेंट जो कि हमें बहुत

0: अपने समय की कद्र करना। दिन में 24 घंटे सभी को हम बराबर मिलते हैं ना दिव्या, लेकिन हम उसका इस्तेमाल अलग अलग तरीके से कर सकते हैं।
1: बिल्कुल,
0: आज का युवा पढ़ाई, नौकरी, सोशल मीडिया, दोस्तों, परिवार और पर्सनल गोल्स सब कुछ बैलेंस करने की कोशिश करता है। ऐसे में टाइम मैनेजमेंट, जो कि हमें बहुत मतलब बोरिंग वर्ड सा लगने लगता है ना, लेकिन अगर हम ये सारी इन सारी चीज़ों पे ध्यान देंगे तो ये जो प्रोडक्टिविटी वर्क है ना, वो हमें बोरिंग नहीं लगेगा बल्कि लाइफ का एक स्किल लगेगा।
1: बिल्कुल सही। आप दिन की शुरुआत किन्हीं एक काम से, किसी एक काम से कीजिए और उसे नोट डाउन कर लीजिए। पूरे दिन 10 काम करने के बजाय आप किसी एक काम पे, एक गोल पे फोकस कीजिए और पूरा दिन उसे करने की कोशिश कीजिए। इससे एक फ़ायदा ज़रूर होगा, आपको दिन के अंत में ये फील नहीं होगा कि आज का दिन तो बहुत ही हैक्टिक, बहुत ही ज़्यादा बिजी था और आपने फिर भी कुछ नहीं किया। एटलीस्ट आपके मन में इस चीज़ का संतोष होगा कि एक काम पूरी मेहनत लगन के साथ मैंने कंप्लीट किया।
0: हाँ, और अब आती है एक ऐसी आदत जो आज के समय में शायद सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, डिजिटल डिसिप्लिन। फ़ोन हमारी ज़रूरत भी है और डिस्ट्रैक्शन भी। हम कहते हैं बस 5 मिनट सोशल मीडिया देख लेती हूँ और अचानक आधा घंटा निकल जाता है और हमें पता भी नहीं चलता।
1: तो ज्योति, हम इतनी अच्छी अच्छी बातें कर रहे हैं, इतने अच्छे अच्छे हम लोगों को अपने थॉट्स बता रहे हैं, तो मुझे लगता है कि आज है सैटरडे इवनिंग और अपने प्रोग्राम को थोड़ा लाइट अप करने के लिए, थोड़ा सा उसे रिलैक्स्ड महसूस कराने के लिए हमारे जो लिसनर्स हैं उनको एक म्यूजिकल ब्रेक दे देना चाहिए।
0: बिल्कुल, तो आइए अपने प्रोग्राम में लगाते हैं म्यूजिक का तड़का।

0: तो दोस्तों इस ब्यूटीफुल से म्यूजिकल ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे सोशल मीडिया की, डिस्ट्रैक्शन की, कि किस तरीके से ये जो सोशल मीडिया है वो हमें डिस्ट्रैक्ट करता है और एक हमारे लिए हमारे अनचाही एक बीमारी के तौर से हमें लग जाती है वो आदत। तो ये सबसे डेंजरस लाइन हम तब बोलते हैं कि एक लास्ट रील और देख लेते हैं क्या ही जाएगा, 30 सेकेंड की तो रील है ना ज्योति। लेकिन यही एक लास्ट रील वाला फेस पता ही नहीं चलता कब 1 घंटे और 2 घंटे में बीत गया है ना।
1: बिल्कुल। लेकिन दिव्या, मुझे ऐसा लगता है कि हम टेक्नोलॉजी से मतलब इसकी बुराई तो कर रहे हैं कि हमारा टाइम ले लेता है, लेकिन हम इसके बिना रह भी तो नहीं सकते ना,
0: बिल्कुल
1: इसे छोड़ना भी सही नहीं है। लेकिन हम ये कर सकते हैं कि हम उसे कंट्रोल कर सकते हैं, जैसे सोने से पहले फ़ोन दूर रखना, पढ़ाई या काम के दौरान अननेसेसरी नोटिफिकेशंस बंद कर देना, और दिन में कुछ समय बिना स्क्रीन के बिताना। ये छोटी छोटी आदतें कंसंट्रेशन और मेंटल स्पेस दोनों के लिए काफ़ी यूज़फुल हो सकती हैं।
0: और दोस्तों एक और हैबिट जो ज़िंदगी बदल सकती है, हर दिन कुछ नया सीखना। ज़रूरी नहीं कि आप रोज़ 2 घंटे किताब लेके पढ़ें, तभी 10 पन्ने पढ़ लीजिए, कभी कभी 10 मिनट कोई यूज़फुल पॉडकास्ट सुन लीजिए, कोई नई स्किल सीखने की ओर ध्यान दें, किसी एक विषय पर रिसर्च करें, कोई नॉलेज आप उसको गेन करने की कोशिश करें। क्योंकि नॉलेज जो होता है ना दोस्तों वो कंपाउंड होता है। आज सीखी गई कोई एक छोटी सी चीज़ कल बड़े अवसर में काम आ सकती है, तो सीखना कभी मत छोड़िए, वो एक स्किल होती है, वो आपको आगे चल के कभी ना कभी काम तो आएगी ही।
1: और यहाँ एक बात मुझे बहुत पसंद आती है, हर दिन बेहतर बनने का मतलब हर दिन परफेक्ट होना नहीं होता।
0: बिल्कुल
1: कभी अपना दिन बहुत प्रोडक्टिव होगा, कभी बिल्कुल नहीं। कभी आप अपने गोल्स पर पूरी तरह फोकस्ड रहेंगे, कभी रूटीन टूट जाएगी। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपने सब खराब कर दिया, इसका मतलब ये है कि आप वापस से उसी पॉइंट को देखिए कहाँ आपने मिस्ड आउट किया है, कहाँ आपने गलती की है, कहाँ क्या किया है, उन चीज़ों को एनालाइज करिए, है
0: बिल्कुल
1: ना।
0: बिल्कुल एग्जैक्टली ज्योति, तुमने ये जो बात बोली है ना
1: हाँ हाँ
0: कि रूटीन टूटना फेलियर नहीं है, रूटीन टूटने के बाद वापस लौटना असली स्किल है। मान लीजिए 7 दिन आपने एक्सरसाइज की, 8वें दिन नहीं कर पाए, तो ये मत सोचिए कि अब तो सब कुछ खराब हो गया, मैंने 7 दिन एक्सरसाइज की, 1 दिन रेस्ट ले लिया, अब कुछ भी नहीं हो सकता। बस अगले दिन से फिर से शुरू कर दीजिए। कंसिस्टेंसी इज द की। कंसिस्टेंसी का मतलब कभी टूटना ना होना ये नहीं है, बल्कि टूटने के बाद वापस से शुरू कर देना, इसे कंसिस्टेंसी कहते हैं। मतलब अपने मन को वापस से उस ओर मोड़ देना जहाँ तकलीफ हो रही हो।
1: हाँ, और अब बात करते हैं एक बहुत अंडररेटेड हैबिट की, यानी कि अपने शरीर का ख्याल रखना। अच्छी नींद, पर्याप्त पानी, बैलेंस्ड फूड और फिजिकल एक्टिविटी, दोस्तों ये कोई लग्जरी नहीं है, ये आपकी बेसिक नीड्स हैं। आपका शरीर थका हुआ होगा तो दिमाग भी अपना बेस्ट नहीं दे पाएगा ना।
0: बिल्कुल। और आज की फास्ट लाइफ में हम हेल्थ को तब याद करते हैं जब शरीर हमारा वार्निंग देना शुरू कर देता है, उसके सिम्टम्स खराब हो जाते हैं, जबकि हेल्थ कोई इमरजेंसी प्रोजेक्ट तो नहीं है दोस्तों। रोज थोड़ा चलना, सीढ़ियाँ लेना, डांस करना, स्ट्रेचिंग करना या कोई स्पोर्ट्स खेलना, आपके लिए मूवमेंट का जो तरीका एंजॉयबल हो उसे अपनाइए और अपनी हेल्थ को थोड़ा और ध्यान दीजिए और थोड़ा पॉलिश कीजिए भाई। कोई इमरजेंसी प्रोजेक्ट थोड़ी ना है कि जब जरूरत पड़ेगी तभी यूज करेंगे।
1: हाँ, और एक्सरसाइज की बात हो ही चली है तो एक और हैबिट, अपने शरीर की तुलना दूसरों से करना बंद कीजिए। सोशल मीडिया पर हम दूसरों के हाइलाइट्स देखते हैं और अपनी पूरी लाइफ से कंपेयर करने लगते हैं। किसी का बॉडी टाइप अलग है, किसी की जर्नी अलग है, किसी का स्टार्टिंग पॉइंट अलग है, लेकिन जो आपका कॉम्पिटिशन है ना दोस्तों, वो सबसे पहले खुद से है।
0: बिल्कुल सही। और यही बात है कि करियर पर भी लागू होती है, हर किसी की टाइमलाइन अलग।

0: होती है, किसी को 22 की उम्र में सफलता मिल जाती है, किसी को 30 में मिलती है, किसी को 40 में मिलती है। इसलिए दूसरों की स्पीड देखकर अपनी जर्नी को छोटा मत समझिए। आपकी जर्नी अलग है, आपकी लाइफ अलग है और आपके गोल्स अलग हैं।
1: और अब बात करते हैं एक ऐसी आदत की जो रिलेशनशिप्स को भी बेहतर बना सकती है, यानी कि सुनने की आदत। हम अक्सर जवाब देने के लिए सुनते हैं, समझने के लिए नहीं। सामने वाला कुछ कह रहा है और हमारे दिमाग में ऑलरेडी रिप्लाई तैयार हो रहा होता है।
0: अगर हम सच में लोगों को सुनना सीख लेना ज्योति, तो हमारे रिश्ते बदल सकते हैं। हमें कभी कभी कोई ऐसा इंसान नहीं चाहिए होता है जो हमें एडवाइस करे, बस हमें एक ऐसा इंसान चाहिए होता है जो हमें बिना जज किए हमारी बात सुन ले।
1: बिल्कुल, और इसी के साथ आती है शुक्रगुजार रहने की आदत। रोज 3 चीजें जो है वो याद कीजिए जिनके लिए आप ग्रेटफुल हैं। ये बहुत सिंपल एक्सरसाइज है, लेकिन ये हमारा ध्यान उन चीज़ों पर ले जा सकती है जो हमारे पास में है, सिर्फ उन चीज़ों पर नहीं जो हमारे पास नहीं है।
0: बिल्कुल सही, हमारे पास बहुत सारी लग्जरी हैं दोस्तों। बिना ऐसे लग्जरी चीज़ें वही नहीं होती हैं कि हमें बहुत बड़ा घर मिल गया, बहुत बड़ी गाड़ी मिल गई। एक कप चाय, परिवार के साथ बातचीत करना, कोई दोस्त जो मुश्किल के वक्त हमारे साथ खड़ा रहा हो उसके साथ वक्त बिताना, नौकरी का एक अवसर, पढ़ने की सुविधा और अपने पसंद का काम करने की आज़ादी। कई बार हमारी ज़िंदगी में बहुत कुछ अच्छा होता है, लेकिन हम उसकी वैल्यू तब समझते हैं जब हम उसे खोने लगते हैं।
1: और एक आखिरी लेकिन बहुत पावरफुल हैबिट है, खुद से किए हुए छोटे वादे पूरे करना। अगर आपने तय किया है कि रोज़ 20 मिनट पढ़ेंगे तो पढ़िए, अगर कहा कि आज एक ज़रूरी काम पूरा करना है तो कीजिए, क्योंकि जब आप खुद से किए छोटे प्रोमिसेस निभाते हैं ना, तो ये धीरे धीरे सेल्फ ट्रस्ट बनता जाता है।
0: और सेल्फ ट्रस्ट बहुत बड़ी चीज़ होती है जो आपको खुद पर भरोसा करना सिखाती है। मैं जो कहूँगी उसे करने की कोशिश ज़रूर करूँगी, तब कॉन्फिडेंस अंदर से आता है, हमें बाहर से मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ती।
1: तो दोस्तों आज की चर्चा से अगर सिर्फ कुछ हैबिट्स याद रखनी हो तो बहुत लंबी लिस्ट की ज़रूरत नहीं है। समय की कद्र कीजिए, अपने शरीर का ख्याल रखिए, डिजिटल डिस्ट्रैक्शन को कंट्रोल कीजिए, रोज़ कुछ नया सीखिए, अपने लोगों को सुनिए, ग्रैटिट्यूड रखिए और सबसे ज़रूरी अपने गोल्स के लिए छोटे लेकिन कंसिस्टेंट कदम ज़रूर उठाइए।
0: क्योंकि ज़िंदगी किसी बड़े फैसले से नहीं बल्कि रोज़ छोटे छोटे फैसलों से बनती है। आज आप क्या करते हैं वही धीरे धीरे आपका कल तय करती है। इसलिए खुद से ये मत पूछिए कि मेरी पूरी ज़िंदगी कैसे बदल जाएगी, बस ये पूछिए कि आज मैं कौन सी एक छोटी सी आदत शुरू कर सकती हूँ।
1: बिल्कुल, शायद वही एक छोटी आदत बहुत कुछ आपकी ज़िंदगी में बदल दे, महीनों बाद आपकी पहचान का एक हिस्सा बन जाए।
0: और याद रखिए, आपको ओवरनाइट बदलाव लाने की ज़रूरत नहीं है, बस हर दिन अपने पुराने वर्जन का एक छोटा सा बेहतर वर्जन बनाने की कोशिश कीजिए।
1: क्योंकि असली ग्रोथ शोर नहीं करती, वो हर रोज़ मतलब आपकी डेली लाइफ की ज़िंदगी में क्वाइटली दिखाई देती है।
0: तो इसी पॉजिटिव थॉट्स के साथ आज की हमारी ये चर्चा को हम यही विराम देते हैं, लेकिन अपनी ज़िंदगी में आप बदलाव लाना हमेशा शुरू रखिए, जारी रखिए, सफ़र आगे बढ़ाते रहिए।

0: तो दोस्तों आइए बढ़ते हैं अपनी अगली सेगमेंट यानी प्रेरणा पुंज की तरफ।
1: आज के हमारे प्रेरणा पुंज है एक ऐसे महान खिलाड़ी जिनका नाम लेते ही भारतीय हॉकी का सुनहरा इतिहास आंखों के सामने चलने लगता है।
0: बिल्कुल, और उनका नाम है मेजर ध्यानचंद। एक ऐसा नाम जिसने हॉकी की दुनिया में भारत की को एक नई पहचान दिलाई, उसको ऊंचाइयों तक पहुंचाया। ध्यानचंद जी को प्यार से हॉकी का जादूगर भी कहा जाता था।
1: और इलाहाबादी उन्हें कहते हैं दद्दा। बिल्कुल, दद्दा कहते हैं हम लोग उन्हें। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर उनके खेल में ऐसा क्या था जो लोग उन्हें जादूगर कहा करते थे?
0: उनके खेल में असाधारण नियंत्रण, तेजी और गेंद पर गजब की पकड़ थी। मैदान पर ऐसा लगता था कि जैसे हॉकी की गेंद उनकी स्टिक से चिपक गई हो।
1: और शायद यही वही वजह थी कि लोग उनके खेल को देखने वाले दर्शक बस उन्हें देखते रहते थे। लेकिन उनकी कहानी सिर्फ मैदान तक नहीं थी, उसके आगे भी थी। उन्हें सफलता ऐसे ही नहीं मिली, उसके पीछे छुपी थी दिन रात की मेहनत, दिन रात की लगन।
0: बिल्कुल, मेजर ध्यानचंद का जन्म 29 अगस्त

0: 1905 को अपने प्रयागराज में हुआ था, यानी हमारे शहर से जुड़ा हुआ एक महान नाम। ये बात प्रयागराज के लिए भी बहुत गर्व की है ना दिव्या?
1: बिल्कुल, बचपन में उन्हें खेल में खास रुचि दिलचस्पी नहीं थी। बाद में भारतीय सेना में रहते हुए हॉकी के प्रति उनका जुनून बढ़ता गया और उन्होंने अपनी प्रतिभा को लगातार निखारना शुरू किया।
0: और फिर शुरू हुआ भारतीय हॉकी के उस सुनहरे दौर का सफर जिसमें ध्यानचंद ने पूरी दुनिया में भारत का परचम लहराया। उन्होंने भारतीय हॉकी टीम के साथ 1928, 1932 और 1936 के ओलंपिक खेलों में शानदार प्रदर्शन किया और भारत ने तीनों बार स्वर्ण पदक जीता।
1: 1936 के बर्लिन ओलंपिक्स की बात तो खास तौर पर याद की जाती है दोस्तों। उस समय ध्यानचंद भारतीय हॉकी टीम के कप्तान थे और उस दौर में हॉकी भारत के लिए सिर्फ एक खेल नहीं था बल्कि दुनिया के सामने भारत की खेल प्रतिभा का परिचय था।
0: ध्यानचंद की सबसे बड़ी खासियत थी उनकी सादगी और अनुशासन। इतनी बड़ी उपलब्धियों के बावजूद उन्होंने कभी अपने स्टारडम को खुद पर हावी होने नहीं दिया।
1: और यही बात आज के युवाओं के लिए भी बहुत बड़ी सीख है। टैलेंट आपको पहचान दिला सकता है लेकिन डिसिप्लिन और लगातार मेहनत आपको उस पहचान को बनाए रखने की ताकत देती है।
0: बिल्कुल, और ध्यानचंद की जिंदगी हमें बताती है कि सफलता किसी एक की मेहनत से नहीं मिलती। उन्होंने वर्षों तक अभ्यास किया, अपनी कमियों को सुधारा और हर मैच में अपना सर्वश्रेष्ठ, अपना बेस्ट देने की कोशिश की।
1: कहते हैं कि उनके खेल को देखकर लोग उनकी स्टिक को देखकर हैरान हो जाते थे, लेकिन असली जादू उनकी स्टिक में नहीं था बल्कि उनकी मेहनत, एकाग्रता और खेल की समझ में था, उनके खेलने के तरीके, उनकी टेक्निक्स में था।
0: क्या बात कही तुमने दिव्या, जादू स्टिक में नहीं, हुनर और मेहनत में था। और यही मैसेज आज के युवाओं के लिए भी बहुत जरूरी है। अगर आपके पास कोई सपना है तो सिर्फ सपना देखना काफी नहीं है, उसके लिए प्रैक्टिस करना और पेशेंस रखना और फेलियर से सीखना भी बहुत जरूरी है।
1: बिल्कुल, आज अगर हम क्रिकेट, बैडमिंटन, एथलेटिक्स या किसी भी खेल के लिए भारत के खिलाड़ियों को आगे बढ़ते देखते हैं तो उसके पीछे उन महान खिलाड़ियों की विरासत भी शामिल है जिन्होंने भारत में खेलों के प्रति जुनून पैदा किया।
0: मेजर ध्यानचंद जी भी प्रेरणादायक विरासत का हिस्सा रहे हैं और उनके सम्मान में भारत में हर साल 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। ये दिन सिर्फ एक महान खिलाड़ी को याद करने का दिन नहीं है बल्कि खेलों के महत्व को समझने का भी अवसर है।
1: तो दोस्तों, क्या आपको एक कहानी पता है दिलचस्प, कि जब मेजर ध्यानचंद एक बार खेल खेल रहे थे और ये ओलंपिक्स की बात है, तो एडोल्फ हिटलर खुद उनका खेल देखने मैदान में आया था, उस स्टेडियम में आया था जहां उनका वो मैच चल रहा था। तो खेल के दौरान उस दृश्य को देखने के बाद हिटलर को लगा कि मेजर ध्यानचंद को भारत की टीम में नहीं होकर बल्कि जर्मनी की टीम में होना चाहिए। तो उन्होंने उस समय मेजर ध्यानचंद के सामने वो ऑफर रखा कि आप जर्मनी की टीम पे आ जाएं और हमारी टीम की तरफ से खेलें, क्योंकि भारत ऑलरेडी 3 मेडल जीत चुका था और चौथे मेडल की ओर आगे बढ़ रहा था। तो उनका ये कहना था कि हमने ऑफर दिया है और आप हमारी टीम में आ जाइए, लेकिन भारत के प्रति प्रेम और अपने खेल के प्रति समर्पण ध्यानचंद के अंदर अपार था और उन्होंने अपने देश के साथ खेलने का निर्णय लिया और उनका जो ये लक्ष्य था, उनका जो ध्येय था, वो सभी आज हमारे सामने है कि वो आज हमारी इतनी बड़ी प्रेरणा के रूप में हमारे सामने है।
0: मतलब कहने का सीधा सा मतलब ये है कि वो अपने वतन परस्त भी रहे। उन्होंने अपने देश के लिए देश का नाम नहीं खराब होने दिया और अपने देश को छोड़ा नहीं। वो चाहते तो उनका ऑफर एक्सेप्ट कर सकते थे।
1: बिल्कुल, तो श्रोताओं, अगर आपके अंदर भी कोई टैलेंट है, कोई पैशन है, तो उसे सिर्फ सोच कर मत छोड़ दीजिए, उसे समय दीजिए, मेहनत दीजिए और लगातार आगे बढ़ते रहिए, क्योंकि हो सकता है मेहनत का जादू दुनिया एक दिन आपका जरूर देखेगी।
0: और मेजर ध्यानचंद को याद करते हुए बस इतना ही कहना चाहेंगे, मैदान कोई भी हो, जीत सिर्फ प्रतिभा से नहीं, जुनून और अनुशासन से मिलती है। मेजर ध्यानचंद जी को हमारी विनम्र श्रद्धांजलि और शत शत नमन।

0: तो दोस्तों कितना एनर्जेटिक, कितना ब्यूटीफुल सॉन्ग था, और हम अपने प्रोग्राम में आगे बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले आइए सुनते हैं ये संदेश।
1: किधर है
2: बेटी का नया अकाउंट और मेरा केवाईसी अपडेट?
1: ये तो झटपट काम है।
2: कैसे?
1: अगर केवाईसी डिटेल्स में चेंज नहीं या सिर्फ एड्रेस बदला है तो रजिस्टर्ड ईमेल, मोबाइल, ऑनलाइन या लेटर से सेल्फ डिक्लेरेशन दे दो।
2: और बाकी चेंजेस?
1: घर बैठे वीडियो केवाईसी या आधार ओटीपी बेस्ड ई केवाईसी से, सिर्फ बैंक ऑथराइज्ड चैनल से। ये नूडल्स बनाने जितना आसान है।
3: RBI कहता है
4: KYC सुरक्षित बैंकिंग की ओर पहला कदम।
5: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशंस लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।
6: यूपी 112 की ओर से उत्तर प्रदेश की सम्मानित जनता को रक्षाबंधन की कोटि कोटि शुभकामनाएं।
7: राखी के दिन एक भाई अपनी बहन को सुरक्षा का जो वादा करता है, वही वादा है फर्स्ट रिस्पॉन्डर यूपी 112 का, जो 2400 घंटे सातों दिन आपकी सुरक्षा में तैनात है।
6: पुलिस सहायता चाहिए या एम्बुलेंस, आगजनी की घटना हो या आ जाए कोई प्राकृतिक आपदा,
7: साइबर सिक्योरिटी का केस हो या मामला हो महिला व बाल संघ अपराध का, शहर हो या देहात, दिन हो या रात, किसी भी आपात स्थिति में फोन उठाएं 112 मिलाएं।
0: दोस्तों, हिंदी सिनेमा की दुनिया में कुछ परिवार ऐसे रहते थे जिनकी कई पीढ़ियों ने पर्दों पर अपनी पहचान

0: पहचान बनाई। कपूर परिवार भी उन्हीं में से एक है। इस परिवार की फिल्मी विरासत बहुत लंबी और समृद्ध रही है। आज हम इसी परिवार के एक ऐसे कलाकार के बारे में बात करेंगे जिनका फिल्मी सफ़र भले ही बहुत लंबा ना रहा हो, लेकिन उन्होंने अपनी अलग अलग फिल्मों से अलग अलग पहचान ज़रूर बनाई है।
1: जी हाँ, आज की शाम है अभिनेता राजीव कपूर के नाम। राजीव कपूर का नाम लेते ही हमारे सामने एक ऐसे कलाकार की तस्वीर आती है जिन्होंने अभिनय के साथ साथ फिल्म निर्माण निर्देशन के क्षेत्र में भी काम किया। वो राज कपूर के सबसे छोटे बेटे और पृथ्वीराज कपूर की विरासत को आगे बढ़ाने वाले तीसरी पीढ़ी का हिस्सा थे।
0: राजीव कपूर का जन्म 25 अगस्त 1962 को मुंबई में हुआ था। उनके पिता थे हिंदी सिनेमा के महान शोमैन राज कपूर और उनकी माँ थी कृष्णा कपूर।
1: ऐसे परिवार में जन्म लेना अपने आप में एक बड़ी विरासत थी, लेकिन इसके साथ जिम्मेदारी भी कम नहीं थी। कपूर परिवार के लिए सिनेमा केवल एक प्रोफेशन नहीं था, बल्कि ये उनकी ज़िंदगी का हिस्सा था। राजीव कपूर ने भी इसी माहौल में फिल्मों को करीब से देखा और उसे समझा।
0: राजीव कपूर ने बतौर अभिनेता हिंदी फिल्मों में कदम रखा। उनकी शुरुआती फिल्मों में एक है, सबसे प्रसिद्ध फिल्म एक जान है हम का नाम हमेशा लिया जाता है। इसके बाद 1985 में आई फिल्म राम तेरी गंगा मैली जो कि बहुत प्रसिद्ध हुई और उनके करियर की काफ़ी खास फिल्मों में से एक है। यह फिल्म उनके पिता राज कपूर द्वारा निर्देशित की गई थी। फिल्म में राजीव कपूर ने नरेंद्र का किरदार निभाया था और उनके साथ मंदाकिनी मुख्य भूमिका में थी।

0: उत्तर मध्य रेलवे द्वारा जनहित में जारी।
1: तो हम बात कर रहे थे दोस्तों राजीव कपूर के जीवन पर। राजीव कपूर के फिल्मी सफर एक ऐसे दौर में रहा जब हिंदी सिनेमा तेजी से बदल रहा था। 1980 के दशक में फिल्म में एक्शन, रोमांस और पारिवारिक कहानियों का अपना एक अलग प्रभाव था। सिनेमा में नए नए कलाकार आ रहे थे और दर्शक उन्हें पसंद भी कर रहे थे और उनकी पसंद भी तेजी से बदलती जा रही थी।
2: ऐसे दौर में किसी कलाकार के लिए लगातार अपनी जगह बनाए रखना आसान नहीं था। राजीव कपूर ने अभिनय के साथ साथ निर्देशन और निर्माण की ओर भी कदम बढ़ाया, यानी उन्होंने सिर्फ अभिनेता बने रहने के बजाय सिनेमा के दूसरे पहलुओं को भी समझने की कोशिश की।
1: अक्सर हम किसी कलाकार को सिर्फ उसके अभिनय से पहचानते हैं, लेकिन फिल्म निर्माण एक टीम एफर्ट होता है। कैमरे के सामने अभिनेता की भूमिका तो दिखाई देती है, जबकि कैमरे के पीछे कई लोग मेहनत करते हैं और राजीव कपूर ने इस दुनिया को दोनों तरफ से देखा।
2: उन्होंने अभिनय किया, निर्देशन किया और फिल्म निर्माण से भी जुड़े रहे। ये उनके फिल्म सफर का एक बहुत ही महत्वपूर्ण पहलू था। यही कारण है कि राजीव कपूर को केवल राज कपूर के बेटे या कपूर परिवार के सदस्य के रूप में देखना सही नहीं होगा।
1: कपूर परिवार के हर कलाकार की तुलना अक्सर दूसरे सदस्यों से की जाती रही है, लेकिन कला में तुलना हमेशा सही नहीं होती। हर कलाकार को अपनी शैली समझ में आती है। राजीव कपूर का करियर भी उनकी अपनी परिस्थितियों और समय के अनुसार विकसित हुआ। उनकी पहचान सिर्फ उनके परिवार की उपलब्धियों से नहीं बल्कि उनके अपने काम से जुड़ी हुई है।
2: दोस्तों, बड़े फिल्मी परिवार से आने वाले कलाकारों को देखकर अक्सर लगता है ना कि उनके लिए सब कुछ आसान रहा होगा, लेकिन प्रसिद्ध परिवार का हिस्सा होना हमेशा आसान नहीं होता। जब आपका सरनेम ही लोगों के एक्सपेक्टेशंस बढ़ा दे तो खुद को साबित करने का प्रेशर जो होता है ना, वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है।
1: बिल्कुल ज्योति, राजीव कपूर के सामने ये बहुत बड़ी चुनौती थी। उनके परिवार का जो टैग था वो बहुत ही बड़ा था और उसके साथ एक बहुत मजबूत पहचान जुड़ी हुई थी। ऐसे में अपनी पहचान बनाना, एक कलाकार के तौर पर खुद को साबित करना आसान नहीं था।
2: राजीव कपूर के सामने भी यही चुनौती रही होगी। उनसे पहले कपूर परिवार के कई सदस्य अपनी मजबूत पहचान बना चुके थे। ऐसे में अपनी अलग पहचान बनाना किसी भी कलाकार के लिए आसान नहीं था, जैसा तुमने अभी कहा, और उन्होंने अपनी अलग पहचान बनाई भी अपने काम से।
1: आप एक ऐसे रास्ते से दूसरे रास्ते की ओर बढ़ सकते हैं। अगर अभिनय में आपकी रुचि है तो आप फिल्म मेकिंग को भी सीख सकते हैं, वैसे ही जैसे राजीव कपूर ने अपनी एक्टिंग करियर से अपने निर्देशन करियर की ओर मूव किया और उनका जीवन एक कलाकार के तौर पे अच्छे तरीके से जाना जाता है। और शायद किसी कलाकार को याद करने की सबसे खूबसूरत तरीका यही होता है कि हम उसके काम से उसको याद रखें, उसके जीवन यात्रा से उसको याद रखें और उसकी अच्छी जो पहलू होते हैं उनको समझे।
2: दोस्तों, कहानियां कभी खत्म नहीं होती, बस किरदार पर्दे से उतर जाते हैं और अच्छे कलाकार अपनी यादों में हमेशा जिंदा रहते हैं।
1: तो दोस्तों, ये थे एक हमारे आज के जो विशेष कलाकार आज की शाम आपके नाम में।
2: दोस्तों, आपको पता है कि हम हर रोज आपके लिए अपने प्रोग्राम में प्रश्नोत्तरी लेकर आते हैं और इसी कड़ी में हमारा कल का प्रश्न था, सूर्य सरोवर योजना मुख्य रूप से किससे संबंधित है? तो इसका सही जवाब है, सूर्य सरोवर योजना फ्लोटिंग यानी कि तैरते हुए सौर ऊर्जा संयंत्रों यानी कि फ्लोटिंग सोलर फोटोवोल्टिक प्रोजेक्ट्स से संबंधित है।
1: और आज का सवाल है, भारतीय संविधान में संविधान का संरक्षण एवं अंतिम व्याख्याकार किस संस्थान को माना जाता है और यह भूमिका निभाने वाले संवैधानिक आधार क्या हैं? आप इसका उत्तर दे सकते हैं हमारी ईमेल आईडी पे, जो कि है yuvvaniald@gmail.com और व्हाट्सएप नंबर 8004926250 पर। इसी के साथ हमारा कार्यक्रम समाप्ति की ओर बढ़ चुका है। मैं हूँ दिव्या द्विवेदी
2: और मैं हूँ आपकी दोस्त ज्योति।
1: आपसे लेते हैं विदा।
2: नमस्कार।

0: बेटा ट्रेन रुकने तक यही इंतजार करना, चलती ट्रेन में चढ़ना उतरना बहुत खतरनाक होता है।
1: हाँ माँ मुझे सब पता है, ट्रेन रुकने के बाद ही प्लेटफॉर्म साइड से उतरूंगा और रेलवे ट्रैक पर कभी नहीं जाऊंगा।
0: अरे वाह मेरा बेटा तो बड़ा समझदार है। और ये कूड़ा कहाँ डालोगे?
1: डस्टबिन में। स्टेशन साफ रहेगा तभी तो सफर अच्छा लगेगा।
2: एक छोटी सी सावधानी जिंदगी भर की सुरक्षा, सुरक्षित रहें, स्वच्छता अपनाएं और दूसरों को भी जागरूक करें। स्वच्छ रेल परिसर, सुरक्षित रेल यात्रा।

युवा श्रोता सुन रहे थे अपना पसंदीदा कार्यक्रम युव वाणी। ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। लीजिए सुनिए हिंदी में समाचार, जिसे हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले कर रहे हैं।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सर फिरोजी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज उज्बेकिस्तान और किर्गिस्तान की 4 दिन की यात्रा पर रवाना हुए। श्री मोदी ने रवाना होने से पहले कहा कि उनकी इस यात्रा से मध्य एशिया में भारत की रणनीतिक साझेदारियां मजबूत होंगी तथा इस क्षेत्र के साथ सभ्यतागत जुड़ाव और गहरा होगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि वे उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति शफकत मिर्जियोयेव के साथ व्यापार और निवेश, डिजिटल संपर्क, रक्षा तथा ऊर्जा क्षेत्र में सहयोग और मजबूत करने के साथ साथ विकसित भारत और यांगी उज्बेकिस्तान के साझा दृष्टिकोण को आगे बढ़ाने पर चर्चा करेंगे। श्री मोदी किर्गिस्तान के राष्ट्रपति सादोर जापारोव के निमंत्रण पर बिश्केक में 26वें शंघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री ने कहा कि वे सुरक्षा, संपर्क और अवसर पर आधारित क्षेत्र के लिए भारत के विजन को आगे बढ़ाने और एससीओ के अन्य सदस्य देशों के साथ मिलकर आतंकवाद, अलगाववाद और उग्रवाद से मुक्त क्षेत्र के लिए काम करने को लेकर उत्सुक हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा है कि वैश्विक कंपनियों को अपनी आपूर्ति श्रृंखला और पूंजी आवंटन का फिर से आकलन करना चाहिए, क्योंकि भारत न केवल विशाल बाजार उपलब्ध कराता है बल्कि दीर्घकालीन निवेश और संचालन मंच का भी आधार है। अमेरिका के शिकागो में प्रमुख निवेशकों और उद्योगपतियों के साथ उच्च स्तरीय सम्मेलन में उन्होंने कहा कि भारत में निवेश का तात्पर्य व्यापक बाजार, सतत आर्थिक विकास, कौशल युक्त प्रतिभा, विश्व स्तरीय बुनियादी ढांचा, अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी और एक दशक के सुधार से है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि भारत न केवल प्रमुख अर्थव्यवस्था के रूप में उभरा है बल्कि अपनी सभ्यतागत विरासत, संस्कृति और क्षमताओं में दृढ़ विश्वास रखने वाला राष्ट्र भी है। लखनऊ में एक कार्यक्रम में श्री सिंह ने कहा कि आज जब भारत बोलता है तो दुनिया सुनती है। उन्होंने कहा कि भारत में शिक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण विकास हुआ है।
1: पिछले 12 वर्षों में शिक्षा की क्वालिटी, एसेसिबिलिटी और अफोर्डेबिलिटी बढ़ी है। भारत का रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर पहले के कंपैरिजन में 2 गुना हो गया। 34 ईयर्स में पहली बार हमने नेशनल एजुकेशन पॉलिसी बनाई है। शिक्षा के क्षेत्र में हुए बदलावों और अच्छी पॉलिसीज का ही यह परिणाम है कि आज देश के नौजवान स्टार्टअप खड़े कर रहे हैं, यूनिकॉर्न कंपनियां बना रहे हैं। 2015 में हम ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में 81वें स्थान पर, हमने अब 38वें स्थान पर अपनी पहुंच हासिल कर ली है।
0: नेपाल में आई भीषण बाढ़ में मृतकों की संख्या 626 हो गई है और 2000 से अधिक लोग लापता है। प्रभावित क्षेत्रों में राहत और बचाव अभियान जारी है। बचाए गए लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा रहा है। बंद सड़कों को साफ करने का काम भी तेजी से चल रहा है। विदेश मंत्रालय ने बताया है कि 320 भारतीय नागरिकों से संपर्क नहीं हो पाया है। नेपाल सरकार ने संकट की इस घड़ी में भारत की तत्काल मदद की सराहना की है। नेपाल के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को असाधारण रूप से उदार बताया है। राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल ने भी भारत की सहायता के लिए आभार व्यक्त किया है। वित्त मंत्री स्वर्णिम वागले ने कहा कि बाढ़ के बाद भारत से राहत सामग्री भेजी गई और भारत ने पुनर्निर्माण के लिए सहायता प्रदान करने का संकेत दिया। 26 अगस्त से भारत ने प्रभावित क्षेत्रों में 57 टन से अधिक राहत सामग्री भेजी है। नेपाल के अनुरोध पर चिकित्सा कर्मियों और सुरंग बचाव विशेषज्ञों सहित 11 सदस्य भारतीय दल भी स्थानीय अधिकारियों की सहायता के लिए नेपाल पहुंचा है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि नेपाल में संकट की स्थिति को देखते हुए भारत चिंतित है। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि नेपाल की सभी जरूरतों में भारत मदद उपलब्ध कराने के लिए तैयार है। भारत पड़ोसी देश को लगातार सहायता भेज रहा है। सरकार ने कहा है कि इस वर्ष जुलाई तक प्रति बूंद अधिक फसल योजना के अंतर्गत 115 लाख हेक्टेयर कृषि भूमि को लघु सिंचाई प्रणाली में लाया गया है। योजना का उद्देश्य खेत स्तर पर पानी के प्रयोग में दक्षता लाना और उसमें सुधार करना है। ये योजना जनवरी 2006 में केंद्र सरकार ने लघु सिंचाई के लिए शुरू की थी। मौसम विभाग ने ओडिशा में सोमवार तक मूसलाधार बारिश के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। अगले 2 से 3 दिनों तक बिहार, पश्चिम बंगाल में तेज बारिश होने की संभावना है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज पर और एफएम 100.3 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। लीजिए सुनिए आज के शेष और कल के कार्यक्रमों का विवरण। पहले सुनिए आज के शेष कार्यक्रमों का विवरण। रात 9:30 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम युवा भारती। 10 बजे संगीत का अखिल भारतीय कार्यक्रम। ये दोनों कार्यक्रम हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। शाम 6:30 पंचायत घर कार्यक्रम में ग्रामीण भाई सुनेंगे रघुराज सिंह यादव और साथियों से लोकगीत और परिवार कल्याण की बात के अंतर्गत आरएन सिंह वैद्य से अरविंद कुमार की बातचीत सुनिएगा। वर्षा ऋतु में खान पान संबंधी सावधानियां। हिंदी कार्यक्रम के अंतर्गत 7:31 पर आप सुनेंगे डॉक्टर राजेश कुमार मिश्रा की वार्ता आधुनिक संचार माध्यम और पांडुलिपियां। 7:45 पर सुगम संगीत के कार्यक्रम में कलाकार होंगी शिवानी केसरवानी। रात 8 बजे चित्रपट संगीत। 8:30 पर सबरस। ये थी आज के शेष कार्यक्रमों की रूपरेखा।

अब एक नजर कल के कार्यक्रमों पर। कल दिन में 11 बजे आप सुनेंगे भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का विशेष रेडियो प्रसारण मन की बात। ये कार्यक्रम हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। कल शाम 7:30 से आप सुनेंगे भारत और थाईलैंड के मध्य दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में खेले जाने वाले महिला एशिया T20 क्रिकेट टूर्नामेंट 2026 के क्रिकेट मैच का आंखों देखा हाल दिल्ली केंद्र से। कल सुबह कृषि जगत कार्यक्रम के अंतर्गत 6:35 पर सुनिएगा प्रवीण चरण से दुर्गेश मिश्र की बातचीत, जैविक खेती से लाभ। 6:45 पर स्वास्थ्य चर्चा कार्यक्रम के अंतर्गत आप सुनेंगे डॉक्टर SB सिंह की वार्ता, अवसाद में कितनी कारगर होम्योपैथी। सुबह 7 बजे सुनिएगा श्री रामचरितमानस से संगीतमय पाठ।

शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में आप सुनेंगे सुबह 7:30 पर पंडित विद्याधर प्रसाद मिश्र का ख्याल गायन और दिन में 12:15 पर पंडित ब्रज नारायण का सरोद वादन। 8:45 पर नमस्कार प्रयागराज, प्रस्तुति अभयकांत तिवारी की। 9:50 पर सुगम संगीत के कार्यक्रम में कलाकार होंगी चित्रा चौरसिया। 10:05 पर लोक माधुरी, इस कार्यक्रम में लोकगीत सुनिएगा संगीता मिश्रा और अरविंद कुमार सिंह के स्वर में।

कल दिन में 12:30 पर फिल्म संगीत, 1:15 पर हेलो अनुरोध, प्रस्तुति मधु कुमार की। 2:30 पर लोकगीत सुनिएगा विकास श्रीवास्तव के स्वर में। कल शाम 5:00 बाल गोपाल कार्यक्रम के अंतर्गत बच्चे सुनेंगे स्नेहलता श्रीवास्तव से बाल कहानी लालच के लड्डू। 5:15 युवाड़ी कार्यक्रम में युवा श्रोता सुनेंगे अपना पसंदीदा कुछ टॉपिक्स और कुछ खूबसूरत नगमे। 6:30 पर पंचायत घर कार्यक्रम में ग्रामीण भाई सुनेंगे विकास श्रीवास्तव से लोकगीत और डॉक्टर अजय कुमार की वार्ता प्राकृतिक खेती आज की आवश्यकता। ये थी कल प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा। हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं।

मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलो हर्ट्स पर, एफएम 100.3 मेगा हर्ट्स पर और न्यूज़ ऑन एआईआर ऐप पर। ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है।

शिक्षा वह दीपक है जो अज्ञानता के अंधकार को दूर कर जीवन को प्रकाश से भर देता है। धन चुराया जा सकता है, संपत्ति छीनी जा सकती है, लेकिन शिक्षा एक ऐसी दौलत है जिसे कोई छीन नहीं सकता।

जिस समाज में शिक्षा मजबूत होती है उस समाज का भविष्य मजबूत होता है। एक शिक्षित व्यक्ति केवल अपना जीवन नहीं बदलता, वो आने वाली पीढ़ियों का भविष्य बदल देता है।

हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 292.4 मीटर, एफएम 100.3 मेगाहर्ट्ज पर और न्यूज़ ऑन एआईआर ऐप पर लीजिए सुनिए देशगान।

अभी आप सुन रहे थे देशगान। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज पर और एफएम 100.3 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। लीजिए सुनिए समाचार जिसे हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले कर रहे हैं।

लोकवाणी संप्रति वार्ता श्रूयंताम् प्रवाचिका सुषमा कुमारी। आदौ मुख्य वार्ताः। प्रधानमन्त्रिणः मोदिनः मध्य एशिया प्रवासः प्रारब्धः। उज्बेकिस्तान किर्गिज देशाभ्यां सह द्विपक्षीय वार्तायाः रूपरेखा च सज्जी।

0: पंचो राम राम, हम है आपके किसान साथी घनश्याम। किसान भाई, देखा खेल भी अपने जीवन में बड़ा महत्वपूर्ण होला, अपने देश का नाम रोशन करे के भी एक अच्छा मौका भी होला। आज देखा राष्ट्रीय खेल दिवस हो और आज के दिन भैया मेजर ध्यानचंद, जेके हॉकी के जादूगर भी कहल जाला, 1905 में 19 अगस्त के ही उनकर जन्म भेल रहल। आप लोग के बता दें कि इतना बढ़िया हॉकी के खिलाड़ी रहने कि हॉकी और बाल का समावेश ए तरह के देखल जाए कि इनके हॉकी के जादूगर कहल गया। किसान भाई, खेल के माध्यम से विश्व पटल पर अपने देश के नाम रोशन कैना, आज जौन हमार बच्चा है, जौन युवा वर्ग हो, ओके प्रेरणा लेवे के चाहिए, खेल के प्रति उनकर समर्पण, उनकर भाव होए के चाहिए। और खेल पढ़ाई के साथ साथ बहुत जरूरी हो। कहें से देखा हो, कहल जात है ना कि स्वस्थ भारत, उत्कृष्ट भारत बनावे के खेल भी एक अच्छा माध्यम बनेला। 1928 में, 1932 में और 1936 में ध्यानचंद जी के नेतृत्व में इनके सहयोग से आपन देश स्वर्ण पदक जीतल। तो ऐसे ऐसे महान खिलाड़ी, महान विभूति अपने देश में भेने और हमेशा देश हमार धनी रहल, ए तरह के लोगन के जने बदे। हमार सुने वाले किसान भैया, सुने वाले हमारे जौन बच्चे हैं, युवा हैं, वो प्रेरणा लें और अपने देश को समृद्ध बनाओ में अपन पूरा सहयोग करें। किसान भाई, देखा आप सरकार जौन हो वो हमेशा किसान के, गरीब के, अपने देश के जौन भविष्य हैं उनके बदे तमाम तरह के योजना भी समय समय पर लियावत रहते हैं। एक समय रहल हो कि जब सरकार के कोनो योजना रहल अपने किसान भैया तक, अपने गांव वालन भैया तक पहुँचे में बहुत दिक्कत आवत रहल। हम अगर कोनो भी भैया धन हो सरकार की तरफ से अगर उपलब्ध होता तो कि लेबे में भी कई बार दौड़ भाग करे में बिचौलिया होकर बहुत लाभ लें और सही ढंग से लाभ जितना पहुँचे के चाहिए पहुँच नहीं पावत रहल। प्रधानमंत्री जन धन योजना, प्रधानमंत्री के द्वारा एक बहुत सशक्त योजना ही लावल गया, जौने में कि भैया गांव के वो भैया लोग जे कि बैंक के नाम से भी घबरात रहन और सोचत रहन कि कभी भविष्य में बैंक से संबंध हमार हो पाई कि ना हो पाई, इतना सरल ढंग से भैया 2014 से ये प्रक्रिया चलल और सबकर खाता बैंक में खुल गया। हम तो कहीं हो कि जे वंचित बा अभी भी, वो अपन खाता जरूर खोल ले बैंक में। कहे से देखा, सरकार का सीधा संबंध आपके बैंक के खाते से जब हो जाते है तो सरकारी योजना का जो लाभ है वो सीधे आप तक पहुँचत है और कहीं से भी बिचौलिया बीच में कोनो लाभ नहीं ले पाते हैं। तो भैया देखा, आप जेकर के जनधन योजना में जुड़ा हो तो है ये हो, जेकर ना हो उनके भी समझावें और बहुत आसानी से जाके बैंक, जो नज़दीक का बैंक हो, शाखा हो, वहाँ जाके अपन खाता खोलें और बैंक से जुड़ें। किसान भाई, देखा आज जौन हो शनिवार हो और आज परिवार कल्याण के बाद भी हुई और भैया देखा बहुत बढ़िया गौनई रघुराज सिंह यादव उनका संगातिन भैया ढोलक मजीरा लेके बैठल हैं, भैया से भी सुनल जाए लेकिन अब एक संदेश सुन लेल जाए।
1: बेटा, ट्रेन रुकने तक यही इंतजार करना, चलती ट्रेन में चढ़ना उतरना बहुत खतरनाक होता है।
2: हाँ माँ, मुझे सब पता है, ट्रेन रुकने के बाद ही प्लेटफॉर्म साइड से उतरूंगा और रेलवे ट्रैक पर कभी नहीं जाऊंगा।
1: अरे वाह, मेरा बेटा तो बड़ा समझदार है। और ये कूड़ा कहाँ डालोगे?
2: डस्टबिन में। स्टेशन साफ रहेगा तभी तो सफर अच्छा लगेगा।
3: एक छोटी सी सावधानी जिंदगी भर की सुरक्षा, सुरक्षित रहें, स्वच्छता अपनाएं और दूसरों को भी जागरूक करें। स्वच्छ रेल परिसर, सुरक्षित रेल यात्रा, उत्तर मध्य रेलवे द्वारा जनहित में जारी।
0: हाँ भैया, देखा सनेश हो गेल हो और रघुराज सिंह यादव उनका संगातिन भैया ढोलक मजीरा लेके बैठल बाटन।

0: बेटा ट्रेन रुकने तक यही इंतजार करना, चलती ट्रेन में चढ़ना उतरना बहुत खतरनाक होता है।
1: हाँ माँ मुझे सब पता है, ट्रेन रुकने के बाद ही प्लेटफॉर्म साइड से उतरूंगा और रेलवे ट्रैक पर कभी नहीं जाऊंगा।
0: अरे वाह मेरा बेटा तो बड़ा समझदार है, और ये कूड़ा कहाँ डालोगे?
1: डस्टबिन में। स्टेशन साफ रहेगा तभी तो सफर अच्छा लगेगा।
2: एक छोटी सी सावधानी जिंदगी भर की सुरक्षा, सुरक्षित रहें, स्वच्छता अपनाएं और दूसरों को भी जागरूक करें। स्वच्छ रेल परिसर, सुरक्षित रेल यात्रा, उत्तर मध्य रेलवे द्वारा जनहित में जारी।
3: हाँ भैया हो देखा सनेश हो गल, रघुराज सिंह यादव उनके संग हथिन का गौनई हो गल। किसान भैया देखा मौसम के अनुसार हमें अपनी सावधानी रखे के चाहिए, अपन खान पान व्यवस्थित रखे के चाहिए। जब हम स्वस्थ रहब तब हमार खेती बढ़िया हुई और भैया हो दो पैसा का आमदनी हुई। देखा ये वर्षा ऋतु में खान पान संबंधित हमें कौने बात का सावधानी रखे के चाहिए, यही के बारे में आर एन सिंह वैद्य से अपने अरविंद कुमार भैया का बात कही भैल बा, आवाई के सुनल जा।
4: डॉक्टर साहब अपने स्टूडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो हम किसान भाई आपसे ही जाना चाहिए कि वर्षा ऋतु में जो किसान भाई हैं उनका स्वास्थ्य ठीक रहे ओकरे खातिर हमारे सभी कौन कौन सावधानी बरती जाए बताएं।
5: सबसे पहले मैं किसान भाइयों को

0: ये बताना चाहता हूँ कि ऋतुओं के अनुसार दोषों का संचय और प्रकोप शरीर पर प्रभावित करता है। इन्हीं की वजह से रोगों की उत्पत्ति विशेष तौर पर होती है। ग्रीष्म ऋतु अर्थात बैसाख और जेठ में वायु संचित होती है और वर्षा ऋतु में इसका प्रकोप होता है। वातावरण की नमी का प्रभाव शरीर पर पड़ता है। ग्रीष्म ऋतु की पाचन शक्ति पहले से ही दुर्बल होती रहती है। वर्षा ऋतु आने पर उसमें और अधिक बढ़ोतरी हो जाती है और पाचन शक्ति कमज़ोर होने से शरीर में जो रोग रोकने की या प्रतिरोधक क्षमता होती है उसकी कमी की वजह से तरह तरह की बीमारियां पैदा होने लगती हैं। विशेष तौर पे वर्षा के मौसम में जब बहुत तेज़ बारिश होती है जिसमें बौछारें पड़ती हैं तो उससे क्या है कि जमीन सी की जो गर्मी गैस के रूप में निकलती है उसमें अम्लता का भी प्रभाव होता है और कुछ धूल भरी आंधियाँ तूफान होती है उसमें जो है वायु में दूषित प्रभाव विशेष तौर पर दिखाई देता है। बीच बीच में सूर्य की गर्मी भी बढ़ने लगती है, कभी कभी तेज़ धूप हो जाती है, कभी बारिश होने लगती है, तो इसमें पित्त दोष की भी अधिकता बढ़ने लगती है। तो वायु और पित्त दोनों जब कम ज़्यादा होने लगते हैं तो उस समय सर्दी जुकाम बुखार पेचिश संधियों या जोड़ों में दर्द दांत खुजली फुंसियाँ पीलिया और इसी पीरियड में मच्छरों का प्रकोप भी बहुत तेज़ी से बढ़ने लगता है। इसलिए मलेरिया और डेंगू टाइप की जो मच्छर काटने से होने वाली बीमारियां हैं ये बहुत तेज़ी से फैलने लगती हैं।
1: डॉक्टर साहब, चूंकि बरखा का जो समय है, वर्षा ऋतु जो निक बोला जाता है, हम किसान भाइयों के खातिर बहुत महत्वपूर्ण है। अपन खेती किसानी खेती बाड़ी सब कुछ इस समय में होता है, वर्षा ऋतु में होता है। तो इस सब से बचे के खातिर हम किसान भाई कौन कौन सावधानी बरता जाए जौने से कि हमारे सभी का शरीर स्वस्थ रहे, एकरे बारे में थोड़ा बतावें आप।
0: वर्षा ऋतु में हल्के सुपाच्य ताजे गर्म और पाचक अग्नि को बढ़ाने वाले खाद्य पदार्थों का सेवन करना चाहिए।
1: जी
0: ऐसे पदार्थ लेने चाहिए जो वायु को शांत करने वाले हों, जैसे जौ गेहूं मक्का मूंग की दाल खिचड़ी। सब्जियों में बहुत हल्की जैसे तरोई लौकी टमाटर इस तरह की सब्जियों का प्रयोग करना चाहिए किसान भाइयों को। पत्तेदार कोई भी सब्जी बारिश के मौसम में जब बारिश होती रहे इस समय नहीं खाना चाहिए क्योंकि पत्तियों में कीड़े लगने की और उनको अंडे देने के लिए पत्तियों के निचले हिस्से में ज़रूर पैदा होते थे छोटे छोटे अंडे और कीड़े भी पैदा हो जाते हैं। अगर ये पत्तीदार सब्जियां किसान भाई बिना साफ़ सुथरा कायदे से की हुई अगर इसका प्रयोग कर लें तो बीमारियों के फैलने की संभावना बढ़ जाती है। तो अगर बहुत इच्छा ही करती है कि पत्तीदार सब्जी खाने की तो सबसे पहले उसमें नमक और पानी का घोल बना करके उसमें पत्तीदार पत्तियों को डाल दें, करीब आधा घंटे तक पड़ा रहने दें। उसके बाद गर्म पानी से धुल करके उन पत्तियोंदार सब्जियों का भी प्रयोग कर सकते हैं जिससे स्वास्थ्य लाभ के लिए विशेष अच्छी होती हैं पत्तीदार सब्जियां। मगर इनमें सावधानी बहुत ज़रूरी है साफ़ सुथरा के लिए क्योंकि बारिश के दिन में कीड़े मकोड़े इस तरह की समस्याएं बहुत ज़्यादा तेज़ी से फैलती हैं।
1: जी डॉक्टर साहब, वर्षा ऋतु में पानी का प्रयोग हमारे सभी कैसे कीन जाए, कैसे इस्तेमाल कीन जाए कि साफ और शुद्ध पानी हम किसान भाइयों के मिल सके, एकरे बारे में थोड़ा बताऊं।
0: किसान भाइयों को खास तौर से आजकल तो बड़ी समस्या कुएं तो रह नहीं गए हैं कहीं कहीं दिखते हैं लेकिन हैंडपंप का ही सहारा है। हैंडपंप से ही पानी का प्रयोग किया जाता है लेकिन जो जिन हैंडपंपों की गहराई कम है उनमें जो है गंदा पानी आने लगता है। ऐसी स्थिति में शुद्ध पानी कैसे लिया जाए इसके लिए किसान भाई एक बहुत छोटा सा एक तरीका अपनावें तो बहुत अच्छा हो। पहले तो किसान भाई ये अगर देखें कि अगर मान लीजिए उबाला हुआ पानी मिल जाए उबाल के पानी का प्रयोग करें तो बहुत अच्छा है लेकिन कभी कभी भी इतना काम रहता है किसान भाइयों के पास तो उबालने और इन सब चीज़ों की समस्या का समय कम रहता है। ऐसी स्थिति में एक बड़ा फिटकरी का टुकड़ा रखें और एक बाल्टी पानी में टुकड़े को साफ करके पानी के अंदर 3 बार जो है डुबो करके चला दें और उसके बाद उसको बाहर निकाल लें। तो कुछ समय के बाद 20 से 30 मिनट के बाद वो पानी के अंदर जिस तरह के बैक्टीरिया या कोई गंदगी होगी या कुछ भी ऐसा होगा वो सब जम बाल्टी के नीचे परत में बैठ जाएगा और पानी ऊपर का हिस्सा बहुत साफ़ सुथरा हो जाएगा, किसी तरह से उसमें बीमारियां नहीं हो सकती। सबसे शुद्ध और साफ सबसे सरल तरीका पानी को प्राप्त करने किसान भाइयों के लिए यही सबसे उत्तम उपाय है।
1: जी अब दूसरी बात आवत है कि वर्षा ऋतु में हम किसान भाई कौन कौन फल का उपयोग किया जाए, कौन कौन

0: फल खाया जाए जे जोने से कि हमारे सभी के स्वास्थ्य बढ़िया बना रहे, इसके बारे में भी बताएं।
1: वर्षा ऋतु में आम जामुन बहुतायत मात्रा में ग्रामीण क्षेत्रों में मिलता है। प्रतिदिन यदि जामुन का सेवन किया जाए तो त्वचा संबंधी रोग, फोड़े फुंसी, जलन, प्रमेह संबंधी बीमारियों में विशेष लाभकारी है। और आम अगर डाल के पके हुए मिले तो ही अच्छा है, और बाहर से पकाए हुए आम का किसान भाई प्रयोग न करें। अगर डाल का पका हुआ देसी आम मिल जाए तो उसे जो है किसी भी रूप में इस्तेमाल करके, और ऊपर से अगर गाढ़ा एक गिलास दूध का सेवन करें तो शरीर के लिए बहुत पौष्टिक हो जाता है और बहुत ऊर्जा प्रदान करता है।
0: जी, खेती में काम कर के घड़ी ये समय में अगर हम किसान भाइयों के जुकाम हो जाता है, बुखार हो जाता है, या नमी के कारण दाद या फिर जल जनित रोग पीलिया हो जाता है, तो इससे बचाव के खातिर हम किसान भाई कौन कौन उपाय किया जाए, इसके बारे में थोड़ा बताएं।
1: किसान भाई खेतों में काम करने के दौरान अक्सर बारिश होती रहती है, इसलिए वो अक्सर भीग जाते हैं। भीग जाने की वजह से जो है नम कपड़े काफ़ी समय तक उनके शरीर में बने रहते हैं। इसकी वजह से जुकाम, बुखार और इस तरह के छोटे मोटे दांत संबंधी और पीलिया संबंधी भी कुछ विकार पैदा होते हैं। किसान भाइयों को चाहिए कि घर आकर पहले तो सबसे पहले ये जो सरसों का तेल है, शुद्ध सरसों का तेल गर्म करके अगर पूरे शरीर में हल्की मालिश करें, और रात को सोते समय एक चम्मच हल्दी पाउडर और एक गिलास दूध में घोल करके अवश्य पिएं। इससे रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है और इस तरह के बीमारियों से बचाव के लिए सर्वोत्तम उपाय है। अगर इससे भी निदान न हो पाए तो सौंठ, काली मिर्च, छोटी पीपल, गुड़ इस डाल करके काढ़ा बनाएं, और सुबह खाली पेट एक कप काढ़ा जरूर पी कर के घर से निकलें, तो ये सर्दी जुकाम बुखार का प्रभाव जो है या बारिश के कारण जो होने वाली स्थितियाँ, इस पर प्रभाव नहीं पड़ेगा, वो पूरी तरह स्वस्थ रहेंगे।
0: जी, एक दूसर बात जो सबसे महत्वपूर्ण है वर्षा ऋतु में देखे के ये आवत है कि किसान महिला जो है उनके साथ एक बड़ी समस्या है डॉक्टर साहब कि धान का रोपाई चूँकि पानी में ही होता है, जोने से होता है कि उनकर पैर का उंगली जौन है उनमें सड़न पैदा हो जाता है। एक जौन रोग होता है या ये जौन समस्या आवत है, इसे हम किसान जौन बहनी है रहे हैं कैसे बचाव करें, उसके बारे में थोड़ा बतावें।
1: ये बहुत अच्छा आपने प्रश्न किया कि किसान बहनों को इसकी समस्या का बहुत ज़्यादा जूझना पड़ता है। लगातार गीली मिट्टी में, कीचड़ में काम करते करते पैरों में सड़न पैदा हो जाती है, क्योंकि धान की रुपाई के समय लगातार जो है कीचड़ में पूरे दिन उनको रहना पड़ता है और पानी के अंदर। इससे क्या होता है कि पैरों में सड़न, खुजली, जलन इस तरह की समस्या पैदा हो जाती है। इससे बचने के लिए बहुत सरल उपाय यह है कि महिलाएं जब घर पर लौटें तो 1 से 1.5 लीटर पानी को गर्म करें, उसमें 1 चम्मच बहेड़ा पाउडर, 1 चम्मच आंवला पाउडर और 1 चम्मच मेहंदी पाउडर को डाल करके खूब से उबालें। उबालने के बाद जितना सह सकें उतना गर्म गर्म अपने पैरों की सिकाई करें। इससे रात भर में जो सड़न पैदा हो गई है उसका रोपण हो जाएगा और सुबह पुनः फिर वो काम करने के लिए उसी तरह तैयार हो जाएंगी।
0: जी, हम कहें डॉक्टर आर.एन. सिंह जी आप आयन और बहुत बढ़िया जानकारी दी हैं, हमारे सभी इसे जरूर फायदा उठावा जाए। जानकारी देवे के खातिर आपके बहुत बहुत धन्यवाद।
2: हाँ भैया, हो देखा वर्षा ऋतु में कैसे बच बचाव कहके रहे। भैया देखा समय भी धीरे धीरे इशारा करत हो कि अब चली चला कीन जाए, तो अच्छा पंचो राम राम।
3: ग्रामीण भाई सुन रहे थे अपना पसंदीदा कार्यक्रम पंचायत घर, ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। प्रायोजित कार्यक्रम किसान वाणी आप सुनेंगे थोड़ी ही देर में लखनऊ केंद्र से।

0: कृष्णा भैया।
1: हाँ आकांक्षा बनी।
0: जब अपने ख्यादन के माटी का स्वास्थ्य ठीक रहा था तो वही की उत्पादन क्षमता में काफी बढ़ोतरी होती है।
1: बिल्कुल, देखो अपने माटी के स्वास्थ्य निक रहा करा था तो अपन फसल निक होता है, अपन उत्पादन अच्छा होता है, अपन आमदनी अच्छा होता है। अगर फसल अपन सही ना हो तो जौन बा हम पंचन के घाटा लागत है। अब माटी के स्वास्थ्य जिसे आप बताओ तो माटी के स्वास्थ्य तो बहुत महत्वपूर्ण है हम पंचन के लिए।
0: भैया माटी का स्वास्थ्य महत्वपूर्ण है, वह क्या कबो कबो हम लोगों के यहाँ परीक्षण करवावे चाहिए और परीक्षण करे खातिर जो है विशेषज्ञ भैया लोग आवत हैं तो वही माटी के जांच करती है और माटी में यहाँ कौन पोषक तत्वन के कमी है वही के आधार पर यो निर्धारित होता है कि वे माटी के स्वास्थ्य का कैसे प्रबंधित की जाए।
1: जौन हम पंच अपने माटी के जांच करावा करी था वो माटी के जांच के संस्तुत के आधार पर हम पंचन के जौन बा खाद पास का व्यवस्था करे के चाहिए। अगर हम पंच जौन बा सूक्ष्म पोषक तत्व तो कमी है तो सूक्ष्म पोषक तत्व तो या और कौनो कमी है तो हम पंचन के वैसे जौन बा मात्रा दे के चाहिए।
0: बिल्कुल भैया, और अपनी माटी के स्वास्थ्य को यहाँ बरकरार रखे के खातिर जो अपन गोबर की खाद है और जो सड़ी हुई पत्तियाँ हैं उनका डाल के यहाँ उनके जो है क्षमता है माटी के वे के उर्वरक शक्ति को यहाँ बढ़ावा जा सके।
1: बिल्कुल, अपन देसी खाद जोन है ओकर उपयोग करी हम पंच। आज सुना जाए आज की खबरें अभिषेक सक्सेना से।
2: उत्तर प्रदेश सरकार कृषि उत्पादों को वैश्विक बाजार तक पहुँचाने और किसानों की आय बढ़ाने के लिए निर्यात को बढ़ावा दे रही है। राज्य औद्यानिकी निर्यात प्रोत्साहन बोर्ड की दूसरी बैठक में नई वेबसाइट लॉन्च की गई। यह वेबसाइट किसानों और निर्यातकों को उनके जिलों की उपज, संबंधित देशों के बाजार, जरूरी गुणवत्ता मानकों और निर्यात प्रक्रिया की जानकारी देगी। बैठक में प्रदेश के सभी 75 जिलों के किसान, निर्यातक और FPO शामिल हुए और कई MOU पर हस्ताक्षर हुए। प्रदेश में करीब 3,000 निर्यातक सक्रिय हैं। कृषि औद्यानिक उत्पादों का निर्यात वर्ष 2016-17 के करीब 727 करोड़ रुपए से बढ़कर 2025-26 में लगभग 1132 करोड़ रुपए हो गया है। अब उत्तर प्रदेश की उपज अमेरिका, UAE, जर्मनी और ब्रिटेन समेत 20 से अधिक देशों में पहुंच रही है। उद्यान मंत्री दिनेश प्रताप सिंह ने बताया कि जेवर एयरपोर्ट के पास इंटीग्रेटेड टेस्टिंग ट्रीटमेंट पार्क बनाया जाएगा, साथ ही 1,000 करोड़ रुपए के भाव स्थिरता कोष और अन्य सुविधाओं के जरिए किसानों को समर्थन दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि यह बोर्ड मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के $1 trillion अर्थव्यवस्था के संकल्प को साकार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।
3: अरे अरे अरे अरे, क्या कर रहा है? इधर इधर इधर, हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का।
4: पुतला बोल रहे?
3: पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं?
4: मतलब
3: देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? अरे पहले ऐसा नहीं था, पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से कैसे फसल लहलहाती थी, शुद्धता झलकती थी। माटी भी तंदुरुस्त और लोग भी। पहली वाली बात कहाँ,
4: परम तो सब यही डाले हैं।
3: सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं, खर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं।
4: सच
3: है? एक्सपीरियंस से बता रहे हैं, धूप में बाल सफेद नहीं किए हैं।
4: ठीक है भाई, मैं भी आज तक जैविक खेती शुरू करूंगा।
5: माटी से प्रेम की परंपरा है परंपरागत खेती।
1: बहनी देखो, अपने दुआरे जोन हरहा गुरु हैं बंधे, अगर उनके कौनो बीमारी या जारी आ जावा करे था तो हम हो पंचन के परेशानी होता, साथ साथ में अपने हरहा गुरु के भी परेशानी हो।
0: बिल्कुल भैया,
1: आज की बातें में सुना जाए पशुओं में थनैला रोग कारण और निवारण, डॉक्टर प्रमोद कुमार त्रिपाठी से।
6: नमस्कार किसान भाइयों बहनों, खेती के साथ साथ जहाँ पशुपालन से आप जुड़े हैं वहाँ पशुओं में कुछ समस्याएं आती हैं, जैसे इस मौसम में पशुओं का थनैला रोग है, इसके कारण क्या हैं

0: और इसका निवारण कैसे हो, इसी विषय पर जानकारी के लिए आज हमारे साथ हैं डॉक्टर पीके त्रिपाठी साहब। स्वागत है कार्यक्रम में। डॉक्टर साहब, ये बताएं कि ये पशुओं में थनेला रोग है क्या?
1: नमस्कार। पशुपालक भाइयों एवं बहनों, आपने देखा होगा कि जितने भी हमारे दूध देने वाले पशु हैं, उनके थन भी होता है, अयन भी होता है, और जब इस पर सूजन हो जाती है और दूध का रंग बदलने लग जाता है तो वही थनेला है।
0: डॉक्टर साहब, क्या ये बड़े और छोटे दोनों जानवरों में है?
1: कि जो भी दूध देता है, जो हमारा कशेरुक जानवर है, पीठ जिनके है, वो सब दूध देते हैं, और जहाँ पर दूध देते हैं जानवरों में मैस्टाइटिस होती है, ये सब में पाया जाता है, चाहे शूकर हो, बकरी हो, गाय हो, भेड़ हो, और यहाँ तक कि हमारे जो श्वान हैं उसमें भी ये देखा गया है कि ये होता है।
0: तो इसके मुख्य लक्षण तो आपने बताया कि थन में सूजन, इसके अलावा भी कुछ लक्षण और होंगे?
1: आप पहले तो ये देखें कि थनैली हो कैसे जाती है। थन से जब बाहर दूध आएगा, अगर इसमें किसी प्रकार का रुकावट होगी तो यहाँ से जीवाणु जो हैं वो अंदर चले जाते हैं और थनैली का एक संक्रमण करते हैं। दूसरा कारण एक और हो सकता है कि इस समय बरसात हो रही है, वैसे भी कीट पतंगे अगर थनों को काट लेते हैं तो वहां पर भी एकदम सूज जाएगा और एलर्जी कहते हैं, एलर्जी हो जाती है, और कुछ खाने पीने से भी एलर्जी हो जाती है जिसका कि प्रभाव थन पर पड़ता है। तीसरा जो एक और कारण है जो सब जगह देखा गया है कि जो फर्श पर हमारे गोवंश या भैंस जो दूध देने वाले बैठते हैं, वहां पर कंकड़ीली पथरीली अगर जमीन है, उसके दबाव के कारण थन पर दबाव पड़ा, चोट लगी और उसको थनैली हो गई, अब सूजन हो गई, तो हमारे भाई लोग जो हैं वो दूध नहीं दूहते क्योंकि वहां पर दर्द हो रहा है। जब दर्द हो रहा है तो वहां पर दूध इकट्ठा हुआ और अब दूध में संक्रमण हो गया। जो हमारे गोवंश हैं या भैंस हैं, ये पैर बहुत चलाते हैं, जब आप दूध दुहेंगे तो पैर मारेंगे, तो पैर चलाने से भी चोट लगती है और इस चोट से भी थनैली हो सकती है। तीसरा जो एक और कारण है जो अधिकांश देखा गया है कि लोग पहली धार जमीन पर फेंक देते हैं। किसान भाइयों, कभी भी जमीन पर पहली धार मत फेंकें क्योंकि इस धार के द्वारा भी संक्रमण हो जाता है। जब भी मनुष्य का बच्चा पैदा हुआ, कभी देखा गया कि एकदम थन सूज गया, जैसे ही थन सूजा हमने सोच लिया कि इसके लिए भाई थनैली हो गई
0: जी।
1: कभी कभी बिना थनैली, बिना संक्रमण के भी थन सूज जाता है, जिसे एलर्जिक कहते हैं। अब उसमें आप एकदम ठंडे पानी से अगर आप धो देंगे, सिकाई कर देंगे, उससे कम हो जाएगा,
0: बर्फ से सिकाई कर,
1: या बर्फ से सिकाई करें या एलर्जी के कोई भी दवा आप दे दें तो वो सही हो जाएगा। दूसरा, कभी कभी देखा है कि पहली बार के अभ्यांत में थनों से खून आने लग जाता है, खून के कतरे आ जाते हैं
0: जी।
1: अब हमारे किसान भाई तो कहते हैं कि भाई ये तो वो थनैली हो गई। नहीं, थनैली वो नहीं हुई है। कारण उसके पीछे क्या है, जब एकदम बच्चा देने के समय में जब थन एकदम फैलता है तो उस समय छोटी छोटी जो उसकी
0: केशिकाएं
1: जो हैं वो फटती हैं, जब फटती हैं तो वही दूध में आ जाती है।
0: लेकिन कभी कभी थनैला में भी खून की समस्या आती है दूध के साथ?
1: निश्चित, क्योंकि यही जो फटी है और वो रुक गई, अब रुक गई तो वहां पर संक्रमण हो गया तो थनैली में हो गई। अगर इसको हम समय से चेत जाएं तो निश्चित है कि थनैले को रोका जा सकता है, क्योंकि हमारे जितना भी कुल जितना भी दूध जो है उसमें थनैले के कारण कम से 30-40% दूध हमारा इसी थनैले के कारण नुकसान हो रहा है।
0: यानी 30-40% जानवर प्रभावित हो जाते हैं।
1: किसी में कम होता है, किसी में ज्यादा।
0: डॉक्टर साहब, इसका निवारण कैसे हो, पशुपालक भाई कैसे जागरूक हो, क्या कुछ करें कि उनके पशुओं में थनैला की समस्या ना आए?
1: बहुत बड़ा एक और भी कारण है, जो हमारे पशुपालक है जब धोते हैं तो उनका हाथ गंदा होता है, वो हाथ धोते ही नहीं है, और गंदे हाथ से जब धोएंगे तो उसका भी संक्रमण अंदर चला जाता है। तो पहले तो अपना हाथ धोएं, बाल्टी धोएं और उसका पानी जो है वो साफ रखें और उससे थन साफ करें,
0: ये बचाव का उपाय,
1: बचाव के लिए है, अगर ये करते हैं नहीं होगा। दूसरा, जिस फर्श पर बैठते हैं, अब तो नया नया आ गया है कि रबर की एक फर्श आ गई है,
0: पैड
1: आ गया है, उसको बिछा देते हैं ताकि उसके थनों पर अनावश्यक दबाव ना पड़े, और दूसरा कि उसकी सफाई भी आसानी से हो जाती है। तो एक तो ये है, दूसरा ये कि दूध दुहते समय पूंछ को बांध दें, क्योंकि दूध के समय वो पूंछ झाड़ती है मक्खी वक्खी को हटाने के लिए, वो भी कर दें। और जो सबसे बड़ी चीज ये है, तो हमने दूध तो पूरा दुहा ही नहीं, और जहां पर पूरा दूध नहीं दुहा जाएगा, थन के अंदर रह जाएगा तो उसमें भी संक्रमण हो जाएगा। भाइयों, एक और चीज बहुत बड़ी चीज है, ये संक्रमण भी तो कई तरह के होते हैं
0: जी,
1: बहुत जीवाणु, ये मुख्य रूप से

0: जीवाणुओं के द्वारा है। स्टेप्टोकॉकस या स्टेफाइलोकॉकस दो तरह के मुख्य हैं, वैसे तो बहुत सारे और भी हैं,
1: हाँ, लेकिन मुख्य जीवाणु दो हैं,
0: और इन्हीं के कारण जो दूध जाता है उससे हमारा पेट भी खराब हो जाता है।
1: अच्छा,
0: तो ये खराब दूध जो है ये अगर शरीर में जाएगा तो हमें भी
1: संक्रमण,
0: डायरिया कर देगा, संक्रमण हमें भी करेगा। तो इसके लिए एक बहुत बढ़िया है कि जो भी जानवर उसका दूध समय से निकालते रहें। गर्म पानी कभी भी प्रयोग मत करें, ये मत सोचें कि सूज गया है तो गर्म पानी से, बर्फ से या एकदम ठंडे पानी से दिन में 3-4 बार सेकें। नंबर 2, दोहने के बाद आयोडीन का सोल्यूशन ले लें, उसको थन पर लगा दें ताकि बाहर से जीवाणु अंदर ना जाए। लाल दवा भी एकदम बहुत बढ़िया है, जो हमारे गाँव में तो लोग जानते हैं कि, तो 1 लीटर पानी में 1 ग्राम डाल करके इसका सोल्यूशन रखें, उसी से सफाई करें। तो
1: और दोहने के पहले और दोहने के बाद,
0: के पहले और दोहने के बाद भी इसको करें। जब कभी भी अगर दूध में एक आध कण भी अगर खून का दिखाई दे तो एक बहुत घरेलू दवाएं बता रहे हैं, फिटकरी और बोरिक पाउडर 10-10 ग्राम दोनों को मिला करके गुड़ के साथ खिला दीजिए, 1-2 दिन के अंदर ये खून बंद हो। कभी कभी हमारे किसान भाइयों एक और देखते हैं कि दूध जो है गाढ़ा हो गया है, फट रहा है, इसमें ये होता क्या कि पेट के अंदर, शरीर के अंदर एक एसिडिक अम्लीय माध्यम रहता है, एक क्षारीय, तो जब ये माध्यम बदलेगा उस समय ये सामने आएगा। और उसको सही करने के लिए उसका एक बहुत छोटा सा इलाज है, खाने वाला मीठा सोडा, 20 ग्राम खाने वाला मीठा सोडा गुड़ के साथ सुबह शाम दे दें, आप 1-2 दिन के अंदर आप देखेंगे कि माने ये थनैली से इसका कोई रिलेशन नहीं है, कोई मतलब नहीं है।
1: डॉक्टर साहब, पशुओं में थनैला रोग की चर्चा हो रही है, तो क्या दूध दुहने के आधा घंटे बाद तक जानवर को खड़े रखना है?
0: जैसा मैंने बताया कि अगर वो जमीन पर बैठ गया तो उसके थन का जो रास्ता जो है वो तो खुला ही हुआ है, अभी
1: संक्रमण हो सकता है,
0: संक्रमण हो सकता है, इसीलिए बैठने वाली जगह एकदम साफ सुथरी हो, तो एक तो वो हमें साफ रखना है, बैठना नहीं देना है आधा घंटे तक, उसके बाद ऑटोमेटिकली जो उसका थन जो है उसका छिद्र बंद हो जाता है, एक तो ये काम करें। दूसरे एक और चीज हमने गांव में देखी है, नीम की सीख वो डालते हैं, तो हमारे पशुपालक भाइयों बहनों कभी भी ये भूल करके
1: उसमें सीख मत डालें,
0: सीख कभी मत डालें,
1: ये खतरनाक,
0: ये
1: हो
0: बहुत सकता। खतरनाक होता है, कभी कभी तो सीख अंदर टूट जाती है
1: जी,
0: और जो परेशानी करती है। चारा अगर आप ठिकाने से दे रहे हो, हरा चारा, इसमें मिनरल मिक्सचर खनिज लवण बहुत बढ़िया काम करता है, अगर खनिज लवण उसको समय से दे रहे हैं उसमें इम्यूनिटी आ जाती है, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ जाती है,
1: तो ये संक्रमण होगा ही नहीं,
0: संक्रमण नहीं होगा।
1: डॉक्टर साहब, ये तो रहा कि बचाव के उपाय, अब ये बताएं कि अगर थनैला हो ही गया तो इसका इलाज संभव है?
0: निश्चित संभव है, अगर समय से हो निश्चित संभव। एलोवेरा सब जानते हैं,
1: 250 ग्राम
0: ले लें,
1: या ग्वारपाठा,
0: या ग्वारपाठा जिसको कहते हैं, 50 ग्राम उसमें हल्दी डाल दें
1: जी,
0: और 10 ग्राम चूना डाल दें,
1: हाँ,
0: और इसको मिला करके इसका मलहम बना दें। अब उसके थन जो सूजा हुआ है उस पर लगाएं, और हर घंटे माने 100 ml पानी में मिला करके,
1: हाँ,
0: पतला करके तब उसको लगाना है
1: जी,
0: और हर घंटे उसका दूध निकालते रहें।
1: अच्छा,
0: तो ये देखा गया, वैज्ञानिकों ने देखा है, थनैला जिस पर कि 20-25 हजार रुपया हमारे लोग खर्च कर देते हैं, तो रात में सरसों का तेल आप ले लीजिए 200-250 ml ले लीजिए, और इसमें हल्दी डाल दीजिए, ये दोनों मिला करके अब उसको थन पर लगा दीजिए, ये रात भर के लिए,
1: ताकि मुलायम रहे,
0: ताकि मुलायम रहे। दूध अगर रुका नहीं कि संक्रमण हुआ तो इसको अगर करेंगे निश्चित है थनैली नहीं होगी, और अगर हो जाते, अगर इससे भी नहीं होता है तब आप पास के पशु चिकित्सक को बुला करके, तो उसकी दवाएं भी हैं।
1: डॉक्टर साहब, पशुपालक भाइयों बहनों के मन में अभी भी ढेर सारे सवाल होंगे पशुओं में थनैला रोग कारण और निवारण के बारे में, अगर इसके लिए आपसे सीधे संपर्क करना चाहें तो अपना मोबाइल नंबर बता दें।
0: 94-15-15-28-98 94-15-15-28-98
1: डॉक्टर साहब, बहुत बहुत धन्यवाद।
2: प्रधानमंत्री किसान मानधन।

0: प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना से लघु सीमांत किसानों का भविष्य होगा सुरक्षित
1: और 60 वर्ष की आयु से 3000 रुपए मासिक पेंशन होगी सुनिश्चित।
0: 55 रुपए से 200 रुपए की मासिक किस्त देकर प्रवेश कर सकते हैं 18 से 40 वर्ष तक के किसान।
1: इस अंशदायक योजना में सरकार देगी बराबर का योगदान।
0: सभी किसान भाई बहन इस योजना के लाभ के लिए जन सेवा केंद्र में जाएं
1: और अपना निःशुल्क नामांकन कराएं।
0: प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना, अन्नदाता के परिश्रम को संबल, पेंशन से सुरक्षित उनका कर।
2: कृषि एवं किसान कल्याण

0: मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
1: और भैया सावन का महीना तो काल जो है खत्म हो गया है।
2: हाँ।
1: मुला जो है कजरी गीत अब हम लोगों के यहाँ जो है सुनाई पड़ रहे हैं, तो हम अपने कार्यक्रम यहाँ लाए एक कजरी गीत जी का गा रहे हैं अच्छे लाल सोनी भैया, तो आओ एक सुना जाए।

0: अब अनि देखो अपने पंच भैया जौन हैं एक अच्छे अच्छे उत्पादन करा कर थी और ऐसे अपने बीच में आज के किसान हैं सतीश कुमार यादव भैया और परवल उत्पादन पे अपन बताए रहे हैं अनुभव, तो आओ सुना जाए।
1: नमस्कार किसान भाइयों बहनों, आइए आज आपको ले चलते हैं सुल्तानपुर जनपद के हलियापुर ब्लॉक के गोहनिया गांव, जहां परवल के लाल सतीश कुमार यादव भैया टेलीफोन लाइन पर हैं। सतीश भैया नमस्कार।
2: नमस्कार नमस्कार किसान भाइयों बहनों को मेरा नमस्कार।

0: सतीश भैया, आप परवल उत्पादन के लिए जाने जाते हैं, इस साल
1: जी,
0: कितना रकबा है आपका परवल का?
1: इस समय हमारे पास परवल का रकबा 2.5 एकड़ है।
0: 2.5 एकड़ है।
1: ढाई एकड़
0: कौन कौन सी वैरायटी लगाए हैं परवल की?
1: हमारे पास परवल की 2 वरायटी है, नरेंद्र 260, नरेंद्र 502, परवल की 2 वरायटी है हमारे पास।
0: क्या खासियत महसूस करते हैं? ये तो आचार्य नरेंद्र देव कृषि प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय की प्रजातियां हैं।
1: जी, खासियत ये है कि जो नरेंद्र 260 है वो लंबी वरायटी है, थोड़ा जल्दी तैयार हो जाती है। जो 502 है थोड़ा लेट में होती है, लेकिन मार्केट रेट जो है 502 का बड़ा बेहतर है, इसीलिए दोनों वरायटियों को मैंने चयनित किया। दोनों को लगभग आधा आधा रकबा
0: तो
1: दिया है।
0: कुल 2.5 एकड़ रकबा है, 1.25 एकड़ एक प्रजाति, 1.25 एकड़ दूसरी प्रजाति।
1: जी,
0: कुछ स्थानीय प्रजातियां नहीं लगाए हैं?
1: नहीं, ये तो काफी समय से बड़ी बेहतरीन वरायटी है, हमको इसी में बड़ा बेहतर लग रहा है। एक दो वरायटी लगाए थे, लेकिन उतना अच्छा उत्पादन आया नहीं हमको, फिर इसी पर आ गए हम।
0: तो इस समय निकासी चल रही है?
1: निकासी चल रही है, प्रतिदिन 2 क्विंटल उत्पादन निकल रहा है परवल का।
0: प्रतिदिन?
1: जी,
0: तो किसान भाई बहन जानना चाहेंगे कि परवल की रोपाई और उसके पहले खेत की तैयारी से लेकर के फलत तक कौन कौन सा महत्वपूर्ण काम करते हैं परवल में?
1: अगर आपको परवल लगाना है तो अक्टूबर के महीने में खेत की ढंग से जुताई करके रोटावेटर से, कल्टीवेटर से, उसके बाद में देसी कपास खाद डलवा करके खेत को पाटा लगवा करके छोड़ देना चाहिए।
0: हाँ,
1: उसके बाद 15-20 अक्टूबर के आसपास आप पौधे की रोपाई कर सकते हैं।
0: अच्छा,
1: हाँ, जो पौधों की रोपाई होगी, अगर भारी मिट्टी होगी काली तो आप 4x8 पर लगाएंगे, अगर बलुई दोमट मिट्टी है तो 5x10 पर लगाएंगे पौधे को। पौधा लाइन की दूरी 10 फीट रहेगी, पौधे से दूरी 5 फीट रहेगी।
0: तो परवल की सकर्स लगाने में भी खास सावधानी है?
1: अब परवल लगाने में खास सावधानी है, 2-3 प्रकार की लगाई जा सकती है, जैसे अंग्रेजी के 8 के आकार की बना करके लगा सकते हैं, या दोनों साइड में आप बीच में मिट्टी डालने का टेम है, दोनों साइड में निकला रहे, वो भी आप कर सकते हैं।
0: अक्टूबर में लगाने के बाद जमाव फुटाव कितने दिन में हो जाएगा?
1: 1 हफ्ते बाद है, लगभग 8 से 10 दिन में जमा हो जाएगा।
0: उसके बाद की देखभाल?
1: उसके बाद भी देखभाल यही है कि वो नवंबर दिसंबर शुष्क अवस्था में पौधा पड़ा रहेगा,
0: हाँ,
1: जैसे 20 जनवरी या फरवरी के प्रथम सप्ताह में वो कल्ला तेजी से भागने लगेगा, और उसके बाद में फलत आपको मान लीजिए कि 20 अप्रैल 15 अप्रैल के आसपास आ जाएगी।
0: तो फसल की भूख और प्यास कैसे मिटाएं? कब मिटाएं? कितना
1: तो
0: मिटाएं?
1: फसल की भूख और प्यास मिटाने के लिए आप फरवरी में गोबर की देसी पास, डीएपी, पोटास, सुपर, ये सब जड़ के पास दे करके सिंचाई करवा देनी चाहिए। उसके बाद 10 दिन बाद पल्ला बढ़िया ठीक ठाक आगे निकलेगा, पौधा का विकास होना शुरू हो जाएगा।
0: तो आपकी निकासी अप्रैल के शुरू से अब तक चल रही है
1: लगभग 10 अप्रैल के आसपास स्टार्टिंग हो जाती है हमारी परवल की।
0: और ये चलेगा कब तक?
1: लगभग ये चलेगा 15 से 20 नवंबर तक चलेगा लगातार। ये परवल
0: कितने वर्षों से आप परवल का उत्पादन कर रहे हैं?
1: लगभग 10-12 साल से लगातार हम उत्पादन कर रहे हैं परवल का। पहले समस्याएं
0: कुछ समस्याएं भी आती होंगी परवल उत्पादन?
1: वही जुलाई अगस्त के महीने में बारिश ज्यादा हो जाती है, तब फंगस का अटैक होता है।
0: तो जल निकास प्रबंध करते होंगे?
1: आप जब फंगस की समस्याएं ज्यादा बारिश होती है तब दिखाई पड़ती है, तो आप फंगिसाइड का इस्तेमाल लगभग 10-15 दिन करना पड़ेगा आपको। जुलाई अगस्त से दिक्कत रहती है, उसके बाद में फिर कोई दिक्कत नहीं होती।
0: तो आपने मचान पर परवल चढ़ाया है या कोई
1: नहीं,
0: और
1: हमारा तो
0: तरीका?
1: मचान पर नहीं है, जमीन पर है, उसमें मैंने पुआल का नीचे पुआल बिछवा दिया, उसके ऊपर परवल चढ़ा है।
0: अच्छा, मल्चिंग है नीचे परवल
1: तो
0: की,
1: पहले की मल्चिंग मैंने कराया है,
0: उससे नमी भी संचित रहती होगी?
1: नमी बराबर बनी रहती है। आपको मान लीजिए कि एक गर्मी के महीने में इतना अच्छी नमी बनाए रखता है कि एक बार आप सिंचाई कर दिए 15 दिन सिंचाई करने की कोई जरूरत नहीं।
0: बीच बीच में कुछ फसल की भूख मिटाने के लिए देते होंगे खुराक?
1: मान लीजिए कि एक महीने में एक बार जरूर आपको, जैसे कि डीएपी हुआ, जाइम हुआ, जंग के पास देना पड़ता है,
0: हाँ,
1: पूरा पौधा फिर इसी तरह विकास की ओर बढ़ता रहेगा।
0: जल बिलिए उर्वरक का भी प्रयोग करते हैं, पानी छिड़काव करते हैं?
1: छिड़काव तो वही हम

0: डीएपी का करते हैं और एनपीके का करते हैं।
1: अच्छा, एनपीके का?
0: एनपीके जीरे बाउन 34 बार दो-तीन स्टेप में करते हैं।
1: अच्छा,
0: सबसे पहले 1919 हुआ, उसके बाद में 0-0-0 बाउन 34 हुआ, उसके बाद 0-0-50 लास्ट पोजीशन पर जो है अलग की स्थिति में रहेगा। तब
1: फसल सुरक्षा के लिए कुछ जैविक उपाय भी करते हैं?
0: अब लगभग जैविक उपाय में नीम आयल का स्प्रे करते हैं, ज्यादा अधिक अगर नुकसान स्तर बढ़ा तब कीटनाशक का स्प्रे करते हैं, नहीं तो इसी से काम चला लेते हैं।
1: सतीश भैया, पिछले 10-12 सालों से लगातार आप परवल का उत्पादन कर रहे हैं, तो एकड़ में लागत कितना गिरती है, उत्पादन कितना तक ले लेते हैं और आपका मुनाफा होता कितना है?
0: एक एकड़ में लागत लगभग 70 से 80 हजार रुपए आ जाती है, उत्पादन लगभग 200 से 250 क्विंटल के आसपास आ जाता है, तो कुल मिलाकर के लगभग 3 लाख के आसपास हमारा एकड़ में मुनाफा हो जाता है।
1: यानी बचत?
0: जी जी जी जी।
1: जो अब तक का आपका तजुर्बा है परवल उत्पादन का, उसके आधार पर और किसान भाइयों बहनों को क्या सलाह देना चाहेंगे?
0: अब किसान भाइयों बहनों को हम यही सलाह देना चाह रहे हैं कि आप बाहर ना जा करके अपने घर में ही अच्छा काम कर सकते हैं, विशेष करके परवल जो है आप करिए, भरपूर फायदा लीजिए और खेती को सफल मनाइए।
1: बहुत सारे किसान भाई बहन उत्सुक होंगे आपसे मिलने के लिए या आपसे बात करने के लिए, तो अपना मोबाइल नंबर बता दें।
0: हमारा मोबाइल नंबर है 9116-29-1372 9116-29-1372 9116-29-1372।
1: सतीश कुमार यादव भैया, आप एक युवा किसान हैं, आज के किसान क्रम में आपसे परवल उत्पादन पर इतनी अच्छी बात हुई कि आप 2.5 एकड़ परवल उत्पादन कर रहे हैं और आधा एकड़ से शुरू करके आज इस मुकाम पर आप पहुंचे हैं, और किसान भाई बहन आपसे सीख लेंगे, बहुत बहुत धन्यवाद।
2: बनी देखो, आज के बैठकी में अपन कार्यक्रम कैसा लगा, वो पंच भैया अगर पाती के माध्यम से हम पंचन लिखा चाहते हैं या कोनो सुझाव दिया चाहते हैं तो पता अपन बता दी जाए। अपने कार्यक्रम का पता है, कार्यक्रम किसानवाड़ी द्वारा केंद्र निदेशक आकाशवाणी, 18 विधानसभा मार्ग लखनऊ, पिन कोड है 226001।
3: और भैया आपने कार्यक्रम के एक मेल आईडी है, और ये मेल आईडी क्या पता है, farmandhomeairlko@gmail.com। और ये मेल आईडी पर अपन जो है पंच भाई अपन सुझाव भेज सकते हैं।
2: बिल्कुल, तो बहनी पंच भाइयों से लेन जाए विदा।
3: जय हिंद।

0: इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।
1: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम किसान वाणी। मीडियम वेव के मीटर पर ये आकाशवाणी का लखनऊ केंद्र है। अब से कुछ ही पलों में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार।

0: पीएम फसल बीमा योजना से करीब 2 लाख करोड़ रुपए क्लेम के रूप में किसानों को मिले हैं।
1: मैं 15-20 वर्षों से खेती कर रहा हूँ, मेरे पास 3 हेक्टेयर लगभग जमीन है। प्रधानमंत्री फसल बीमा हमें आर्थिक मदद करती है। सर 23-24 में खरीफ की फसल में 48,900 रुपए मिला। हमारे जो संपर्की किसान है मैं उनको समझाऊंगा बताऊंगा, जैसे मुझे सहायता प्राप्त हुई है ऐसे अन्य लोगों को भी हो।
2: खरीफ फसल बीमा के लिए शीघ्र पंजीकरण कराएं।
3: बैंक शाखा, बीमा कंपनी, कृषि ऋण समिति, जन सेवा केंद्र से संपर्क करें।
2: फसल बीमा से संबंधित जानकारी के लिए हेल्पलाइन नंबर 1-4447 पर कॉल करें। फसल बीमा।

0: यूपीआई ने बनाया है गांव और कस्बों में पेमेंट को आसान। करीब 60% यूपीआई पेमेंट हो रहे हैं 500 रुपए से नीचे और हर दो में से एक ग्लोबल डिजिटल पेमेंट हो रहा भारत में।
1: स्ट्रीट वेंडर से लेकर आपकी गाड़ी के शोरूम तक आपकी सारी पेमेंट सिर्फ एक QR कोड स्कैन करके हो जाती है।
0: यूपीआई के 10 साल डिजिटल, आत्मनिर्भर, बेफिक्र।
2: आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सुबह 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात में देश विदेश के लोगों के साथ साझा करेंगे अपने विचार। आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क पर प्रसारित होगा कार्यक्रम। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने देवरिया में 305 करोड़ रुपए लागत की 80 परियोजनाओं का किया लोकार्पण और शिलान्यास। कहा डबल इंजन सरकार ने सभी वर्गों को पहुंचाया।

0: यूपीआई के 10 साल डिजिटल आत्मनिर्भर बेफिक्र।
1: आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सुबह 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात में देश विदेश के लोगों के साथ साझा करेंगे अपने विचार। आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क पर प्रसारित होगा कार्यक्रम। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने देवरिया में 305 करोड़ रुपए लागत की 80 परियोजनाओं का किया लोकार्पण और शिलान्यास। कहा, डबल इंजन सरकार ने सभी वर्गों को पहुंचाया योजनाओं का लाभ। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने लखनऊ में बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह को किया संबोधित। कहा, पिछले 12 वर्षों में शिक्षा की गुणवत्ता में हुआ सुधार। और राजधानी लखनऊ सहित राज्य के कई जनपदों में रुक रुक कर बारिश जारी। प्रदेश की कई नदियों का जलस्तर बढ़ा। मुख्यमंत्री ने बलिया में बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का किया हवाई सर्वेक्षण। नमस्कार, प्रदेश के समाचारों के साथ मैं मोनिका चौहान। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सुबह 11 बजे आकाशवाणी के मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों से अपने विचार साझा करेंगे। ये मासिक रेडियो कार्यक्रम की 137वीं कड़ी होगी। आकाशवाणी और दूरदर्शन के समस्त नेटवर्क, आकाशवाणी समाचार की वेबसाइट और न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर यह कार्यक्रम सीधे प्रसारित होगा। हिंदी प्रसारण के तुरंत बाद आकाशवाणी क्षेत्रीय भाषाओं में कार्यक्रम प्रसारित करेगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज जनपद देवरिया के सलेमपुर और भाटपार रानी विधानसभा क्षेत्रों में 305 करोड़ रुपए की लागत की 80 लोक कल्याणकारी परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि डबल इंजन सरकार के सुशासन का परिणाम है कि गरीब को बिना मांगे राशन, बिजली, आवास, शौचालय और नौजवान को रोजगार और सरकारी नौकरी मिल रही है। उन्होंने कहा कि डबल इंजन सरकार में देवरिया विकास के नित नए प्रतिमान स्थापित करते हुए आगे बढ़ रहा है।
2: देवरिया आज विकास के नए प्रतिमान को स्थापित कर रहा है। कनेक्टिविटी बेहतर हो रही है, कहीं बाईपास बन रहे हैं, कहीं फ्लाईओवर बन रहे हैं, कहीं सिंगल लेन की सड़क डबल लेन में, डबल लेन की फोर लेन में, फोर लेन की सिक्स लेन में, कहीं कंपोजिट विद्यालय बन रहे हैं, कहीं पर कस्तूरबा गांधी विद्यालय का उच्चीकरण हो रहा है, कहीं नौजवानों की प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए भी कोचिंग की व्यवस्था की जा रही है, और कहीं पर ऑपरेशन कायाकल्प के अंतर्गत बेसिक शिक्षा के विद्यालयों में एक नया परिवर्तन करके अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य को आगे बढ़ाने के लिए कार्य कर रही है।
1: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज गोरखपुर में कल्याण मंडपम और 130 करोड़ रुपए से अधिक लागत की 170 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि हर जनपद में सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम पर एम्प्लॉयमेंट और इंडस्ट्रियल जोन बनाने का काम हो रहा है। श्री योगी ने कहा कि प्रदेश में सुरक्षा का बेहतर माहौल है। प्रदेश में स्वाइन फ्लू की स्थिति को लेकर प्रदेश सरकार ने सतर्कता बढ़ा दी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने स्वास्थ्य विभाग, जिलाधिकारियों और संबंधित विभागीय अधिकारियों को स्वाइन फ्लू को लेकर लगातार निगरानी रखने और चिकित्सकीय व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। पेश है एक रिपोर्ट।
3: मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से कहा कि प्रदेश में स्वाइन फ्लू के मामलों की नियमित समीक्षा की जाए और किसी भी स्तर पर लापरवाही न बरती जाए। मुख्यमंत्री ने अस्पतालों में मरीजों के उपचार के लिए पर्याप्त तैयारियां सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। श्री योगी ने जिलाधिकारियों और स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को अपने अपने जिलों में विशेष सतर्कता बरतने तथा स्वास्थ्य व्यवस्थाओं की नियमित समीक्षा करने को कहा है। साथ ही स्वाइन फ्लू की स्थिति में किसी भी संभावित बदलाव की जानकारी तत्काल शासन में उच्च स्तर तक पहुंचाने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने प्रदेशवासियों से अपील की है कि स्वाइन फ्लू के लक्षण दिखाई देने पर समय रहते चिकित्सकीय सलाह लें और आवश्यक जांच कराएं। समाचार कक्ष से राघवेंद्र त्रिपाठी।
1: इसी क्रम में उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने आज प्रदेश भर के स्वास्थ्य अधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हालात की समीक्षा की। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि भारत न केवल एक प्रमुख अर्थव्यवस्था के रूप में उभरा है, बल्कि अपनी सभ्यतागत विरासत, संस्कृति और क्षमताओं पर दृढ़ विश्वास रखने वाला राष्ट्र भी है। लखनऊ में आज बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय के 11वें दीक्षांत

0: समारोह को संबोधित करते हुए श्री सिंह ने कहा कि आज जब भारत बोलता है तो दुनिया सुनती है। रक्षा मंत्री ने कहा कि नए भारत में सबसे बड़ा परिवर्तन ये है कि देश अब केवल वैश्विक नियमों का अनुसरण नहीं कर रहा है बल्कि नियम बनाने में भी योगदान दे रहा है। श्री सिंह ने यह भी बताया कि पिछले 12 वर्षों में भारत में शिक्षा की गुणवत्ता, सुलभता और सामर्थ्य में सुधार हुआ है। उन्होंने कहा कि अनुसंधान एवं विकास पर व्यय दोगुना हो गया है और 34 वर्षों के बाद एक नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू की गई है। रक्षा मंत्री ने कहा कि विश्वविद्यालयों का उद्देश्य केवल डिग्री देना नहीं होना चाहिए बल्कि राष्ट्र निर्माण भी होना चाहिए।
1: विद्यालय अथवा विश्वविद्यालय जो होते हैं व्यक्तित्व निर्माण के केंद्र होते हैं और जब व्यक्तित्व निर्माण होता है तो ऐसे लोग समाज के निर्माण में और राष्ट्र को आगे ले जाने में अपनी अहम भूमिका का निर्वाह करते हैं। इसलिए इस विश्वविद्यालय का उद्देश्य केवल डिग्री देने तक सीमित नहीं होना चाहिए बल्कि ऐसे युवाओं के निर्माण का भी होना चाहिए जो जस्टिस, इक्वालिटी, लिबर्टी और फ्रेटर्निटी के आदर्शों से प्रेरित होकर नेशन बिल्डिंग में अपना कॉन्ट्रीब्यूशन दे।
0: ये समाचार आप आकाशवाणी लखनऊ से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। इसके साथ ही आप प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन एआईआर लखनऊ पर भी सुन सकते हैं। ग्रुप कैप्टन और अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला और सेशल्स गणराज्य की प्रथम महिला वेरोनिक हर्मनी आज गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय ग्रेटर नोएडा में आयोजित मिशन शक्ति सेट स्पेस वॉक कार्यक्रम में शामिल हुए। इस कार्यक्रम में छात्राओं द्वारा बनाए गए मॉडल की प्रस्तुति दी गई। इस अवसर पर ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला ने कहा कि अंतरिक्ष मिशन में टीम वर्क की अहम भूमिका होती है।
2: 108 देशों से बच्चे आई हैं जो जुड़ी हैं इस मिशन से और जिन्होंने मिलकर शक्ति सैट का एक इंजीनियरिंग मॉडल बनाया है और बहुत खुश हूँ मैं ये जानकर कि इतने सारे देशों को हम जोड़ पाए और एक साथ जगह इस जगह पे ला पाए जो कि अब इस सैटेलाइट को अंतरिक्ष में लॉन्च करें। स्पेस एक्सप्लोरेशन में टीम वर्क की बहुत बड़ी अहमियत होती है और इससे ज़्यादा अहमियत हम दिखा नहीं सकते इस मिशन ने दिखाई है।
0: राजधानी लखनऊ सहित प्रदेश के कई जनपदों में रुक रुक कर बारिश जारी है। मौसम विभाग ने अगले 3 दिनों के लिए प्रदेश के कई हिस्सों में गरज चमक के साथ बौछारें पड़ने का अनुमान जताया है। वहीं पूर्वी उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों के लिए भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। वहीं बारिश और बैराजों से पानी छोड़े जाने के कारण प्रदेश की कई नदियों का जलस्तर बढ़ रहा है। अतिवृष्टि के कारण पिछले कुछ दिनों में करीब 26 जनपद बाढ़ से प्रभावित हुए हैं। चित्रकूट में मंदाकिनी नदी उफान पर है। वाराणसी में गंगा नदी के जलस्तर में बढ़ोतरी दर्ज की गई है। बलिया में गंगा नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज बलिया में बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का हवाई सर्वेक्षण किया। उन्होंने बाढ़ प्रभावितों को राहत सामग्री भी वितरित की। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि सरकार आपदा प्रभावितों के साथ खड़ी है।
3: सर्पदंश से किसी व्यक्ति की दुर्भाग्यपूर्ण मौत हो जाती है तो वो हमें आपदा राहत के दायरे में लेकर के तत्काल उस परिवार को 4 लाख रुपए की सहायता उपलब्ध करवाते। 2017 के पहले सुविधा नहीं थी। कोई किसान, कोई बटाईदार, किसान के परिवार का सदस्य, बटाईदार के इस परिवार का सदस्य आकाशीय बिजली से, बाढ़ से अगर वह प्रभावित तो हो जाए तत्काल कृषक दुर्घटना बीमा में उसे शामिल करते हुए उस परिवार को हम 5 लाख रुपए की सहायता मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना बीमा के अंतर्गत उपलब्ध करवाते हैं।
0: भारतीय खेल प्राधिकरण के लखनऊ स्थित नेताजी सुभाष क्षेत्रीय केंद्र में आज खेलो इंडिया स्कीम 2026-31 को लेकर एक संवाददाता सम्मेलन आयोजित किया गया। केंद्र के क्षेत्रीय निदेशक आत्मप्रकाश ने स्कीम के बारे में जानकारी दी। उन्होंने कहा कि भारतवर्ष 2036 में ओलंपिक की मेजबानी के लिए प्रयास कर रहा है। स्कीम इस प्रयास को प्रभावी रूप से बढ़ाने का कदम है। प्रदेश भर में आज महान हॉकी खिलाड़ी और पद्मभूषण पुरस्कार विजेता मेजर ध्यानचंद की जयंती पर खेल दिवस मनाया जा रहा है। अमरोहा पुलिस लाइन में पुलिसकर्मियों के मध्य फुटबॉल मैच का आयोजन किया गया। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सुबह 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात में देश विदेश के लोगों के साथ साझा करेंगे अपने विचार। आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क पर प्रसारित होगा कार्यक्रम। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने देवरिया में 305 करोड़ रुपए लागत की 80 परियोजनाओं का किया लोकार्पण और शिलान्यास। कहा डबल इंजन सरकार ने सभी वर्गों को पहुंचाया योजनाओं का लाभ। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने लखनऊ में बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह को किया संबोधित।

0: स्थित, कहा पिछले 12 वर्षों में शिक्षा की गुणवत्ता में हुआ सुधार। और राजधानी लखनऊ सहित राज्य के कई जनपदों में रुक रुक कर बारिश जारी, प्रदेश की कई नदियों का जलस्तर बढ़ा। मुख्यमंत्री ने बलिया में बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का किया हवाई सर्वेक्षण। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला बुलेटिन रात 8 बजे FM पर प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
1: मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज पर और FM 100.3 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। हिंदी कार्यक्रम के अंतर्गत लीजिए सुनिए डॉक्टर राजेश कुमार मिश्रा की वार्ता, आधुनिक संचार माध्यम और पांडुलिपियां।
2: अभिव्यक्ति संप्रेषण के हेतुओं को संचार माध्यम कहते हैं, अर्थात मनुष्य अपने भाव, विचार, चिंतन, समाचार, सूचना आदि को किसी व्यक्ति या सर्वसाधारण तक पहुंचाने के लिए जिन माध्यमों का उपयोग करता है उसे संचार माध्यम कहते हैं। प्राचीन काल से लेकर आज तक के विविध कालखंडों में इन माध्यमों के स्वरूप में परिवर्तन होता रहा है। ऋग्वेद में यज्ञीय अग्नि को देवों तक अपनी श्रद्धा पहुंचाने का माध्यम कहा गया है। देवर्षि नारद हों, महाभारत के युद्ध का वर्णन करने वाले संजय हों, या समय समय पर आकाशवाणी किए जाने का उल्लेख हो, ये सभी संप्रेषण माध्यम के रूप में ही उल्लेखनीय हैं। मेघ, पवन, पशु पक्षी भी कालांतर में संदेशवाहक अथवा दूत के रूप में संचार माध्यम के अंग बनाए गए हैं, जिनका उल्लेख मध्यकाल तक स्फुट रूप में मिलता है। यद्यपि दूत भेजे जाने का उल्लेख प्राचीन काल से ही मिलता है, तथापि राजा या सुल्तान द्वारा राजाज्ञा अथवा फरमान जारी होने की दशा में उन्हें आम जनता तक पहुंचाने के लिए शिलालेख या अभिलेख, शिलापट अथवा धातु फलक पर लिखकर सार्वजनिक स्थलों पर लगवाए जाते थे। दूतों द्वारा डुगडुगी पीटने की प्रथा भी थी, जिसके अंतर्गत डुगडुगी बजाकर राजाज्ञा या फरमान नगर में जोर जोर से सुनाए जाते थे। यह प्रथा गांव में लगभग 1980-82 के आसपास तक थी, जब गांव का चौकीदार पंचायत की सूचनाओं को गांव में रात को घूम घूम कर जोर जोर से सुनाता था। इसे मुनादी कहा जाता था। यद्यपि विश्व में टेलीफोन, रेडियो, टेलीविजन का आविष्कार व प्रचलन काफ़ी पहले से हो गया था, किंतु भारत में यह महानगरों तक सीमित था। हाँ, छापाखानों के विकास के साथ साथ समाचार पत्रों के मुद्रण का कार्य भी काफ़ी पहले से प्रारंभ हो चुका था, किंतु इनकी उपलब्धता महानगरों एवं नगरों तक ही सीमित थी। 20वीं सदी के 7वें-8वें दशक में संचार साधनों में रेडियो ने इस दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की, जिसके फलस्वरूप गांव का आदमी भी देश में हो रही हर प्रकार की गतिविधियों से सीधे जुड़ सका। अपने लोक रंजक और ज्ञान विज्ञान की दृष्टि से उपयोगी कार्यक्रमों की प्रस्तुति के कारण यह सिलसिला आज भी जारी है। इसी प्रकार पत्र लेखन एवं डाक पहुंचाने और लाने के साक्ष्य भी पूर्व मध्यकाल से ही मिलने लगते हैं। खजुराहो के मूर्ति शिल्प में पत्र लेखन करती स्त्री की मूर्ति साक्ष्य स्वरूप देखी जा सकती है। मध्यकाल और अंग्रेजों के आगमन के बाद इस दिशा में टेलीप्रिंटर, टेलीग्राम, ट्रंकाल के स्वरूप में उत्तरोत्तर विकास हुआ। 20वीं सदी के अंतिम दशक में टेलीविजन, टेलीफोन, स्पीड पोस्ट, फैक्स आदि की सुविधा से देश में संचार की दिशा में नए प्रतिमान स्थापित किए गए। 21वीं सदी तो

सूचना क्रांति की सदी के रूप में ही अवतरित हुई, जब कंप्यूटर तकनीक शहर से लेकर गांव तक फैल उठी और इंटरनेट पर मोबाइल, ट्विटर, फेसबुक, वेबसाइट आदि के माध्यम से राष्ट्रीय ही नहीं अंतर्राष्ट्रीय जानकारियां कुछ मिनटों में उपलब्ध हो जा रही हैं। दैनिक समाचार पत्र, किताबें तक अब कंप्यूटर पर पढ़ी जा सकती हैं। उपग्रहों के प्रक्षेपण के साथ विकसित हो रही प्रौद्योगिकी ने निश्चित रूप से विश्व के कोने कोने को एक स्क्रीन पर समेकित कर दुनिया को मुट्ठी में करने के संकल्प को साकार किया है। लेखन कला के विकास के फलस्वरूप अभिव्यक्ति के साधन के रूप में पांडुलिपियों को भी देखा जा सकता है। ऋग्वेद में वाणी के दो स्वरूप बताए गए हैं, पहला देखी जाने वाली वाणी, दूसरा सुनी जाने वाली वाणी। यदि इस दृष्टि से विचार किया जाए तो वैदिक ऋषियों को मंत्रों का दृष्टा कहा गया है, ऋषयः मंत्र द्रष्टारः, अर्थात ऋषियों द्वारा मंत्रों का साक्षात्कार किया गया था, जिसे ऋषियों से शिष्यों ने सुना और उनसे दूसरों ने सुना। और इस प्रकार श्रुति परंपरा के रूप में सुनने की पद्धति विकसित हुई, जो महाभारत और पौराणिक काल तक सूत उवाच, व्यास उवाच, श्री भगवान उवाच, अर्जुन उवाच आदि के रूप में सर्वत्र परिलक्षित होती है। रामकथा भी कही ही गई है। यही कारण है कि गोस्वामी तुलसीदास के मानस की रामकथा शिव पार्वती से कह रहे हैं, याज्ञवल्क भारद्वाज को सुना रहे हैं तथा काकभुषुंडी से गरुण ने सुनी ऐसा उल्लेख किया है। इसी प्रकार भागवत भी व्यास से सुखदेव ने सुनी, सुखदेव से परीक्षित सहित ऋषियों ने, और उन्हीं ऋषियों में से एक सूत जी ने नैमिषारण्य में 88,000 ऋषियों तक कृष्ण कथा पहुंचाई। निकट बैठकर सुनना उपनिषद का यही अर्थ है और यही संपूर्ण उपनिषदों में संवाद की शैली बनी, जो आश्रम शिक्षा पद्धति भी कहलाई। आरण्यक एवं ब्राह्मण ग्रंथों में संवाद की शैली में थोड़ा परिवर्तन दिखाई पड़ता है। विषय को सीधे से न समझकर उन्हें आख्यानों के माध्यम से समझाने का रोचक प्रयत्न किया गया, जो रामायण महाभारत काल के बाद पुराणों में भी परिलक्षित होता है। स्मृतियों का संकलन मानव स्मृति के ह्रास का सूचक है और इसी ह्रास का प्रतिफल लेखन कला में लिपि और वर्णमाला का विकास है। इसी तरह शैलाश्रयों में पाए जाने वाले शैल चित्रों में आरंभिक मानव के शिकार पकड़ने, रहने खाने के तौर तरीकों को अभिव्यक्त किया गया है, जिन्हें देखकर उनके परिवेश और संस्कृति को समझा जा सकता है। सैंधव काल में यही चित्र एक लिपि का रूप धारण कर लेती है और कहा जाता है कि प्रारंभ में लिपि का विकास चित्रात्मक लिपि के रूप में हुआ और सैंधव लिपि चित्रात्मक लिपि थी। लिपि के इस चित्रात्मक स्वरूप से और कुछ भले ही अब तक न पढ़ा व समझा जा सका हो, किंतु उनके भाव संप्रेषण एवं कलात्मक अभिरुचि का तो भली प्रकार आकलन किया जा सकता है। चीन और जापान की लिपि का स्वरूप आज भी चित्रात्मक ही है। भारत में इस प्रकार ब्राह्मी ने भाषा का स्वरूप लिया और शिलापटों पर अभिलेख के रूप में वर्णमालाओं ने वाक्य विन्यास का रूप लिया और इस भाषिक अभिव्यक्ति को क्रमबद्ध रूप में संजोने का सिलसिला शुरू हुआ, किंतु यह स्थूल प्रयास था, श्रम और समय के साथ सहज सुलभ नहीं कराया जा सकता था। अतएव इसका परिमार्जित रूप क्रमशः धातुफलक, चर्म, ताड़पत्र, भोजपत्र, वस्त्रों तक पहुंचा। कागज इसका

0: से परिमार्जित और परिष्कृत स्वरूप है। इसमें आज ताड़पत्र, भोजपत्र और कागज पर किए गए लेखन पांडुलिपियों के रूप में प्राप्त होते हैं। पांडुलिपि के शाब्दिक अर्थ पर विचार करें तो अर्थ होगा पांडु अर्थात पीली या पुरानी, लिपि अर्थात वर्ण या अक्षर, जिसे अंग्रेजी में मैन्युस्क्रिप्ट कहते हैं, जिसका अर्थ होता है हस्तलेख। मूलतः हस्तलेख या हस्तलिपि ही अर्थ होना चाहिए, किंतु पुरानी इबारत होने के कारण शायद पांडुलिपि नाम लोक विश्रुत हो गया। वस्तुतः 100 वर्ष से पुराने हस्तलेख को पांडुलिपि की कोट में रखा जाता है। महर्षि व्यास लिखने का तरीका बताते हैं। वे कहते हैं, पांडुलेखेन भूमौ फलकौ वा प्रथमम लिखेत, तस्मात् तु कश्चित् संशोध्य शिलापट्टे निवेशयत। अर्थात पांडुलेख को पहले भूमि अथवा फलक पर लिख लेना चाहिए, तत्पश्चात आवश्यक संशोधन करते हुए उसे शिला पर नियोजित करना चाहिए। व्यास के इस कथन से अभिव्यक्ति के लिए उठाए गए श्रम साधना का आकलन किया जा सकता है, जिसका परिणाम है कि भारत की साहित्यिक, सांस्कृतिक, ऐतिहासिक, दार्शनिक, ज्योतिषिक, आयुर्वेदिक, कलात्मक तथा वैयाकरणिक परंपरा पांडुलिपियों में संजोई गई है, जिनके संग्रह और सुरक्षा के लिए संग्रहालयों के अतिरिक्त चेन्नई, पुणे, बड़ौदा, मैसूर, जम्मू में ओरिएंटल इंस्टीट्यूट एवं अभिलेखागार स्थापित किए गए। यही नहीं, नेशनल मैन्युस्क्रिप्ट मिशन के द्वारा इन्हें लोगों के व्यक्तिगत संग्रह से निकालकर डिजिटाइज करने का प्रयास किया जा रहा है। साथ ही राजकीय संग्रहालयों को भी डिजिटाइज करके इनकी सुरक्षा तथा सहज सुलभता का प्रयत्न किया जा रहा है, जिसे वर्तमान प्रविधि के सहारे साकार रूप मिल रहा है। इलाहाबाद के राष्ट्रीय संग्रहालय में रखी सभी पांडुलिपियां आज डिजिटाइज की जा चुकी हैं। यदि समकालीन परिवेश में संचार माध्यम और पांडुलिपियों की स्थिति पर विचार करें तो यह स्पष्ट होगा कि एक का संबंध जहां विशुद्ध वैज्ञानिक प्रविधि पर आधारित है तथा तत्काल सुलभ है, वहीं दूसरी की ठेठ अभिव्यक्ति कला केंद्रित और व्यक्तिगत अभिरुचि के अनुरूप कुछ समय के बाद ही सुलभ हो सकती है। अतएव ब्लॉग, ट्विटर, फेसबुक और वेबसाइट के इस युग में हस्तलेख मिलना धीरे धीरे कम हो रहा है। मनुष्य पत्र लेखन तक से विरत होने लगा है। पेंटिंग के लिए ग्राफिक्स का सहारा लिया जा रहा है। सब कुछ जल्दी प्राप्त कर लेने की होड़ व्यक्ति के मौलिक अभिव्यक्ति की मेधा को कहीं न कहीं प्रविधि के माध्यम से सिमटा कर एक स्क्रीन पर केंद्रित कर चुकी है, चाहे वह स्याही हो, रंग हो, कूची हो। यह प्रश्न भविष्य के लिए विचारणीय अवश्य है।
1: हिंदी कार्यक्रम के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे डॉक्टर राजेश कुमार मिश्रा की वार्ता, आधुनिक संचार माध्यम और पांडुलिपियां। हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 292.4 मीटर, एफएम 100.3 मेगाहर्ट्ज पर और न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर। अगला कार्यक्रम सुनिए, सुगम संगीत। इस कार्यक्रम में सबसे पहले हम आपको सुनवा रहे हैं भजन शिवानी केसरवानी की आवाज में।

शिवानी केसरवानी की आवाज में अभी आपने सुना भजन। आइए सुनते हैं इन्हीं के आवाज में एक और भजन।

शिवानी केसरवानी की आवाज में अभी आपने सुना भजन। इसी के साथ सुगम संगीत का कार्यक्रम यहीं समाप्त होता है। हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 292.4 मीटर, FM 100.3 मेगाहर्ट्ज पर और न्यूज़ ऑन AIR ऐप पर।

मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज पर और एफएम 100.3 मेगाहर्ट्ज पर और न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। लीजिए सुनिए कार्यक्रम चित्रपट संगीत। इस कार्यक्रम का पहला गाना हमने लिया है मेरा साया फिल्म से, आवाज लता मंगेशकर की। संगीत है मदन मोहन का, शब्द रचना राजा मेहंदी अली खां की। दोस्तों, कभी कभी कोई अपना हमारे साथ होकर भी हमारे पास नहीं होता और कभी कोई दूर होकर भी हर पल हमारे साथ चलता है। वो साथ दिखाई नहीं देता लेकिन उसकी याद, उसकी खुशबू और उसका एहसास हर कदम पर महसूस होता है।

दोस्तों, अगला गाना हम आपको सुनवा रहे हैं नूरी फिल्म से, नितिन मुकेश और लता मंगेशकर की आवाज में, जानिसार अख्तर के बोल, खयाम का संगीत। कभी किसी का इंतजार इतना खूबसूरत होता है कि हर आहट में उसी के आने की उम्मीद जाग जाती है। दिल बस यही कहता है, और अब इंतजार नहीं, तुम आ जाओ मेरे पास, मेरे हम सफर बनकर। मोहब्बत में ये इंतजार भी कितना हसीन है, जहां आंखें रास्ता देखती हैं और दिल से बस एक ही आवाज आती है।

राजा मेहदी अली खान ने संगीत से सजाया है मदन मोहन ने। दोस्तों, कुछ मुलाकातें ऐसी होती हैं जिन्हें हम चाह कर भी नहीं भूल पाते, क्योंकि उनमें प्यार के साथ साथ एक अनजाना सा डर भी छिपा होता है। क्या पता ये पल फिर कभी लौट कर आए या नहीं।

महेंद्र कपूर और आशा भोसले की आवाज़ में अब हम आपको सुनवा रहे हैं अवाम फिल्म का ये गाना, संगीत और बोल हसन कमाल के। दोस्तों, बारिश की बूंदों में भी एक अजीब सी मिठास होती है, और जब साथ हो किसी अपने का तो यही बरसात प्यार की कहानी बन जाती है। ये भीगी भीगी

ये रात बारिश की रिमझिम फुहारें, ठंडी हवाएं और दिल में किसी खास शख्स की याद। ऐसे मौसम में भला दिल भी कैसे खामोश रह सकता है।

घने बादल, ठंडी हवाएं और आसमान में बिजली की चमक। जब सावन का मौसम आता है तो सिर्फ धरती ही नहीं भीगती बल्कि दिल में भी प्यार की फुहारों से एहसास भीग जाते हैं। बादलों की गरज कभी डराती है तो कभी किसी की याद दिलाती है, और जब मौसम हो इतना हसीन तो दिल की धड़कन भी जैसे कोई मीठा नगमा गुनगुनाने लगती है।

बादलों की गरज में आज भी प्यार की बात है, भीगी भीगी फिजाओं में किसी के आने की आहट है। दोस्तों, आपने ये गाना सुना शब्बीर कुमार और लता मंगेशकर की आवाज़ में बेताब फिल्म से। संगीत से सजाया था आरडी बर्मन ने, शब्द रचना आनंद बख्शी की थी। इसी गाने के साथ कार्यक्रम चित्रपट संगीत यहीं समाप्त होता है। ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है।

हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 292.4 मीटर, एफएम 100.3 मेगाहर्ट्ज पर और न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर प्रस्तुत है कार्यक्रम सबरस। इस कार्यक्रम में हम आपको सुनवा रहे हैं भजन नरेंद्र चंचल की आवाज में।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे गजल हरिहरन की आवाज में। इसी के साथ सबरस कार्यक्रम यहीं समाप्त होता है। ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है।

हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 292.4 मीटर, एफएम 100.3 मेगाहर्ट्ज पर और न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे समाचार, जिसे हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे।

नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं सरफिरोजी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत और उज्बेकिस्तान के बीच द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने के लिए दो दिन के दौरे पर ताशकंद पहुंचे। नेपाल में बाढ़ में मरने वालों की संख्या बढ़कर 669 हुई। 287 भारतीय नागरिकों सहित 2000 से अधिक लोग अब भी लापता। नेपाल ने भारत के राहत प्रयासों की सराहना की। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने अमेरिका के शिकागो बिजनेस राउंड टेबल सम्मेलन में भारत के विशाल बाजार आकार और दीर्घकालिक निवेश क्षमता को रेखांकित किया। इस वर्ष जुलाई तक 115 लाख हेक्टेयर से अधिक भूमि को प्रति बूंद अधिक फसल लघु सिंचाई योजना के अंतर्गत लाया गया। यूक्रेन के बुचा जिले पर रूस के ड्रोन हमले में 37 लोग मारे गए और ओडिशा में सोमवार तक मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट। बिहार, पश्चिम बंगाल के गांगे क्षेत्र, झारखंड और पूर्वोत्तर राज्यों में भी तेज बारिश की संभावना। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दो दिन की उज्बेकिस्तान की यात्रा पर आज शाम राजधानी ताशकंद पहुंचे। राष्ट्रपति शफकत मिर्जियोयेव ने उनका स्वागत किया।

0: हमारे संवाददाता ने बताया है कि श्री मोदी के स्वागत के लिए ताशकंद शहर में विशेष प्रबंध किए गए हैं।
1: पूरा ताशकंद शहर भारतीय झंडों और होर्डिंग से सजा हुआ है। हर कोई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चौथी यात्रा का बेसब्री से इंतजार कर रहा था। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति शौकत मिर्जियोयेव सदियों पुराने आपसी संबंधों को और मजबूत करने पर विचार विमर्श करेंगे। दोनों नेता राष्ट्रपति भवन में व्यापार और निवेश, रक्षा, डिजिटल कनेक्टिविटी, ऊर्जा, शिक्षा और जन संबंधों के क्षेत्रों में सहयोग की समीक्षा करेंगे। वे विकसित भारत 2047 और उज्बेकिस्तान 2030 के साझा विकास लक्ष्यों को आगे बढ़ाने पर भी अपने विचार साझा करेंगे। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, ताशकंद, उज्बेकिस्तान।
0: उज्बेकिस्तान में भारत की राजदूत स्मिता पंत ने आकाशवाणी समाचार के साथ विशेष साक्षात्कार में कहा कि उज्बेकिस्तान में प्राकृतिक संसाधनों का समृद्ध भंडार उपलब्ध है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी की ताशकंद यात्रा के दौरान निवेश और महत्वपूर्ण खनिजों के क्षेत्र में प्रौद्योगिकी हस्तांतरण पर भी चर्चा की संभावना है।
2: रिलेशनशिप ऑलरेडी बहुत अपवर्ड ट्रैजेक्टरी में है। 2011 में स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप फोर्ज हुई थी, उसके बाद 2015 में प्रधानमंत्री जी का पहला दौरा हुआ था। 2026 तक बहुत सारे एरियाज में हम लोग फॉरवर्ड मूवमेंट कर चुके हैं, चाहे आप ट्रेड की बात करें, इन्वेस्टमेंट की बात करें, डेवलपमेंट कोऑपरेशन की बात करें, डिफेंस कोऑपरेशन की बात करें। ट्रेड में ही करीबन 300% इंक्रीज हुई है 2015 से।
0: उज्बेकिस्तान के बाद श्री मोदी किर्गिस्तान की दो दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। प्रधानमंत्री किर्गिस्तान के राष्ट्रपति सादोर जापारोव के निमंत्रण पर बिश्केक में 26वें शंघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। नेपाल में आई भीषण बाढ़ में मृतकों की संख्या 669 हो गई है और 2000 से अधिक लोग लापता हैं। प्रभावित क्षेत्रों में राहत और बचाव अभियान जारी है। बचाए गए लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा रहा है। बंद सड़कों को साफ करने का काम भी तेजी से चल रहा है। विदेश मंत्रालय ने बताया कि नेपाल में अब तक 88 भारतीय नागरिकों को बचाया जा चुका है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बताया कि 287 भारतीय नागरिक लापता हैं। उन्होंने कहा कि 128 भारतीय मूल के लोग भी लापता हैं। रसुवा स्थित एक जल विद्युत परियोजना से 4 भारतीय नागरिकों को बचाया गया। आज 120 भारतीय नागरिक चीन से नेपाल में दाखिल हुए। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
3: नेपाल में बुधवार को आई भीषण बाढ़ की त्रासदी के बाद से वहां फंसे भारतीय नागरिकों को खोजने और बचाने के लिए भारत ने अपने प्रयास तेज कर दिए हैं। भारत की 6 फोरेंसिक विशेषज्ञ टीम मृत लोगों के शवों की पहचान करने के लिए डीएनए सैंपल की जांच में मदद करेंगी। इसके अलावा सुरंग में बचाव कार्य की जांच करने वाली एक विशेष तकनीकी टीम कल काठमांडू पहुंची, जिसने प्रभावित क्षेत्र में सुरंग से लोगों को बचाने के काम में सहायता शुरू कर दी है। वहीं विदेश मंत्रालय ने बचाव, राहत और लापता भारतीय नागरिकों की जानकारी जुटाने के लिए 24 घंटे चलने वाला कंट्रोल रूम बनाया है। काठमांडू और बीजिंग में स्थित भारतीय दूतावासों ने भी 24 घंटे की हेल्पलाइन शुरू की है, ताकि बाढ़ से प्रभावित भारतीय नागरिकों की मदद की जा सके। इसके अलावा भारत ने नेपाल में चल रहे बचाव और राहत कार्यों में मदद के लिए 57 टन से अधिक आपातकालीन राहत सामग्री भेजी है। दीपेंद्र कुमार की रिपोर्ट के साथ अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: नेपाल सरकार ने संकट की इस घड़ी में भारत की तत्काल मदद की सराहना की है। नेपाल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को असाधारण रूप से उदार बताया है। राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल ने भी भारत की सहायता के लिए आभार व्यक्त किया। वित्त मंत्री स्वर्णिम वागले ने कहा कि बाढ़ के बाद भारत से राहत सामग्री भेजी गई है और भारत ने पुनर्निर्माण के लिए सहायता प्रदान करने का संकेत दिया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि भारत नेपाल को लगातार सहायता भेज रहा है।
4: नेपाल में जो क्राइसिस पैदा हुई है उससे केवल नेपाल ही चिंतित नहीं है, भारत भी चिंतित है। और हमारे प्रधानमंत्री जी ने बहुत ही स्पष्ट रूप से कहा है कि जितनी भी सहायता की आवश्यकता होगी और जो भी सहायता आवश्यक होगी वह सब भारत उपलब्ध कराने के लिए तैयार है।
0: वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा है कि वैश्विक कंपनियों को अपनी आपूर्ति श्रृंखला और पूंजी आवंटन का फिर आकलन करना चाहिए, क्योंकि भारत न केवल विशाल बाजार उपलब्ध कराता है बल्कि दीर्घकालीन निवेश और संचालन मंच का भी आधार है। अमेरिका के शिकागो में प्रमुख निवेशकों और उद्योगपतियों के साथ एक उच्च स्तरीय सम्मेलन में उन्होंने कहा कि भारत में निवेश का तात्पर्य व्यापक बाजार, सतत आर्थिक विकास, कौशल युक्त प्रतिभा, विश्व स्तरीय बुनियादी ढांचा, अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी और एक दशक के सुधार से है। उन्होंने कहा कि देश का अगला आर्थिक विकास एआई, इंजीनियरिंग, एनालिटिक्स, उत्पाद विकास, सेमीकंडक्टर और इलेक्ट्रॉनिक्स में निहित है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: लगातार खबरों से जुड़े रहने के लिए @AIRNews हिंदी को फॉलो करें और हमारे व्हाट्सएप चैनल आकाशवाणी समाचार से जुड़े।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। सरकार ने कहा है कि इस वर्ष जुलाई तक प्रति बूंद अधिक फसल योजना के अंतर्गत 115 लाख हेक्टेयर कृषि भूमि को लघु सिंचाई प्रणाली में लाया गया है।
2: योजना का उद्देश्य खेत स्तर पर पानी के प्रयोग में दक्षता लाना और उसमें सुधार करना है। ये योजना जनवरी 2006 में केंद्र सरकार ने लघु सिंचाई के लिए शुरू की थी। वर्ष 2015-16 से 2021-22 तक इसका आधिकारिक नाम प्रति बूंद अधिक फसल किया गया और इसे प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के प्रमुख घटक के रूप में लागू किया गया। जना के अंतर्गत केंद्र सरकार 5 हेक्टेयर तक लाभार्थी को लघु सिंचाई प्रणाली लगाने के लिए वित्तीय सहायता उपलब्ध कराती है। छोटे और सीमांत किसानों को 55% और अन्य किसानों को 45% तक वित्तीय सहायता मिलती है। केंद्र सरकार ने पिछले 3 सालों में 8,123 करोड़ रुपए से अधिक की राशि इस योजना में जारी की है। दीपेंद्र की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से अर्जुन शर्मा।
1: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि भारत न केवल एक प्रमुख अर्थव्यवस्था के रूप में उभरा है बल्कि अपनी सभ्यतागत विरासत, संस्कृति और क्षमताओं में दृढ़ विश्वास रखने वाला राष्ट्र भी है। लखनऊ में एक कार्यक्रम में श्री सिंह ने कहा कि आज जब भारत बोलता है तो दुनिया सुनती है। उन्होंने कहा कि भारत में शिक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण विकास हुआ है।
3: पिछले 12 वर्षों में शिक्षा की क्वालिटी, एसेसिबिलिटी और अफोर्डेबिलिटी बढ़ी है। भारत का रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर पहले के कंपैरिजन में 2 गुना हो गया। 34 ईयर्स में पहली बार हमने नेशनल एजुकेशन पॉलिसी बनाई है। शिक्षा के क्षेत्र में हुए बदलावों और अच्छी पॉलिसीज का यह परिणाम है कि आज देश के नौजवान स्टार्टअप खड़े कर रहे हैं, यूनिकॉर्न कंपनियां बना रहे हैं। 2015 में हम ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में 81वें स्थान पर, हमने अब 38वें स्थान पर अपनी पहुंच हासिल कर ली है।
1: उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने आज बेंगलुरु में कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री रामकृष्ण हेगड़े के शताब्दी समारोह का उद्घाटन किया। उपराष्ट्रपति ने उन्हें एक ऐसा राजनेता बताया जो विकेंद्रीकरण, त्रिस्तरीय शासन, सुदृढ़ संघवाद और लोकायुक्त की मजबूती के लिए खड़ा रहा। उन्होंने कहा कि रामकृष्ण हेगड़े का कार्यालय विश्वास का प्रतीक था। भारतीय जनता पार्टी ने आज कांग्रेस पार्टी पर दलित समुदाय को राजनीतिक हथियार के तौर पर इस्तेमाल करने का आरोप लगाया। भाजपा के प्रवक्ता डॉ. गुरु प्रकाश पासवान ने नई दिल्ली में कहा कि कांग्रेस का दलित समुदाय को अपमानित करने का इतिहास रहा है। उन्होंने कहा कि इसके विपरीत नरेंद्र मोदी सरकार ने B.R. अम्बेडकर की विरासत का सम्मान किया और उनसे जुड़े स्थलों को तीर्थ स्थल का दर्जा दिया है। पार्टी के एक अन्य प्रवक्ता डॉ. सुधांशु त्रिवेदी ने कांग्रेस पर राजनीतिक लाभ के लिए हिंदुओं को बांटने का आरोप लगाया। उन्होंने अनुच्छेद 370 का उल्लेख किया और कहा कि इसके प्रावधान जम्मू कश्मीर में वाल्मीकि समुदाय के साथ भेदभाव करते थे। इससे पहले कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने दलित समुदाय के खिलाफ भेदभाव का मुद्दा उठाया था। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी उपलब्ध हैं।
0: आकाशवाणी समाचार से जुड़े रहिए expert@AIRNews हिंदी को फॉलो करें और ताजा खबरों के लिए newsonair.gov.in पर जाएं।
1: ये आकाशवाणी है। यूक्रेन की राजधानी कीव के पास बुचा जिले में आज हुए एक भीषण रूसी ड्रोन हमले में 37 लोगों की मौत हो गई। हमले में 50 आवासीय इमारतें क्षतिग्रस्त हुई और कई घर और एक रेस्तरां भी भीषण आग की चपेट में आ गए। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की ने कहा कि बुजुर्गों और विकलांगों के लिए बने एक देखभाल केंद्र और आवासीय इमारतों को भी नुकसान पहुंचा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने आज राष्ट्रीय खेल दिवस के अवसर पर भारतीय हॉकी के महान खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद को श्रद्धांजलि अर्पित की। श्री मोदी ने कहा कि भारतीय हॉकी की श्रेष्ठतम प्रतिभा के रूप में मेजर ध्यानचंद आज भी पीढ़ियों को प्रेरित करते हैं। श्री मांडविया ने लोगों से स्वस्थ और फिट रहने के लिए हर सप्ताह कम से कम 1 घंटा खेल के मैदान में बिताने का आह्वान किया।
4: आज नेशनल स्पोर्ट्स डे के अवसर पर सारे देश में फिट इंडिया मूवमेंट को आगे बढ़ाने के लिए 1 घंटे खेल के मैदान में कार्यक्रम दिया है। मुझे खुशी है।

0: है। मोदी जी के नेतृत्व में देश बदल रहा है, देश आगे बढ़ रहा है, नया भारत का निर्माण हो रहा है।
1: हमारे संवाददाता ने बताया है कि सरकार खेल और खिलाड़ियों के विकास के लिए लगातार काम कर रही है।
2: देश में खेलों को बढ़ावा देने के लिए सरकार लगातार निवेश कर रही है, जिसका असर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी दिखाई दे रहा है। ओलंपिक, पैरा ओलंपिक और अन्य बड़ी खेल प्रतियोगिताओं में भारत का बेहतर प्रदर्शन दिखाता है कि देश खेलों के क्षेत्र में लगातार मजबूत हो रहा है। केंद्रीय बजट 2026-27 में खेल मंत्रालय के लिए 4400 करोड़ रुपए से अधिक का आवंटन किया गया है। भारत ने रियो 2016 में 2 पदक, टोक्यो 2020 में 7 पदक और पेरिस 2024 में 6 पदक जीते थे। वहीं पैरा ओलंपिक खेलों में भी भारत के प्रदर्शन में उल्लेखनीय सुधार हुआ है। पदकों की संख्या रियो 2016 में 4 से बढ़कर पेरिस 2024 में 29 हो गई है। इसके अलावा एशियाई खेलों में भी भारत का प्रदर्शन लगातार बेहतर हुआ है। देश ने 2014 के एशियाई खेलों में 57 पदक जीते थे, वहीं 2023 में भारत ने रिकॉर्ड 107 पदक जीतकर इतिहास रचा। सकलेन अख्तर के साथ दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने आज संयुक्त सीएसआईआर यूजीसी नेट परीक्षा के सभी 5 विषयों की अंतिम उत्तर कुंजी जारी कर दी है। परीक्षा में शामिल हुए उम्मीदवार अपने पहचान पत्रों का उपयोग करके लॉगिन कर अपने विषय से संबंधित अंतिम उत्तर कुंजी देख सकते हैं। पंजाब सरकार ने 27 अगस्त को महाहड़ताल के अंतर्गत सामूहिक आकस्मिक अवकाश पर जाने वाले लाखों कर्मचारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की है। सरकार ने सभी प्रशासनिक सचिवों और विभागों के प्रमुखों को अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित रहने वाले सभी कर्मचारियों को कारण बताओ नोटिस जारी करने के आदेश दिए हैं। मौसम विभाग ने ओडिशा में अगले 2 दिनों के लिए मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, छत्तीसगढ़ और पश्चिम बंगाल के गंगा के तटवर्ती क्षेत्र में कल मूसलाधार बारिश की चेतावनी है। इसके अलावा बिहार, पूर्वी मध्य प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश, झारखंड, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम और विदर्भ में भी कल तेज बरसात की आशंका है। मौसम विभाग ने अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, पश्चिम बंगाल के गंगा के तटवर्ती क्षेत्र और ओडिशा में बिजली चमकने तथा आंधी तूफान के आसार जताए हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत और उज्बेकिस्तान के बीच द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने के लिए 2 दिन के दौरे पर ताशकंद पहुंचे। नेपाल में बाढ़ में मरने वालों की संख्या बढ़कर 669 हुई। 287 भारतीय नागरिकों सहित 2000 से अधिक लोग अब भी लापता। नेपाल ने भारत के राहत प्रयासों की सराहना की। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने अमेरिका के शिकागो बिजनेस राउंड टेबल सम्मेलन में भारत के विशाल बाजार आकार और दीर्घकालिक निवेश क्षमता को रेखांकित किया। इस वर्ष जुलाई तक 115 लाख हेक्टेयर से अधिक भूमि को प्रति बूंद अधिक फसल लघु सिंचाई योजना के अंतर्गत लाया गया और ओडिशा में सोमवार तक मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट। बिहार, पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्र में भी तेज बारिश की संभावना। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: Good evening. This is Akashwani. I am Valsa Williams with the news at 9. The headlines. Prime Minister Narendra Modi arrives in Tashkent on a 2-day visit to boost bilateral ties between India and Uzbekistan. Death toll in Nepal flash floods rises to 669, over 2,000 people, including 287 Indian nationals, still missing. Nepal praises India's relief efforts following devastating floods. Finance Minister Nirmala Sitharaman highlights India's vast market size and long-term investment potential at Chicago Business Roundtable. Over 115 lakh hectares brought under per drop, more crop micro-irrigation scheme till July this year. 37 people killed following a Russian attack on Bucha district of Ukraine. And red alert issued for very heavy rainfall in Odisha till Monday. Heavy rainfall also likely over Bihar, Gangetic, West Bengal, Jharkhand and parts of northeastern states. Prime Minister Narendra Modi arrived in Tashkent, the capital of Uzbekistan.

0: उज़्बेकिस्तान के सदर शौकत मिर्ज़ायोव ने वज़ीर आज़म का इस्तकबाल किया। वज़ीर आज़म मोदी ने सदर शौकत मिर्ज़ायोव की मौजूदगी में यंगी उज़्बेकिस्तान पार्क में यादगार पर गुलहाय अकीदत पेश किए। दोनों रहनुमा बाहमी फायदे के तमाम मामलात पर तबादला ख्याल करेंगे। हमारे नामा निगार के मुताबिक वज़ीर आज़म ने मोदी का इस्तकबाल करने के लिए राजधानी ताशकंद को खसूसी तौर पर सजाया गया है। तफसील हमारे नामा निगार से।
1: पूरा शहर भारत के परचम और इस्तकबालिया बैनरों से सजा हुआ है, क्योंकि उज़्बेकिस्तान को वज़ीर आज़म मोदी के चौथे दौरे का बेसब्री से इंतजार था। ताशकंद में मुकीम भारतीय बिरादरी भी वज़ीर आज़म मोदी के खसूसी इस्तकबाल के लिए जमा हुई। कल सदारती महल में वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी और उज़्बेकिस्तान के सदर शौकत मिर्ज़ायोव दोनों ममालिक के दरमियान बाहमी ताल्लुकात के तमाम पहलुओं का जायज़ा लेंगे। ये ताल्लुकात सदियों पुराने तहजीबी रिश्तों पर कायम हैं और मजबूत अवामी रवाबित से मजीद मुस्तहकम हुए हैं। दोनों रहनुमा तजारत और सरमायाकारी, दिफा, डिजिटल राबते, तवानाई, तालीम और अवाम से अवाम के राबतों के शोबों में बाहमी ताउन का जायजा लेंगे। वो विकसित भारत 2047 और उज़्बेकिस्तान 2030 के मुश्तरका तरक्याती विजन को आगे बढ़ाने की खातिर अपने ख्याल का तबादला करेंगे। वज़ीर आज़म मोदी के ताशकंद में शास्त्री मेमोरियल और ताशकंद स्टेट यूनिवर्सिटी ऑफ ओरिएंटल स्टडीज़ के महात्मा गांधी सेंटर जाने की भी तवक्को है। ताशकंद से सुशील चंद्र तिवारी की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए अर्जुमंद अली खान।
0: वज़ीर आज़म मोदी कल दिन में 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात प्रोग्राम में मुल्क और बैरून मुल्क लोगों से अपने ख्याल का इजहार करेंगे। ये माहाना रेडियो प्रोग्राम का 137वां नशरिया होगा। ये प्रोग्राम आकाशवाणी और दूरदर्शन के तमाम नेटवर्क, AIR न्यूज़ की वेबसाइट और न्यूज़ ऑन AIR मोबाइल ऐप पर भी नशर होगा। इसे AIR न्यूज़, DD न्यूज़, वज़ीर आज़म के दफ्तर और इत्तला नशरियात की वजारत के यूट्यूब चैनलों पर बराह रास्त सुना जा सकेगा। हिंदी नशरे के फौरन बाद आकाशवाणी से इस प्रोग्राम को इलाकाई जबानों में नशर किया जाएगा। नेपाल और तिब्बत में अचानक आने वाले तबाहकुन सैलाब से हलाकतों की तादाद बढ़कर 669 हो गई है। 2000 से ज्यादा अफराद अब भी लापता हैं। हिमालयाई मुल्क के मुतासरा जिलों में तलाश और बचाव की कार्रवाइयां जारी हैं। हुक्काम के मुताबिक पुलिस लापता अफराद को तलाश करने और सैलाब में फंसे लोगों की मदद के लिए मकामी लोगों और दिगर इदारों के साथ मिलकर काम कर रही है। भारत ने सैलाब से मुतासरा नेपाल के लिए इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर अपनी इमदाद में इजाफा किया है। वजारत खारजा ने कहा कि बुध के रोज आए सैलाब के बाद से नेपाल में अब तक 88 भारतीय शहरियों को बचाया जा चुका है। एक सोशल मीडिया पोस्ट पर वजारत खारजा के तर्जुमान रणधीर जायसवाल ने कहा कि 287 भारतीय शहरी लापता बताए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि दिगर मुल्कों की शहरियत रखने वाले तकरीबन 128 भारत नजाद अफराद भी लापता हैं। जनाब जायसवाल ने कहा कि आज रसुआ में वाक़े पनबिजली प्रोजेक्ट के मकाम से 4 भारतीय शहरियों को बचाया गया। उन्होंने मजीद कहा कि 120 भारतीय शहरी आज चीन से नेपाल में दाखिल हुए। पेश एक रिपोर्ट।
2: भारत ने नेपाल में आए तबाहकुन सैलाब के बाद वहाँ फंसे भारतीय शहरियों की तलाश और बचाव की कोशिशें तेज कर दी हैं। भारत के फॉरेंसिक बाहरीन की 6 टीमें लाशों की शनाख्त के मकसद से DNA नमूनों की जांच में मदद करेंगी। इनके अलावा सुरंगों में फंसे अफराद को बचाने में मदद की गरज से एक खसूसी तकनीकी टीम ने भी कल काठमांडू पहुंचकर मुतासरा इलाकों में अपनी कार्रवाई शुरू कर दी है। वजारत खारजा ने तलाश बचाव और राहत की कोशिशों में तालमेल कायम करने की गरज से दिन रात काम करने वाला एक कंट्रोल रूम कायम किया है। काठमांडू और बीजिंग में भी भारतीय सफारतखानों ने सैलाब से मुतासर अफराद की मदद के लिए 24 घंटे काम करने वाली हेल्पलाइंस कायम की हैं। इनके अलावा भारत ने नेपाल में जारी बचाव और इमदादी कार्रवाइयों में मदद के मकसद से हंगामी तौर पर 57 टन से ज्यादा इमदादी सामान भेजा है। नई दिल्ली से दीपेंद्र कुमार की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए मैं अब्दुल मालिक।
0: वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने आज कहा कि भारत को नेपाल में बुहरान की सूरत हाल पर बहुत तशवीश है। लखनऊ में नामनिगारों से बात करते हुए जनाब सिंह ने कहा कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत नेपाल को ज़रूरत की सभी इमदाद फराहम करने के लिए तैयार है। वज़ीर दिफा ने मजीद कहा कि भारत नेपाल को मुसलसल इमदादी सामान भेज रहा है।
3: नेपाल में जो क्राइसिस पैदा हुई है उससे केवल नेपाल ही चिंतित नहीं है, भारत भी चिंतित है। और हमारे प्रधानमंत्री जी ने बहुत ही स्पष्ट रूप से कहा है कि जितनी भी सहायता की आवश्यकता होगी और जो भी सहायता आवश्यक होगी वह सब भारत उपलब्ध कराने के लिए तैयार है।
0: नेपाल के सदर रामचंद्र पावडेन ने आज नेपाल में तबाहकुन सैलाब के बाद सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू की तशवीश और हुकूमत हिंद की जानिब से फराहम की जाने वाली इमदाद पर शुक्रिया अदा किया। नेपाल ने बुहरान के वक्त भारत की इमदादी कोशिशों को सराहा और वज़ीर आज़म मोदी को मुल्क में आने वाले तबाहकुन सैलाब के बाद गैर मामूली

0: जायजा ले रही हैं और भारत न सिर्फ एक वसी बाजार मुहैया कराता है बल्कि तवील मुद्दती सरमायाकारी और दिगर सरगर्मियों के लिए भी अहम मकाम है। अमरीका के शिकागो में सरकर्दा सरमायाकारों और कारोबारियों के साथ एक आला सतही कारोबारी गोलमेज से खिताब करते हुए उन्होंने ये बात कही। उन्होंने तवील मुद्दती सरमायाकारी के लिए भारत की वसी तर तरक्की और असलाहत की रफ्तार और उसत पा रहे इम्कान को उजागर किया। मोहतरमा सीतारमन ने इस बात पर भी जोर दिया कि भारत में सरमायाकारी करने के इम्कान वसी तर पैमाने पर तब्दीली, पायदार इकतसादी तरक्की, हुनरमंद अफरादी क़ुव्वत, आलमी मेयार के बुनियादी ढांचे, तकनीकी पेशरफ्त और एक दहाई की मुसलसल असलाहत पर मबनी हैं। आत्मनिर्भर भारत और आईडेक्स जैसी पहल को उजागर करते हुए मोहतरमा सीतारमन ने कहा कि भारत ड्रोन, ऑटोनोमस सिस्टम और दिगर जदीद टेक्नोलॉजीज के सिलसिले में घरेलू सलाहियतें मुस्तहकम कर रहा है। उन्होंने आलमी शराकत दारों को आलमी बाजारों के लिए मिलकर तैयार करने, मिलकर तामीर करने के लिए भी ये कहते हुए दावत दी कि वो न सिर्फ भारत को एक बाजार के तौर पर देखें बल्कि एक ऐसा प्लेटफॉर्म भी माने जहां से दुनिया के लिए साजो सामान तैयार किया जा सकता है। इस गोलमेज का इनेकाद भारत अमरीका कलीदी शराकतदारी फोरम के साथ इश्तराक में शिकागो में भारतीय कौंसलर जनरल की जानिब से किया गया था। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने आज कहा कि भारत न सिर्फ एक बड़ी मईशत के तौर पर उभरा है बल्कि एक ऐसे मुल्क के तौर पर भी उभरा है जिसे एक कौम के तौर पर अपनी तहजीबी विरासत, सकाफत और सलाहियतों पर पूरा एतमाद है। लखनऊ में बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी के 11वें जलसे तकसीम असनाद से खिताब करते हुए जनाब सिंह ने कहा कि आज जब भारत जब कुछ कहता है तो दुनिया उसे बहुत ध्यान से सुनती है। वजीर दिफा ने कहा कि नए भारत में सबसे बड़ी इनकलाबी तब्दीली ये हुई है कि मुल्क अब न सिर्फ यह कि आलमी जाब्तों पर मजीद अमल नहीं करता बल्कि वो ये जाब्ते बनाने में ताउन भी करता है। उन्होंने इस बात को उजागर किया कि भारत में गुज़्ता 12 साल के दौरान तालीम के मेयार और आम आदमी तक उसकी रसाई के मामले में बहुत बेहतरी हुई है। हुकूमत ने कहा है कि फी बूंद ज्यादा फसल स्कीम के तहत इस साल जुलाई महीने तक 115 लाख हेक्टेयर जरिए अराजी पर बहुत छोटे पैमाने पर की जाने वाली आबपाशी की जा रही है। इस पहल का मकसद काश्तकारी की सतह पर पानी के किफायती और कम से कम इस्तेमाल को फरोग देना है। ये स्कीम मरकज के जेर सरपरस्ती बहुत छोटे पैमाने पर की जाने वाली आबपाशी के तौर पर जनवरी 2026 में शुरू की गई थी। साल 2015-16 से 2021-22 तक इस स्कीम को बाजाबता तौर पर फी बूंद ज्यादा फसल के नाम से जाना जाता था और इसे प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के एक कलीदी हिस्से के तौर पर नाफिज किया गया था। इस स्कीम के तहत हुकूमत बहुत छोटे पैमाने पर की जाने वाली आबपाशी से मुतालिक निज़ाम नस्ब करने के लिए हर मुस्तफीद किसान को 5 हेक्टेयर तक की माली इमदाद फराहम करती है। छोटे किसानों को 55% और दिगर किसानों को 45% तक माली इमदाद फराहम की जाती है। आज यूक्रेन की राजधानी कीव के नज़दीक बूचार डिस्ट्रिक्ट पर रूस के एक हमले के बाद कम अज कम 37 अफराद हलाक हो गए। इलाकाई फौजी इंतजामिया के सरबराह के मुताबिक इस हमले में तकरीबन 50 रिहायशी इमारतों को नुकसान पहुंचा है जिसके बाद बड़े पैमाने पर घरों और रेस्तरां में भी आग लग गई। यूक्रेन के सदर वोलोदिमिर ज़ेलेंस्की ने एक बयान में कहा है कि धमाके के बाद माइला के गांव में एक गोदाम को भी नुकसान पहुंचा है। बयान में यह भी कहा गया है कि बुजुर्ग और माजूर अफराद के लिए देखभाल के मरकज और रिहायशी इमारतों को भी नुकसान पहुंचा है। भारतीय मौसमियात महकमे IMD ने आइंदा 2 रोज के लिए ओडिशा में बहुत शदीद बारिश के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। मौसमियात के महकमे ने अरुणाचल प्रदेश, आसाम, मेघालय, छत्तीसगढ़ और गंगा की तराई वाले मगरब बंगाल के मकामात पर भी कल शदीद बारिश की पेशगोई की है। बिहार, मशरकी मध्य प्रदेश, मशरकी उत्तर प्रदेश, झारखंड, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, सिक्किम, उत्तराखंड और विदर्भ में भी औसत से शदीद बारिश का इम्कान है। मौसमियात की एजेंसी ने अंडमान व निकोबार जजायर में भी गरज चमक के साथ छींटे पड़ने और तेज हवाएं चलने की पेशगोई की है। खेलों की भारत की सरकर्दा शख्सियत मेजर ध्यानचंद के यौम पैदाइश के मौके पर आज मुल्क भर में खेलों का कौमी दिन मनाया गया। खेलों के मामले में भारत की मालामाल विरासत का जश्न मनाने और अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में खेलों को मुस्तकिल तौर पर शामिल किए जाने पर जोर देते हुए ये मनाया जाता है। मजीद तफसील हमारे नामनगार से।
1: हुकूमत मुल्क के खेलों के एक निज़ाम में मुसलसल सरमायाकारी कर रही है जिससे आलमी सतह पर नुमाया नतज नजर आ रहे हैं। खेलों के अहम बैन अवी मुकाबले जैसे ओलंपिक, पैरा ओलंपिक और मुख्तलिफ खेलों में भारत की बेहतरीन कारकर्दगी का इजहार हो रहा है। مرکزی بجٹ 2026-27 میں نوجوانوں کی عمر کھیلوں کی وزارت کو 4000

0: 400 करोड़ रुपए से ज़्यादा मुख्तस किए गए, जबकि सन 2013-14 में ये महज 1,200 करोड़ रुपए थे। भारत के ओलंपिक सफ़र में हालिया बरसों में अक्सर तब्दीली आई है। मुल्क ने सन 2016 में रियो में 2 तमगे, 2020 में टोक्यो में 7 तमगे, 2024 में पेरिस में 6 तमगे जीते। पैरालंपिक खेलों में भारत की कारकर्दगी शानदार रही। एशियन गेम 2014 में मुल्क ने 57 तमगे जीते, 2018 में इनकी तादाद 69 रही और 2023 में भारत ने रिकॉर्ड 107 तमगे जीतकर तारीख रकम की। दिल्ली से सखलेन अख्तर की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए मोहम्मद आजम खान।
1: नायब सदर जमहूरिया सीपी राधाकृष्णन ने आज बेंगलुरु में कर्नाटक के साबिक वजीर आला रामकृष्ण हेगड़े की सदसाला तकरीबात का इफ्तिताह किया। इस मौके पर इजहार ख्याल करते हुए नायब सदर जमहूरिया ने रामकृष्ण हेगड़े को एक मुदब्बिर सियासतदान करार दिया जो लामरकजियत, 3 सतही हुक्मरानी, मजबूत विफाकी निज़ाम और लोक आयुक्त को मजबूत बनाने के पुरजोर हामी थे। उन्होंने कहा कि रामकृष्ण हेगड़े सरकारी ओहदे को आवाम के एतमाद की एक जिम्मेदारी समझते थे। अमरीकी सर डोनाल्ड ट्रंप ने वेनेजुएला के साथ सबसे बड़े तेल मुआहदे का ऐलान किया है। वेनेजुएला के साथ ये तारीख मुआहदा अमरीका को 65 अरब बैरल से ज़्यादा के तस्दीकशुदा खाम तेल के ज़खायर पर अक्सरियती कंट्रोल फराहम करेगा। उन्होंने कहा कि मुआहदा अमरीकी टैक्स दहिंदगान के किसी खर्च के बगैर हासिल किया गया है और इससे कुल अमरीकी तेल के ज़खायर 2 गुना से भी ज़्यादा हो जाएंगे। खवातीन क्रिकेट में कल दुबई में बैन अल-अक़वामी क्रिकेट स्टेडियम में भारतीय टीम थाईलैंड के खिलाफ T20 एशिया कप की अपनी मुहिम का आगाज करेगी। ये मैच रात 8:30 बजे से खेला जाएगा। हरमनप्रीत कौर भारतीय टीम की कप्तान होंगी जबकि स्मृति मंधाना नायब कप्तान होंगी। आखिर में खास खास खबरें एक बार फिर। वजीर आजम नरेंद्र मोदी भारत और उज्बेकिस्तान के दरमियान दो तरफा ताल्लुकात को मुस्तहकम करने की खातिर 2 रोजा दौरे पर ताशकंद पहुंच गए हैं। नेपाल में अचानक सैलाब में हलाक होने वालों की तादाद बढ़कर 669 हो गई है। 287 भारतीय शहरियों समेत 2000 से ज्यादा अफराद अब भी लापता हैं। नेपाल ने तबाहकुन सैलाब के पेश नज़र भारत की राहती कोशिशों की सताइश की है। वजीर खजाना निर्मला सीतारमन ने शिकागो कारोबारी गोलमेज में भारत के वसी बाजार और तवील मुद्दती सरमायाकारी सलाहियत को उजागर किया। इस साल जुलाई तक बहुत छोटे पैमाने पर आबपाशी की स्कीम फीबुन ज्यादा फसल के तहत 115 लाख हेक्टेयर अराजी का इहाता किया गया है। यूक्रेन के बूचा डिस्ट्रिक्ट पर रूस के हमले में 37 अफराद हलाक हो गए हैं और पीर तक उड़ीसा में बहुत शदीद बारिश के लिए रेड अलर्ट जारी किया गया है। बिहार, गंगा की तराई वाले मगरबी बंगाल, झारखंड और शिमाल मशरकी रियासतों के इलाकों में भी शदीद बारिश का इम्कान है। इसके साथ ही खबरों के बुलेटिन खत्म हुआ।

नमस्कार, आकाशवाणी की अखिल भारतीय युवा पत्रिका युवा भारती में आपका स्वागत है। मैं हूं नवोदिता। युवा होना केवल उम्र का एक पड़ाव नहीं है, ये अपने शरीर को स्वस्थ रखने, अपने समय की भाषा समझने, स्वयं को पहचानने और अपने सपनों के लिए निरंतर साधना करने का समय है। आज की युवा भारती में हम चलेंगे युवा जीवन की ऐसी ही चार दिशाओं में, जहां सही पोषण है, बदलती अभिव्यक्ति है, स्वयं की तलाश है और सपनों के साथ कला की साधना भी है। सही पोषण सशक्त युवा विकास की पहली शर्त। कहते हैं स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ और सजग मन का निवास होता है, और जब बात युवाओं की हो तो ये केवल एक कहावत नहीं बल्कि पूरे राष्ट्र के भविष्य से जुड़ा एक महत्वपूर्ण सत्य है। हर साल 1 से 7 सितंबर तक राष्ट्रीय पोषण सप्ताह मनाया जाता है। इसका उद्देश्य होता है

0: लोगों को संतुलित आहार, स्वस्थ खान पान और पोषण के महत्व के प्रति जागरूक करना। साल 1982 में शुरू हुई ये पहल आज भी उतनी ही प्रासंगिक है, शायद पहले से कहीं अधिक, क्योंकि आज हमारी थालियां भले भरी हुई हों, लेकिन क्या वो पोषण से भरपूर हैं? तेज रफ्तार जिंदगी, अनियमित दिनचर्या और सुविधा के नाम पर बढ़ता जंक फूड खासकर युवाओं की खान पान संबंधी आदतों को प्रभावित कर रहे हैं। भोजन अब कई बार भूख से अधिक स्वाद और सुविधा का विषय बन गया है, लेकिन पोषण केवल पेट भरने का नाम नहीं है। ये शरीर को शक्ति देता है, मन को सजग रखता है और हमारे सपनों को पूरा करने की क्षमता भी। युवावस्था जीवन का वो दौर है जब शरीर संभावनाओं से भर रहा होता है और मन भविष्य के सपनों को आकार दे रहा होता है। ऐसे में सही पोषण केवल व्यक्तिगत स्वास्थ्य का प्रश्न नहीं, बल्कि सामाजिक और राष्ट्रीय विकास की भी पहली शर्त है। हमें अपनी पारंपरिक भोजन पद्धति की ओर भी देखना होगा। दालें, अनाज, मोटे अनाज, हरी सब्जियां, फल और स्थानीय खाद्य पदार्थ हमारी थाली को केवल स्वादिष्ट ही नहीं, संतुलित और समृद्ध भी बनाते हैं। और श्री अन्न यानी मिलेट्स को हम कैसे भूल सकते हैं? राष्ट्रीय पोषण सप्ताह हमें यही याद दिलाता है कि स्वस्थ भविष्य किसी बड़े अवसर की प्रतीक्षा में नहीं होता, उसकी शुरुआत रोज हमारी अपनी थाली से होती है। आइए पोषण को अभियान भर ना रहने दें, बल्कि अपनी जीवन शैली का हिस्सा बनाएं, क्योंकि सही पोषण से ही बनेगा सशक्त युवा और सशक्त युवा ही रचेंगे स्वस्थ, समर्थ और विकसित भारत का भविष्य। एक स्वस्थ शरीर ही एक सजग मन और सक्रिय जीवन की बुनियाद बनता है, लेकिन युवा होने का अर्थ केवल स्वस्थ और सक्षम होना ही नहीं, अपने समय के साथ संवाद करना भी है। हर पीढ़ी अपनी भाषा गढ़ती है, कभी शब्दों से, कभी संकेतों से और कभी ऐसे छोटे छोटे वाक्यों से जिनमें एक पूरी दुनिया छुपी होती है। तो आज की युवा भाषा का एक दिलचस्प कोट समझने का ही एक प्रयास है हमारी अगली प्रस्तुति, कह तो दिया नो कैप। आलेख और प्रस्तुति ओमवेश उपाध्याय की है, जो प्रसारण पत्रकार और रणनीतिक संचार विशेषज्ञ हैं।
1: हाय फ्रेंड्स, पिछले साल एक इंटरनेशनल डिक्शनरी ने अपना वर्ड ऑफ द ईयर अनाउंस किया। यह वर्ड था 6-7, बस दो अंक, ना कोई डेफिनेशन ना कोई मीनिंग। डिक्शनरी ने खुद माना कि इसका मतलब बताना मुश्किल है। कई स्कूलों ने इसे क्लास में बोलने पर रोक लगाई और बच्चों ने इसे और ज्यादा बोलना शुरू कर दिया। सुनने में यह मजाक लगता है, लेकिन इसी साल हमारी संसद के भीतर एक विधेयक पर चर्चा के दौरान सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों ओर के सांसद इसी किस्म की वोकैब में एक दूसरे को जवाब दे रहे थे। ये जेंजी लिंगो है, सड़क से सांसद तक ओमनी प्रेजेंट। और यंगस्टर्स की अपनी अलग वोकैब कोई नई बात नहीं है। लिंग्विस्ट दशकों से यह कहते आए हैं कि हर पीढ़ी अपनी एक इंटरनल लैंग्वेज गढ़ती है, एक ऐसी वोकैब जो यह तय करती है कि कौन इस समूह के अंदर है और कौन बाहर। अब आप भारत का अपना उदाहरण समझिए। इंग्लिश शब्द पहली बार 1967 में दर्ज हुआ था, यानी 60 साल से हम हिंदी और अंग्रेजी को एक ही वाक्य में मिला रहे हैं। झकास शब्द 1985 की एक फिल्म से निकलकर पूरे देश की जुबान पर चढ़ गया। मुंबईया बोली से बिंदास आया, टाइम पास आया, जुगाड़, दादागिरी, फंडा आया, और आज ये सारे शब्द ऑक्सफोर्ड इंग्लिश डिक्शनरी में दर्ज हैं। एक समय जिन शब्दों को गली मोहल्ले की भाषा कहकर नाक भौं सिकोड़ी जाती थी, वे आज दुनिया के सबसे प्रतिष्ठित डिक्शनरी में इंडियन इंग्लिश की 900 से ज्यादा एंट्रीज का हिस्सा हैं। अब असली सवाल, ये जेंजी ऐसा बोलते क्यों हैं? दो वजहें हैं। पहली, यह दौर। पहले एक शब्द कॉलेज की कैंटीन से मोहल्ले तक, फिर किसी फिल्म तक और तब देश भर में पहुंचता था। इसमें सालों लग जाते थे। अब बीच में ना फिल्म है ना अखबार, बस एल्गोरिदम है, और एल्गोरिदम बाजार की तरह काम करता है। जो दिखता है वही बिकता है। जेंजी लिंगो तेज बिकता है, इसलिए आपके सामने है। दूसरी, ब्रेविटी, यानी गागर में सागर भरना। एक पिक्चर, एक लाइन और पूरी तरह बात कही जा सकती है। जिस बात को कहने में मिलेनियंस को पूरा पैराग्राफ लग जाता है, वे एक मीम में कह देते हैं।
2: मेरा नाम अमृता सिन्हा है, मैं सूरत में रहती हूँ और मैं एक आईटी कंपनी के साथ एज अ कम्युनिकेशन प्रोफेशनल काम करती हूँ। जेन ज़ी लैंग्वेज कॉन्शियसली बनाई हुई कोई भाषा नहीं है।

0: कि ये हमारे रेगुलर इंटरनेट यूसेज और मीम स्क्रोलिंग से आई है और अब हमारे जनरेशन के हर दिन के कॉन्वर्सेशन का एक नेचुरल पार्ट बन चुकी है। और मुझे लगता है जब मैं ऐसा कोई शब्द यूज़ करती हूँ अपने एल्डर जनरेशन के सामने और उनका बहुत ही ब्लैंक एक्सप्रेशन आता है, तो मेरी कोशिश यही होती है कि मैं उनके जनरेशन का कोई स्लैंग या रेफरेंस यूज़ करके उन्हें समझा पाऊँ। जैसे मैंने जब अपनी दादी को बताया कि डिलीवरी आपके ख्याली पुलाव पकाने का छोटा वर्जन है, तो अब उन्हें बहुत मज़ा आता है डिलीवरी वर्ड यूज़ करने में।
1: भारत में इंटरनेट इस्तेमाल करने वालों की संख्या अब लगभग 1 अरब है, यानी 100 करोड़। वहीं जेनजी यानी 1997 से 2012 के बीच जन्मी जनरेशन आबादी के हिसाब से भारत की सबसे बड़ी पीढ़ी है, लगभग 40 से 50 करोड़ के आसपास। और ये अपने आप में एक बड़ा कारण है कि अब आप जेनजी को सीरियसली लें। तो आइए समझते हैं कि जेनजी की भाषा किस तरह की है। पिछले साल दुनिया के बड़े शब्दकोशों ने जो शब्द चुने उन पर गौर कीजिए। ऑक्सफोर्ड ने चुना रेज बेट, यानी ऐसी सामग्री जो जानबूझकर गुस्सा भड़काने के लिए बनाई जाती है ताकि ज्यादा क्लिक मिले। कैम्ब्रिज ने चुना पैरा सोशल, यानी किसी ऐसे व्यक्ति से जुड़ाव महसूस करना जो आपको जानता तक नहीं। मरियम वेबस्टर ने चुना स्लॉप, यानी मशीन से थोक में बनाया गया घटिया कंटेंट। और उससे पिछले साल ऑक्सफोर्ड का शब्द था ब्रेन रॉट। ये मजाकिया शब्द नहीं, ये इस जनरेशन का डिक्शन है। अब एक दिलचस्प एनालॉजी। 20वीं सदी में रेवोल्यूशन का सबसे पहचाना निशान क्या था? हवा में उठी हुई एक बंद मुट्ठी, एक फिस्ट। ये फिस्ट हर महाद्वीप पर दिखी, बस पिक्चर ही काफी थी। अब इस आइकॉनिक फिस्ट की जगह एक और पिक्चर लेती जा रही है, और यह पिक्चर किसी विचारधारा से नहीं, एक जापानी कॉमिक से आई है। 1997 में जापानी चित्रकार इचिरो ओडा ने एक सीरीज शुरू की, वन पीस। उसका नायक है मंकी डी लूफी, सर पर स्ट्रॉ हैट पहने एक नौजवान समुद्री यात्री जो अपने साथियों के साथ एक भ्रष्ट विश्व व्यवस्था से टकराता है। उसके ग्रुप का निशान है एक कार्टून स्कल, और उस स्कल पर वही स्ट्रॉ हैट है। भारतीय जेंजी के बीच बेहद पॉपुलर लेखक और पॉडकास्टर जेंजी के इस व्यवहार का बेहद अच्छे तरीके से आकलन करते हैं। उनका कहना है कि आज की सटायर से भरी दुनिया में बात तेज फैलती है, और इसीलिए आज के दौर में ये जेंजी का मुख्य औजार भी बन जाता है। जयपुर साहित्य उत्सव में उन्होंने इस जनरेशन को कल्चरल लेबर तक भी कहा। उनका कहना है कि जेंजी एल्गोरिदम, ब्रांड और ट्रेंड के लगातार दबाव में जी रहे हैं। मतलब प्रेशर तो है, पर उन्होंने एक जरूरी चेतावनी भी दी जिसे अक्सर अनदेखा कर दिया जाता है। आप जेंजी को कैटेगराइज नहीं कर सकते। दिल्ली का नौजवान किसी इंटरनेशनल पॉप कॉन्सर्ट के लिए उत्साहित हो सकता है, राजस्थान का नौजवान किसी लोक कलाकार के लिए। जेंजी एक सुविधाजनक लेबल है, कोई एक यूनिफॉर्म वॉइस नहीं, और ऐसी ही उसकी भाषा है, किसी भी लेबल से मुक्त। तो जो हम कहते हैं कि आजकल के बच्चों की भाषा समझ में नहीं आती, तो असल में हम भाषा की नहीं, हमारे जनरेशनल गैप की बात कर रहे होते हैं, जो आज से ज्यादा कभी नहीं था। आज ये हमारे कम्युनिकेशन सिस्टम्स के लिए एक चैलेंज भी है और स्कोप भी। इन सब के बीच हमारे लिए सबसे उम्दा उदाहरण है हमारे प्रधानमंत्री जी, विश्व के सबसे चर्चित चेहरे, मोस्ट फॉलोड पॉलिटिकल लीडर ऑन द प्लैनेट और मास्टर कम्युनिकेटर। बीते कुछ हफ्तों में उनके इंस्टाग्राम की भाषा बदली है। लंबे औपचारिक भाषणों की जगह छोटे डायरेक्ट मोबाइल से बने वीडियोज ने ली है, वर्टिकल फ्रेम में, सामान्य बोलचाल में। जुलाई के आखिर में एक वीडियो की शुरुआत ही इस तरह हुई, हाय फ्रेंड्स। किसी वीडियो में एक प्रधानमंत्री का हाय फ्रेंड्स कहना कोई छोटी बात नहीं है, या कम्युनिकेशन अप्रोच के बदलने का संकेत है, क्योंकि इसमें एक एक्सेप्टेंस छिपा है कि जेंजी तक पहुंचना है तो जेंजी की भाषा में पहुंचना होगा। प्लेटफॉर्म वही चलेगा जहां जेंजी पहले से मौजूद है, और लिंगो वही चलेगा जो जेंजी का अपना है, नो कैप। दोस्तों, ध्यान रहे कम्युनिकेशन का सबसे पुराना नियम भी यही है। हालांकि हमें यह भी ध्यान देना होगा, जो ब्रेविटी इस भाषा को ताकत देती है, वही इसकी सबसे बड़ी कमजोरी भी है। जो वो कैब हर 3 हफ्ते में बदल जाए, बेहद छोटी हो, वह याद कम रहती है। जो सटायर हर बात पर लागू हो, वह धीरे धीरे विषय की गंभीरता छीन लेता है। और जिस मंच पर गुस्सा सबसे तेज बिकता हो, वहाँ गुस्सा भड़काना एक कारोबार बन जाता है। रेज बेट इसी शब्द की सच्चाई है। वायरल हो जाना और बदलाव ले आना दोनों एक चीज नहीं। तो डियर जेन ज़ी, प्लीज टेक अ नोट ऑफ दैट। हाँ, भाषा बदलती रहती है, बदलती रहेगी। टाइम पास और जुगाड़ कभी सड़क की भाषा थे, आज वो कैब का हिस्सा है। जो आज डेलुलू है, वह किसी दिन संसदीय बहस का सामान्य शब्द होगा, बल्कि हो भी चुका है। तो इस पूरे शोर के बीच एक बात याद रखने लायक है, शब्द और अंदाज बदल सकते हैं, लेकिन संवाद की जरूरत नहीं बदलती। भाषा चाहे कोई भी हो, बात तभी आगे बढ़ती है जब हम एक दूसरे को सुनने की कोशिश करें। तो कह तो दिया, नो कैप।
2: अभी आपने सुना, कह तो दिया, नो कैप। आज की युवा

0: भाषा के दिलचस्प कोड को समझने का प्रयास था ये लघु प्रस्तुति। आलेख और प्रस्तुति थी ओमवेश उपाध्याय की, जो प्रसारण पत्रकार और रणनीतिक संचार विशेषज्ञ हैं। भाषा बदलती है, शब्द बदलते हैं, संवाद के तरीके बदलते हैं, लेकिन एक सवाल शायद हर पीढ़ी के अंदर बना रहता है, मैं कौन हूं और मैं वास्तव में क्या खोज रहा हूं? दुनिया को जानने और उसके साथ कदम मिलाने की दौड़ में क्या कभी हम अपने भीतर झांकने के लिए भी ठहरते हैं? इसी तलाश की एक अनोखी यात्रा हमें ले चलती है ऋषिकेश, जहां देश के 14 राज्यों से आए 50 युवाओं ने अद्वैत वेदांत के माध्यम से स्वयं को समझने और स्व की खोज का प्रयास किया। हमारी अगली प्रस्तुति है ये लघु वृत्त चित्र, दुनिया से आगे खुद तक। सौजन्य साहित्य और संस्कृति कर्मी विशाल पांडे, जो दिल्ली विश्वविद्यालय में सहायक अध्यापक भी हैं।
1: गंगा की अविरल धारा, हिमालय की शांत और विराट उपस्थिति, आश्रम का अनुशासित जीवन, गुरु का सानिध्य और आचार्य शंकर की ज्ञान परंपरा से संवाद, इन सबके बीच 10 दिन ऐसे बीते जिन्होंने मुझे भारतीय दर्शन को समझने का ही अवसर नहीं दिया, स्वयं को देखने और समझने की एक नई दृष्टि भी दी। ये अवसर था अद्वैत वेदांत जागरण शिविर 2026 का। मध्य प्रदेश संस्कृति मंत्रालय द्वारा युवाओं को भारतीय ज्ञान परंपरा और अद्वैत वेदांत से परिचित कराने के उद्देश्य से आयोजित यह 10 दिवसीय शिविर उत्तराखंड के ऋषिकेश में संपन्न हुआ। इस शिविर की एक विशेष बात थी, देश के अलग अलग हिस्सों से आए युवाओं का एक साथ होना। 14 राज्यों के युवा इस शिविर में सहभागी बने। देश से 1200 युवाओं की प्रविष्टियां प्राप्त हुई, उनमें से 300 युवाओं का साक्षात्कार हुआ और अंततः 50 युवाओं का चयन इस शिविर के लिए किया गया। एक साझा जिज्ञासा भारतीय ज्ञान परंपरा को समझने की, और शायद उससे भी बड़ा प्रश्न, मैं कौन हूं? यही प्रश्न अद्वैत वेदांत की यात्रा का एक महत्वपूर्ण प्रवेश द्वार है। 10 दिनों तक शिविर में आदि गुरु आचार्य शंकर द्वारा प्रतिपादित ज्ञान परंपरा से जुड़े महत्वपूर्ण ग्रंथ तत्वबोध का अध्ययन कराया गया। तत्वबोध अर्थात तत्व का बोध, अपने अस्तित्व के मूल को समझने का प्रयास, इस अध्ययन की सबसे बड़ी विशेषता थी गुरु का सानिध्य। स्वामी परमात्मानंद सरस्वती के मार्गदर्शन में तत्वबोध का अध्ययन हुआ। इस पूरे अनुभव को मैं केवल एक कार्यक्रम की तरह या शिविर के रूप में ही नहीं देखता हूँ, स्वयं इस अद्वैत वेदांत जागरण शिविर का एक सहभागी भी रहा हूँ। तत्वबोध के अध्ययन ने मुझे अपने बारे में, अपने मन और अपनी पहचान के बारे में नए ढंग से सोचने का भी अवसर दिया। कई साथियों के साथ रहने, उन्हें जानने और समझने का भी अवसर मिला। असल में इन साथियों और सहपाठियों के लिए भी यात्रा बेहद महत्वपूर्ण रही। ऐसी ही हमारी एक साथी बेंगलोर से जुड़ी हैं, दीक्षा ओम। आइए जानते हैं उनके अनुभव शिविर के बारे में।
2: इस शिविर की जानकारी मुझे अपने कॉलेज डिपार्टमेंट से हुई, जहाँ पर मैं योग दर्शन की पढ़ाई कर रही हूँ। इस शिविर में जाने का अवसर मेरे लिए एक बहुत ही सौभाग्य की बात रही, क्योंकि मैंने वहाँ पर जाकर बेहद ही खूबसूरत बातें जानी। उन सभी बातों में से सबसे पहली जो बात है वो ये है कि मैंने जीवन को सही प्रकार से देखने के नई दृष्टिकोण को जाना। 90% से भी ज़्यादा हमारी समस्याएं एक गलत मेंटेलिटी, गलत थॉट प्रोसेस और एक डिस्टॉर्टेड परसेप्शन के कारण है। स्वामी जी ने हमें सिखाया कि किस तरीके से हम चीज़ों को एक सही ढंग से देख सकते हैं और जीवन में कर्तव्य क्या है अपने प्रति, समाज के प्रति और विश्व के प्रति। दूसरी महत्वपूर्ण बात जो मैंने जानी वो ये है, एक गुरु की हमारे जीवन में क्या इम्पोर्टेंस होती है। जब हम कोई भी

0: ज्ञान गुरु शिष्य परंपरा के माध्यम से सीखते हैं तो किस प्रकार से वो हमारे भीतर और गहरा उतरता है। तीसरी चीज जो मैंने जानी वो ये है कि किस प्रकार शास्त्र आपके शस्त्र का काम कर सकते हैं। जब हमें सही ज्ञान होता है तो हम उस वीर योद्धा के भांति हैं जो एक युद्ध भूमि में सशक्त खड़ा होता है। उसके सामने चाहे कोई भी परिस्थिति आ जाए वो डरता नहीं है, उसे अपने ज्ञान पर और स्वयं पर आत्मविश्वास होता है। इसलिए मेरे लिए बहुत ही खूबसूरत रहा यह अनुभव।
1: हम अक्सर स्वयं को अपनी उपलब्धियों से पहचानने लगते हैं। मैं क्या करता हूँ, मेरी नौकरी क्या है, मैं कितना सफल हूँ, मेरे पास क्या है, दूसरे लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं। लेकिन अद्वैत वेदांत एक क्षण के लिए इन सब प्रश्नों से आगे ले जाकर पूछता है, इन सब के पीछे तुम कौन हो। शायद यही प्रश्न हमें भीतर से स्वतंत्र करता है और यही अद्वैत वेदांत की प्रासंगिकता है। यह केवल सन्यासियों के लिए नहीं, यह केवल किसी विशेष आयु के लोगों के लिए नहीं, यह जीवन को समझने की एक दृष्टि है। एक ऐसी दृष्टि जो हमें बाहरी उपलब्धियों के साथ साथ भीतर की समृद्धि की ओर भी देखना सिखाती है। इस शिविर में मेरे साथ प्रतिभाग कर रहे मेरे एक और सहपाठी जो कैथल हरियाणा में योग के शिक्षक हैं, अमन वर्मा, जानते हैं शिविर में उनका अनुभव।
2: स्वामी जी के प्रवचन दार्शनिक होने के साथ साथ बहुत ज्यादा मनोवैज्ञानिक अंतर्दृष्टियों और अनुभवों से भरपूर थे। उस चीज के कारण हम लगातार अपने बारे में भी मनन करते और ग्रंथ के बारे में भी। इतने सारे युवाओं के बीच में एक साथ आकर के पढ़ना, इतने सारे अलग अलग पृष्ठभूमि से आए हुए प्रतिभागियों के बीच में उस ग्रंथ को जानना, पढ़ना, साथ में संवाद करना, वार्ताएं करना, उस चीज के अनुभव ने मुझे इस ग्रंथ के साथ साथ, इस दर्शन के साथ साथ जीवन की जो ऊर्जा है, जीवंतता है, उसका जो यौवन है, उसको भी अनुभव करने का मौका मिला।
1: 10 दिन सुनने में बहुत कम, लेकिन कभी कभी 10 दिन भी जीवन में एक लंबे अध्याय की तरह उतर जाते हैं। ऋषिकेश से लौटते समय हमारे साथ ढेर सारी तस्वीरें और स्मृतियां थीं, और इसके साथ ही हमारे साथ था तत्वबोध का अध्ययन। अद्वैत वेदांत जागरण शिविर 10 दिनों का आयोजन मात्र नहीं, निरंतर चलने वाली एक यात्रा का हिस्सा भी है। यदि आपके भीतर भी भारतीय ज्ञान परंपरा को समझने की जिज्ञासा है, यदि आप आचार्य शंकर के ग्रंथों का अध्ययन करना चाहते हैं, यदि आप गुरुजनों के सानिध्य में रहकर इस परंपरा को निकट से अनुभव करना चाहते हैं, तो आप मध्य प्रदेश संस्कृति मंत्रालय की एकात्म धाम पहल से संबंधित जानकारी उनकी वेबसाइट से प्राप्त कर सकते हैं। जीवन में हम बहुत कुछ खोजते हैं, सफलता खोजते हैं, सुख खोजते हैं, सम्मान खोजते हैं, अपनी पहचान खोजते हैं, लेकिन भारतीय ज्ञान परंपरा हमें एक और खोज की ओर ले जाती है, स्वयं की खोज। और शायद यही खोज सबसे कठिन भी है और सबसे सुंदर भी।
3: दुनिया से आगे खुद तक। अभी आपने सुना ये लघु वृत्त चित्र। सौजन्य साहित्य और संस्कृति कर्मी विशाल पांडे, जो दिल्ली विश्वविद्यालय में सहायक अध्यापक भी हैं। खुद को जानने की यात्रा भीतर से शुरू होती है, लेकिन उसके अर्थ जीवन के हर क्षेत्र में दिखाई देते हैं। अपने सपनों को पहचानना, अपनी राह चुनना और चुनौतियों के बीच उस राह पर बने रहना, यही तो युवा होने की असली परीक्षा भी है। किताबें हैं, करियर की तैयारी है, भविष्य की चिंताएं हैं, और इनके बीच एक कला है जिसे केवल समय नहीं, समर्पण भी चाहिए। जब मंच पर मोहिनीअट्टम की मुद्राएं आकार लेती हैं और मन में भविष्य की मंजिलें भी साथ साथ चलती हैं, तो जीवन एक खूबसूरत कदम ताल बन जाता है। प्रस्तुत है लघु रूपक मंच पर मोहिनी, मन में मंजिल।

0: किताबों के खुले पन्ने, असाइनमेंट की समय सीमा, आने वाली परीक्षाओं का तनाव। ऐसे में जरा सोचिए, जब कोई स्टूडेंट कॉलेज के भाग दौड़ के तुरंत बाद अपनी किताबें समेट शाम होते ही सीधे एक शास्त्रीय नृत्य के रियाज में जाकर शामिल हो जाए।
1: आज की जनरेशन सिर्फ डिग्री हासिल करने की रेस में नहीं दौड़ रही। एक तरफ करियर बनाने का प्रेशर है, तो दूसरी तरफ अपने अंदर के उस कलाकार को जिंदा रखने की जिद, जो शॉर्टकट नहीं बल्कि घंटों का सब्र और कड़ा रियाज मांगता है। केरल के तटीय क्षेत्रों से विकसित हुई मोहिनीअट्टम 8 भारतीय शास्त्रीय नृत्य शैलियों में से एक है।
0: आंदोलन यानी लहरों जैसी सुगम शारीरिक गतियां, सोपानम संगीत की धीमी लय, और नयन अभिनय यानी आंखों का बारीक संचालन इसकी मुख्य तकनीकी पहचान है।
1: कथकली की नाटकीयता या भरतनाट्यम की तेज पदचाप के विपरीत, मोहिनीअट्टम का मुख्य आधार अति सूक्ष्म ठहराव और शारीरिक संतुलन है।
0: इसीलिए आज के फास्ट पेस्ट दौर में इस विधा की पारंपरिक संरचना को बिना बदले नई पीढ़ी को सौंपना एक बेहद बारीक काम है।

0: एक गुरु के तौर पर आज की व्यवहारिक चुनौतियों के बीच इस क्लासिकल तकनीक को युवा कलाकारों तक कैसे पहुंचाया जा रहा है, आइए सुनते हैं गुरु जयप्रभा मेनन जी से।
1: इन द क्लासिकल में ये मोहिनीअट्टम अकेले एक नृत्य रूप है जो सोलो में और ये सिंगल परफॉर्मेंस में आता है, एकहारिया में आता है। हमारे शास्त्रीय नृत्य रूप के दो तरह के, तांडव और लास्य। तो मोहिनीअट्टम लास्य कैटेगरी में आता है। लास्य मतलब क्या है? लास्य इज जेंटल, सॉफ्ट, ब्यूटिफुल एंड ग्रेसफुल, यानी और एकदम सरलता में बोलेगा ये स्त्रैण नृत्य रूप है। फेमिनाइन ब्यूटी इसमें ज्यादा है। मोहिनीअट्टम में बॉडी डिसिप्लिन एंड माइंड डिसिप्लिन की बहुत जरूरत होती है।
2: आज की डिजिटल दुनिया शॉर्टकट और इंस्टेंट रिस्पांस पर चलती है, लेकिन मोहिनीअट्टम जैसी विधा महीनों और सालों का सब्र मांगती है। ऐसे में पढ़ाई के तनाव और रियाज के अनुशासन के बीच टाइम मैनेजमेंट कैसे होता है? क्या ये कला उनकी पढ़ाई में रुकावट बनती है या उल्टा उनका फोकस और बेहतर करती है?
3: मेरा नाम अनश्वरा है एंड अभी मैं 12th क्लास में हूँ। 12 साल से भरतनाट्यम सीख रही हूँ, पिछले 5 साल से मोहिनीअट्टम। एंड इट्स बीन अ वंडरफुल एक्सपीरियंस फॉर मी, क्योंकि अपार्ट फ्रॉम स्टडीज मैं लाइक ज़्यादा चीज़ों पे फोकस नहीं कर पाती एंड डांस क्लास प्लेज अ वेरी ह्यूज रोल। और इसमें नॉट ओनली माई कल्चर बट मैं बाकी चीज़ों को भी एक्सपीरियंस कर पाती हूँ, तो उसका एक्सपोजर मिलता है एंड तुम्हें पता चलता है कि दुनिया में क्या क्या हो रहा है। एंड मैंने सोचा भी है कि अगर आगे जाके मैं जस्ट इन केस अपने डांस को प्रमोट करना चाहूँ, आई कैन स्टार्ट टेकिंग डांस क्लासेस एंड ऑल।

0: मंच का आत्मविश्वास सिर्फ उस परफॉर्मेंस तक सीमित नहीं रहता, बल्कि उनके व्यक्तित्व और सोच में भी झलकने लगता है।
1: माय नेम इज राजश्री आर, आई एम परस्यूइंग बायोकेमिस्ट्री ऑनर्स, इट्स माय सेकंड ईयर ऑफ कॉलेज। क्लासिकल डांस के टूवर्ड्स बहुत अट्रैक्टेड रही, डांसिंग इज माय पैशन, बट कहीं ना कहीं मुझे फ्यूचर को लेके भी थोड़ा बहुत कंसर्न है कि इफ आई एम परस्यूइंग दिस फील्ड मैं कर पाऊंगी कि नहीं। इवन दो आई नो कि मैं कर लूंगी, बट जस्ट टू बी ऑन अ सेफ साइड आई एम परस्यूइंग बायोकेमिस्ट्री। बट अगर मुझे मौका मिलता है कि मैं इसको फुल टाइम पे लेके जाऊँ।

0: ट्रेडिशनल मोहिनीअट्टम एंड भरतनाट्यम आई विल डेफिनेटली प्रेफर.
1: दिन भर की किताबी पढ़ाई और करियर की आपाधापी के बीच मोहिनीअट्टम के इन कठिन तट्टाडवू और रामायणम इलाकी अट्टम का कड़ा अभ्यास ये साबित करता है कि युवाओं में कला के प्रति समर्पण कितना गहरा है.
2: शास्त्रीयता की मर्यादा को बिना बदले आधुनिक जीवन शैली के साथ इस विधा को साधते इन युवा कलाकारों की ये यात्रा वाकई दिलचस्प है. मंच पर थिरकते ये कदम और मन में अपनी मंजिल को पाने का ये जज्बा यूं ही बना रहे, हमारी शुभकामनाएं.
3: मंच पर मोहिनी, मन में मंजिल. अभी आपने सुना ये लघु रूपक. आलेख प्रांजल, वाचन स्वर प्रांजल और नेत्रा. प्रस्तुति केंद्रीय हिंदी रूपक एकांश. हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद को नमन करते हुए आइए एक नजर डालें उन युवा कदमों पर जो आज भारतीय खेलों को नई रफ्तार दे रहे हैं. हाल के दिनों में भारतीय युवाओं ने दुनिया के अलग अलग खेल मैदानों पर अपनी चमक बिखेरी. 18 वर्षीय अनाहत सिंह ने विश्व जूनियर स्क्वैश चैंपियनशिप में महिला एकल का खिताब जीतकर एक इतिहास रचा. एथलेटिक्स में अंडर 20 विश्व चैंपियनशिप में बसंत कुमार मेघवाल ने ऊंची कूद में रजत और शहनवाज खान ने लंबी कूद में कांस्य पदक जीतकर भारतीय उम्मीदों को नई ऊंचाई दी. कुश्ती के विश्व अंडर 20 मंच पर भी भारतीय बेटियों ने दम दिखाया. मानसी लाठर ने रजत जबकि तन्वी और कोमल ने कांस्य पदक अपने नाम किए. और शतरंज के बिसात पर आर प्रज्ञानंदा ने ग्रैंड चेस टूर जीतकर भारतीय प्रतिभा का एक और ऐतिहासिक अध्याय लिखा है. मेजर ध्यानचंद की विरासत हमें याद दिलाती है कि खेल केवल जीत का नाम नहीं, अनुशासन, समर्पण और निरंतर साधना का नाम है. आज का युवा भारत उसी विरासत को आगे बढ़ा रहा है. मैदान बदल रहे हैं, खेल बदल रहे हैं, लेकिन तिरंगे को ऊंचा उठाने का जज्बा वही है. इसी के साथ संपन्न होता है युवा भारती का आज का अंक. नवोदिता मिश्रा को अनुमति दीजिए. नमस्कार.

0: नमस्कार, संगीत के अखिल भारतीय कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज के कार्यक्रम में प्रस्तुत है डॉक्टर मंडपा कशारदा का कर्नाटक शैली में गायन।
1: गुड इवनिंग लिसनर्स, वेलकम टू द नेशनल प्रोग्राम ऑफ म्यूजिक। टुनाइट वी प्रेजेंट अ वोकल रिसाइटल इन कर्नाटक स्टाइल बाय डॉक्टर मंडपा कशारदा।
0: श्रीमती विमला और श्री कृष्णमूर्ति की बेटी डॉक्टर मंडपा कशारदा ने संगीत की प्रारंभिक शिक्षा गुरु श्री आईवीएल शास्त्री के पास प्राप्त की। तत्पश्चात श्री कोमंडोरी कृष्णमाचार्युलु के पास आपने संगीत की बारीकियां सीखी। 8 वर्ष के अल्प आयु से ही डॉक्टर शारदा अपने कला का प्रदर्शन करती आ रही हैं। पट्टनम सुब्रमण्यम अय्यर की रचनाओं पर आपके शोध कार्य हेतु आपको PhD प्रदान किया गया है। आप आंध्र विश्वविद्यालय के संगीत विभाग में प्राचार्य पद से सेवानिवृत्त रही हैं। पिछले 60 वर्षों से डॉक्टर मंडपा कशारदा कई प्रतिष्ठित मंचों पर अपनी कला का प्रदर्शन करती आ रही हैं। आपको कई संस्थाओं द्वारा विभिन्न पुरस्कारों से सम्मानित किया जा चुका है। डॉक्टर मंडपा कशारदा को आकाशवाणी द्वारा शास्त्रीय संगीत गायन में A ग्रेड और सुगम संगीत में B हाई ग्रेड प्राप्त है और आप Grade 1 कम्पोजर भी है।
1: बोर्न इन विजयनगरम टू श्रीमती विमला एंड श्री कृष्णमूर्ति, डॉक्टर मंडपा कशारदा वॉज इनिशिएटेड इन टू म्यूजिक एट एन अर्ली एज। शी रिसीव्ड हर इनिशियल ट्रेनिंग इन म्यूजिक अंडर श्री IVL शास्त्री एंड लेटर होन्ड हर स्किल्स अंडर द गाइडेंस ऑफ श्री कोमंडोरी कृष्णमाचार्युलु। डॉक्टर मंडपा कशारदा रिसीव्ड हर PhD डिग्री फॉर हर थीसिस ऑन द कॉम्पोजिशंस ऑफ पट्टनम सुब्रमण्यम अय्यर। She served for several years in the Department of Music

0: of Andhra University, an A-grade artist of Akashvani and Doordarshan in Carnatic music and Bihai in light music, she is also a grade 1 music composer. Dr. Sharada has performed more than 3,000 concerts in classical, devotional and light music in several platforms all over the country. She is also the author of 2 books, Swaratarangini and Kriti Manjari. Dr. Mandapaka Sharada is the recipient of a number of awards and felicitations.
1: आज के कार्यक्रम में डॉक्टर मंडपाका शारदा की संगत कर रहे हैं वायलिन पर श्री महादासु नीलाद्री राव मृदंगम पर श्री सुसरापु सुब्रमण्यम और घटम पर श्री सारस्वतुला हनुमंत राव
0: इन टुनाइट्स कॉन्सर्ट डॉक्टर मंडपाका शारदा इज अकॉम्पनीड बाय श्री महादासु नीलाद्री राव ऑन द वायलिन श्री सुसरापु सुब्रमण्यम ऑन द मृदंगम एंड श्री सारस्वतुला हनुमंत राव ऑन द घटम
1: डॉक्टर मंडपाका शारदा आज के कार्यक्रम का आरंभ करती हैं बेगड़ राग में संत त्यागराज की रचना भक्तुनि चारित्रमु से जो कि आदि ताल में निबद्ध है
0: डॉक्टर मंडपाका शारदा बिगिन्स हर प्रेजेंटेशन विद भक्तुनि चारित्रमु अ कॉम्पोजिशन ऑफ त्यागराजा इन बेगड़ रागम आदि ताल

0: डॉक्टर मंडपा का शारदा की अगली प्रस्तुति है माया माला गौल राग में श्याम शास्त्री की रचना नीलायताक्षी, जो कि मिश्र चापुताल में निबद्ध है।
1: She next presents a composition of Shyama Shastri in Maya Malava Gola Ragam Misra Chaputalam.

0: अब सुनिए शुद्ध धन्यासी राग में मुत्तुस्वामी दीक्षितार की रचना श्री पार्थ सारथी जो कि रूपक ताल में निबद्ध है।
1: वी विल नाउ लिसन टू श्री पार्थ सारथी। इट इज इन शुद्ध धन्यासी रागम रूपक तालम एंड इज अ कॉम्पोजिशन ऑफ मुत्तुस्वामी दीक्षितार।

0: संगीत के अखिल भारतीय कार्यक्रम में आज आप डॉक्टर मंडपा का शारदा का कर्नाटक शैली में गायन सुन रहे हैं। आपकी संगत कर रहे हैं वायलिन पर श्री महादासु नीलाद्री राव, मृदंगम पर श्री सुसरापु सुब्रमण्यम और घटम पर श्री सारस्वतुला हनुमंत राव। कार्यक्रम को जारी रखते हुए डॉक्टर मंडपा का शारदा प्रस्तुत कर रही है कल्याणी राग में पल्लवी गोपालय्यर की रचना नीदु चरण पंकजमुले, जो कि आदि ताल में निबद्ध है।
1: In tonight's national program of music, you have been listening to a classical vocal recital in Carnatic style by Dr. Mandapaka Sharada. She is accompanied by Sri Mahadasu Niladri Rao on the violin, Sri Susarapu Subramaniam on the mridangam, and Sri Saraswatula Hanumant Rao on the ghatam. Continuing her performance, Dr. Mandapaka Sharada will now present a composition of Pallavi Gopalayar in Kalyani Ragam Aditala.

0: यह था तन्यावर्तनम, जिसे मृदंगम पर प्रस्तुत किया श्री सुसरापु सुब्रमण्यम ने और घटम पर श्री सारस्वतुला हनुमंत राव ने। डॉक्टर मंडपा का शारदा आज के कार्यक्रम का समापन वृंदावनी राग में डॉक्टर मंगलम पल्ली बालमुरली कृष्णा द्वारा रचित तिल्लाना से कर रही हैं, जो कि आदि ताल में निबद्ध है।
1: दैट वॉज तन्यावर्तनम ऑन द मृदंगम बाय श्री सुसरापु सुब्रमण्यम एंड ऑन द घटम बाय श्री सारस्वतुला हनुमंत राव। Dr. Mandapa Kasharada concludes her this evening's presentation with the Tillana of Mangalampalli Balamurali Krishna. It is in Vrindavani Ragam Aditalam.

0: के अखिल भारतीय कार्यक्रम के तहत अभी तक आप डॉक्टर मंडपा कशारदा द्वारा कर्नाटक शैली में गायन सुन रहे थे। आपकी संगत कर रहे थे वायोलिन पर श्री महादासु नीलाद्री राव, मृदंगम पर श्री सुसराप सुब्रमण्यम और घटम पर श्री सारस्वतुला हनुमंत राव। इसी के साथ आज का संगीत का अखिल भारतीय कार्यक्रम यही सम्पन्न होता है। यह कार्यक्रम आकाशवाणी के विशाखापट्टनम केंद्र में ध्वन्यांकित किया गया।
1: With this we come to the end of tonight's national program of music, wherein we brought you a classical vocal recital in Carnatic style by Dr. Mandapa Kasharada. She was accompanied by Sri Mahadasu Niladri Rao on the violin, Sri Susarapu Subramaniam on the mridangam, and Sri Saraswatula Hanumanth Rao on the ghatam. This program was recorded earlier at the studios of Akashvani, Vishakhapatnam.
2: ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। लीजिए सुनिए समाचार जिसे हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले कर रहे हैं।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विकास मेहरोत्रा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दो दिन की उज्बेकिस्तान की यात्रा पर आज शाम राजधानी ताशकंद पहुंचे। राष्ट्रपति शवकत मिर्जियोयेव ने उनका स्वागत किया। हमारे संवाददाता ने बताया है कि श्री मोदी के स्वागत के लिए ताशकंद शहर में विशेष प्रबंध किए गए हैं।
1: पूरा ताशकंद शहर भारतीय झंडों और होर्डिंग से सजा हुआ है। हर कोई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चौथी यात्रा का बेसब्री से इंतजार कर रहा था। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति शौकत मिर्जियोयेव सदियों पुराने आपसी संबंधों को और मजबूत करने पर विचार विमर्श करेंगे। दोनों नेता राष्ट्रपति भवन में व्यापार और निवेश, रक्षा, डिजिटल कनेक्टिविटी, ऊर्जा, शिक्षा और जन संबंधों के क्षेत्रों में सहयोग की समीक्षा करेंगे। वे विकसित भारत 2047 और उज्बेकिस्तान 2030 के साझा विकास लक्ष्यों को आगे बढ़ाने पर भी अपने विचार साझा करेंगे। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, ताशकंद, उज्बेकिस्तान।
0: उज्बेकिस्तान के बाद श्री मोदी किर्गिस्तान की दो दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। प्रधानमंत्री किर्गिस्तान के राष्ट्रपति सादोर जापारोव के निमंत्रण पर बिश्केक में 26वें शंघाई सहयोग संगठन SCO शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। नेपाल में आई भीषण बाढ़ में मृतकों की संख्या 669 हो गई है और 2000 से अधिक लोग लापता हैं। प्रभावित क्षेत्रों में राहत और बचाव अभियान जारी है। बचाए गए लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा रहा है। बंद सड़कों को साफ करने का काम भी तेजी से चल रहा है। विदेश मंत्रालय ने बताया है कि नेपाल में अब तक 88 भारतीयों को बचाया जा चुका है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बताया कि 287 भारतीय नागरिक लापता हैं। उन्होंने कहा कि 128 भारतीय मूल के लोग भी लापता हैं। रसुवा स्थित एक जल विद्युत परियोजना से 4 भारतीय नागरिकों को बचाया गया। आज 120 भारतीय नागरिक चीन से नेपाल में दाखिल हुए। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा है कि वैश्विक कंपनियों को अपनी आपूर्ति श्रृंखला और पूंजी आवंटन का फिर से आकलन करना चाहिए, क्योंकि भारत न केवल विश्व बाजार उपलब्ध कराता है बल्कि दीर्घकालीन निवेश और संचालन मंच पर भी आधार है। अमेरिका के शिकागो में प्रमुख निवेशकों और उद्योगपतियों के साथ एक उच्च स्तरीय सम्मेलन में उन्होंने कहा कि भारत में निवेश का तात्पर्य व्यापक बाजार, सतत आर्थिक विकास, कौशलयुक्त प्रतिभा, विश्व स्तरीय बुनियादी

0: ढांचा अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी और एक दशक के सुधार से है। उन्होंने कहा कि देश का अगला आर्थिक विकास एआई, इंजीनियरिंग, एनालिटिक्स, उत्पाद विकास, सेमीकंडक्टर और इलेक्ट्रॉनिक्स में निहित है। सरकार ने कहा है कि इस वर्ष जुलाई तक प्रति बूंद अधिक फसल योजना के अंतर्गत 115 लाख हेक्टेयर कृषि भूमि को लघु सिंचाई प्रणाली में लाया गया है। योजना का उद्देश्य खेत स्तर पर पानी के प्रयोग में दक्षता लाना और उसमें सुधार करना है। यह योजना जनवरी 2006 में केंद्र सरकार ने लघु सिंचाई के लिए शुरू की थी। वर्ष 2015-16 से 2021-22 तक इसका आधिकारिक नाम प्रति बूंद अधिक फसल किया गया और इसे प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के प्रमुख घटक के रूप में लागू किया गया। केंद्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो सीबीएन की मध्य प्रदेश इकाई ने ऑपरेशन वज्र 2 के अंतर्गत एक बड़े अंतर्राज्यीय औषधि तस्करी मामले में 66 लाख से अधिक मनोरोगी गोलियां जब्त की हैं। ये खेप मादक औषधि और मनोरोगी पदार्थ अधिनियम 1985 की संबंधित धाराओं के तहत जब्त की गई है। इस अभियान में एक व्यक्ति की गिरफ्तारी और एक ट्रक भी जब्त हुआ है। वित्त मंत्रालय ने बताया कि सीबीएन ने पंजाब, हिमाचल प्रदेश, गलियारे के साथ मनोरोगी दवाओं की एक बड़ी अवैध खेप की आवाजाही के संबंध में विशिष्ट खुफिया जानकारी के आधार पर कार्रवाई की। मौसम विभाग ने उड़ीसा में अगले दो दिनों के लिए वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग ने अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, छत्तीसगढ़ और पश्चिम बंगाल के गंगा के तटवर्ती क्षेत्रों में कल मूसलाधार बारिश की चेतावनी दी है। इसके अलावा बिहार, पूर्वी मध्य प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश, झारखंड, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम और विदर्भ में भी कल तेज बरसात की आशंका जताई गई है। मौसम विभाग ने अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, पश्चिम बंगाल के गंगा के तटवर्ती क्षेत्र और उड़ीसा में बिजली चमकने तथा आंधी तूफान के आसार जताए हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani. The news read by Nina Rakel. Prime Minister Narendra Modi arrived in Tashkent, the capital of Uzbekistan, this evening on a two-day visit aimed at further strengthening bilateral ties between India and Uzbekistan. He was warmly received by Uzbek President Shavkat Mirziyoyev at the airport. Our correspondent covering the Prime Minister's visit reports that the entire Tashkent city has been decked up with Indian flags and colourful hoardings to welcome Prime Minister Modi on his fourth visit to the Central Asian country.
2: The Indian diaspora, comprising mostly of medical students in Tashkent, gathered for a special welcome for Prime Minister Modi. Tomorrow, Prime Minister Narendra Modi and President of Uzbekistan, Mr. Shavkat Mirziyoyev, will reflect upon the entire spectrum of bilateral relationship that are based on civilizational ties and built over centuries and strengthened by strong people-to-people ties. The two leaders would review cooperation in trade and investment, defense, digital connectivity, energy, education and people-to-people domains at the Presidential Palace. They will also share perspectives on advancing the shared development vision of Viksit Bharat 2047 and Uzbekistan 2030. Prime Minister Modi is also expected to visit the Shastri Memorial in Tashkent and the Mahatma Gandhi Center at the Tashkent State University of Oriental Studies. Sushil Chandra Tiwari, Akashvani News, Tashkent, Uzbekistan.
1: The death toll from devastating flash floods in Nepal and Tibet has risen to 669, while over 2,000 people remain missing. Search and rescue operations are underway across the affected districts of the Himalayan nation. Officials said the police are coordinating with residents and other agencies to locate missing people and assist those stranded by the floods. An 11-member technical team from India carried out on-site reconnaissance of hydropower tunnels in Nepal's flood-affected areas today to facilitate search and rescue of stranded individuals. The team comprising doctors, paramedics and tunnel engineers had arrived in Kathmandu yesterday. Today they reached Trishuli in Nuwakot district to assist in efforts to rescue workers trapped in a tunnel belonging to a hydropower project. In a social media post, the Indian Embassy in Kathmandu said today